0: वर मांग लो। अर्जुन ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हूँ। विनीता बोली, तेज शरीर का बल विक्रम में कद्रु के पुत्रों से शेष केवल दो ही पुत्र मुझे प्राप्त हैं। कश्यप जी ने एवं अस्तु कहा, दोनों प्रसन्न हो गए। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा लेकर कश्यप ऋषि वन में चले गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और विनीता ने 2 अंडे दिए। दासी ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के तो 1000 पुत्र निकल आए, परंतु विनीता के 2 बच्चे नहीं निकले। विनीता ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दिया, माता तूने लोभवश मुझे अधूरे शरीर को ही निकाल दिया है, फिर तू अपनी उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी, उसे दाह करती है। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़ कर उसके बालक को अंगहीन या विकृतांग नहीं ना किया, तो वही तुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है तो मेरा दूसरा बालक बलवान हो और धैर्य के साथ 500 वर्ष तक प्रतीक्षा कर। उस प्रकार श्राप देकर बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा उसकी झलक थी और उसका बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रु और विनीता दोनों बहनें एक साथ घूम रही थी, उन्हें पास ही उच्च श्रवा नाम का घोड़ा दिखाई दिया। यह घोड़ा अश्वरत्न अमृत मंथन से उत्पन्न हुआ था। असमस्त अश्वों में श्रेष्ठ बलवान विजयी सुंदर अजर दिव्य और सब शुभ शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में वर्णन करने लगी, देवताओं के अमृत मंथन ने किस स्थान पर और क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्च श्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उच्च श्रवा महर्षि शौनक आदि का प्रश्न सुन के उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवता से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें, इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदाचल को उखाड़ने की चेष्टा की। ये पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से 11,000 योजन ऊंचा और उतने से ही नीचे धसा हुआ था। जब सर्वस्व देवता पूरी शक्ति लगाकर उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेष नाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेष नाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। अब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथे हैं। समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप राज से कहा, आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने कहा, ठीक है, कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया। अब यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवताओं और असुरों ने मंदराचल की मथानी वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। सांस थोड़ी देर में मेघ बन जाती और मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाने लगते। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। पहाड़ पर वृक्ष आपस में टकरा कर उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों द्वारा जल बरसवा कर उसे शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू चू कर समुद्र में आने लगे। औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध सुवन में मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों को से चूने वाली जल के स्पर्श से ही देवता अमरत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवताओं ने मत्ते मत्ते थक कर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मत्ते मत्ते इतना समय बीत गया परंतु अभी तक अमृत ही निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप इन्हें बल दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमाएं, समुद्र को शुद्ध कर दें। भगवान जी इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया, वे बड़े वेग से मचने लगे, सारा समुद्र शुद्ध हो गया। उसी समय समुद्र से अनगिनत किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वन का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकली। उसी समय श्वेत वन का उच्च हवा घोरा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा, उच्च हवा, ये सब आकाश मार्ग के देवताओं के लोक में चले गए। के बाद दिव्य शरीर धारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे। ये अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों में ये मेरा है, मेरा है, ऐसा कोलाहल मच गया। तदनंतर चार श्वेत दांतों से युक्त विशाल इरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। तब समुद्र का मंथन किया गया। तब उसमें कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती गई। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर जी ने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उन्होंने बड़ा बैर, विरोध और फूट हो गया। उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी श्री अवेश धारण करके दानवों के पास गए। मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाके उसे पी लिया। उसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही चक्र से उसका सिर काट डाला और राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का पैर हो गया। विष्णु भगवान ने अमृत लाने के बाद अपनी मोहिनी रूप त्याग दिया और तरह तरह के घरावने अस्त्र शस्त्र से असुरों को डराने लगे। खारे समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। देवासुर संग्राम कहा जाता है इसको। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से कट कट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगा। कोई कोई देवताओं के खड़क शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज सुनाई पड़ती, मारो, काटो, दौड़ो, गिरा दो, पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान ने दो रूप नर और नारायण युद्ध भूमि दिखाए। नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया। भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शक्रु दल में घूम घूम कर कालाग्नि के समान सहस सहस अस्त्रों का सहार करने लगे। देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश मार्ग में बिछा दिया। सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगे। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। मंदराचल को सम्मान पूर्वक यथास्थान पहुँचा दिया गया।
1: जी तो श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहे हैं और समुद्र मंथन की कथा अभी रागलेखा दशी जी से हमने जानी कि किस तरह से देवताओं को अमृत मिला। और ये सारी कथाएं बहुत सुंदर जो है इस महाभारत के अंतर्गत हम जान रहे हैं। आगे और भी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानेंगे रागलेखा दशी जी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कथाएं प्रसंग जानते हैं। जी,
0: उच्च सवा घोड़े को देखकर कद्रु ने वनिता से कहा, बहन जल्दी से बताओ इस घोड़े का किस रंग का है। नीता ने कहा, बहन ये अश्वराज श्वेत वर्ण का है, तुम इसे किस रंग का समझती हो। कद्रु ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है, परंतु पूछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाए। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर दूसरे दिन घोड़े देखने का निश्चय करके घर से निकले। कद्रु ने वनिता को धोखा देने के विचार से अपने हजार पुत्रों को आज्ञा दी, पुत्रों तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च सभा की पूछ ढक लो, इससे मुझे दासी ना बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी उसने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम लोग अग्नि जलने दे के सर्प अग्नि जलकर भस्म हो जाओगे। कद्रु अभिनेता ने दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में रात बिताई। उसी दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़े। सर्पों ने परस्पर विचार करके निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कि चलो हम लोग घोड़े की पूंछ को काली कर दी। ऐसा निश्चय करके उसे शवा की पूंछ से बाल बनकर लिपट गए और जिसे काली जान पड़ने लगी। वे कद्रू और नीता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगे। दोनों ही दूसरे पार पहुंचकर नीचे उतर पड़े। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल है परंतु पूंछ काली है। ये देखकर अनीता उदास हो गई। कद्रू ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर माँ तेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़े ही उससे बाहर निकल आए। जनते ही आकाश में ऊपर उड़ने लगे। उस समय वैसे जान पड़ते थे माना दूसरा बड़वा नर ही हो। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे अब वे भयभीत ना हो। मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन विनीता ने अपने पुत्र को पास बिठाया और कद्रू ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल। और वनिता ने कद्रू को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया। उनके अभीष्ट स्थान को चले। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्रू ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघ मंडल से आच्छादित कर दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। मनोहर वन आदि उधर देखकर यथेष उन्होंने विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते उड़ते बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा, माँ मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। विनीता ने कहा, बेटा इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौट कद्रू की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोग का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं। सर्पों ने कहा, गरुड़ यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। सर्पों की बात सुनकर गरुड़ जी माता विनीता से कहा, माता मैं अमृत लेने के लिए जा रहा हूँ, इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ खाऊंगा क्या। नीता ने कहा, बेटा समुद्र में निषादों की बस्ती है, इसे खाकर तुम अमृत ले आओ। स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी ना करना, ये सबके लिए अवध्य है। गरुड़ जी माता की आज्ञा के अनुसार उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुँह में आ गया जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा तुम लोग सकुशल तो हो, आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना। गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी आनंद है, यथेष्ट भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने से अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूँ। कश्यप जी ने कहा, बेटा यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक विश्वविख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म में भाई थे परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं। अब वे दोनों एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था तपस्वी सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था, वह जितने बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक धन के मोह के कारण लोग उसका बंटवारा चाहते हैं और बंटवारा हो जाने पर एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं और शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। तू भेदभाव के कारण धन अलग अलग करना चाहता है, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। गरुड़ इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच में एक दूसरे को श्राप देकर हाथी और कछुआ हो गए। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त कर गरुड़ जी सरोवर पे गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया और आकाश में ऊंचे उड़कर अलम्ब तीर से जा पहुंचे। सुवन गिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। गरुड़ को देखते हुए भय से कांपने लगे और कहीं उनके धक्के से हम टूट ना जाए। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उड़ते देखकर कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। जो ही गरुड़ जी ने उसकी शाखा पर बैठे तो ही वे चढ़ाकर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा, उसने नीचे की ओर सिर करके बालखिल्ले नामक ऋषिगण लटक रहे थे। गरुड़ जी ने सोचा, यदि शाखा गिर गई तो तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपट कर अपनी चोट से वृक्ष की शाखा पकड़ ली और हाथी और कछुए को पंजे में दबाया। आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। उस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिल्ले ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ ना सके। उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें इस अवस्था में देखकर कहा, बेटा कहीं साहस का काम न करना, बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्ले ऋषि ने क्रोध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दे। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तप शुद्ध बालखिल्ले ऋषि से प्रार्थना की। तपोधनो, जरूर प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहते हैं, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बालखिल्ले ऋषि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर वटवृक्ष की शाखा छोड़ दिया। तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दिया, पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पी कर उस पर्वत की चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। उस समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, भगवान एकाएक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे? इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से महात्मा बालखिल्ले ऋषियों के तपोबल से वनिता नंदन गरुड़ अमृत पीने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वे अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को साध सकते हैं। इंद्र ने अमृत की रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी बक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहे हैं। सचेत रहो, वे बलपूर्वक अमृत न ले जाने पाओ। सभी देवताओं और स्वयं इंद्र अभी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ जी वहाँ पहुँचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए और वे धूल से ढककर मुंह से मन गए। सभी रक्षक की आंखें खराब होने के डर हो गए। वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया। चोर पंखों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी, तुम इस धूल का पर्दा फाड़ दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसे ही किया, चारों ओर उजाला हो गया। देवता उनका प्रहार करने लगे। धूल में उड़ते उड़ते गरज कर उनके प्रहार फैलिए और आकाश से भी ऊंचे पहुंच गए। देवता उन्हें शस्त्रों के प्रहार से करुण प्रणी भी विचलित हुए। उनके आक्रमण को विफल देखकर गरुड़ की पंखों और चोटों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधर गई और शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबरा कर स्वयं ही तितर बितर हो गए। उसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर को 8100 मुंह बनाए और बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे दहकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे आगे बढ़े। सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहरा शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहाँ देखा अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है, उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया। चक्र के आरों के बीच में से भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर नियुक्त हैं। उनकी दृष्टि से विश्व का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी। चूचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया। चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र को लेकर वे उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ जी ने मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है ये जानकर भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और बोले, गरुड़ मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मन चाहे वस्तु मांग लो। गरुड़ जी ने कहा, भगवान एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरा मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊँ। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। गरुड़ जी ने कहा, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ जी ने कहा, ऐसे ही होगा, और कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने गरुड़ को अमृत पी जाते देखकर क्रोध में भरकर बजर चलाया। गरुड़ ने मजा हाथ होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र इनकी हड्डी से ये बजर बना है, इनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ, तुम कभी अंत नहीं पा सकूंगी, मुझे कभी भी पीड़ा नहीं हुई। फिर उन्हें अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सब ने कहा, जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुकर्ण है। पक्षीराज, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ ने कहा, देवराज आप अपनी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे। मैं मित्र के समान ही बतलाता हूँ, पर्वत वन समुद्र जल सहित सारी पृथ्वी को और इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उठ सकता हूँ। अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए। यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए। आप ये ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा, देवराज अमृत को ले जाने का एक कारण है। मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ। मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा ले जाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़ उसे मुंह मांगा वर मांग लो। गरुड़ जी ने सर्पों की दुष्टता और उसके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प भी मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा लेने के बाद गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए। वही उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, सर्पों से कहा, ये लो मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो। मैं इसे कुशों पर रखता हूँ, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथा अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर दिया। जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने गए तब इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्ग में चले गए। मंगल कृत्यु से लौटकर सर्पों ने देखा अमृत उस पर नहीं था स्थान पर। उन्होंने समझ लिया कि हमारी विनीता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का फल है। फिर ये समझकर अमृत रखा गया था इसलिए संभव है इसमें कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया। ऐसे करते ही उनके जीभ के दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ कृत्य कृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षी राज हुए और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई।
1: जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर कथा हमने जानेंगे किस तरह से अपनी माता के लिए गरुड़ जो है अमृत का कलश लेने गए और उसमें वो सफल भी हुए और किस तरह से वो भगवान जी का वाहन बने ये भी हमने जाना और ये पूरी कथा जो है हमने जानी इस महाभारत काव्य के अंतर्गत। तो श्रोताओं, इसमें ऐसी बहुत सारी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानते रहेंगे रागली खदासी जी से, लेकिन अभी जो वक्त है आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागली खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी, तो श्रोताओं आज के लिए कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी कथाएं प्रसंग हम जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूँ आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ शिव पुराण, जिससे कि आप सबका कल्याण हो सके। तो दोस्तों, शिव पुराण का सुनवाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में लीना जी को आमंत्रित किया हुआ है। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: दोस्तों, शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याण कामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए मंगलमय एवं सर्व सिद्धिदायक हैं। तो श्रोताओं, हम भी क्यों ना इस तरह से अपने जीवन की सारी सिद्धियां प्राप्त करें। क्यों, कैसे कि शिव पुराण की व्याख्या सुनकर। तो लीना जी, आपने जो पिछली एपिसोड में जो आपने वर्णन सुनाया था हमारे श्रोताओं को, कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हिमालय सब सुनकर अपने परिवार वालों से कहने लगे कि सुमेरों, अब परिवार कौन था, सारे पर्वत, सुमेरों पर्वत राजों सुनो, मुझे क्या करना चाहिए। पर्वत राजों ने कहा, अब क्या विचार करना है, इसका जन्म तो कल्याण के लिए ही हुआ है, इसे शिव जी को दे दीजिए। फिर हिमालय ने निर्णय लिया कि मैं अपनी कन्या शिव जी को ही दूंगा, सब कुछ मैंने सोच लिया है। तो आप सारे के सारे जो मंगल पर्वत राज थे और ऋषि मुनि थे, सबने कहा आप दाता हो और शिव जी भिक्षुक, अब बताइए इससे बड़ा आपका सम्मान और क्या हो सकता है। सप्तऋषियों ने जब ऐसा कहा और विश्वास दिलाया तो गिरिराज और मैना ने अपनी कन्या भगवान शिव को देने की सोच ली। तो उसके बाद सबने मिलकर शिव जी के पास गए और उनको कहा कि आप सभी देवों को आमंत्रित कीजिए और हिमालय अपनी पुत्री आपको देने के लिए तैयार है। अब आगे लीला जी, कैसे ये कथा बढ़ती है, क्या होता है, तो जरा हमें बताइए।
1: बिल्कुल, एक रोचक कहानी हम लोग सुन रहे हैं।
0: हाँ।
1: और इस रोचक कहानी में पार्वती और शिव के विवाह प्रस्ताव की चर्चा है।
0: हाँ जी, हाँ।
1: अब शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 37वां अध्याय शुरू हो रहा है और इस 37वें अध्याय में देखिए क्या होता है।
0: जी।
1: नारद उवाच,

0: प्रात प्राज्ञ बदेद इदानीं सप्तर्षिषु गतेषु च किम् आकर्षित धर्मगिरी तन्मे कृत्वा कृपां प्रभो। कहते हैं हे प्राज्ञ, उन सात मुनियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया? जो सप्तर्षि थे वो तो प्रस्ताव लेकर के गए थे हिमालय के पास, पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के। तो अब वो लोग जब चले गए तब हिमालय ने क्या किया, कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी सुना रहे हैं उस बात को, कहते हैं गतेषु तेषु मुनिषु सप्तसु अपि मुनीश्वर सारुन्धतीषु हिमवान यद आकर्षित ब्रवीमि ते तत आमंत्रिय स्वभ्रातृन मेवार्दिन ससुत प्रिय महामना स मुमुदे हिमवान पर्वतेश्वर। कहते हैं ब्रह्मा जी की हे मुनिवर, अरुंधति सहित उन सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। उसके बाद पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित कर वह पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्री दिखवा कर शिव जी के पास उसे भिजवा दिया। देखिए उस समय लग्न पत्री भी चलती थी और लोग उसे मानते भी थे, आज भी चलती है लेकिन बहुत कम लोग उसे मानते हैं। लेकिन लग्न पत्री आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है, ये वर और वधु जो भी बनने वाले हैं भविष्य में उनके साथ क्या क्या हो सकता है और अगर नहीं मिलान होता है तो वो हर समय दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग सकते, इसलिए ये जो है लग्न पत्री आवश्यक होती है कि दाम्पत्य जीवन का वो सुख भोग पाए, ऐसे उचित वर या वधु से विवाह हो सके, इसलिए लग्न।
1: जैसे लीना जी आजकल ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर हमारे समाज में भी आधुनिक युग में कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, मंदिर में मैरिज कर रहे हैं। चलो मंदिर में तो पंडित सारे जो श्लोक हैं मंत्र हैं उनसे ही करवाएगा, या कहीं भी विवाह कर लेते हैं तो अग्नि को, कहीं भी अग्नि को साक्षी मान के कहीं भी निर्जन स्थान में कर लेते हैं। तो अब ये जो हमारी लग्न पत्रिका है या पहले से उनके नक्षत्र लग्न सब दिखवाए जाते हैं तो, और वो जो सारा का सब पत्रिका उनकी जन्म पत्रिकाएँ मिलवाई जाती हैं, गुण मिलवाए जाते हैं, वो उनका महत्व फिर क्या, मतलब क्या रह जाता है उन सब के लिए?
0: बिल्कुल महत्व तो नहीं रह जाता है, चाहे माने या नहीं माने। हाँ। अगर हम शास्त्र वचन मानते हैं तो शास्त्र को नेत्र कहा गया है, अगर शास्त्र वचन नहीं मानते हैं तो समझिए हमारे हम अपनी आंखें ही बंद किए हुए हैं, और आंखें बंद करके जब आप रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदियां है, हम नहीं जान पाएंगे और हम कहीं भी गिर सकते हैं। इसलिए आज के युग में आप देखेंगे कि दाम्पत्य संबंधों में वह मधुरता नहीं रह गई है जो होनी चाहिए। हाँ। एक ही छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं लेकिन वह प्रेम नहीं दिखता, वह संगीत मधुर नहीं दिखता जो दाम्पत्य संबंधों में होना चाहिए। हाँ। और जो कोर्ट मैरिज करें या कोई भी मैरिज करें, लेकिन वो मधुरता तभी होगी जब हम एक दूसरे का मिला के स्वभाव का मिलान करेंगे। वास्तव में तमोगुणी लड़की है और सतोगुणी लड़का है तो फिर मिलान नहीं होगा।
1: हाँ।
0: अगर सतोगुणी लड़की है तमोगुणी लड़का है तब भी मिलान नहीं होगा, क्योंकि तमोगुणी लड़का मांस मदिरा खाएगा, सतोगुणी मांस मदिरा से परहेज करेगी, दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक उसी तरह लड़के और लड़की दोनों में सेम बातें हैं। तो इसलिए जो लग्न पत्री होती है उसमें गुणों का मिलान होता है।
1: तो अब ये भी देखने को मिल रहा है लीना जी समाज में कि सारे गुण भी मिले, लग्न पत्रिका भी लिखवाई, उसके बाद भी एक साल बाद ही उनका डिवोर्स भी हो गया, उनका तलाक भी हो गया। उसमें ना वर ने सोचा कुछ आगे के बारे में, ना वधु ने सोचा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने।
0: इसका भी कारण ये है कि विवेक का अभाव रहता है।
1: हाँ।
0: दंपति के बीच में विवेक बहुत आवश्यक है, एक दूसरे पर विश्वास भी आवश्यक है और एक दूसरे के हितों के विषय में सोचकर आगे बढ़ना भी आवश्यक है। आप देखिएगा अधिकांश घरों में क्या होता है, शादी तो हो जाती है, लड़की लड़के के ससुराल को लड़के के परिवार वालों को स्वीकार भी कर लेती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन लड़की के परिवार वालों को स्वीकार नहीं जब ससुराल करता है तो लड़की पर क्या बीतती है ये कोई नहीं सोचता
1: नहीं।
0: तो लड़की भी चाहती है कि उसके परिवार वालों को भी वही आदर वही सम्मान मिले जो वह अपने ससुराल के में सबको देती है। हाँ। चाहे वो ससुर हो ननद हो सभी जगह। हाँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन प्रायः प्रायः आप देखिएगा कि बच्चियां जो भी होती हैं जिनकी भी शादी होती है वो स्वीकार कर लेती हैं और जैसे भी हो आदर करती हैं। लेकिन वहीं पर अगर बच्चियां चाहेंगी कि हम अपने मायके जाएं तो 10 बातें बताई जाती हैं कि अभी क्या करोगी, अभी तो आई थी, अभी तो ऐसा हुआ था। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और ना ही लड़की की तरफ से होना चाहिए कि हर समय मायके मायके मायके करते रहें और मोबाइल फोन से चिपके रहें, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा विवेक से काम लेना होता है कि जितना आपको दिया जा रहा है उतना ही आप वापस भी दीजिए, तो दोनों के हृदय का मिलन होगा। हृदय से हृदय का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक हृदय से हृदय का स्पंदन नहीं होगा और उसमें पुलकन नहीं उठेगी। जब पुलकन नहीं उठेगी, रोम रोम पुलकित ही नहीं होंगे, तो घर में आनंद कैसे होगा। तो इसलिए विवेक आवश्यक है। ठीक है, प्रेम हृदय का हृदय से प्रेम होना चाहिए। तो जब शिव और पार्वती की हम लोग बातें कर रहे हैं तो शिव और पार्वती में हृदय का हृदय से प्रेम है और ऐसा प्रेम अद्वितीय प्रेम है जो कि हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि पार्वती ही हम लोगों के हृदय में बसी हुई है, शिव ही हम लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। तो शिव और पार्वती का जो प्रेम है वो आत्मा और परमात्मा का प्रेम है और ये एक उदाहरण है हम लोगों के लिए कि हम भी पार्वती बत प्रेम करें, हम भी शिव बत प्रेम करें। लेकिन जब प्रेम नहीं मिलता है एक दूसरे से तो फिर हम
1: संबंध नहीं बन पाते,
0: अच्छे संबंध नहीं बना पाते। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि लग्न पत्री बना करके शिव जी के पास उसे भिजवा दिया और प्रसन्न चित्त होकर अनेक प्रकार के फल पकवान तथा मिठाइयाँ भी भिजवाई तथा उन लोगों ने कैलाश में शिव जी के पास जाकर फल आदि सहित वह लग्न पत्रिका दी और शिव जी को तिलक किया। शिव जी ने भी उन सब का यथोचित सम्मान किया। उसके बाद वे हिमालय के पास लौट आए। अब कौन लौट आए? जो सप्त मुनि थे वो लौट आए। और दूसरी बात कि हिमालय ने अपने पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित किया था और गर्गाचार्य से जनपत्री लिखवा कर उसे भिजवाया था अपने पुत्रों से। तो फिर वो सब दिए वहाँ जा करके और शिव जी ने उन्हें ग्रहण किया। अब देखिए क्या होता है कि अपने लोगों का शिव जी ने विशेष प्रकार से सम्मान किया, ये बड़ी बात है। यह जानकर हिमालय मन में प्रसन्न हुआ। तब उसने प्रसन्न होकर अनेक देशों में स्थित अपने बंधुजनों को सुखद निमंत्रण भेजा। तब उसने आदर से विवाहोचित अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री का संग्रह करवाया, क्योंकि शादी ब्याह में तो समय लगता ही है और बहुत सारी चीजें देनी होती हैं। तो उसने संग्रह करवाया, हिमालय ने चावल तथा चूड़ों के पहाड़ लगा दिए, उसी प्रकार गुड़ चीनी नमक के ढेर लगा दिए, दूध दही तथा घी की बावड़ियां बना डाली। देखिए बावड़ी बना डालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह था तो पूरे संसार से लोग आने वाले थे, तो अब किसी को वो मना तो कर नहीं सकते थे, तो इसलिए उसने बावड़ी बना दी। जौ गेहूं के आटे का संग्रह करा दिया, लड्डुओं पूड़ियों स्वस्तिकों चीनियों चीनी के ढेर लगा दिए, अमृत तथा ईख के रसों से बावड़ियां भर गई, मक्खन आसव तथा अनेक प्रकार के पकवान तथा स्वाद युक्त रसों के ढेर लग गए, अनेक प्रकार के व्यंजन जो देवताओं तथा शिव जी के गणों के लिए बनाए गए थे, बहुमूल्य अनेक प्रकार के शुद्ध वस्त्र, अनेक प्रकार के मणि रत्न सोने चांदी से बने हुए आभूषण तथा पात्रों को विधि पूर्वक संग्रह करके शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरम्भ कर दिया और पर्वत की स्त्रियाँ पार्वती का श्रृंगार करने लगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और इसमें अतिशयोक्ति हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि युग पुरुष का युग स्त्री से विवाह हो रहा था, काल पुरुष का काल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो होगा तो ऐसा ही। विवाह कोई साधारण मनुष्य का तो था नहीं, साधारण नर और नारी का था नहीं, ये प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग था। और प्रकृति यानी संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण जगत, संपूर्ण माया के साथ सौंदर्य के साथ विराजमान थी और उन माया के मायापति उनसे मिलन के लिए आ रहे थे। उनका विवाह होने वाला था प्रकृति का पुरुष से, परमेश्वर से विवाह होने वाला था, तो ऐसा अचंभा ऐसा अद्वितीय तो होना ही था। कहते हैं कि मंगलम कर्तुम आरभे गिरिर मंगल कृत दिने संस्कारम कार्यामासु पार्वत्या पर्वत स्त्रिया ता मंगलम मुदा चक्रुर्भूषिता भूषण स्वयं पुर द्विज स्त्रियो हृष्टा लोकाचारम प्रचक्रिरे सोत्सवम विविधम तत्र सुमंगलपुर सरम हिमालयो अपि हृष्टात्मा कृत्वाचारम सुमंगलम। अब कहते हैं मंगल ही मंगल था हर तरफ, क्योंकि मंगल पुरुष का मंगल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो फिर मंगल ही मंगल क्यों नहीं होता। अब देखिए कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरंभ कर दिया और पर्वत की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। वे स्वयं अनेक आभूषणों से सुशोभित होकर मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मणों की स्त्रियां भी उस लोकाचार में सम्मिलित हुई। वहां मंगलाचार के साथ हिमालय भी लोकाचार करने लगे। बंधुओं के आने से वह प्रसन्न हुआ। इसी बीच उसने दूसरे बंधु बांधवों को भी निमंत्रित किया। वे सब अपने स्त्री पुत्र नौकर चाकरों के साथ आए। हे देवर्षि, उन पहाड़ों के आने की चर्चा आदर से सुनो। मैं संक्षेप से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूँ। अब देखिए, अब पहाड़ों की चर्चा है। कवि जो है कौन है, लेखक इसके वेद व्यास है। वेद व्यास जो व्यास यानी कि व्यापक और व्यापक रूप से वो वर्णन कर रहे हैं। और पुराण का वर्णन कब किया गया है वेद व्यास के द्वारा, जब वो महाभारत लिख करके बहुत ज्यादा उद्विग्न हो गए थे, क्योंकि महाभारत में युद्ध की चर्चा थी और रक्तपात की चर्चा थी, हत्या मारकाट की चर्चा थी, तो वे बड़े उद्विग्न हो गए थे। तो उन उद्विग्न वेद व्यास को नारद जी ने कहा कि आप भक्ति कारण कि गंगा बहाइए तो आपको आनंद आएगा। तो भक्ति की गंगा बहाने में भक्त को भी उतना ही आनंद आता है जितना कि पाठकों को श्रोताओं को आनंद आता है। जैसे कि हमको आपको आनंद आ रहा है भक्ति रस में अवगाहन करने पर, अब श्रोता गण सुनेंगे तो उनको भी आनंद आएगा। हम भाव विभोर होकर के इसे पढ़ रहे हैं, भाव विभोर होकर के इसे सुन भी रहे हैं और हमें लग रहा है कि वास्तव में शिव पुराण है तो क्या।
1: लीना जी, यह जो जिस प्रकार से यहाँ वर्णन किया जा रहा है पार्वती और शिव के विवाह का और तैयारियों का, तो ऐसा लग रहा है कि हम बैठे हैं और सामने ये सारा कुछ हो रहा है, सारा विवाह का वर्णन हो रहा है, विवाह की तैयारियाँ हो रही हैं और सारे सीन ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी देख रहे हैं, हम भी शामिल हो रहे हैं। तो वो जो आनंद हम महसूस कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी अपने श्रोताओं से कि हर व्यक्ति, हर श्रोता उस आनंद को महसूस करे।
0: ये अपूर्व दृश्य है,
1: अपूर्व दृश्य,
0: अभूतपूर्व दृश्य है, रोमांचक दृश्य है।
1: जी जी,
0: तो इस दृश्य का वर्णन वेदव्यास जी किस तरह से भाव विभोर होकर कर रहे हैं, ये हमें सुनना चाहिए। अब देखिए पर्वतों के विषय में वो वर्णन कर रहे हैं। हम लोग कितने पर्वत का नाम जानते हैं, हिमालय है, अरावली है, सतपुरा है, सतपुरा के घने जंगल, अरावली के पर्वत हैं, सतपुरा के घने जंगल,
1: देखा तो सबने एक दो कोई
0: है, आल्प्स है,
1: नाम है।
0: हाँ। तो बहुत सारे पर्वत सारे अगर पर्वत। हम नाम लेना चाहें तो बस गिन करके 10-15 पर्वत के नाम लेंगे। अब यहाँ वेदव्यास जी कितने पर्वतों का नाम ले रहे हैं और हर पर्वत एक से एक बढ़कर, जिनके नाम हम जानते भी नहीं है, लेकिन उस समय ये पर्वत तो अवश्य होंगे, तभी उन्होंने नाम लिया है। अब देखते हैं किन किन पर्वतों का इन्होंने नाम लिया है। वो कहते हैं वेद व्यास जी कि आज अग्मु स स्त्रियो हिष्टा स सुता स परीक्षदा तदेव श्रृणु देवर से गिरिया गमन आद्रिता वर्णयामी समासेन शिव प्रीति विवृधय देवालय गृढ़ो ही दिव्य रूप धरो महान। अब वो देवालय पर्वत के विषय में बताते हैं। हिमालय तो है ही, अब देवालय पर्वत है। कहते हैं देवालय नाम के महान पर्वत दिव्य रूप धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। अब देवालय पर्वत का वर्णन करने के बाद वो किसका वर्णन कर रहे हैं, मंदराचल, जिनका नाम हमने हमेशा सुना है मंदराचल। वो कहते हैं कि सुवेशा अलंकृता श्रीमान जगाम च हिमालयम नाना रत्न परिभ्राजत समाज सपरिच्छद नाना मणि महारत्न सारन आदा यत्नता। सुवेशालंकृत श्रीमान जगाम च हिमालयम मंदर सर्वसौभाड्य स नारी तनयो गिरो। अब वो कहते हैं कि श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर स्त्री पुरुष सहित हिमालय के घर पधारे। अब आम व्यक्ति में जिज्ञासा हो सकती है कि ये पर्वत थे तो आए कैसे, सुंदर वेश धारण कर कैसे आए, तो ये जिज्ञासा भी यही शांत हो जानी चाहिए कि वास्तव में ये पर्वत, ये नदियाँ, ये सभी आत्मावान थे, वो जो चाहे रूप धारण कर सकते थे। अब जैसे अगस्त्य मुनि की पत्नी है लोपामुद्रा, आज वो नदी के रूप में है दक्षिण भारत में, तो नदी क्यों बनी, क्योंकि उस जगह पानी नहीं था, कहीं भी पानी नहीं था, और अगस्त्य मुनि बड़े परोपकारी थे, मुनि थे, ऋषि थे, बहुत परोपकारी थे, उन्होंने अपनी पत्नी को नदी बना दिया। गंगा नदी बन गई, यमुना नदी बन गई, कोशी नदी बन गई,
1: आज भी ली नदी इनको माता की, गंगा माता, यमुना मैया, माँ कहकर ही पुकारते हैं इनको।
0: जी, जी।
1: तो और ये जब हमारा महाभारत हम देखते हैं तो भीष्म अपने माँ गंगा को सामने ही जब प्रार्थना करते थे वो आती थी,
0: बिल्कुल,
1: तो साक्षात अभी भी अगर कोई बिल्कुल सात्विक मन से माँ गंगा को पुकारे, माँ यमुना को पुकारे, वो अपना उसी रूप में दर्शन देती हैं।
0: जी।
1: तो यह सत्य ही है कि पर्वत राज भी उस समय अपने अपने
0: रूप में
1: सब पधारे होंगे,
0: पधारे
1: जी।
0: तो सबसे पहले उन्होंने देवालय का वर्णन किया, फिर मंदराचल का वर्णन किया। अब कहते हैं कि दिव्यात्मा तथा बुद्धि वाले, उदार बुद्धि वाले, अस्ताचल भी एक पर्वत है। देवालय, मंदराचल, अस्ताचल अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को अपने साथ लेकर वहाँ गए। अत्यंत शोभा वाले उदयाचल, देखिए हमें नाम भी याद हो रहा है कि उदयाचल, अस्ताचल, देवालय, मंदराचल, तो प्रसन्नता पूर्वक उत्तम प्रकार के रत्नों तथा मणियों को लेकर वहाँ आए। महान सुखी उत्तम परिवार वाले मलय गिरिराज भी आदर पूर्वक आए। मलय पर्वत का तो नाम सभी जानते हैं, क्योंकि वहाँ से मलयालिन यानी कि मलय पर्वत से जो हवा, सुगंधित हवा बहती है, वो कहा जाता है कि मलय पर्वत से आई होगी। तो सुगंधित, क्योंकि वहाँ चंदन के वृक्ष हैं और चंदन के वृक्षों से टकरा करके जब हवा चलती है तो वो क्या होता है, सुगंधित हो जाता है। तो कहते हैं मलय पर्वत भी आए, भली भांति सजधज कर बहुत सी सेना को लेकर स्त्री सहित प्रसन्न चित दर्दुन नामक पर्वत शीघ्र वहां आए। मंदरा चलाए, अस्ता चलाए, उदया चलाए, देवालय आए, मलय पर्वत आए, दर्दुन आए। फिर हे तात, अनेक प्रकार से सुसज्जित प्रसन्न चित विशद पर्वत भी सपरिवार हिमालय के घर आए। भाग्यवान गंधमादन पर्वत भी स्त्री पुत्रों सहित प्रेम से हिमालय के घर आए। कहते हैं महेंद्र पर्वत श्रेष्ठ आजगाम हिमालयम सगण ससुत स्त्री को बहु शोभा समन्वित परियात्रो ही हृष्टात्मा मणि रत्ना करैर युतः सगण सपरिवार आययो हिम भूधरम क्रौंच पर्वत राजो ही महाबल परिच्छद आजगाम गिरिश्रेष्ठ समुपायन आदृत। अब देखिए अनेक प्रकार की संपत्ति को लेकर करवीर पर्वत भी वहां पहुंचे और पर्वतराज महेंद्र भी हिमालय के घर निमंत्रण में पधारे। अपनी स्त्री पुत्र तथा सेवकों को तथा मणि रत्नों को साथ लेकर प्रसन्नचित पारियात्र भी आए। पर्वतराज क्रौंच भी अपने परिवार, सेवक तथा सेना के साथ हिमालय के घर पहुंचे। पुरुषोत्तम नामक शैल भी अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर अपने समाज सहित आदर पूर्वक हिमालय के द्वार पर आए। नील पर्वत आनंद के साथ पुत्र, पुत्री, स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर हिमालय के घर आए। त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीगिरी, गोकामुख, गोकामुख कहा गया भारतवर्ष में स्थित ये एक विशेष पर्वत है, तो गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर पहुंच गए। पर्वतराज विंध्याचल भी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर तथा अनेक प्रकार की उपहार की वस्तुओं को लेकर प्रसन्न होकर वहां आए। कालंजर नामक महापर्वत अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अनेक गणों के साथ हिमालय के घर आए। गिरिराज कैलाश भी, कैलाश जहां शिवजी वास करते हैं, क्योंकि शिवजी तो उस समय हिमालय पर वास कर रहे थे, तो गिरिराज कैलाश भी अत्यंत प्रसन्न होकर सबके ऊपर कृपा करते हुए वहां आए। ये सभी उन पर्वतों के अधिष्ठात्री देवता थे। हे नारद, दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे, वे सभी हिमालय के घर आए। अभी तो पर्वतों का वर्णन चल रहा है और कितने पर्वतों का वर्णन उन्होंने कर दिया। ये सारे पर्वत आए और जिन पर्वतों का वर्णन नहीं किया है वो भी हिमालय के घर आए। कैसे? कहते हैं कि दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे, वे सभी हिमालय के घर आए। हे मुनि, हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वहाँ आए। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि एक बार मैं गई थी यहाँ केदारनाथ। केदारनाथ से लौटते हुए एक जगह पड़ी जहाँ पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। अच्छा। सतयुग में विवाह हुआ था उनका, लेकिन आज तक वहाँ अग्नि जल रही है, ऐसा उन लोगों का कहना है। अच्छा। और अग्नि जल रही थी, बहुत बड़ा यज्ञ कुंड था और उसमें जो भी जाते हैं एक लकड़ी डाल करके आते हैं। तो हम लोगों ने भी डाला एक एक लकड़ी और वो सच में अग्नि वहाँ जल ही रही है। क्या सच है नहीं है ये तो जो ज्योतिषी हैं वो सब वो बताएंगे, लेकिन चूंकि हम लोग भक्ति करते हैं, जो देख रहे हैं वही सत्य है। हम ऐसा सोचते हैं कि जो शंकराचार्य आदि ने वर्णन किया है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शंकराचार्य के विषय में कहा गया है कि जब सारे मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए थे और पता भी नहीं था, और ये बौद्ध धर्म जैन धर्म का प्रभाव अपने देश में था और वैदिक धर्म बिल्कुल ही समाप्त प्राय सा हो गया था, तो उस समय शंकराचार्य ने सब कुछ पुनर्जीवित किया, पुनरोद्धार किया। उसी पुनरोद्धार प्रकरण में उन्होंने देखा जहाँ महिष मर्दिनी ने महिषासुर का वध किया था, वो जगह भी उन्होंने देखी अपने ज्ञान चक्षु से और फिर उसका भी पुनरोद्धार किया। तो केदारनाथ से नीचे आने पर बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको मिल जाएंगे जिनका शंकराचार्य जी ने उद्धार किया है, आदि गुरु शंकराचार्य ने, और उसी में ये मंदिर भी पड़ा था रास्ते में जहाँ पर हम लोगों ने भी यज्ञ किया।
1: ये भी हमारे श्रोताओं को ज्ञान मिल गया। तो लीना जी, क्योंकि एपिसोड्स को समाप्त होने का समय हो चला है, तो दोस्तों हम सब अपनी तरफ से और आपकी तरफ से मैं लीना जी का धन्यवाद करती हूँ। तो लीना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अमूल्य रत्नों से, अमूल्य ज्ञान से हम सबको कृतार्थ किया। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगले एपिसोड में पुनः हम लीना जी के साथ यहीं पर मिलेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

रेडियो मन प्रश्न 7.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा है। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन है और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो ना हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मन शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्थात इसमें यह बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
0: बिन बुलाए मेहमान।
2: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में। तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण है, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है के पी स्क्वायर एल एच बी पी अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
3: खुद के मन में क्या है
2: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
3: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, ये होता है
2: जी, बिल्कुल। उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑब्वियसली कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा भवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
3: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
2: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
3: बिल्कुल, और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते, और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
4: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहां मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
3: जी।
4: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा, तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को, तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
3: जी।
4: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है, और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
3: बिल्कुल।
4: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है, तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं, और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों। तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता है, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
3: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिणे जन्म बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री, अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री, अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं। हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहां खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में

0: बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे,
0: जी,
1: आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो

0: पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज हैं, वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानवृष 107.8 FM पर। नमस्कार।
2: ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।
3: मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। और आज मैं आपके लिए जो प्रोग्राम लेकर के आई हूँ, जिसमें बहुत सारी बात करती हूँ, रेसिपीज लेकर के आती हूँ। और पिछले हफ्ते मैंने ना बात करी थी 2 ऐसी डिशेस की और जो कि बहुत टेस्टी होती हैं, और वो है समोसा और जलेबी। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कई लोग इसे जो है वो घर पे नहीं बनाते हैं, बाहर से लेकर के आते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन जब आप घर पर बनाएंगे तो इसकी क्वालिटी और इसकी क्वांटिटी बहुत ही कमाल की आपको मिलेगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने पिछले हफ्ते समोसे की बात करी थी और इसके बारे में आपको बताया था कैसे वो बनता है और कहां से आया, उसका इतिहास क्या है, सारी बातें हमने करी थी। आज मैं बात करने वाली हूँ जलेबी की। जी हाँ, अब देखिए हमारे इस सेगमेंट में, इस प्रोग्राम में ना, मैं जलेबी की आपसे बात करने वाली हूँ। इसके इतिहास के बारे में भी आपको बताऊंगी, कहाँ से शुरुआत हुई और आज कहाँ है, पहले क्या कहा जाता था और अब क्या कहा जाता है, ये सारी बातें मैं आपसे करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है। आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: सुनो हरदी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये घुमारे
1: कहां पाऊंगी मैं दिन में।
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

తీల గ్రామ బి పాది తని తని నిధని దప మగ మధ గమ మగరి సా

0: Dim tana na dir tana na dir tana dir tana dim tana na dir tana na dir tana dir tana dim tana na dir tana na dir tana dir tana dim tana na dir tana na dir tana dir tana dim tana na dir tana na dir tana dir tana dim tana.
1: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें. और आज है सैटरडे का दिन, मैं आपके लिए सैटरडे वाले दिन कमाल की टेस्टी रेसिपीज लेकर के आ जाती हूं. और आज की हमारी जो टेस्टी बहुत ही कमाल रेसिपी है वो है जलेबी की. जी हाँ, अब देखिए अपने फेवरेट प्रोग्राम में ना आप जलेबी की बातें सुन रहे हैं ना, मजा ही आ जाता. सुबह सुबह का टाइम है, सोचिए जरा ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और अचानक किचन से धीमी धीमी मीठी चाशनी की खुशबू आने लगे. मैं सच बताऊं, दिमाग

ना बत्ती जलने के लिए ना किसी अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये जो खुशबू होती है ना यही हमारी दिमाग की घंटियां बजा देती है। मैं आपको बता दूं कितनी कमाल टेस्टी ये रेसिपी हो सकती है। अब देखिए भारत एक ऐसी देखिए कंट्री है, एक ऐसा देश है जहाँ देखिए घूमने से लेकर खाने पीने तक आपको हर गली में एक नया स्वाद मिलेगा। और जब बात मीठे की हो और जलेबी का नाम ना है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। दिल दिमाग पूरी बॉडी हमारी झूम उठती है जब जलेबी की बात आती है। और देखिए ये जो बातें हैं ना सीधा दिल को छू जाती हैं। और आज का ये प्रोग्राम जलेबी, देखिए इसकी बातें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कैसे बनेगी। तो अपनी जो रेडियो है अपना उसकी वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपकी मनपसंद जलेबी कैसे बनेगी घर पर वो बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन। बहुत सारी होती हैं बातें और आज है सैटरडे का दिन और आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपी लेकर के आ गई हूँ। देखिए, जलेबी की मैं बात कर रही हूँ और जलेबी जैसे हम बिल्कुल अपना देसी समझते हैं लेकिन वो एक्चुअली में हमारे देश की है ही नहीं। जी हाँ, देखिए शौक बिल्कुल मैं तो यही है क्योंकि जलेबी का असली इतिहास हमें मिडल ईस्ट यानी कि पर्शिया ईरान लेकर के जाता है। यहाँ इसे जो है वो जुल्बिया या इसे जो है वो जालाबिया कहा जाता था और 10th century के एक मशहूर अरेबिक कुक बुक यानी कि किताब अल तभी में इसका जिक्र बिल्कुल पाया जाता है और इसका बकायदा एक पूरा देखिए जिक्र है उस बुक में। और 14th और 15th century में जब पर्शिया ट्रेडर्स और बगदाद के जो कुक हैं वो इंडिया आए तो वो इस रसीले डिश को अपने साथ लेकर के आए। सोचिए जरा, जो डिश बाहर से आई थी आज वो हमारी थाली की जान बन गई है और इतनी टेस्टी रेसिपी। हाँ, ये बात अलग है कि इंडियन फ्यूजन उसका जरूर हुआ कि वो हमारे देसी फ्लेवर्स में वो जरूर आई, वो देसी कलर में या फिर वो एक जो टेस्ट है उसमें जरूर आई, लेकिन जो इसका देखिए जो इतिहास है वो यही कहता है कि बगदाद के कुक्स है या फिर ईरान के जो है वो ये मिडल ईस्ट से आई है ये डिश और बहुत टेस्टी है, बहुत कमाल है। चलिए इस डिश के बारे में आपको थोड़ा सा और बताऊंगी लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। बहुत सारी होती हैं बातें मैं लेकर के आई हूँ आज प्रोग्राम, जिसमें रेसिपीज लेकर के आती हूँ। और आज की हमारी जो पहली हमारी रेसिपी और बहुत टेस्टी रेसिपी और वो है जलेबी की। अब देखिए एक बड़ा मजेदार फैक्ट आपको बताती हूँ। जब ये जुल्बिया यानी कि हमारी जलेबी और वहां की ईरान की या बगदाद की जो जुल्बिया है हमारे भारत पहुंची, तो हमारे देश के लोगों ने इसे नाम को थोड़ा सा इसके आसान बना दिया और मीठा बना दिया और ये बन गई हमारी अपनी प्यारी जलेबी। 15th सेंचुरी के संस्कृत टेक्स्ट में भी इसका जिक्र जो है वो जलावलिका इससे पाया जाता है। इसका नाम जो है जलावलिका इस नाम से पाया जाएगा आपको संस्कृत टेक्स्ट में, जिसका मतलब होता है वाटर वेव स्वीट यानी कि पानी की लहर जैसी मीठी। सोचिए जरा हमारे देश ने इसे एक ऐसा देखिए अपना इसे अपना बना लिया और इसमें अपनी देसी जो है एक भाई एक स्वाद डाल दिया, इसमें एक तड़का डाल दिया, इसमें एक फ्लेवर डाल दिया जो आप भूल ही नहीं सकते। कभी आपके साथ हुआ है कि आपने कोई नए तरीके का फ्यूजन जलेबी ट्राई किया हो, कहीं आप गए हो? क्योंकि देखिए कई सारे लोग हैं भाई जो ऐसे ट्राई करते हैं और मैंने भी एक होती है नॉर्मल जलेबी, केसर जलेबी भी आती है, रोज वाली जलेबी भी आती है, कई सारी अलग अलग फ्लेवर्स की आती हैं। अगर आपने भी कोई ऐसी अलग सी ट्राई की है तो मुझे जरूर बताइएगा। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइक।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

एक दिन एक थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पर रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छत पताती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?
2: मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: दत्तात्रेय जैन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ प्रोग्राम। जी हाँ, देखिए रिचार्ज मॉर्निंग में आज बात करें सैटरडे वाले दिन रेसिपीज की। आज की हमारी रेसिपी है जलेबी। जी हाँ, देखिए भारत को ऐसी ही नहीं, देखिए इसे विविधता का देश कहा जाता है। हमारे यहाँ हर फेस्टिवल और सीजन का एक अपना स्पेशल मेन्यू होता है। अब देखिए, अगर दशहरा हो या इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, हलवाई की दुकान पर लगने वाली वो लंबी भीड़ जलेबी के लिए खड़ी जरूर रहती है। स्ट्रीट फूड हमारे सिटीज की लाइफलाइन होती है। सोचिए जरा, जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर गरम गरम जलेबी और भाई इसके साथ समोसे खाता है ना, तो स्वाद डबल हो जाता है। ये खाना हमारे त्योहारों की रौनक बढ़ाता है। और आप मुझे जरूर बताइएगा, व्हाट्सएप कीजिए 8013781078 पर कि आपकी सबसे क्रेजी जलेबी मेमोरी कौन सी है। भाई मैं अपनी बताऊं तो मुझे याद है कि एक बार देखिए हुआ ये कि घर पे कुछ खाना नहीं था, अब क्या खाएं क्या खाएं, और एकदम से मेहमान खुद आए और अपने साथ जलेबी और समोसा लेकर के आ गए। और भाई इतना मजा आया, मेहमान नवाजी तो हुई लेकिन उन्हीं के भाई खाने पीने से जो वो लेकर के आए। लेकिन जब देखिए, जब आप जलेबी और समोसा घर पर बनाएंगे ना, तो उसका स्वाद बहुत टेस्टी होता है। और कितनी मर्जी आप खा लीजिए। अच्छा, जब कोविड आया था ना, जब सेकेंड वेव आई थी, जब तब तो काफी ज्यादा लोग जो है वो चिंतित हो गए थे। लेकिन जब फर्स्ट वेव आई थी, कई सारे लोगों ने ना अपने घर पर कुकिंग करनी शुरू करी थी। भाई मैं भी उनमें से एक थी। और चाहे हम डालगोना कॉफी बनाए या फिर जलेबी बनाए, हमने जलेबी बड़ी बनाई, घर पर जलेबी बनाई या फिर घर पर घेवर बनाया, बड़ी सारी चीजें करी थी। वो फर्स्ट वेव की बात है जब तुरंत लॉकडाउन लग गया था और क्या करें समझ नहीं आता था। तो भाई सबसे पहले जो चीजें बनाई थी तो वो यही सब थी। कभी लड्डू बने, कभी पेड़े बने। भाई हलवाई की दुकान बंद हो जाए लेकिन घर पर सब हलवाई बन गए थे। तो देखिए, अगर आपकी भी ऐसी कोई मेमोरी है तो जरूर बताइएगा। नंबर बहुत ही आसान है 8013781078। फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें. इसी के साथ वक्त आपको बता दूं ये बताने का, अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मैंने रचना के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, हमारा इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है जिसको डाउनलोड करने के लिए आपको अपने एंड्रॉइड या मोबाइल फोन लेना है और उसके बाद उसके प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना और जल्दी से झटपट से आपको डाउनलोड करना है जिसके बाद ढेर सारे पॉडकास्ट एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी. तो बस देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए ऐप और हमारे और करीब आ जाइए और बहुत सारी भाई अपडेट्स आपको मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ज्यादा अपडेट्स और जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं विद द नेम रेडियो मानव रचना. चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

0: वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन. बहुत सारी होती है बातें. इसी के साथ आपको बता दूं अभी लेकर के आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम. सैटरडे का दिन है आज और बहुत सारी हो रही है बातें. जलेबी की बात मैं कर रही हूँ. देखिए जब जलेबी की बात आए ना तो मुंह में पानी तो आ ही जाता है. लेकिन देखिए कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि आप रास्ते से जा रहे हो और अचानक से दुकान से आने वाली जो मीठी चाशनी खुशबू आपको सीधा आपके बचपन में ले जाए. मुझे याद है संडे की सुबह पापा जब मतलब घर पे रहते थे और अखबार पढ़ रहे हैं और सडनली प्लान बनता था, अच्छा जो सबसे टेस्टी जो जलेबी है जो मुझे याद है, अगर आप घर पर नहीं बना रहे हैं तो पहाड़गंज की जो जलेबी है ना बहुत फेमस है. और हर संडे सुबह सुबह जाके वहां से इतनी दूर से जलेबी लेकर के आना, मतलब ऐसा लगता था जैसे वो ना बहुत रेयर होता था. ओकेजनली वो आती थी और जब भी वो आती थी तो लगता था वाह कमाल हो गई. और वहां की जलेबी सच में मतलब बहुत टेस्टी मानी जाती है, बहुत कहा जाता है. तो जरूर आप ट्राई कीजिएगा कभी और घर पर बनाने की भी कोशिश कीजिएगा. और मैं आपके लिए देखिए रेसिपी तो लेकर के आती रहती हूँ. और एक स्पेशल हमारे पास मैसेज भी आया है रितु जी का, फरीदाबाद से लिखती है, साक्षी घर पर जब भी जलेबी बनाते हैं वो कुरकुरी नहीं बनती है, नरम हो जाती है. डोंट वरी रितु जी, जलेबी बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से मेल्टेड चाशनी से भरी बिल्कुल होगी. मैं आपको देखिए बिना देर के इंस्टेंट जो हलवाई जैसी टेस्टी कुरकुरी जलेबी रेसिपी है ना वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कैसे आप इसे बना सकते हैं. और किसी अवन या तंदूर की आपको जरूरत नहीं होगी और बस एक डायरी और पेन बिल्कुल तैयार रखिए, नोटपैड अपना बिल्कुल तैयार रखिए, क्योंकि मैं आपको इस ब्रेक के बाद बताने वाली हूँ कैसे आप घर पर टेस्टी रेसिपी जलेबी की बना सकते हैं जो कि बहुत टेस्टी हो. थैंक यू रितु जी, आपने ये सवाल बिल्कुल पूछा क्योंकि कई लोग देखिए ये कहते हैं कि जब भी जलेबी बनाते हैं वो सॉगी हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है. तो ऐसा नहीं होगा, देखिए इसको एक तरीका होता है कि वो सॉफ्ट ना हो और जैसे हलवाई जैसी क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल चाशनी से भरी हुई. और वो भी मैं आपको बताऊंगी. अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब भी जलेबी बनाते हैं चाहे चाशनी में वो डाल भी दें लेकिन फिर भी वो चाशनी जो है वो इतनी ज्यादा क्रिस्पी हो जाती है जो जलेबी है कि चाशनी बाहर ही रह जाती है और अंदर से वो खोखली हो जाती है और साथ ही बिल्कुल फीकी हो जाती है. तो इसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगी. लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम. फील गुड फील लाइफ.
1: ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन.
2: गुरुदेव यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए.
1: हाँ गुरुदेव. Nice.

बन के हम सन्यासी काम है चलते रहे।

महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ हैं सारे।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। इसी के साथ ना मैं आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपी लेकर के आ गई। और आज की हमारी रेसिपी है जलेबी की। पिछले हफ्ते हमने बात करी थी समोसे की, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत कमाल होता है। तो अब ये शाम की चाय को या सुबह के नाश्ता अगर प्लेट में बिल्कुल कुरकुरी गरम और रसीली जलेबी अगर आपको मिल जाए ना, तो मजा ही आ जाता है। अच्छा मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये इसका जो ओरिजिन है वो मिडल ईस्ट यानी कि पर्शिया का है, जहां इसे जुल्बिया कहते थे। इंडिया में आकर ये हमारे त्योहारों और संस्कृति का सबसे मीठा हिस्सा बन गया। और देखिए, इसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। 1 कप मैदा, 1/4 कप दही, और ये थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए। बेकिंग पाउडर लेना है 1/2 टीस्पून, और इसको आप ले सकते हैं या फिर यूनो जो होता है वो भी आप ले सकते हैं, 1 टीस्पून ले सकते हैं। और इससे इंस्टेंट फर्मेंटेशन होती है। इसी के साथ आपको लेना है कॉर्नफ्लावर या 1 टेबलस्पून आप घी ले सकते हैं। मैं कहूंगी थोड़ा कॉर्नफ्लावर ले लीजिए, एक्स्ट्रा क्रंच इससे आता है। ऑरेंज फूड कलर 1 पिंच आप ले सकते हैं, नहीं भी चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बिल्कुल वैसा ही मार्केट जैसा कलर चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा आप ये जो ऑरेंज कलर है वो ले सकते हैं। चीनी लेनी है आपको, 1.5 कप चीनी लेनी है, और इसी के साथ साथ पानी लेना है 1 कप, और ये सिरप के लिए होगा। और इसी के साथ साथ इलायची पाउडर लेना है 1/2 टीस्पून, केसर लेने हैं 4 से 5 धागे, और ऑयल लेना है फ्राई करने के लिए। तो आप जैसा भी, अगर रिफाइंड या फिर ऑलिव ऑयल जैसा भी ठीक समझे आप वो ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। इसी के साथ देखिए, अब बात करूंगी मैं कि इसकी विधि क्या है, कैसे आप इसे बना सकते हैं घर पर, वो भी बहुत ही जल्दी से झटपट से। लेकिन उससे पहले लेती हूं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और इसी के साथ आपको बता दूं, अभी मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम में वही इतनी टेस्टी रेसिपी जलेबी की लेकर के आई हूँ. अच्छा, जब भी जलेबी की बात होती है ना मुंह में पानी आ जाता है. तो जलेबी बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको जल्दी से नोट डाउन करनी है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ विधि क्या है. तो आपको चाशनी बनानी है. सबसे पहले 1 कप पानी में 1.5 कप आपको चीनी और 1 कप आपको जो पानी है वो डाल देना है एक बड़े बर्तन में लेके एक पैन में. इसके बाद इसको जो है ढककर आपको उबलने के लिए आपको रख देना है. अब इसमें आपको इलायची पाउडर और केसर डालना है. और इसमें जो है हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है. बस पानी को 5 से 6 मिनट के लिए आपको उबलने के लिए रख देना है. एकदम स्टिकी, जब ये चिपचिपी हो जाए इसका जो देखिए थोड़ा सा टेक्सचर है वो जो थोड़ा सा हनी जैसा हो जाए, तो गैस आप बंद कर दीजिए और इसे साइड में रख दीजिए. अब हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है. बिल्कुल जल्दी से झटपट से चाशनी आप साइड रख दीजिए. अब बनाएंगे हम बैटर. एक मिक्सिंग बोल में आपको मैदा, कॉर्नफ्लोर और दही ऐड करनी है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्मूथ और थिक बैटर आपको बना लेना है. और ये जो बैटर है बिल्कुल इसकी रिबन कंसिस्टेंसी जो है ये होनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम अच्छे से आना चाहिए. अब इसमें बेकिंग पाउडर या पीनो ऐड कर दीजिए और हल्के हाथ से इसे आप एक डायरेक्शन में ही मिक्स कीजिएगा. याद रखना है एक डायरेक्शन में, क्योंकि वो अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएगा और आपका इंस्टेंट बैटर जो है ये रेडी हो जाएगा. अब एक देखिए क्या करना है, इस बैटर को आपको एक केचप की बॉटल में जो है वो शिफ्ट कर देना है. जलेबी जो है या फिर जलेबी का जो क्लॉथ आता है या फिर जो पाइपिंग बैग होता है उसमें आप शिफ्ट कर दीजिए. इसके बाद आपको एक फ्लैट बॉटम वाली कढ़ाई लेनी है जिसका तला बिल्कुल फ्लैट हो, वो लेनी है. और उसके बाद जो घी है या तेल है जिसमें भी आप बना रहे हैं, जिसमें आपको ठीक लगे भाई, वो उसमें डाल देना है और फ्लेम को मीडियम रखना है. अब बॉटल को आपको गोल गोल घुमाते हुए जलेबी का शेप उसमें डालना है और अंदर की तरफ लॉक कर देना है. दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक आपको इसे फ्राई करना है. और उसके बाद गरम गरम जलेबी को निकालकर तुरंत हल्की गुनगुनी चाशनी में आपको डाल देना है. सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए आपको डिप करना है और फिर निकाल लेना है. आपकी ये जो रसीली जलेबी है बिल्कुल रेडी हो गई है. याद रखें, जब भी आप जलेबी बनाएंगे तो उसे पतला बनाइएगा, जितना कोशिश कीजिए पतली बनेगी तो अच्छी बनेगी. जो मोटी होती है देखिए उसमें कोशिश कीजिएगा घर पे पतली बने तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि वो कुरकुरी बनती है. ज्यादा मोटी थोड़ी सौगी हो जाती है और उसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो पतली बनाएंगे तो अच्छी बनेगी और खाने में भी टेस्टी लगेगी. चलिए इसके साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. कुछ और कुकिंग टिप्स भी आपको जरूर दूंगी. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो बैंड रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ. प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन. बहुत सारी होती हैं बातें और इसी के साथ मैं बात कर रही हूँ आज जलेबी की. और बहुत कमाल टेस्टी जलेबी की रेसिपी बता रही हूँ. अच्छा, कुछ कुकिंग टिप्स भी आपको दूंगी. चाशनी ना बहुत ज्यादा गर्म होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी होनी चाहिए. अगर चाशनी ठंडी होगी तो जलेबी का रस नहीं सोखेगी और अगर बहुत ज्यादा गर्म होगी तो जलेबी को नरम बना देगी. रितु जी, यही आपकी थोड़ी सी गलती हुई होगी और इसी वजह से आपकी जो जलेबी है बिल्कुल सौगी हो गई. और देखिए, अगर जलेबी बनाते वक्त उनका शेप फैल रहा है तो उसका मतलब बैटर पतला है. उसमें आप 1 से 2 चम्मच मैदा मिलाकर अच्छे से मिक्स कर सकते हैं और ताकि उसकी शेप जो है बिल्कुल परफेक्ट आ जाए. इसी के साथ जलेबी को हमेशा फ्लैट बॉटम वाले पैन पर ही आप फ्राई करें. नॉर्मल राउंड कढ़ाई में जलेबी जो है एक के ऊपर एक जो है वो आ जाती है और शेप उसकी जो है वो खराब हो जाती है. इसलिए फ्लैट बॉटम वाली जो पैन होता है उसके लिए आपको मैंने कहा था, तो इसलिए वो जरूरी है. इसी के साथ साथ देखिए, इंस्टेंट एनर्जी आपको इससे मिल जाएगी. मूड बड़ा अच्छा हो जाएगा जब आप जलेबी खाएंगे तो. और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है. बस याद रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं, जितनी क्वांटिटी मतलब थोड़ा ही खाएं लेकिन अच्छे से खाएं. और भाई घर पे बनाएंगे तो कमाल तो बनेगा ही, मेहमानों को भी खिलाएं और बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी होती है तो भाई मज़े ही आ जाते हैं. घर पे बच्चों को पसंद आती है तो अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं. अब जब भी बारिश का मौसम हो घर पे बनाइए समोसा जलेबी और मज़ेदार रहेगा. चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के साथ दिन बहुत सारी होती है बातें. और इसी के साथ वक्त वक्त वक्त ये जो वक्त है ना ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का. और ये वक्त कहता है कि साक्षी अब मुलाकात जो है ना वो होगी अभी नहीं लेकिन अगले हफ्ते ये जो प्रोग्राम है रेसिपी जो है वो लेकर के आती हूँ. लेकिन उससे पहले अभी कुछ देर में फिर से आने वाली हूँ आपके लिए प्रोग्राम सफरनामा लेके 11 बजे से लेकर सुबह और दोपहर 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ. और बड़ी कमाल की खूबसूरत जगह पर आपको घूमने के लिए लेकर के जाती हूँ. और आज की इतनी अच्छी जगह आपको लेकर के जा रही हूँ ना कि आप कहेंगे वाह साक्षी क्या जगह है, हमें तो पता ही नहीं था. भाई पता होता भी है तो मतलब उसको अंदर से हम नहीं जान पाते, एक्सप्लोर नहीं करेंगे. कुछ ऐसी जगहों के बारे में बात करूंगी, एक ऐसी जगह के बारे में जो अनएक्सप्लोर्ड है, अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं गए हैं लोगों ने, तो वो बताऊंगी. फिलहाल आप कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ. बाय बाय, टेक केयर.

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ, और एक बार फिर से हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका मकसद है आपकी इस धरती को सुरक्षित रखना। प्रोग्राम का नाम है ग्रीन ग्रह, जिसको आपके बीच लेकर आया है डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद इको क्लब एंड पीटीसी फाइनेंस लिमिटेड। बहुत सारी बातें हम इस कार्यक्रम में करते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि इस पर्यावरण को, इस पृथ्वी को थोड़ा बेहतर बना सकें, क्योंकि हमारे आसपास दिन रात ऐसा कुछ होता रहता है जो इस ग्रह को खराब करने की पूरी क्षमता रखता है। हम एसीज में बैठते हैं, हम गाड़ियों में घूमते हैं, डीजल पेट्रोल की खपत हो रही है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे पर्यावरण को नेगेटिव इफेक्ट मिलना लाजमी है। बड़े बड़े जंगलों को काटकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। दुनिया का लंग्स कहे जाने वाले अमेज़न के जो फॉरेस्ट हैं बेसिकली वो भी कुछ हद तक अब बर्बाद होते दिख रहे हैं। तो फिर छोटे छोटे जंगलों का या फिर सड़क पर लगे हुए पेड़ों की बात क्या ही करें। बहुत सारी जगहों पर ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपको समझ नहीं आता कि पर्यावरण वापस नॉर्मल कैसे होगा, जिसका नतीजा ये होता है कि जैसे ही हमारे यहाँ हल्का सा मौसम में बदलाव होता है तो कभी बारिश बहुत आती है, कभी गर्मी बहुत पड़ती है, कभी सर्दी हद से ज़्यादा पड़ती है, और सब कुछ ठीक हो तो पोल्यूशन यानी AQI लेवल 400-500 के पार पहुँच जाता है और हमें सांस लेने के लिए भी एयर प्यूरिफायर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मानव ने अपने संसाधनों को ध्यान से नहीं रखा, या फिर कहें कि एक इंसान ने अपने मतलब के लिए इस पर्यावरण और इस पृथ्वी का ख्याल रखने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस और बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में कुछ कदम, लेकिन वो नाकाफी हैं। सो हम भी एक छोटा सा कदम उठा रहे हैं ग्रीन ग्रह कार्यक्रम के माध्यम से, जहां पर हम घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें या फिर हमारे आम जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, इसके बारे में हम अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं कुछ खास जानकारी। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर विनीता शर्मा, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मानव रचना में। डॉक्टर विनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद। धन्यवाद दीक्षा, और आपका ये कदम सीरियसली मानव जाति के लिए और पर्यावरण सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ा कदम है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज अपने विचार प्रस्तुत कर पाऊंगी
0: जी
1: पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा।

0: के कार्यक्रम में।
1: सो डॉक्टर वनीता, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, बेसिकली वो घर में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल इक्विपमेंट्स या फिर मेडिसिन के बारे में है। अब हमारे घर में कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार तो होता ही है, हम भी बीमार होते हैं, बच्चे बड़े, कहीं ना कहीं दवाइयाँ होती ही हैं। फर्स्ट एड बॉक्स तो एटलीस्ट सबके घर में ही होता है जिसमें बेसिक दवाइयाँ होती हैं, लेकिन वो दवाइयाँ एक्सपायर भी होती हैं। बहुत सारे लोग रेगुलरली इंजेक्शन सिरिंजेस का भी इस्तेमाल करते हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो या फिर वैसे ही कभी किसी लेडी को किसी प्रेगनेंसी में या डायबिटीज़ में किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत हो तो सिरिंजेस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा चोट लगने पर हम अलग अलग तरीके की जो बैंडेजेस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी सारी मेडिकल चीज़ें होती हैं हमारे घर में, चाहे थर्मोमीटर हो, चाहे आपके पास मास्क हो, ऑक्सीजन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते थे बीच में जब कोविड हुआ था, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, उसके मास्क हैं जो एक्सपायर भी होते हैं, जो ख़राब भी होते हैं। सो बेसिकली आज जो हमारा पर्पस है आपको यहाँ पर एज अ गेस्ट बुलाने का, वो ये है कि ये मेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं या फिर मेडिकल मेडिसिन जो हैं उनको डिस्कार्ड कैसे किया जाए, उनको ख़त्म कैसे किया जाए, ख़त्म इन सेंस उसको थ्रो अवे कैसे किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, हम सब इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर एक ही डस्टबिन में सब कुछ चला जाता है। सो घर में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल इक्विपमेंट्स या फिर मेडिसिन्स को जब हम डिस्कार्ड करते हैं, जब हम उनको फेंकते हैं, तो उसका तरीका क्या होता है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी दवाइयों के बारे में जो हमारे घर में अनगिनत मात्रा में पड़ी होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। सो एज पर माई नॉलेज, इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज, दे हैव डिस्क्राइब्ड द सेफ्टी डिस्पोजल ऑफ ऑल दीज मेडिसन्स। बट एक कॉमन मैन की तरह हम लोग जो घर में करते हैं, दैट वी जस्ट फ्लश आउट दोज मेडिसन्स एंड देन मिट्टी में डाल दिया और पानी में, नदी में डाल दिया। बट अगर आप देखें मिट्टी में और पानी में, दैट एवरीथिंग इज गोइंग इन द सॉइल एंड दैट कैन कम बैक इन द फॉर्म ऑफ फूड, राइट? बिकॉज ऑल द प्लांट्स, दे आर इन द सॉइल, दे आर ग्रोइंग इन द सॉइल एंड इन वाटर ऑल्सो देर आर सो मेनी एक्वेरियम, सो मेनी फिशेज, सो मेनी एक्वेटिक एनिमल्स आर देयर। सो दैट इज नॉट एट ऑल द राइट वे टू डिस्पोज ऑफ द मेडिसन। द राइट वे इज, विच वी मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे जस्ट डोंट नो, दैट वी शुड हैव अ बायो हजार्ड बैग और द बॉक्स इन आर रूम, इन आर होम, सो दैट वी कैन सेग्रीगेट दोज मेडिसन्स एंड in that terms we can put them the cotton bandages and all the biomedical waste in that biohazard polythene or biohazard box and then we can give it to the our
1: garbage collector
0: and जी. that then all the municipal corporations, they have this policy to handle those biomedical waste separately.
1: जी. सो डॉक्टर विनीता का कहना ये है कि हमारे घर में जितना भी मेडिकल वेस्ट होता है, घर की बात करें हैं या हम किसी हॉस्पिटल या इंडस्ट्री की बात नहीं करें, घर में जितना भी मेडिकल वेस्ट है, जिसमें खास तौर पर से दवाइयों की बात मैं करना चाहूँगी, क्योंकि दवाइयाँ जो होती हैं वो सबके घर में होती हैं, आप मेडिकल इक्विपमेंट्स में बड़ी चीज़ रखें ना रखें, मेडिसन्स बच्चों की, बड़ों की कुछ ना कुछ घर में होती हैं। सो बायो हजार्ड एक पॉलीबैग काइंड ऑफ आता है जो मार्केट में मिलता है, उसमें अगर आप अपनी चीज़ों को रख के, और गार्बेज कलेक्टर जो आपके घर से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए आते हैं, आपके घर से लेकर जाते हैं पूरा गार्बेज, उनको अगर आप वो बैग दे दें तो वो सही तरीके से उसको डिस्कार्ड कर पाएंगे।
0: जी
1: डॉक्टर विनीता, ये तो बात हो गई उस बैग में डालने की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं हमारे घर में, सपोज़ किसी के पास क्रोसिन की टैबलेट है या फिर और पेन किलर्स या फिर कुछ मल्टीविटामिंस हैं, अब ये एक्सपायर हो गई हैं, सपोज़ ये अब इस्तेमाल नहीं हो सकती, या फिर सिरप हैं, बच्चों के लिए बहुत सारे सिरप होते हैं, कफ सिरप होता है या मल्टीविटामिंस होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, अब ये जो सिरप है अभी एक्सपायर हो गए, ये मेडिसिन टैबलेट्स एक्सपायर हो गई, अब इसको हम कैसे डिस्कार्ड करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो फ्लश कर देते हैं टैबलेट्स या जो लिक्विड होता है, जो सिरप्स होते हैं, क्या ये सही तरीका है?
0: नहीं, ये तरीका सही नहीं है, बिकॉज अगर आप जहाँ भी उसको फ्लश करोगे, अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू द अर्थ सरफेस, दैट इज़ लाइक सॉइल वाटर, एंड अल्टीमेटली दैट सॉइल एंड वाटर इज कमिंग बैक टू अस इन द फॉर्म ऑफ फूड। So one or the other way, we are providing the hazardous or the toxic environment or the toxicants to the human beings. So सही तरीका दवाइयों और सिरप्स को डिस्पोज करने का, द वन इज यू कैन गिव इट बैक टू द मेडिकल स्टोर.
1: अच्छा.
0: सो देर इज अ प्रोविजन कि आप अपनी एक्सपायरी मेडिसिन को वापस से अपने मेडिकल स्टोर में दे सकते हैं.
1: अच्छा, ये चीज मुझे नहीं लगता किसी को पता भी है.
0: सो दिस इज अ रेगुलेटरी थिंग. यू कैन गिव इट बैक टू द मेडिकल स्टोर.
1: अच्छा.
0: एंड दे नो हाउ टू गेट बैक द सेफर डिस्पोजल.
1: किसी को मेडिकल स्टोर में दे दे या जिससे आपकी जान पहचान हो.
0: राइट, बिकॉज आपको पता ही है कि लाइक अगर मैं किसी को बोलूंगी एक्सपायर मेडिसिन आप ले लो तो इतनी इजीली कोई भी मेडिकल शॉप आपको एंटरटेन नहीं करेगा बिकॉज उनके टारगेट्स टोटली अलग हैं. बट हाँ, अगर आप एक या दो बार इंसिस्ट करोगे एंड इफ यू विल गो एंड टेल दैट व्हाट शुड वी डू देन इट माइट पॉसिबल. द वे आउट इज दिस वन. द सेकेंड वे आउट इज दैट इज द मोस्ट सिंपलर वन कि आप अपने घर में एक बायो हजार्ड बैग और बायो हजार्ड बॉक्स, बोथ द फॉर्म्स यू कैन बाय इट फ्रॉम द अमेजोन, यू कैन बाय इट फ्रॉम योर नियर बाय मेडिकल शॉप ऑल्सो, एंड यू पुट ऑल दोज एक्सपायरी मेडिसिन और द लिक्विड इन दैट एंड देन यू कैन गिव इट टू द गार्बेज कलेक्टर.
1: मतलब एज इट इज बॉटल्स और पूरे जो स्ट्रिप्स होती हैं मेडिसिन की वो उसमें डाल दें.
0: वो उसमें आप डाल दें और आप गार्बेज कलेक्टर को दे दें. एंड हमारी जितनी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं इवन इन द फरीदाबाद दे हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गुड मैन पावर टू सेग्री टू गिव दैट द सेफर डिस्पोजल टू दोज मेडिसिन एज वेल एज टू द सीरप्स एंड ऑल.
1: ओके, यानी उनके पास ये तरीका होता है कि इनको कैसे डिस्पोज या डिस्कार्ड करना है. ओके.
0: हाँ जी.
1: प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि इन चीज़ों को कैसे डिस्पोज किया जाए, कैसे जो है इनको फेंकना है. अब वो क्या करते हैं कि जो कूड़ा हमारे घर में इकट्ठा हो रहा है जिसमें हम ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट को अलग कर भी दें तो भी वो या तो ड्राई में डाल देते हैं या फिर दवाइयों को ऐसे खोल के और पूरी टैबलेट्स को वेट में डाल देते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस. आप दवाइयों को
0: absolutely.
1: अगर छिलकों के बीच में डाल रहे हैं और उस छिलके को खाद बनाने के लिए आगे यूज़ किया जाता है तो ये तो मुझे लगता है कि जहर आप घोल रहे हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दीक्षा इसमें. बट द थिंग इज़ हम लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है. सो हमारी अधिकतर पॉपुलेशन दे जस्ट थिंक दैट वी हैव टू गेट रिड ऑफ द एक्सपायरी थिंग.
1: Absolutely.
0: And वो get rid of the expiry tablets or medicine is not the solution. Because one or the other way, हम लोग एक तह के ऊपर दूसरी तह के ऊपर तीसरी तह toxicants बढ़ाए जा रहे हैं environment में. और वो somehow, if not for हमारी generation, it will be very difficult for the फर्दर जनरेशन टू सर्वाइव.
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत सही बात है कि आप जो दवाइयाँ अपने ठीक होने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्सपायर होने के बाद आप दूसरों की जिंदगियों को और टू सम एक्सटेंट अपनी लाइफ को भी खतरे में डाल रहे हैं जब आप उनको सही तरीके से डिस्पोज नहीं करेंगे.
0: एंड अनदर थिंग इज इफ यू गो फॉर द साइंटिफिक लिटरेचर दीज सिंपल टॉक्सिकेंट्स दे आर नॉट हार्मिंग दिस जनरेशन. सो द इम्पैक्ट द नुकसान जो इन दवाइयों से हमें हो रहा है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन है. आपने ये सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजरी. सो ऑल दीज गैस कॉम्पोनेंट्स, ऑल दीज सॉइल टॉक्सिकेंट्स, वाटर टॉक्सिकेंट्स, ये केवल हमारी इस जनरेशन को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन. एंड दैट कैन बी वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द प्रेवलेंस ऑफ ऑल दीज क्रोनिक डिजीजेस. सो अगर हम बोलें कि बच्चों में भी कुछ बीमारियों के लक्षण शुरू हो गए हैं, दैट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स. हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है,
1: Absolutely.
0: वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है डिजीज की ससेप्टेबिलिटी के लिए.
1: बिल्कुल, यानी दुनिया भर की बीमारियां आ रही हैं और इन बीमारियों से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि जितना भी नेचुरल हो और नेचर भी प्योर हो तब नेचुरल का फायदा है. अगर आप नेचुरल भी इम्प्योरिटीज के साथ ले रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो आपको नुकसान ही पहुँचाएगा. डॉक्टर विनीता, मेडिकल वेस्ट में आप बात करते हैं बहुत सारी और भी चीज़ें, इक्विपमेंट्स होते हैं, थर्मोमीटर्स होते हैं. थोड़े टाइम पहले तक अभी भी बहुत लोगों के घर में आपको मर्क्यूरी वाले थर्मोमीटर मिल जाएंगे जो ग्लास के होते हैं. सबसे बड़ी ख़तरनाक बात ये होती है कि उसमें मर्क्यूरी होता है और जो मर्क्यूरी को आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, वो ऐसा होता है एक मोती की तरह, आप गिर भी जाएगा तो भी वो आपके सामने ऐसा रहेगा, आप उसको समेट नहीं सकते. और ये बहुत डेंजरस होता है, विच इज हैज़ार्डस. और दूसरी चीज़ ये है, इसमें ग्लास होता है, कांच होता है, ये एक हो गया. दूसरा, थर्मोमीटर जो होते हैं हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर्स आ गए हैं आजकल, ये प्लास्टिक के बने होते हैं. अब प्लास्टिक के साथ इनमें बैटरीज भी होती है, इसके साथ साथ हमारे पास जो सिरिंजेस हैं इंसुलिन की हो गई या नॉर्मल ब्लड थिनर्स या जो भी एक्स वाई जेड सिरिंजेस का इस्तेमाल रेगुलरली किया जाता है, वो बैंडेजेस, ये सारी चीज़ें भी क्या बायोहैजार्डस वाला जो आपने बताया है बैग, इसमें एज इट इज डाल देनी चाहिए या फिर इसको किसी चीज़ में रैप करके डालें, क्या एक प्रोसेस क्या होगा इसका?
0: राइट, तो आपने बिल्कुल सही बात की है. तो जितने भी होम मेडिकल वेस्ट हैं उनको हम एक टर्म देते हैं, जो आपके निडल्स हैं, सिरिंजेस हैं, लेंसेट्स हैं, इंसुलिन पेंस हैं, ऑल दीज आर कंसीडर एज एन शार्प्स बिकॉज दे हैव अ शार्प पॉइंटेड निडल एंड यू कैन नॉट डायरेक्टली पुट दीज शार्प्स इन टू द बैग्स बिकॉज आपके बैग्स पॉलिथिन के बने हैं और ये जो शार्प्स हैं ये ऑल टुगेदर हार्मफुल फॉर द एनिमल्स एक्चुअली जो उनको ईट करें. सो फॉर शार्प ऑल्सो देर इज़ अ मशीन विच इज़ लाइक एग्जिस्टिंग इन अमेजोन दैट वी कॉल्ड एज निडल कटर एंड दैट निडल कटर इज़ यू कैन कट द शार्प एज ऑफ द सिरिंज एंड इन दैट निडल कटर आप 100 से ज़्यादा निडल्स को रख सकते हैं. सो दैट इज़ द वन वे ऑफ डिस्कार्ड एंड अनदर वे ऑफ डिस्कार्ड इज़ कि आप निडल के लिए एक अलग से बॉक्स बनाएं, उस निडल को आप बायोहैजार्ड बैग में ना डालें. एंड अगर आप केमिकल की बात करें, आपने बिल्कुल सही बोला, मरकरी जो है वो एक हैवी मेटल है एंड हैवी मेटल के इवन वेरी वेरी वेरी लो ट्रेसेस भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन इम्पैक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ को. बट इसके लिए आपको, फिर से मैं सिंपली बोलूँगी कि आपको वो मरकरी को एक अलग से बैग में ही रखना होगा और उसको आपको हजार्डस वेस्ट कलेक्शन फैसिलिटी को देना होगा. ये सब बातें हम जब करते हैं तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम इसको एक रूटीन में अपने घर में और अपने नेबरहुड में इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है. बिकॉज हम बोलें कि थर्मामीटर ब्रेक हो गया इट इज़ नॉट द रेगुलर इवेंट. ये आपका रोज रोज नहीं होता है, ये इस लाइक एक साल में एक बार हो गया. अगर एक साल में एक बार आप किसी चीज़ को एक सेफर डिस्पोजल पॉलिसी के थ्रू डिस्पोज करते हैं सो दैट विल टेक ओनली 5 to 10 minutes ऑफ yours. बट अगर आप इसका लार्जर इम्पैक्ट देखें तो आपने एनवायरमेंट को, अपनी जनरेशन को, जनरेशन इज़ लाइक नॉट 5 or 10, लॉन्ग टर्म में आपने उसको सेव किया है. सो वो आप एक तरह से अपने वातावरण को सुरक्षित करने के लिए जो 10 मिनट दे रहे हैं, दैट मेक्स अ वेरी बिग चेंज इन लॉन्गर टर्म. And in the and the other thing which you are saying is the bandages and then the swabs and then cotton, all this has that infections with them. So infections का मतलब है microbes हैं. अगर आप उनको normal कचरे के साथ डाल देंगे, जो वो कचरा देख रहा है, बहुत chances है कि वो उसको disease होने के chances ज़्यादा हैं. So again the solution is the same, that all the infectious thing, cotton, bandages, those are the things you can put directly into the biohazard box or the biohazard bag and then give them separately to the garbage collector. इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, दैट इज़ लाइक डेंटल प्लास्टिक.
1: डेंटल प्लास्टिक,
0: राइट. सो डेंटल प्लास्टिक इज़ लाइक आप शायद ये जानते होंगे, जो यंग जनरेशन जिनके जो टूथ अलाइनमेंट्स हैं वो थोड़ा सा नॉर्मल नहीं होते, इट्स लाइक हेजी टूथ अलाइनमेंट्स एंड देयर आर कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग द क्लियर विजिबल अलाइनर्स. सो क्लियर विजिबल अलाइनर्स आर द अलाइनर्स आर द प्लास्टिक अलाइनर्स विच आर which are used by the many of the youngsters for look them better. And these aligners are made up of plastics. And the thing is that we don't have any policy for the safer disposal of those प्लास्टिक अलाइनर्स.
1: जी, मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहती हूँ, हम उन अलाइनर्स की बात करें जो आजकल चल गए हैं दांतों को पहले ठीक करने के लिए, उनकी शेप को ठीक करने के लिए. पहले जो दांतों में ब्रेसेस लगाई जाती थी, तार जिनको हम हिंदी में बोलते थे बेसिकली, वो पहले स्टील की होती थी. अब आजकल जो है प्लास्टिक के आने लगे हैं अलाइनर्स, जो कि आपने बहुत एड्स भी देखे होंगे उसमें कि आपके दांतों के ऊपर एक काइंड ऑफ कवर सा लगा दिया जाएगा जो कि ट्रांसपेरेंट होगा और ये विजिबल नहीं होगा.
0: जी जी.
1: सो ये बिल्कुल विजिबिलिटी इसकी नहीं होती है और इसके साथ आप इस्तेमाल करके इसको खाना भी खा सकते हैं. ये आपके दांतों को ख़राब नहीं दिखाएगा और धीरे धीरे उसकी शेप को नॉर्मल कर देगा. इसके बारे में बात करें आप डॉक्टर विनीता.
0: जी जी. खाना खाना एडवाइजेबल नहीं है.
1: अच्छा.
0: डॉक्टर कहते हैं कि जब आप कुछ खा रहे हैं या जब आप कुछ पी रहे हैं तो आपको वो अलाइनर्स को उतारना है.
1: ओके.
0: राइट. बिकॉज द च्यूइंग प्रोसेस एंड देन द इंग्रेडिएंट ऑफ द फूड दैट कैन इंक्रीज द लीच आउट्स ऑफ दोज अलाइनर्स. सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल. एंड अनदर थिंग फॉर दिस इज लाइक ब्रेसेस आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए पहनते हैं. राइट. बट ये जो अलाइनर्स हैं दीज अलाइनर्स यू हैव टू चेंज आफ्टर एवरी 14 डेज. सो अगर आप 14 दिन के बाद अलाइनर्स को उतार रहे हैं और नए अलाइनर्स पहन रहे हैं आप उन अलाइनर्स का क्या कर रहे हैं. दैट्स फॉर द सेफर डिस्पोजल ऑफ द इन्फेक्शियस प्लास्टिक. बिकॉज
1: क्या डेंटिस्ट को वापस नहीं दिए जाते.
0: द प्रोसीजर इज लाइक दैट ओनली. इफ आई गो विद द पॉलिसीज एंड गो विद द so that is like the responsible of the manufacturer. So the aligners company who are making them they can get it back from the dentist itself. But in regular practice this is not been done. And यहीं पे एक हमने मानव रचना ने अपना एक innovation start किया है मानव रचना dental college के साथ. That हम लोग एक app बनाया है जिसका नाम है Align Track. And ये Align Track app Android और आपके एप्पल आईफोन दोनों पे अवेलेबल है. द मेजर एम द मेन एम ऑफ दिस अलाइन ट्रैक इज टू कलेक्ट दोज अलाइनर्स फ्रॉम योर होम.
1: ओके.
0: राइट. एंड दे कलेक्ट इट फ्रॉम योर होम देन दे गो फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ दैट.
1: ओके. मतलब केमिकल प्रोसेस
0: एंड देन इट गोज फॉर द रिसाइकलिंग.
1: ओके.
0: सो दैट इज लाइक मानव रचना इनिशिएटिव.
1: ओके.
0: दैट वी कैन डिस्पोज ऑफ these plastic infectious aligners in a safer manner.
1: Okay. So, मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाना चाहती हूँ हमारे लिसनर्स को. जिनको समझ आ गया जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उनको तो ये चीज़ समझ आ गई होगी, लेकिन मैं जिनका मेडिकल फील्ड में कोई लेना देना नहीं है उनको मैं बहुत सिंपल भाषा में बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर विनीता एक प्रोफेसर हैं बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में और इन्होंने एक सिस्टम पूरा डिवेलप किया है मानव रचना डेंटल कॉलेज के साथ मिलकर और वो सिस्टम एक ऐप के थ्रू चलता है. आप ये ऐप जो है ऐप स्टोर या प्ले स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप के माध्यम से आप जो अलाइनर्स का इस्तेमाल करें हैं प्लास्टिक अलाइनर्स जो आजकल बहुत कॉमन है बच्चों में होते हैं बड़े भी लोग लगाते हैं अपने दांतों को एक फिटिंग देने के लिए उनकी शेप को ठीक करने के लिए अलाइनमेंट ठीक करने के लिए बेसिकली ये अलाइनर्स आप 14-15 दिनों से ज़्यादा एक सेट ऑफ अलाइनर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते. टेक्निकली ये होता है क्यों डॉक्टर विनीता यही एक प्रोसेस है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं कि आपके मुँह में प्लास्टिक है माइक्रो प्लास्टिक्स अंदर जा रहे हैं आप अगर उसके साथ खाना खा रहे हैं तो वो और ज़्यादा खतरनाक है. सो टेक्निकली इसको हर 15 दिन में नया सेट लेना होता है जो आपके डेंटिस्ट आपको देंगे. अब अगर आपने नया सेट लिया है और आप डेंटिस्ट को अपना पुराना सेट रिटर्न नहीं कर रहे हैं जिनके पास एक प्रॉपर प्रोसेस है उसको रिसाइकल करने का या डिस्कार्ड करने का अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारे अलाइनर्स के सेट इकट्ठे होते जा रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं और ना ही इसको फेंकने की ज़रूरत है. आपको सिर्फ उस ऐप पे अपनी डिटेल्स डाल के उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप ये अलाइनर्स कलेक्ट करके रखिए और इसको रिसाइकिल कीजिए. मतलब आपको सिर्फ उस ऐप के थ्रू अपने अलाइनर्स उनको दे देने हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल. एंड आप जब एड्रेस डालेंगे देन नियर बाय लोकेशन पे हमारे कलेक्टर्स हैं दोज हु विल कम टू यू एंड देन दे विल कलेक्ट योर अलाइनर टू
1: एंटायर इंडिया सब जगह या अभी दिल्ली एनसीआर.
0: स्टार्ट विद वी आर डीलिंग विद दिल्ली एनसीआर.
1: दिल्ली एनसीआर. ओके. मुझे एक बार ऐप का नाम दोबारा बता दीजिए ताकि हम लोगों को बता सकें.
0: सो इस ऐप का नाम है अलाइन ट्रैक.
1: अलाइन ट्रैक. ओके. अलाइन ट्रैक के माध्यम से आप ईजिली अपने जो डेंटल अलाइनर्स हैं उनको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं. आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक बॉक्स में वो उस व्यक्ति को पकड़ाना है जो कलेक्ट करने के लिए आएगा, और इस ऐप पे अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर वगैरह डाल के रजिस्टर करके बस रिक्वेस्ट करनी है। बहुत सिंपल सी ऐप है। अगर आप अलाइनर्स इस्तेमाल करें तो आपको पता ही होगा कि मिनिमम एक साल के लिए अलाइनर्स लगाने पड़ते हैं जनरल केसेस में। कई बार कुछ केसेस में ये ज़्यादा लंबे समय तक भी होते हैं, क्योंकि दांत जो होते हैं वो कई बार लाइन में या अलाइनमेंट में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। ख़ासतौर पर से ये 16-17 साल की एज में लगने शुरू हो जाते हैं, और फिर कई बार लोग 30-35 साल तक भी लगाते हैं। कई लोग लेट भी लगाते हैं, क्योंकि उनको अब लग रहा होता है कि फेस को थोड़ा और फिनिशिंग देना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए। और अगर आप फील्ड में हैं, शो बिजनेस में हैं, तो ये बहुत कॉमन हो जाते हैं।

0: बहुत बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस फिल्म स्टार्स या सेलिब्रिटीज़ या व्लॉगर्स ये इनका इस्तेमाल करते हैं, भले ही आपको कैमरे पर दिखता नहीं होगा क्योंकि उस टाइम हटा लिए जाते होंगे, बट अलाइनर्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। जिस तरीके से आप नॉर्मल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास अच्छे फ़ोन होते हैं, ऐसे अच्छा फेस भी बहुत ज़रूरी है जिसमें अलाइनर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल दीक्षा। और एक और चीज़ है जो इस अलाइन ट्रैक में है कि आप अपनी कितने घंटे आपने अलाइनर पहना है, यू कैन ट्रैक योर प्रोसेस ऑल्सो एंड इट दिस हैज द रिमाइंडर्स ऑल्सो दैट इफ़ यू आर ईटिंग फूड यू हैव टू गेट ऑफ फ्रॉम दीज अलाइनर्स, सो यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस ऑल्सो ऑफ योर अलाइनर ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद योर डेंटिस्ट। So that is the another feature. So it is not only the plastic collection. You can track
0: guidance भी मिल सकता है.
1: Guidance and then process of tracking your treatment.
0: Okay, यानी आपका treatment सही चल रहा है नहीं चल रहा है, या फिर आप जो कर रहे हैं वो सही process follow कर रहे हैं या नहीं करें, क्योंकि कई बार हम dentist से regular touch में नहीं रह पाते। जब एक बार एक treatment करा लेते हैं तो तीन तीन चार चार महीने गायब रहते हैं।
1: Because it is advisable कि आप ये aligners को minimum 12 से 14 घंटे पहने
0: तब जाके वो शेप देंगे।
1: राइट, तो अगर आप वो पहन ही नहीं पा रहे हैं या अगर आपका वो ड्यूरेशन एक दिन कम है दो दिन कम है, तो आप वो जो प्रोग्रेस है वो आप ट्रैक कर सकते हैं। दैट इज द अनदर
0: फीचर ऑफ दिस ऐप।
1: फीचर ऑफ दिस,
0: बिल्कुल। सो दोस्तों, ग्रीन ग्रह प्रोग्राम में हमने सिर्फ आपको मेडिकल वेस्ट एट होम को डिस्कार्ड करने या डिस्पोज करने के बारे में नहीं बताया, हमने ये भी बताया कि जो अलाइनर्स का इस्तेमाल आप करते हैं उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है इजीली बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों को सही तरीके से करने से आप अपने पर्यावरण के लिए कुछ तो बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं पर्यावरण पर बात करती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझसे बहस करते हैं कि आप प्लास्टिक की थैलियाँ बैन नहीं करवा पा रहे हैं, आप बहुत सारी कंट्रीज़ में जो वॉर्स हो रही हैं उसको नहीं रुकवा पा रहे हैं। वो बातें ठीक हैं कि हम वो नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हम जो कर सकते हैं एटलीस्ट वो ट्राई तो कर सकते हैं। एटलीस्ट अपने घर को तो अपने आसपास के एरिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम कर सकते हैं, जिसमें मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के सही तरीके आज हमने बताए हैं। डॉक्टर विनीता शर्मा ने बताया कि एक बायो हजार्ड का एक बैग आता है जो आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, या फिर आप जो है इसे मेडिकल स्टोर से भी ख़रीद सकते हैं। एक्सपायर्ड दवाइयाँ, सिरिंजेस, ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं और फिर आप गार्बेज कलेक्टर को दे सकते हैं ताकि वो इस बैग को सही तरीके से डिस्पोज कर पाए। ऐसा नहीं है कि वो इसे नॉर्मल कूड़े में मिला देगा, क्योंकि हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो बायो हजार्ड जैसे हॉस्पिटल से निकलता है या फिर कहीं से भी आ रहा है, अगर उनके पास वो मार्किंग होगी तो उसको सही तरीके से डिस्पोज कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी मार्किंग नहीं होती है, हम उसको उस तरीके से पैक करके कभी बताते ही नहीं है कूड़े देने वाले को कि इसमें मेडिकल वेस्ट है, तो इसीलिए वो डिस्पोज ऑफ भी सही तरीके से नहीं हो पाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छे तरीके से मेरी बात को रखा है।
0: तो डॉक्टर विनीता शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम ग्रीन ग्रह में आई हैं एज एन एक्सपर्ट और आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई और अलाइन ट्रैक ऐप के बारे में बताई, ये हमें बहुत अच्छा लगा, ताकि जो लोग अलाइनर्स का इस्तेमाल करते हैं वो रेगुलरली जो अलाइनर्स चेंज करें उसको कैसे डिस्पोज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
1: थैंक यू दीक्षा मैम, थैंक यू।
0: तो अभी फिलहाल ग्रीन ग्रह प्रोग्राम में हमने आज बात करी है मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के बारे में जो घरों में इस्तेमाल होता है, लेकिन अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने के किसी और प्रोसेस के बारे में। आज के कार्यक्रम ग्रीन ग्रह में बस इतना ही। इस प्रोग्राम को आपके बीच लेकर आए डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद पीटीसी फाइनेंस लिमिटेड एंड इको क्लब फरीदाबाद। बहुत सारी बातों के बाद अब मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी ऐप यानी इंटरनेट रेडियो मानव रचना को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर ऐप स्टोर से, और पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आपको आरजे दीक्षा के साथ ये सारी चर्चा कार्यक्रम ग्रीन ग्रह में मिल जाएगी, जिसे आप दुनिया में कहीं भी शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी बातों के बाद अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए फरीदाबाद के पहले रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड फील लाइव, दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8, और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: करो।
1: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
2: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी कि ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उतक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें सही जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये सब बताते हैं। अगर आप में से किसी को भी अंग दान और देह दान के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जा सकते हैं या हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-120-3648 के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सहायता करके हमें बेहद खुशी होगी। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लक्ष्य है वो आप सभी को अंग दान, जो है ऑर्गन डोनेशन, देह दान यानी बॉडी डोनेशन, और उतक दान, टिश्यू डोनेशन के बारे में जानकारी देना तथा समाज में इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। इस प्रोग्राम में हम डॉक्टरों, अंगदान से जुड़े हुए लोगों से बात करेंगे और अंगदाताओं की कहानियां, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण की जानकारी और आपको इन विषयों को क्यों जानना चाहिए, ये सब बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज हमारे साथ है डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गन इंडिया की। ओवर टू यू डॉक्टर गीतिका।
3: थैंक यू पायल। आज हमारे साथ है डॉक्टर रवि मोहनका। डॉक्टर मोहनका ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई में लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है। हम उनसे आज यकृत यानी कि लिवर की बीमारियों और ट्रांसप्लांट के बारे में जानेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद हमसे जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का खास कार्यक्रम, जीवन एक अनमोल उपहार। हमारे साथ है डॉक्टर रवि मोहनका, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई से, और हम बात कर रहे हैं यकृत यानी लिवर की विभिन्न बीमारियों और ट्रांसप्लांट के बारे में।
4: नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रवि मोहनका। मैं ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई में एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे लिवर डिजीज के बारे में, किस प्रकार की होती है ये, किस कारण से लिवर डिजीज होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है या इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो लिवर डिजीजेस जो हैं वो मुख्य दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अक्यूट लिवर फेलियर और दूसरी होती है क्रॉनिक लिवर डिजीज या लिवर सिरोसिस। पहले अक्यूट लिवर डिजीज के बारे में बात करते हैं। अक्यूट लिवर डिजीज या अक्यूट लिवर फेलियर जो होता है वो मोस्ट कॉमनली ज्यादातर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन के कारण होता है या फिर कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण भी लिवर फेलियर हो सकता है। किसी भी पर्सन को अगर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई या दवाइयों के कारण अक्यूट लिवर फेलियर हो तो उनको क्या सिम्टम्स होंगे? जॉन्डिस, पीलिया, जिसमें कि आँखों में, पेशाब में या स्किन पे आपको पीलापन दिखेगा। दूसरी चीज़ है कि उन्हें बेहोशी हो सकती है। बेहोशी में या तो पेशेंट्स ज़्यादा सोएंगे या फिर कभी कभी इररिलेवेंट बात भी कर सकते हैं, मतलब बहकी बहकी बातें कर सकते हैं। अगर भी किसी भी पेशेंट को ये सिम्टम्स हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी आपने किसी लिवर के डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि ये सडनली इसमें पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, पेशेंट सीरियस भी हो सकते हैं और उन्हें इमरजेंसी लिवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये चीज़ कुछ पेशेंट्स में ज़रूरत होती है। ज़्यादातर पेशेंट में दवाइयों से ये प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है और रिवर्स किया जा सकता है। अब ये देखें कि हेपेटाइटिस इन इस एक्यूट लिवर फेलियर को कैसे प्रिवेंट किया जाए। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन जो है ये पानी और खाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो अगर हम अपने खाने और पानी के सफाई की तरफ ध्यान दें तब ये नहीं फैलता है। बारिश के मौसम में खाने और पानी में कंटामिनेशन के चांस ज़्यादा होते हैं, उस समय में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन के भी चांस बढ़ जाते हैं। अगर हम कोई भी दवाई जिसमें लिवर फेलियर का चांस ज़्यादा है ये शुरू करें तो फिर हमें लिवर फंक्शन को चेक करते रहना चाहिए। इस तरीके से अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं लिवर पे तो समय पे दवाई को बंद करके उसका इफ़ेक्ट, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई और दवाइयों के कारण जो अक्यूट लिवर फेलियर होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए साफ खाना खाएं, साफ पानी यूज़ करें और कोई भी नई दवाई जिसका कि इफ़ेक्ट लिवर पे होता है उसको शुरू करने के बाद उसके टेस्ट करा के अगर लिवर पे इफ़ेक्ट हो रहा है तो जल्दी ही उस दवाई को बंद कर दें। इस तरीके से हम लिवर, अक्यूट लिवर फेलियर को बचा सकते हैं, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी टाइप की लिवर डिजीज़ होती है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या लिवर सिरोसिस। इस टाइप के लिवर डिजीज़ को का मुख्य कारण होता है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन, एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ मतलब शराब के सेवन से लिवर डिजीज़ जो होती है, और फैटी लिवर डिजीज़ तो मोटापे के कारण जो लिवर डिजीज़ होती है, इनको इसके कारण लिवर सिरोसिस या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ होता है। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के कारण जो लिवर सिरोसिस होता है उसको काफ़ी समय लगता है, नॉर्मली 15 से 20 25 साल भी लग सकते हैं हेपेटाइटिस बी के कारण लिवर सिरोसिस डेवलप होने में। और हमारे पास काफ़ी अच्छी वैक्सीन और काफ़ी अच्छी दवाइयां हैं जिससे हम हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट कर सकते हैं या ट्रीट भी कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने के लिए सभी अडल्ट्स को और सभी बच्चों को वैक्सीन लेनी चाहिए। जो हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट होता है पेशेंट से पेशेंट में वो होता है या तो नीडल्स और सिरिंज के द्वारा, या ब्लड चलाते हैं उससे, या फिर यौन संबंध के थ्रू, या फिर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के। इसको प्रिवेंट करने के लिए जब भी आप नीडल सिरिंज यूज़ करें तो हमेशा डिस्पोजेबल यूज़ करें। जब भी आप ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स चढ़ाएं किसी भी पेशेंट को तो हमेशा टेस्ट करके चढ़ाएं, और जब भी कोई भी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं वो सेफ होनी चाहिए, वो यूज़ करें। हेपेटाइटिस सी को भी प्रिवेंट करने का यही तरीका है कि ब्लड प्रोडक्ट्स या ब्लड चढ़ाएं तो उसको टेस्ट करके यूज़ करें, डिस्पोजेबल सिरिंज या नीडल यूज़ करें और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करें। अगर इनमें से कोई इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसको ट्रीट करना या कंट्रोल करना मुश्किल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हेपेटाइटिस बी के लिए और हेपेटाइटिस सी के लिए अवेलेबल हैं जिससे उनका इलाज हो सकता है। तीसरी बीमारी है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ जिसके कारण लिवर सिरोसिस होता है। अगर कोई कम मात्रा में या लिमिटेड समय तक

0: अल्कोहल यूज़ करे तो जनरली उससे ज़्यादा सीरियस लिवर डिजीज़ नहीं होती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में थोड़े समय में अल्कोहल यूज़ करे तो उसके कारण सडन लिवर फेलियर हो सकता है, जिसे कहते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। या फिर कोई बहुत समय तक, बहुत सालों तक, 15-20-25 सालों तक अगर अल्कोहल यूज़ करे तो उससे भी लिवर फेलियर हो सकता है, जिसे कहते हैं अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। इस टाइप के लिवर फेलियर को बचाने का एक ही तरीका है कि शराब का या अल्कोहल का सेवन ना करें। लेकिन अगर ऐसा किसी पेशेंट को होता भी है लिवर फेलियर, तो अधिकतर पेशेंट्स में उसको दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स में जिसमें लिवर फेलियर बहुत ज़्यादा सीवियर है, उनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। चौथी प्रॉब्लम है फैटी लिवर डिजीज़, जो कि हमारे सोसाइटी में और इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत कॉमन हो रहा है अभी। इस प्रकार की लिवर डिजीज़ का मेन कारण है डायबिटीज़, जिसका कि कंट्रोल ना जो कंट्रोल में ना है, नहीं है, हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। अगर हम ये तीनों प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करें तो हम फैटी लिवर डिजीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इवन रिवर्स कर सकते हैं। अगर इस स्टेज पे हम इस पे ध्यान ना दें और इसको रिवर्स ना कर पाएं, तो नेक्स्ट स्टेज होती है नैश, जिसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टेट हेपेटाइटिस। इस स्टेज पे भी बीमारी रिवर्सिबल है, लेकिन डायग्नोसिस होना ज़रूरी है और वजन कम करना, डायबिटीज़ कंट्रोल करना आवश्यक है। थर्ड स्टेज है अनफॉर्चुनेटली लिवर सिरोसिस, जो कि इरिवर्सिबल है। एक बार किसी पेशेंट को लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाए, उसके बाद फिर उनको लिवर सिरोसिस को ठीक नहीं कर सकते हैं, उनकी दवाइयाँ चलती है, उससे लिवर डिजीज़ को स्टेबल रखा जा सकता है, वजन कम करना, डायबिटीज़ कंट्रोल करना ये अनिवार्य हो जाता है। लेकिन जिस पेशेंट को लिवर फेलियर या लिवर डिकॉम्पनसेशन डेवलप हो जाए, मतलब उनको जॉन्डिस हो जाए, या पेट में पानी भर रहा है, या पैरों में सूजन आ रही है, या बेहोशी हो रही है, या ब्लीडिंग हो रही है, इस प्रकार से अगर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाए किसी को लिवर फेलियर का, लिवर सिरोसिस का, उन पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से हम लिवर फेलियर अक्यूट या क्रॉनिक दोनों को जान सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर डेवलप हो तो दवाइयों से या ट्रांसप्लांट से ठीक कर सकते हैं।
1: हमारे साथ है डॉक्टर रवि मोहन का, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई से, और हम बात कर रहे हैं यकृत यानी लिवर की विभिन्न बीमारियों और ट्रांसप्लांट के बारे में। डॉक्टर मोहन का, हम जानना चाहेंगे कि लिवर ट्रांसप्लांट क्या होता है और किन पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट यानी कि यकृत के प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती है और यह प्रत्यारोपण कैसे किया जाता है।
0: लिवर फेलियर पेशेंट जो होते हैं उनको काफ़ी प्रकार की तकलीफें वो महसूस करते हैं और सफ़र करते हैं, जैसे कि असाइटिस। असाइटिस मतलब पेट में पानी भरना, पैरों में सूजन आना। दूसरी बात होती है उनको जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, कभी कभी पेशाब में पीलापन आ जाता है और स्किन में भी पीलापन आ जाता है। फिर उनको होता है इंसेफलोपैथी। इंसेफलोपैथी में ये होता है कि पेशेंट्स को बेहोशी हो सकती है, कुछ इररेलेवेंट बात कर सकते हैं, वो बहकी बहकी बातें कर सकते हैं, और बेहोशी ज़्यादा बढ़ने से कोमा भी हो सकता है। इसके अलावा लिवर फेलियर पेशेंट्स को ब्लीड हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है जिसमें ब्लड आए, या इवन किसी किसी पेशेंट्स को लिवर फेलियर होने से किडनी पे फेलियर हो सकता है या फिर लंग्स में भी फेलियर हो सकता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स होती हैं लिवर फेलियर में पेशेंट्स को। लेकिन हर पेशेंट जिनको कि लिवर डिजीज है या लिवर सिरोसिस है, सबको लिवर फेलियर नहीं होता है। मुख्य कारण जो होते हैं लिवर फेलियर के और लिवर सिरोसिस के, वो होते हैं हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन, शराब के सेवन से लिवर सिरोसिस होता है, और फैटी लिवर से लिवर सिरोसिस होता है। दूसरे प्रकार का लिवर फेलियर जो होता है उसे कहते हैं अक्यूट लिवर फेलियर। अक्यूट लिवर फेलियर में बहुत यंग पेशेंट्स को सडन लिवर फेलियर हो जाता है, एकदम शॉर्ट पीरियड में लिवर फेलियर हो जाता है, और ऐसे लिवर फेलियर के कारण होते हैं हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन, और कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी लिवर फेलियर इस प्रकार का हो सकता है। हर पेशेंट जिसको लिवर सिरोसिस है या अक्यूट लिवर फेलियर है उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती है। जो पेशेंट को लिवर सिरोसिस के साथ में लिवर फेलियर के सिम्टम्स हैं या अक्यूट लिवर फेलियर के साथ में रिकवरी नहीं हो रही है उनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। लिवर ट्रांसप्लांट में हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट का खुद का खराब लिवर है, जो सिरोसिस हो चुका है जिसमें, या जिसमें लिवर पूरी तरीके से फेल हो चुका है जिसको लिवर निक्रोसिस कहते हैं, उसको निकाल दिया जाता है और नया लिवर उसमें लगाया जाता है। ये प्रोसेस में जो भी ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त की छोटी छोटी वेसल्स हैं, उन सब को लिवर के अंदर ज्वाइन करके और साथ साथ में बाइल डक्ट को ज्वाइन किया जाता है। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो लिवर के अंदर खून पहुंचाने का काम करती हैं, और बाइल डक्ट जो होता है जो लिवर बाइल बनाता है उसको आंतरी तक या इंटेस्टाइन तक पहुंचाने का काम करता है। ये ऑपरेशन बड़ा होता है, करीब 10 से 12 घंटे चलता है, और इसमें रिस्क होता है ब्लीडिंग का और बाकी भी प्रॉब्लम्स होने का रिस्क हो सकता है। लेकिन कॉमनली ये ऑपरेशन होने के कारण इसका सक्सेस रेट हमारी कंट्री में और दुनिया में बाकी जगहों भी करीब 85-90% सक्सेस रेट है। दो प्रकार से लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, पहला होता है कैडेवरिक या डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट और दूसरा होता है लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट। कैडेवरिक ट्रांसप्लांट में जो लिवर लगाया जाता है पेशेंट को वो एक ब्रेन डेड व्यक्ति से आता है। ब्रेन डेड व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जिनका कि ब्रेन डैमेज इरिवर्सिबल या परमानेंट ब्रेन डैमेज की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। ऐसे पेशेंट से अगर लिवर लगाया जाए, ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ किया जाए, तो उसे डिजीज डोनर या कैडेवरिक ट्रांसप्लांट कहते हैं। दूसरे तरीके से ट्रांसप्लांट होता है कि लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट। लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट में ये होता है कि कोई भी फैमिली मेम्बर अपना आधा लिवर या एक लोब लिवर का डोनेट कर सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी में दो किडनी होती है लेकिन हमारे बॉडी में एक ही लिवर होता है, फिर भी उसको दो लोब्स होते हैं, इसी वजह से एक लोब को डोनेट करके हम ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। द लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट का सबसे मुख्य फायदा ये है कि उसमें कोई वेटिंग टाइम नहीं होता है, जबकि कैडेवरिक ट्रांसप्लांट या डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट में वेटिंग टाइम होता है। क्योंकि हमारे देश में जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और जितने डोनेशंस हर साल होते हैं कैडेवरिक डोनेशंस, उसमें काफ़ी गैप है, इसीलिए जनरली कुछ महीनों तक या कई बार कुछ सालों तक वेट करके ही लिवर मिल पाता है कैडेवरिक ट्रांसप्लांट के लिए। जबकि लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट जो कि फैमिली मेंबर से डोनेशन हो रहा है उसमें कोई वेटिंग टाइम नहीं होता है। नॉर्मली वेस्टर्न कंट्रीज में कैडेवरिक ट्रांसप्लांट ज़्यादा किया जाता है और ईस्टर्न कंट्रीज में लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट ज़्यादा किया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो ऑर्गन डोनेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है, जैसे कि US में, UK में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इन कंट्रीज़ में ऑर्गन डोनेशन ज़्यादा होने से वहाँ पे कैडेवरिक ट्रांसप्लांट ज़्यादा होता है। हमारे कंट्री में, कोरिया में, जापान में, इन कंट्रीज़ में ऑर्गन डोनेशन कम होता है, इसीलिए लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट ज़्यादा किया जाता है, और इसी वजह से इन कंट्रीज़ में ट्रांसप्लांट काफ़ी सक्सेसफुल भी है। ऑलमोस्ट 90% सक्सेस रेट है दोनों प्रकार के ट्रांसप्लांट का। ऑल्दो कैडेवर ट्रांसप्लांट में एक पूरा लिवर दिया जाता है और लिविंग डोनर में आधा लिवर दिया जाता है, फिर भी दोनों के रिजल्ट्स काफ़ी सिमिलर हैं, और कैडेवरिक ट्रांसप्लांट में डिसएडवांटेज ये है कि भाई वेटिंग टाइम होता है, लेकिन लिविंग डोनर में वेटिंग टाइम नहीं होता है। और एडवांटेज ये भी है कि जो लिविंग डोनर में आधा लिवर होता है वो ग्रो करके पूरे लिवर का साइज बन जाता है करीब कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में।
1: थैंक यू डॉक्टर मोहन का, इन सभी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे सुनने वालों को यह सब महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद।
2: जैसे कि आप सभी जान गए हैं कि अंगदान एक बेहद खूबसूरत विरासत है, जिसके जरिए हम मृत्यु में भी 8 लोगों की जिंदगी खुशनुमा बना सकते हैं। मैं आप सभी सुनने वालों को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं, या आप हमें हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9650952810, या फिर आप हमें info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं, और कॉल करना चाहें तो इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं जो है 0114183-8382। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भरकर अनेक जिंदगियों को आशा की किरण दिखा सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दीजिएगा। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा, जिसे आप सबको दिखाइए और दूसरों को प्रेरित भी करिए। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होने की आशा करती हूँ। हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।
3: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078, या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं, और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। www.organindia.org पर जाकर अपना फॉर्म भरें और अपना ऑर्गन डोनर कार्ड प्राप्त करें। अंगदान, जीवन दान।

0: Hi, this is Benny Dayal. You're listening to Radio Manav Rachna, 107.8 FM.
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा मोटिवेशनल प्रोग्राम जो आपको सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करता है, बल्कि आपको ये बताता है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर हम उन महान व्यक्तियों की कहानियाँ लेकर आते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने लगन से एक मुकाम को हासिल किया है और एक मिसाल कायम की है। की जिंदगी में हमें सिर्फ प्रेरणा ही नहीं मिलती है, बल्कि एक ऐसे अनमोल जीवन के सबक भी मिलते हैं जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जिंदगी में ना हर इंसान के सामने चुनौतियां आती है। आपको कोई ना कोई ये चीज बताता होगा कि यार आज ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, बहुत सी चीजें होंगी, शायद आपने भी ये चीजें रियलाइज करी होंगी। कभी परिस्थितियां साथ नहीं देती है तो कभी साधन कम होते हैं और कभी रास्ता बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, इन मुश्किलों के सामने झुकते नहीं है, जी हाँ, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। आज हम एक ऐसी ही प्रेरणादायक लेडी की, जी हाँ, एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज का ये खास एपिसोड जिसके लिए है, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी एक ऐसी महिला जिन्होंने ओडिशा के एक छोटे से गांव से अपना सफर शुरू किया और भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद यानी कि राष्ट्रपति के पद तक पहुंचकर इतिहास रच दिया। उनकी कहानी हमें ये बताती है कि अगर इरादे आपके मजबूत हों, मेहनत अगर आपकी सच्ची हो और हौसला आपका बुलंद हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती आपसे। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई कठिन परिस्थितियों का सामना भी किया है, आर्थिक चुनौतियां हो, सामाजिक बाधाएं हो और व्यक्तिगत दुखों के बाद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। जी हाँ, हर मुश्किल के बाद वो और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरी है और आगे बढ़ती रही है। आज के इस खास एपिसोड में हम उनके बचपन से लेकर उनके आज तक की जो भी उनकी कहानी है, उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उनकी जर्नी के साथ आज हम चलने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल होने वाली है ये जर्नी, क्योंकि आज हम राष्ट्रपति की बात करने वाले हैं, उनकी जर्नी की बात करने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको अगर ये जर्नी सुननी है ना, तो आपको जुड़ जाना है रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, सिर्फ और सिर्फ आरजी स्नेहा के साथ। और प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं वो है सक्सेस मंत्रा, जहां पर आपको ना सक्सेस होने के लिए हम मोटिवेट कर ही देंगे। तो बस इसलिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना पर। फील गुड, फील

0: वेलकम बैक दोस्तों,
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको सिर्फ इंस्पायर ही नहीं करता है लोगों की जर्नी से, बल्कि आपको मोटिवेट भी करता है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और आज जिस जर्नी के साथ हम चल रहे हैं, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, जिनको जान रहे हैं, वो है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। जी हाँ, इनकी प्रेरणादायक कहानी, इनकी जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं। पिछले सेगमेंट में हमने उनके सफर का एक छोटा सा परिचय आपको दिया था। चलिए अब उनके बचपन की जो शुरुआती जीवन है उससे शुरुआत करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20th जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव ऊपरबेड़ा में हुआ था। वो संतल आदिवासी समुदाय से संबंध रखती हैं। उनका बचपन बहुत ही सादगी और सीमित साधनों के बीच बीता। गांव में आज की तरह सुविधाएं तो नहीं थी, ना शिक्षा थी, ना स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी काफी सीमित थे। लेकिन इन सब के बीच एक चीज बहुत मजबूत थी, वो था उनकी सीखने की इच्छा और आगे बढ़ने का जज्बा। बचपन से ही द्रौपदी मुर्मू जी ने पढ़ाई में अपनी रुचि रखी थी। उनके परिवार ने भी उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उस समय गांव की कई लड़कियां स्कूल तक नहीं पहुंच पाती थीं, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखा। दोस्तों, जब हम किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुनते हैं तो अक्सर उसकी उपलब्धियां देखते हैं, लेकिन उन उपलब्धियों के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष होता है ये बहुत कम लोग जान पाते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी भी इस बात का सबूत देती है। एक छोटे से गांव की लड़की जिसके पास बहुत अधिक सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने सपने देखने की हिम्मत को और उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करी। उनका बचपन हमें ये सिखाता है कि जन्म की परिस्थितियां हमारा भविष्य तय नहीं करती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कई बार ऐसे सोचते हैं कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, या फिर रिसोर्सेज नहीं है, या फिर अपॉर्चुनिटीज वो अगर कम है तो शायद हम सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन सच बात तो ये है कि सफलता की शुरुआत हमारी सोच और हमारे हौसले से होती है। द्रौपदी मुर्मू जी ने बचपन से ही ये दिखा दिया था कि अगर मन में सीखने की लगन हो और कुछ करके दिखाने का जज्बा हो तो कोई भी रुकावट आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। और आज की इस खास सेगमेंट का सक्सेस मंत्रा है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर आपका हौसला मजबूत हो तो सपना पूरा किया जा सकता है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको मोटिवेट करता है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। साथ ही हम ऐसी जर्नी, ऐसी कहानियां लेकर आते हैं, उनकी लाइफ की जर्नी बताते हैं ताकि आप उससे ना मोटिवेट हो सके, क्योंकि लोगों के पास शुरू से ही सब कुछ हो ऐसा जरूरी नहीं है। करने वाले ना थोड़े कम रिसोर्सेज में भी कुछ ना कुछ जरूर कर लेते हैं। और आज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है भारत की राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी की। उनके जीवन के सफर को आज हम करीब से जान रहे हैं। पिछले सेगमेंट पे हमने उनके बचपन और उनकी परिस्थितियों के बारे में बात की, जहां से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। अब बात करते हैं उनकी पढ़ाई और उनके करियर के पहले कदम की। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी ने बचपन से ही शिक्षा को अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया था। गाँव से निकलकर उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर भुवनेश्वर जाकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उस समय एक आदिवासी परिवार की बेटी का गांव से बाहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने कभी मुश्किलों को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी ने ओडिशा सरकार की एक विभाग में काम किया। ये उनकी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत थी। इस दौरान उन्होंने अनुशासन, जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य निभाए, लेकिन उनका मन सिर्फ नौकरी तक ही सीमित नहीं था, वो समाज के लिए कुछ ज्यादा करना चाहती थी। बाद में उन्होंने एक स्कूल में टीचर के रूप में भी सेवा दी। टीचर बनना उनके लिए सिर्फ एक प्रोफेशन ही नहीं था बल्कि समाज को बेहतर बनाने का एक माध्यम था। वो बच्चों को पढ़ाती थी और उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देने की कोशिश भी करती थी। इसी दौरान उनका संपर्क आम लोगों और उनकी समस्याओं से और ज्यादा हुआ। दोस्तों, शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देती है बल्कि हमें सोचने, समझने और सही फैसले लेने की भी शक्ति देती है। तो इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी पढ़ाई और काम के माध्यम से ये साबित कर दिया था कि अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो जिंदगी आपको नए रास्ते जरूर दिखाती है। उनकी जर्नी हमें ये बताती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है और आगे की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है। एक टीचर और एक कर्मचारी के रूप में जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया वही आगे चलकर उनके लीडरशिप सफर की मजबूत नींव बना। आज के सेगमेंट का सक्सेस मंत्र है, शिक्षा और सीखने की आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजी स्नेहा और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी की प्रेरणादायक जर्नी के बारे में। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे उन्होंने पढ़ाई और टीचिंग के माध्यम से अपनी पहचान बनाई। अब बात करते हैं उस मोड़ की जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। जी हाँ, वो था राजनीति और जनसेवा का सफर। द्रौपदी मुर्मू जी ने बचपन से ही लोगों की मदद करने और समाज के लिए कुछ करने की सोच रखी थी। टीचर के रूप में काम करते हुए उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से देखा। उन्हें ये महसूस हुआ कि अगर समाज में बड़ा बदलाव लाना है तो लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज बनना जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उनकी शुरुआत बहुत छोटे स्तर से हुई। उन्होंने उड़ीसा के रायरंगपुर नगर पंचायत में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीत लिया। उनकी ईमानदारी, सरलता और लोगों से जुड़े रहने की आदत ने उन्हें अलग पहचान दी। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए शुरुआत भी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी हमें कुछ और ही सिखाती है। उन्होंने किसी बड़े पद से अपना सफर शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया और हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। समय के साथ उनकी मेहनत रंग लाने लगी। वो उड़ीसा विधानसभा की सदस्य बनी और बाद में राज्य सरकार में मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। इसी दौरान उन्होंने लोगों के विकास, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर भी काम किया है। उनका फोकस हमेशा आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना था। उनकी लीडरशिप की सबसे खास बात तो ये थी कि वो जमीन से जुड़ी हुई थी। जी हाँ, चाहे जिम्मेदारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो या पोजीशन कितनी बड़ी क्यों ना हो, उन्होंने कभी अपनी सादगी और विनम्रता को नहीं छोड़ा। इसी वजह से लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते थे और उन पर भरोसा भी करते थे। द्रौपदी मुर्मू जी की जर्नी हमें ये बताती है कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। जरूरी ये नहीं है कि आप कहां से शुरू करते हैं, जरूरी ये है कि आप कितनी ईमानदारी और लगन के साथ अपने सफर को तय करते हैं। और आज का इस सेगमेंट का सक्सेस मंत्रा है, छोटी शुरुआत से कभी भी मत घबराइए। हर बड़ी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। कैसा लगा आपको ये थॉट, हमें जरूर बताइएगा। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सोचिए, मैं खुद बोल रही हूँ और मुझे ही कोई थॉट इंस्पायर कर रहा है, कितनी अच्छी बात है। मुझे पता है आपको भी बहुत पसंद आया होगा। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी की जर्नी के साथ। उनकी आज हम जर्नी की बात कर रहे हैं, उनकी जो बचपन की शुरुआत थी हमने उससे भी बात करी और पढ़ाई और राजनीति में प्रवेश करा उन्होंने उसके भी बारे में हमने जाना। लेकिन अब उस दौर की बात करेंगे जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और सबसे भावुक अध्याय में से एक था। दोस्तों जिंदगी में ना सफलता पाना मुश्किल होता है, लेकिन कई बार जिंदगी कुछ ऐसे दुख देती है जिनका सामना करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। द्रौपदी मुर्मू जी ने भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही कई गहरे व्यक्तिगत दुखों का सामना किया। कुछ ही सालों के अंदर उन्होंने अपने दो जवान बेटों को खो दिया। जी हाँ, किसी भी माँ के लिए ये दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसके बाद उनके पति का भी निधन हो गया। फिर कुछ समय बाद उनकी माँ और भाई भी इस दुनिया से चले गए। एक के बाद एक इतने बड़े नुकसान ने उनकी जिंदगी को ही हिला कर रख दिया। ऐसे समय में बहुत से लोग ना टूट जाते हैं और जिंदगी में हार मान लेते हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, उन्होंने अपने आप को संभाला, धैर्य रखा और धीरे धीरे फिर से खुद को मजबूत बनाया। ये आसान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। इस कठिन दौर में उन्होंने आध्यात्मिकता और सकारात्मक सोच से बहुत ताकत ली। उनका विश्वास था कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, इंसान को ना आगे बढ़ने की कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने अपना ध्यान सेवा, समाज के काम और अपने कर्तव्य पर लगाया। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी का ये हिस्सा हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारे पास एक चीज हमेशा होती है, वो है हमारा हौसला। और वही हौसला हमें अंधेरे समय से बाहर निकालने की ताकत देता है। उन्होंने दुख को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उसी दुख से अपनी ताकत को लेकर अपनी जिंदगी को एक नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाया। इसी वजह से आज उनकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन गई है। आज के इस सेगमेंट का सक्सेस मंत्रा है कि मुश्किलें और दुख जिंदगी का हिस्सा होती है, लेकिन हौसला और धैर्य ही हमें उनसे जीतना सिखाता है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से।

0: है आता है कोड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी वो मालिक के करता नहीं बार है और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है।
0: माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का डर है। ए भाई जरा

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी की प्रेरणादायक कहानी के साथ, उनकी प्रेरणादायक जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, पिछले सेगमेंट पे हमने उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें जाने की, उनका जीवन कितने कठिन संघर्ष और व्यक्तिगत दुखों से गुजरा और उनके बारे में जाना। आप देखते हैं और जानते हैं कि कैसे इतने मुश्किल के बाद भी उन्होंने अपनी सेवा और कर्तव्य के रास्ते पर चलना जारी रखा और देश के सबसे बड़े पद तक पहुंच गईं। साल 2015 में द्रौपदी मुर्मू जी को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये उनके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। झारखंड जैसे महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी संभालना एक बड़ा विश्वास और राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ निभाया। झारखंड में उन्होंने लोगों के हित में उनकी शिक्षा और ट्राइबल समुदायों से जुड़े मुद्दों पर खास ध्यान दिया। उनकी पहचान एक ऐसी नेता के रूप में बनी जो लोगों की बात को ध्यान से सुनती थी और जमीन से जुड़ी हुई थी। उनका व्यवहार सादगी भरा था और इसी वजह से लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल काफी अच्छा माना गया। उन्होंने हमेशा संवैधानिक मर्यादाओं का पालन किया और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। ये उनकी ईमानदारी और सेवा भाव का ही परिणाम था कि धीरे धीरे उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा मजबूत हो गई। फिर आया साल 2022। ये वो साल था जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम भारत के राष्ट्रपति पद के लिए घोषित किया गया। ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक पल था। चुनाव के बाद वो भारत की राष्ट्रपति बनी और इसके साथ ही देश की पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। ओडिशा के एक छोटे से गांव से निकली एक बेटी का राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है बल्कि ये भारत के लोकतंत्र की ताकत और उस पर विश्वास का प्रतीक था कि उनकी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से कोई भी इंसान कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। द्रौपदी मुर्मू जी की ये उपलब्धि लाखों युवाओं, महिलाओं और ट्राइबल समुदायों के लिए एक प्रेरणा है। उनकी कहानी बताती है कि सपने देखने का हक हर किसी को होता है और उन्हें पूरा करने की ताकत भी हर इंसान के अंदर होती है, बस आपको उसे पहचानना है और उस पर काम करने लग जाना है। और आज की इस खास सेगमेंट का सक्सेस मंत्र निकलता है कि ईमानदारी, समर्पण और लगातार मेहनत का फल चाहे आपको देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। वक्त हो गया छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हमने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की एक बहुत ही प्रेरणादायक और हौसला बढ़ाने वाली कहानी सुनी, उनकी जर्नी सुनी आज हमने, कि ओडिशा के एक छोटे से गाँव से शुरू हुआ उनका सफर भारत के राष्ट्रपति भवन तक कैसे पहुंचा। साथ में एक अद्भुत मिसाल ये बात बनती है कि ये कहानी हमें बताती है कि सफलता सिर्फ बड़े शहरों से या फिर ज्यादा सुविधाओं का मोहताज नहीं होता है, बल्कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं। आज के इस आखिरी सेगमेंट में द्रौपदी मुर्मू जी की जिंदगी के मिलने वाले 5 सबसे बड़े सक्सेस मंत्रा को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला सक्सेस मंत्रा है वो है, परिस्थितियों से हार मत मानिएगा। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत सादगी और सीमित साधनों के बीच अपना बचपन बिताया है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने सपने देखे और उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करी। दूसरा सक्सेस मंत्रा है, शिक्षा को अपनी ताकत बनाइए। उनकी जर्नी ये साबित करती है कि शिक्षा जिंदगी बदल सकती है। सीखने की आदत और ज्ञान ही वो ताकत है जो हमें नए अवसर और नए रास्ते दिखाती है। और तीसरा सक्सेस मंत्रा है, छोटी शुरुआत से घबराइए मत। टीचर और समाज सेविका के रूप में शुरू हुआ सफर धीरे धीरे राजनीति और फिर राष्ट्रपति पद तक पहुंच गया। हर बड़ी मुश्किल की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। चौथा सक्सेस मंत्रा है, मुश्किलों में भी हौसला बनाए रखिए। जी हाँ, अपने पति बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों को खोना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी ने हिम्मत नहीं हारी और जीवन में आगे बढ़ती रही। पांचवा सक्सेस मंत्रा है, सेवा और विनम्रता को कभी मत छोड़िए। चाहे जिम्मेदारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो गई हो, उन्होंने हमेशा लोगों के प्रति संवेदनशीलता और विनम्रता बनाए रखा। यही गुण उन्हें एक सच्चा लीडर बनाता है। द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता का असली अर्थ सिर्फ किसी बड़े पद तक पहुंचना नहीं होता है, बल्कि असली सफलता होती है हर परिस्थिति में अपने मूल्यों, अपनी मेहनत और अपने उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ते रहना। इसी प्रेरणा के साथ आज के इस खास एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे स्नेहा और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सक्सेस मंत्रा। याद रखिएगा, सपने बड़े रखिए, हौसला मजबूत रखिए और मुश्किलों के सामने कभी झुकिएगा नहीं, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। तो चलिए, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मेरा वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। अगले हफ्ते फिर से आऊंगी किसी और नई प्रेरणादायक स्टोरी के साथ, किसी और नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगला जधाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. और इस सफरनामा में बहुत सारी बातें लेकर के आते हूँ, अलग अलग जगहों पर आपको लेकर के जाती हूँ. हर शनिवार हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, कभी मैं आपको ले जाती हूँ जम्मू, तो कभी ले जाती हूँ कश्मीर, कभी कन्याकुमारी, कभी वेस्ट बंगाल, कभी गुजरात, और न जाने

सारी बातें करती है और साथ ही आपको अलग अलग जगहों पर लेकर के जाती है। और आज का हमारा सफर ना एक ऐसी खूबसूरत जगह पे है जहाँ का इतिहास तो बहुत अच्छा है और साथ ही वहाँ मतलब इतनी खूबसूरत आपको जो है जगहें आपको मिल जाएंगी, सुकून आपको वहाँ मिल जाएगा। तो बस देरी किस बात की, थोड़ा दूर है भाई हमारे इस फरीदाबाद से, इस दिल्ली NCR से थोड़ा दूर ज़रूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है कि जाया ना जा सके। चलिए लेके चलती हूँ आपको इस जगह पर। और ये कौन सी जगह है, क्या नाम है इस जगह का, ये सारी बातें बताऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। देखिए, कहीं महलों की शान है तो कहीं पहाड़ों का गहरा, और एक ऐसा ही कोना ख्वाब का नाम है त्रिपुरा, और आज हम इस जगह आ गए हैं घूमने के लिए। जी हाँ, आज आरजे साक्षी के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम सफरनामा में आज हम आए हैं हमारे एक बहुत ही खूबसूरत से सफर पर। मैं आपको लेकर के आई हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक ऐसे छोटे पर बेहद हसीन कोने में, जहाँ का इतिहास किसी राजा महाराजा की फर्म जैसा लगता है। आज हम घूमेंगे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ। इमेजिन कीजिए, एक तरफ सफेद संगमरमर का एक बड़ा सा महल पानी के बीचों बीच खड़ा है, और दूसरी तरफ घने जंगल और हरे भरे चाय के बगान है। भाई, जब आप पहली बार यहाँ जाएंगे, त्रिपुरा की मिट्टी के बारे में जब आप जानेंगे, तो मैं आपको बता दूं, अपना हैरान रह जाएंगे। यहाँ कितनी शांति है और कितना मतलब रिच कल्चर यहाँ छुपा हुआ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ पहाड़ और झरने हैं, तो त्रिपुरा आपके ये देखिए भाई बिल्कुल ये जो आपका सोचना है ना बिल्कुल बदल देगा। आज इस प्रोग्राम में ना मैं आपको देखिए त्रिपुरा की बात आपसे करने वाली हूँ, और ले जाऊंगी आपको भाई अगरतला की चमकती गलियों में, और साथ ही वहाँ के रॉयल पैलेसेस आपको मैं उनके बारे में बताने वाली हूँ, और स्टेट के को छुपे हुए किस्सों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और आपको भी ये सारी बातें जाननी है, यहाँ के फूड कल्चर के बारे में भी जानना है, यहाँ के रिच कल्चर के बारे में, रॉयल कल्चर के बारे में भी जानना है। तो बस आपको क्या करना है, कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि बहुत सारी होने वाली है बातें। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ. और बहुत सारी होती हैं बातें मैं आपको लेकर के आई हूँ आज बहुत खूबसूरत जगह, और वो है त्रिपुरा. देखिए त्रिपुरा की जो राजधानी है, इसकी जो कैपिटल है वो है अगरतला, और इसके बीचों बीच खड़ा है एक ऐसा स्टेट का सबसे बड़ा गुरूर यानी कि उज्जैनता पैलेस. इस देखिए इसे जो है महाराजा राधा किशोर मणिक्याय ने 1901 में बनवाया था. जब आप इस महल के सामने खड़े होते हैं तो इसका सफेद रंग और इसके बड़े बड़े जो गुंबद है वो देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर मतलब थोड़ा सा रोमन और थोड़ा सा मुगल स्टाइल का मिक्स आपको जरूर नजर आएगा. महल के सामने एक बहुत ही सुंदर महल स्टाइल गार्डन है जहाँ फाउंटेन्स चलते हैं. और जब आप देखिए शाम को अगर इस महल पर जब जाएंगे वहाँ की आप जब लाइट्स देखेंगे तो बिल्कुल चमकते हुए हीरे जैसा लगता है. और आज ये एक म्यूजियम है जहाँ आप त्रिपुरा की सदियों पुरानी हिस्ट्री, राजाओं के कुछ उनके शस्त्र हो गए ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, और उनकी रॉयल जो भाई उनकी लेगेसी जो उनको जो है वो देख सकते हैं. और साथ ही ये महल हमें बताता है कि त्रिपुरा का इतिहास कितना ग्रैंड और कितना ज़्यादा रॉयल है. तो चलिए इस जगह पे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को और घूमते हैं. फिलहाल आपका हिम्मत जाइए, बहुत सारी बातें लेकर के आ गई हूँ त्रिपुरा की और बहुत ही कमाल के गाने भी आपके लिए लेकर के आई हूँ. तो फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. और सफरनामा ये जो प्रोग्राम है लेकर के आती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी बातें होती हैं. आज जिस प्रोग्राम में आपको लेकर के आई हूँ बड़ी खूबसूरत सी जगह, ये जगह है त्रिपुरा. जी हाँ, देखिए पानी में तैरता हुआ एक महल, जैसे कि शायर ने अपनी मोहब्बत को पत्थर पर उतार दिया हो. अब अगरतला की मैं बात करूं, अगरतला थोड़ा दूर हम चलते हैं कुदरत और आर्किटेक्चर के एक अनोखे करिश्मे की तरफ, नीर महल. इसका मतलब होता है वाटर पैलेस. ये पूरे इंडिया में ऐसी सिर्फ 2 इमारतों में से एक है जो कि भाई काफी अलग है. और पहला तो मैं कहूंगी कि नीर महल है और दूसरा है उदयपुर का लेक पैलेस. ये महल रुद्र सागर लेक के बिल्कुल बीच में बना हुआ है. महाराजा वीर विक्रम किशोर मणिकाय ने इसे अपने समर रिजॉर्ट की तरह बनवाया था. और इस महल तक पहुंचने के लिए आपको एक मोटर बोट की या लकड़ी के शिकारे की जो उसमें बैठना होगा, उस बोट में बैठना होगा. और जब आप लेक के पानी को चीरते हुए महल के पास पहुंचते हैं तो नजारा एकदम ड्रीमी लगता है. जब आप इस महल की बालकनीज पे खड़े होकर लेक को देखते हैं, वो ठंडी हवा महसूस करते हैं, जब चेहरे पर आपके वो महसूस होगी तो हर तरफ जैसे सन्नाटा छा जाएगा. और नीर जो महल है त्रिपुरा का, वो हसीन ख्वाब है जो कि देखिए कभी आप भुला नहीं पाएंगे जब आप इसे एक बार देख लेंगे, निहार लेंगे. बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शांत है और बहुत कमाल की जगह है नीर महल. चलिए इसी के साथ अभी एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद और भी होंगी बहुत सारी बातें.

वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, और बहुत सारी होती हैं बातें। आज के इस प्रोग्राम में आपको लेकर के आई हूँ मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर, एक कोने में, और ये और कोई नहीं बल्कि है त्रिपुरा। जी हाँ, देखिए अब मैं आपको त्रिपुरा के सबसे रहस्यमय यानी कि मिस्टीरियस और पवित्र स्थल पर यहाँ पर मैं ले जाती हूँ, और ये जगह है उनाकोटी। यहाँ इसका मतलब होता है 1 less than a crore, यानी 1 crore में एक कम। ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ के बीच घने जंगल में स्थित एक ऐसी जगह है जहाँ पत्थरों को काटकर भगवान शिव और दूसरी देवी देवताओं के हजारों बहुत बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव 1 crore देवी देवताओं के साथ काशी जा रहे थे, और उन्होंने यहाँ रात को आराम किया। उन्होंने सबसे कहा कि सूरज निकलते ही सबको निकलना होगा, पर सूरज निकलने पर सिर्फ शिव जी उठे, बाकी सब सोते रह गए। गुस्से में आकर शिव जी ने सबको पत्थर का बना दिया, और तभी से यहाँ ये मूर्तियां हैं। और जब आप जंगल के बीच जाते हैं खड़े होकर, शिव के उस विशाल नाक और साथ ही साथ जटाओं वाली मूर्ति को आप जब देखेंगे, तो आपके अंदर एक अजीब, देखिए एक अलग महसूस आपको होगा। वो जो एक भक्ति है वो आपको महसूस होगी, वो विश्वास आपको महसूस होगा, और एक साथ दोनों ही जाग उठेंगे। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। त्रिपुरा के बारे में बात कर रही हूँ, और अगर आपने अभी तक प्लान नहीं किया है तो जल्दी से प्लान कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा हिडन जेम है जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। आजकल लोग देखिए मेघालय को भी वहाँ पर जाने लगे हैं, थोड़ा बहुत लोग जो है वहाँ पर एक्सप्लोर करने लगे हैं, लेकिन त्रिपुरा एक ऐसी जगह है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, जो अभी लोगों ने एक्सप्लोर नहीं करी है। तो चलिए मैं तो आपसे यही कहूंगी कि जल्दी से उठिए, बैग पैक कीजिए और जाइए त्रिपुरा। लेकिन यहाँ पर जाने के लिए ना आपको थोड़ा सा टाइम जरूर चाहिए होगा, ये मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पर जाने से पहले आप अच्छे से प्लान करके जाइए। ऐसा ना करें कि बस उठे और चल दिए, जैसा कभी पहाड़ों पे होता है ना कि बस मन किया और चल दिया मसूरी, भाई ऐसा नहीं है। यहाँ जाने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग एग्जीक्यूशन की जरूरत है, प्रॉपर प्लान के साथ ही जाए। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैरिव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. आज के इस प्रोग्राम में ना आपको मैं लेकर के आई हूँ एक बड़ी खूबसूरत सी जगह, और ये जगह है त्रिपुरा. देखिए त्रिपुरा का नाम जहाँ से आता है ना, बस उस पवित्र मंदिर की तरफ आप चलते हैं, त्रिपुरा सुंदरी टेंपल, जिसे देखिए जो लोकल्स हैं वहाँ पर माता ब्री भी यहाँ पर कहते हैं. और ये उदयपुर में एक छोटे पहाड़, यानी कि जो त्रिपुरा है वहाँ पर एक छोटे पहाड़ पर स्थित है, और ये इंडिया के 51 शक्ति पीठों में से एक है. कहते हैं यहाँ माता सती का जो दायां पैर है, यानी कि राइट फुट है, वो गिरा था. मंदिर का शेप एकदम अलग है, ये एक टर्टल यानी कि कछुए जैसा दिखता है, और इसीलिए इसे कुर्मा पीठ भी कहा जाता है. मंदिर के बिल्कुल पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है जिसे कल्याण सागर कहते हैं, जहां बहुत बड़ी बड़ी मछलियां और कछुए रहते हैं. जब आप यहां जाएंगे तो मछलियों को दाना यहां पर जो है वो खिलाया जाता है, जो खाना है उनका दिया जाता है, और फिर मंदिर में जाकर पूजा करते हैं. शाम को जब यहां धूप अगरबत्ती जलती है और आरती शुरू होती है तो पूरा माहौल एकदम पवित्र एनर्जी से भर जाता है. आप देखिए जब त्रिपुरा आए ना तो जरूर इस मंदिर में, देखिए ये तो एक फैक्ट बात हो गई, एक जरूर एक बात हो गई कि आपको जाना ही जाना है, तभी ये ट्रिप पूरी हो पाएगी. और बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है, जरूर जाइएगा, एक अलग एक्सपीरियंस के लिए जरूर जाइएगा. चलिए इसी के साथ अब लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील.

के मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके कि मैं मौत से

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज आपको एक बड़ी खूबसूरत सी जगह लेकर के आई हूँ और ये जगह है त्रिपुरा। अबे त्रिपुरा आए हैं हम तो पेट पूजा तो बनती है ना, तो अब थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। त्रिपुरा का खाना ना एकदम यूनिक और ऑर्गेनिक होता है। यहाँ के लोकल कल्चर का जो ऑथेंटिक खाना है वो है मुई बोरोक, यहाँ पर खाना खाया जाता है। इस खाने की सबसे खास चीज ये है बेरमा, जो एक तरह का ड्राइड और फर्मेंटेड फिश होता है। इसे देखिए बिना ऑयल के बहुत सारे स्पाइसेस, ग्रीन चिलीज और बैम्बू शूट्स के साथ उबाला जाता है और इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा तीखा और स्ट्रॉन्ग होता है, पर लोकल्स इसे बड़े चाव से खाते हैं। और यहाँ देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप वेज खाना खाते हैं यानी कि वेजिटेरियन हैं, तो यहाँ आप जो है एक बहुत ही टेस्टी यहाँ का जो चौखवी जो है वो भी आपको बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए, जो बैम्बू शूट्स दाल और जो चाव का राइस होता है उससे बनती है। यहाँ का खाना बहुत ही देखिए हेल्दी होता है क्योंकि इसमें ऑयल और आर्टिफिशियल मसाले बहुत कम पड़ते हैं। त्रिपुरा का हर जो मतलब एक कोना है वहाँ पर आपको हर जगह आपको जो ये ऑथेंटिक फूड आपको वहाँ का मिल जाएगा। यहाँ के हर जो मतलब एक खाने में जो टेस्ट है वो हर बाइट जो है ना आके एक अलग मिट्टी की खुशबू, यहाँ का जो स्वाद है, यहाँ का जो कल्चर है वो आपको बताएगी, बिल्कुल याद दिलाएगी। इसी के साथ साथ चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा और आगे लेकर चलती हूँ। यहाँ के ऑथेंटिक फूड के बारे में तो बात करी है और यहाँ पर आपको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों तरीके का खाना मिल जाएगा, तो ऐसा मत सोच के जाइएगा कि यहाँ तो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाना मिलेगा। जरूर यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो कोस्टल एरिया की वजह से जो यहाँ पर आपको जो सी फूड है वो ज्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेज खाना नहीं मिलेगा। यहाँ का जो वेज खाना है वो नॉनवेज से भी बहुत टेस्टी लगेगा, मतलब जब आप जाएंगे तो आपको ये रियलाइज होगा और बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी जरूर खाइएगा। और नॉर्मल जो हम नॉर्थ इंडियन खाना खाते हैं उससे तो वे डिफरेंट है, बहुत अलग है, बहुत टेस्टी है। चलिए लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: बिम बिम बिम बिम बिम बिम
1: तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती है बातें। पहाड़ों का रास्ता जब हरा भरा होना तो बादल भी कदमों में अक्सर बैठ जाते हैं। अगर आपको त्रिपुरा में थोड़ा हिल स्टेशन वाला फील चाहिए तो आपको जाना होगा मिजोरम बॉर्डर के पास जामपुई हिल्स। ये बेस है और ये त्रिपुरा के सबसे ऊंचा हिल रेंज है और इसे जो है बहुत ही खूबसूरत, जब आप जाएंगे यहाँ का मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहूँगी रोमांटिक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सुकून से भरा। और ये हिल्स सबसे फेमस है अपने ऑरेंज ऑर्किड्स के लिए, संतरे का जो बाग है इसके लिए। नवंबर दिसंबर के महीने में ये पूरा जो पहाड़ है वो एकदम नारंगी रंग का चमकने लगता है। पेड़ पर मानो जैसे जो संतरों की जो एक लड़ सी बिछ जाती है, जैसे हम लाइट्स जलाते हैं दिवाली में ऐसे बल्ब होते हैं ना, ऐसे आपको दिखाई देंगे। बहुत कमाल लगता है जब आप यहाँ जाएंगे तो। देखिए आप जरूर ट्राई कीजिएगा नवंबर दिसंबर में।

मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पर इस टाइम पर संतरे काफी अच्छे जो है उगते हैं, और सुनहरी धूप, इसका कॉम्बिनेशन जम्पोई हिल्स पे बहुत कमाल लगता है। और आपको मतलब भीड़ में भी ना एक सुकून महसूस होगा, और इतनी भीड़ है ही नहीं जितनी नॉर्मली देखिए आप कहीं जाते हैं आजकल, क्योंकि ये इतनी जगह एक्सप्लोर की हुई नहीं है, बहुत लोग नहीं जाते हैं, कुछ चुनिंदा लोग जाते हैं, और इसलिए भी क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है तो इसलिए प्लान करके जाना पड़ता है, तो इसलिए जो लोग एकदम से प्लान कर लेते हैं वो थोड़ा सा मिसिंग है, उनके लिए अनएक्सप्लोर जरूर रहता है, लेकिन अगर आप प्लान करके जा रहे हैं यहाँ पर आपको शांति ज़रूर मिलेगी। चलिए इसी के साथ कुछ और भी होंगी बातें, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ और प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक. दोपहर आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. चलिए अब आपको ना त्रिपुरा लेकर के आई हूँ. त्रिपुरा की एक बहुत ही हिडन और एडवेंचरस जेम की तरफ आपको लेकर चलती हूँ और वो है चांबीमुरा. ये देखिए इसे लोग जो है अमेजोन ऑफ त्रिपुरा भी कहते हैं. ये गोमती नदी के किनारे स्थित घने जंगलों के बीच बसा हुआ है. यहाँ की सबसे खास बात यह है कि ये पहाड़ के ऊंचे पत्थरों पर देवी दुर्गा और दूसरे जो भगवान है उनकी बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां उघेरी गई हैं. और इस जगह को देखने के एक ही तरीका यहाँ पर है. आपको एक बोट रेंट करके नदी के बीच जाना पड़ता है. दोनों तरफ एकदम ऊंचे हरे पहाड़ जो है वो खड़े हैं और बीच में शांत नदी बहती है. जब आप बोट से जाते हैं तो लगता है जैसे आप किसी हॉलीवुड के एडवेंचर फिल्म में आ गए हैं. और चांबीमुरा उन लोगों के लिए जन्नत है जो रॉ नेचर और थोड़ा देखिए एडवेंचरस जो है वो है और उनका थोड़ा सा नेचर ऐसा है. थोड़ा सा उनको चाहिए कि एक्टिविटी नेचर से जुड़ा होना चाहिए और एडवेंचरस होना चाहिए, तो उनके लिए बहुत कमाल जगह है. तो मैं तो ज़रूर कहूँगी भाई ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, आप त्रिपुरा ज़रूर जाइए. अगरतला से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व है जिसे कहते हैं यहाँ पर सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और सिपाही जाला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सेंचुरी लगभग 18 स्क्वायर किलोमीटर्स में पहले घने जंगलों के बीच बसी हुई है. इसे सबसे बड़ी खासियत यहाँ की है कि त्रिपुरा के स्टेट एनिमल यहाँ पर मिलते हैं और वो है यहाँ का जो चश्मे वाला बंदर है. और इसे आंखों के चारों तरफ सफेद सर्कल्स नजर आते हैं. साथ ही यहाँ आपको खूबसूरत क्लाउडेड लेपर्ड्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और तरह तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. सेंचुरी के अंदर एक छोटा सा देखिए छोटे से एक लेक है जहाँ आपको बोटिंग आप वहाँ कर सकते हैं और एक बोटानिकल गार्डन भी है. जब आप यहाँ जाएंगे तो जंगल ट्रेल पर वॉक आप कीजिए तो आपको चारों तरफ देवदार और रबर के जो पेड़ है वो आपको मिल जाएंगे. और हवा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लीन है. नेचर के बीचों बीच आप नेचर को महसूस कर पाएंगे. चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम. फील गुड फील लाइव.
1: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ. इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूं हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूं और बहुत सारी होती हैं बातें. आज आपको मैं लेके आई बड़ी खूबसूरत सी जगह जिसका नाम है त्रिपुरा. जी हाँ, देखिए त्रिपुरा जो है बहुत ही ज़्यादा रॉयल ग्रीन और सुकून भरा ये जो एक बड़ा कोना है इंडिया का, मैं कहूँगी बड़ा ही खूबसूरत है. और ये जो प्रोग्राम है आज हमने इसमें बहुत सारी बातें करी है त्रिपुरा की. उज्जैनता पैलेस की शान आज हमने देखी है, नीर महल का पानी महसूस किया, अनाकुती का ये पत्थर की कहानी सुनी और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए बड़ी खूबसूरत जो यहाँ पर बातें हैं, यहाँ पर यहाँ का खाना जो है वो भी हमने ज़रूर एक्सप्लोर किया है. यहाँ के लोग, यहाँ की शांति और यहाँ की कुदरत जो करिश्मा है कुदरत का, वो आप जब देखेंगे तो आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे. जब आप देखिए जब जाएंगे त्रिपुरा जाएंगे, जब भी आप लैंड करें तो कम से कम आप 1 से 2 दिन नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना दिन आपको मिल सके, आपको छुट्टी मिल सके या जितने दिन आप ब्रेक ले सकें वो आप लीजिए और कम से कम आप 1 हफ्ते का ट्रिप ज़रूर प्लान कीजिए त्रिपुरा का. क्योंकि आपको अगर एक्सप्लोर करना है त्रिपुरा तो ये सबसे बेस्ट होगा. जो एक रॉयल आइटनरी होगी वो आपको मिल जाएगी और वो आप उसके बिहाफ पे ज़रूर जाइए. आप कम से कम यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए जाइए क्योंकि इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, वो सुकून को महसूस करने के लिए, वो एक ब्रेक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चलिए इसके साथ वक्त जो है ये हो चला है अब आपसे इजाजत लेने का. अब मुलाकात होती रहेगी, अगला सफरनामा प्रोग्राम एपिसोड लेकर के आऊंगी अगले सैटरडे 11 से 1. तब तक के लिए कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइफ. बाय बाय, टेक केयर.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रांका और लेकर के आ गई हूं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में जहां आपसे ढेर सारी बातें मैं करती हूं और पूरे 3 बजे तक यानी कि 1 से 3 का ये प्रोग्राम है, 2 घंटे जहां आपके साथ बातों के साथ साथ एंटरटेनमेंट के लिए गाने भी तो ज़रूरी है ना, है ना। तो मैं गाने भी आपको सुनाती हूं और साथ ही आपकी फरमाइश है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और बस ऐसे ही आप अपना प्यार रेडियो मानव रचना को ऐसे ही देते रहें और खूब सारे मैसेज करते रहें। हमारा नंबर है 8010781078। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई बात आपको शेयर करनी है, कोई गाना आपको सुनना है, गाना किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप

ये मेरी लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रांकार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और आज के दिन क्या होने वाला है, तो आज मैं आपको हैक्स बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर सैटरडे मैं आप लोगों के लिए हैक्स लेकर के आती हूँ। या तो कोई ना कोई होता है जिनसे मैं बात करती हूँ, इंटरव्यू लेते हैं हम उनका, या फिर हम हैक्स पर बात करते हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स, हैक्स जो कि हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं। तो यस, आज भी मैं कई सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जिससे वाकई में काम ना

केवल आसान होगा बल्कि जिंदगी आसान हो जाएगी। तो कुछ ऐसी ही चीजें जो कि किचन से जुड़ी हैं, आपके ब्यूटी हैक्स से जुड़ी हुई हैं, जिससे आप यू नो हम चाहते हैं कि बहुत कम चीज़ों में हमारा काम हो जाए, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा भी यूज़ ना हो और हमें जो चाहिए उसका रिजल्ट भी 100% आए। तो बिल्कुल वैसी ही चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, या फिर मनी सेविंग हैक्स, ट्रैवलिंग हैक्स और भी बहुत कुछ तो आज के प्रोग्रामिंग होने वाला है। और कुछ मैसेज भी है मेरे पास में, इनको भी हम लेंगे। तो चलिए इंजॉय करते हैं पहले एक और बहुत ही प्यारा सा गाना। रेडियो माना वैष्णव 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूं प्रियंका आपके साथ।

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम हैक्स के बारे में काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं। देखिए, घर का काम हर दिन चलता रहता है, घर का पूरा काम, घर साफ करना, कभी खाना बनाना, कभी चीज़ों को ठीक करना, तो कभी उनकी सफाई। ये काम देखने में भले ही आसान लगे कि हाँ ये तो झट से हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये काम जितना देखने में आसान लगता है, अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत वक्त लग जाती है और मेहनत ऊपर से, है ना। तो ये सारे काम निपटाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, यानी कि अगर पूरा घर अच्छे से देखने लगे तो पूरा पूरा दिन भी निकल जाता है, तो इतना टाइम जो है वो लग जाता है। और यही वजह है कि घर संभालने वाले लोग जो है ना हमेशा ऐसी तरकीबें खोजते रहते हैं जिससे उनका समय बच जाए और काम भी हल्का हो ना, जो समय की बचत के साथ साथ एक होता है ना कि काम इजी हो तो मूड भी फ्रेश रहता है, क्योंकि थोड़ा वक्त हमें हमारे लिए भी मिल जाता है। आजकल की तेज़ ज़िंदगी में ना हर मिनट की कीमत होती है, और ऐसे में छोटी छोटी चीज़ों को समझदारी से करने की आदत जो है ना वो बड़े बदलाव लेकर के आ सकती है। और फिर चाहे आपकी किचन से जुड़ा है, आपके वॉशरूम से चीज़ें जुड़ी हैं, या किसी भी चीज़ से, अगर उन चीज़ों में हमें थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे काम को आसान कर दे, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो बस यही सोच करके मैं आप लोगों के लिए ढेर सारे हैक्स लेकर के आती हूँ। अब जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ किचन हैक्स, जो कि सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो किचन का ही होता है। किचन में आपको अगर लगता है कि सिर्फ खाना ही तो बनता है, तो खाने के साथ साथ और भी चीज़ें हैं। किचन को साफ़ करना, बर्तन क्लीन करना, उसका प्लेटफॉर्म क्लीन करना, यहाँ तक कि पूरी किचन को क्लीन रखना, बिकॉज वहाँ पर हम अपना खाना बना रहे हैं, राइट। अगर वो हम ज़रा सा भी गंदा रखेंगे तो हमें ही अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जो घर को संभालता है, उसकी देखभाल करता है ना, उनसे पूछो कि कितना वक्त लग जाता है, और ख़ास तौर से किचन में। तो हमेशा से हमारी ये खोज रहती है कि क्यों ना किचन को लेके कुछ चीज़ें पता चलती रहे, जिससे यू नो थोड़ा काम आसान हो जाए। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे हैक्स, जो कि अक्सर मैं आपके लिए किचन पर ज़्यादातर बात करती हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के आती हूँ। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा नुस्खा जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त है। अब देखिए, किचन में वैसे तो कई सारे काम हैं, लेकिन उसमें से एक चीज़ जो कि यूज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जब भी यूज़ होती है और वो यूज़ में ना आ पाए तो गुस्सा आ जाता है, और वो है किचन में रखी कैंची, जिसको हम कोई पेपर को कट करने में, या पॉलीथीन को कट करने में, या दूध की थैली को कट करने में, या और भी बहुत सारे कामों को करने में हम कैंची का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि इसकी जो धार है वो कम हो जाती है, अब यूज़ करते करते धार कम हो जाती है। अब ऐसे में क्या होता है ना कि फिर जब यूज़ करने के लिए आते हैं तो वो यूज़ में नहीं आ पाती है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए जिससे इसकी धार बनी रहे? तो देखिए, आप अगर इसकी धार बनाना चाहते हैं ना, तो जो फॉइल पेपर होता है उसको 3 से 4 बार आप फोल्ड कर लो, फोल्ड करके आप उस कैंची से काटो। फॉइल पेपर जो होता है एल्युमिनियम का, आप उसको 3 से 4 या 5 लेयर बना के उससे उस पर आप कैंची चलाओ, उस कैंची से आप उसको काटो, और जैसे जैसे आप काटोगे ना उसकी धार बहुत अच्छी होती जाएगी, और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करना, तो ये वापस से इस्तेमाल में हो जाएगी। तो हर हफ्ते मुझे लगता है कि कर ही लेना चाहिए, और वैसे भी जब हमारे पास समय होता है थोड़ा, और हम ऐसी चीज़ें कर ही लेते हैं थोड़ा फन में, है ना, इसलिए आप जब भी फ्री हो तो कैंची में धार लगा ही लीजिएगा, क्योंकि घर बैठे आपका काम हो जाएगा। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग हैक। अब चलिए आपको सुनाती हूँ एक बेहद खूबसूरत सा गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

मैं हूं प्रियंका, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, क्योंकि हैक्स बता रही हूं आपको, बड़े ही ज़बरदस्त हैक्स हैं। और कुछ पहले मैं किचन हैक्स के बारे में बात करूँ, बिकॉज किचन का काम अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है, और हमारी कोशिश भी ये रहती है कि सारा काम तो हम कर लेंगे, लेकिन किचन का अगर काम हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से, हाँ, कुछ हैक्स के मदद से अगर हम काम कर लें तो कितना बढ़िया हो जाए, है ना। तो अगर आप भी उनमें से हैं कि किचन के हैक्स आपको चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ। हरी मिर्च जो है, वैसे तो कई सारी चीज़ें जो बड़ी नाजुक होती है और ख़राब हो जाती है, उसमें से एक हरी मिर्च है। अच्छा, हरी मिर्च और धनिया, धनिया को भी हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि धनिया भी बहुत नाजुक होती है, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम हरी मिर्च को लेके बात करते हैं। हरी मिर्च क्योंकि जल्दी गलने लगती है ना, फ्रिज में रखा तो नमी पकड़ने लगती है और इस वजह से वो गलनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हरी मिर्च लंबे टाइम तक चले, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जिसमें आप हरी मिर्च रख रहे हैं उसमें आप एक या तो टूथपिक रख दें एक दो, या फिर आप कुछ चावल के दाने रखते हैं, तो इससे क्या होगा, वो नमी सोख लेते हैं और हरी मिर्च ज़्यादा समय तक हरी बनी रहेगी, ख़राब नहीं होगी, गलेगी नहीं। तो ये आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं धनिया की। धनिया अगर आप रखना चाहते हैं, जैसे आप किसी भी चीज़ में रखें लेकिन वो या तो सूख जाता है या गल जाता है, सही से नहीं रह पाता है ना, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका धनिया जो कि फ्रिज में है और आप उसे लंबे टाइम तक हरा बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको करना है एक बर्तन में या छोटे से गिलास होता है उसमें आप पानी ले लीजिए और धनिया को उसमें रख दीजिए, यानी कि पत्ते ऊपर की तरफ और उसके जो डंडे हैं वो नीचे की तरफ, जैसे हम फूलों को पॉट में रखते हैं एग्जैक्टली वैसे ही। तो बस ऐसे आप करके जब आप फ्रिज में रखोगे कि धनिया के पत्ते ऊपर की तरफ है और गिलास के अंदर उसमें उसके तने हैं, तो लंबे टाइम तक वो हरा रहेगा, जल्दी से ख़राब नहीं होगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि धनिया को, हरी मिर्च को आप जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर लें, या फिर आप उतना ही लाएं जितना 3-4 दिन में आप ख़त्म कर लें, बिकॉज इसका एक टेस्ट होता है, और समय के साथ साथ अगर इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है तो वो टेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए कोशिश करें कि ताज़ी चीज़ों का स्वाद जो है खाने में वो ज़्यादा अच्छा बनाता है खाने को, तो कोशिश करें कि आप ताज़ी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में आज हम हैक्स के बारे में कई सारी बातें कर रहे हैं। चलिए एक हैक आपको और बताती हूं और वो है बाथरूम से जुड़ा हुआ हैक, बिकॉज बाथरूम में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके हैक्स हमें चाहिए होता है। अब जैसे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कई सारे लोग इसको फेस करते होंगे और वो है साबुन का गल जाना, है ना। अच्छा मुझे बताना, हाँ अगर आप में से किसी को सोप्स का बड़ा शौक है तो मुझे बताना, बिकॉज मुझे बहुत शौक है। नई नई तरह के मार्केट में जितने भी सोप्स होते हैं ना, मुझे कलेक्ट करने का बहुत शौक है। पता नहीं क्यों एक बड़ा ही अलग सा क्रेज है उनको लेकर के, कि जो भी कलरफुल सोप्स होते हैं और अच्छे अच्छे सोप होते हैं जिनकी जिनकी शेप अच्छी है, बहुत सुंदर तरीके से सोप बने, तो बड़ा शौक होता है कई लोगों को उसको कलेक्ट करने का। लेकिन दिक्कत पता क्या आती है कि हम बड़े प्यार से बड़ी इच्छा से हम वो सोप लाते तो हैं, लेकिन जब उसको यूज़ करते हैं तो वो गीले होकर गलने लगते हैं। अब कुछ ऐसा ट्रिक चाहिए होता है कि हम उसका इस्तेमाल करें और उसके बाद में साबुन गले भी नहीं और आराम से वो सूख जाए कहीं पर, मतलब सही रहे। तो मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है बाथरूम या रसोई में रखा साबुन कई बार गीला होकर गलने लगता है, तो इसके लिए किसी छोटे डिब्बे में कुछ रबड़ बैंड्स लगाकर साबुन को ऊपर रखें, यानी कि नीचे रबड़ बैंड्स हैं और ऊपर में साबुन है। इससे साबुन ना तो गलेगा और ना ही ख़राब होगा और इसकी खुशबू भी बनी रहेगी। जैसे सोप्स होते हैं ना, समय के साथ खुशबू कम हो जाती है उसकी, तो वो नहीं होगा। तो ये आसान सा ट्रिक मुझे लगता है कि काम आने वाला है और ये तो हर कोई कर सकता है। तो आप करके मुझे बताना कि कैसा लगा ये ट्रिक आपको। रेडियो वन वरिष्ठ 107.8 FM सुन रहे हैं, मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं प्रांका, प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में आज मैं आपको कई सारे स्मार्ट हैक्स बता रही हूं। अच्छा, एक आपको हैक बताती हूं, और ये हैक जुड़ा है किचन से। किचन में कई सारे काम, तो मुझे लगता है कि अब आप जो स्मार्ट टिप्स हैं, हैक्स हैं, उनका इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ मैं आपको बताती रहती हूँ जो कि बहुत ही काम का होता है। अच्छा, लहसुन जो है ये खाने के टेस्ट को बढ़ाता है ना, लेकिन आप कितने टाइम तक लहसुन को ताज़ा रख पाते हैं? मुझे लगता है ज़्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि उसमें नमी आ जाती है, जिस वजह से वो ख़राब होने लगता है या फंगस लगने लगती है। तो अगर ऐसा ही होता है कि लहसुन आप रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब होने लगता है, फंगस लगने लगती है, तो लहसुन छील कर रख देने से, वो जल्दी ख़राब होने से अगर आप बचाना चाहते हैं, तो आप इसे डिब्बे में रखें, यानी किसी भी आप डिब्बे में रखें, और उसके नीचे थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लोर अगर आप डाल देते हैं, तो बिना फ्रिज में रखे भी कई दिनों तक जो लहसुन है वो ताज़ा रहेगा। और लहसुन को वैसे भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, आप इसको बाहर ही रखिए, लेकिन अगर आप उसमें मैदा डाल देते हैं या कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं, तो इससे काफ़ी टाइम तक लहसुन बहुत सही रहेगा और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ताज़ा बना रहेगा। तो है ना कितना स्मार्ट ट्रिक लहसुन को अच्छा करने का। ऐसे ही कुछ और भी तरीके हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब पुराने रोल्स जो हैं जो घर में अक्सर खाली होते रहते हैं, तो अगर ऐसा होता है जैसे सिल्वर फॉइल का जो रोल है ना, या फिर हम बात करें कि किचन में यूज़ होने वाले जो पेपर्स होते हैं उनके रोल्स होते हैं, अगर आप इनके रोल्स फेंक देते हैं, तो अब आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये पर्दों की सजावट से लेकर घर के कई हिस्सों में सजावटी काम में आ सकता है। जी हाँ, इसे संभाल कर रखें और ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई बार क्या होता है, हम ऐसी चीज़ों को फेंक देते हैं, बट इसके जो रोल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप इसको सजा करके, यानी कि इसमें फूल पत्ती का डिज़ाइन दे करके आप इसमें कुछ कुछ रख सकते हैं, या ये आपके बहुत काम में आएगा, और मैं बताऊंगी कैसे। और चलिए, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इस प्रोग्राम में। आपके पास कोई हैक है जिसे आपने पढ़ा या कहीं से सुना, और अब आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो नंबर है हमारा 8010781078। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और काफी सारे हैक्स मैं आपको बता रही हूं आज के इस प्रोग्राम में। अच्छा, अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि किस तरह से एल्यूमिनियम फॉइल पेपर के जो वो रोल्स हैं वो जब खाली हो जाते हैं तो हम अक्सर फेंक देते हैं। एक तो वो बड़े स्ट्रांग होते हैं और अगर कभी हम ऐसे सोचते भी हैं कि इसका हम कुछ कुछ इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन बहुत टाइम रखने के बाद फिर इसे फेंक देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसका इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं। देखिए, हर कमरे में पर्दे लगे होते हैं ना, लेकिन जब उन्हें खोलते हैं तो उनका ऊपरी हिस्सा अक्सर उलझा या बिखरा हुआ दिखाई देता है। इस परेशानी से बचने के लिए पुराने रैपिंग रोल्स, जैसे जो एल्युमिनियम फॉइल या आपके जो रोल्स होते हैं, जब वो खाली हो जाते हैं तो आप उसमें इनका इस्तेमाल करें। जी हाँ, इन रोल्स को पर्दे के रिंग्स के बीच में अगर आप फंसा देंगे तो एक तो शेप बहुत अच्छा आएगा, बहुत सुंदर लगेंगे, एक वो गोल सी शेप आएगी पर्दों में और बहुत ही अट्रैक्टिव पर्दे लगेंगे। और इससे पर्दे फिक्स रहेंगे और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, उलझेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। अगर कोई आता है आपके घर में, रिश्तेदार, कोई मेहमान, तो वो देखकर आपके पर्दों की तारीफ़ ज़रूर करेगा, क्योंकि जब वो रोल्स आप लगाओगे और उससे जब पर्दों में शेप आएगी ना, वो बहुत सुंदर दिखाई देगी। तो आप ऐसे ही स्मार्ट हैक्स के लिए प्रियंका को कांटेक्ट करें, उसे मैसेज करें, और कोई हैक आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें बताएं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं प्रियंका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ।
1: ज्वाला, समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
2: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
2: तो फिर एक वादा करो।
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। और देखिए भाई, किचन के बारे में तो कई सारी बातें हमने कर ली, मैंने बहुत सारे हैक्स आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा पैसे बचा लेते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं और ऐसे में पैसों की बचत बहुत ज़रूरी है। तो अब जो देखो मेन खर्चे हैं वो तो होने ही हैं, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस बीच हम क्या करें कि उसमें से भी अगर थोड़े पैसे बच जाएं तो मज़ा ही आ जाए ना, क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ जो कि बड़ी कमाल की है, जो पता है हमें भी नहीं पता होता कि हमसे गलती हो रही होती है, लेकिन हम अगर इसे समझ लें तो हम इस गलती से बच सकते हैं। पता है क्या, जब भी हम शॉपिंग करने बाहर जाते हैं तो अक्सर क्या होता है कि जब हम शॉपिंग करते हैं तो सबसे पहले हम, अगर हमारे पास ऑनलाइन का कोई ऐसा रोल नहीं है, राइट, मतलब मान लीजिए कि हमें ऑनलाइन नहीं करना है, हमें कैश में पे करना है, और कैश पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कितना है, उसके बाद हम शॉपिंग करते हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो बस अब आपको कैश वहाँ नहीं देखना है, आपको कैश देखना है अपने घर में। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं तो उसमें से 3 या 4,000 आप घर में निकाल के चले जाइए, क्योंकि आपको पता है कि आपके वॉलेट में 10,000 रुपये हैं, राइट। तो अब आप 10,000 तक की तो एटलीस्ट शॉपिंग करेंगे ना, 10 भी नहीं तो आप 7-8 तक तो जाएंगे ही। अब वो वाली चीज़ें भी हम कभी कभी ले आते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस पसंद आ गया और हमें पता है हमारे वॉलेट में पैसे हैं तो बस हमने ले लिया। अब सोचो अगर हम पहले से ही घर में पैसे रख के आ गए हैं और हमारे पास अब सिर्फ 4 या 5,000 रुपये हैं, तो अब हमें पता है कि भाई 4-5 से ऊपर तो नहीं बढ़ पाएंगे, आप कैश में पेमेंट करनी है ना, तो इसके लिए फिर हम उतना ही खर्च करेंगे। और यही हैक है, यही करना है आपको कि आपको पैसे सिर्फ आधे लेके जाने हैं। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तो उसके लिए, अब देखो अगर 8-10 हज़ार की चीज़ घर में आनी है तो अगर आप छोड़ के जाओगे तो फिर तो वापस आना पड़ेगा आपको पैसे लेने के लिए, है ना। लेकिन अगर आप छोटी मोटी चीज़ें लेने जा रहे हैं लेकिन आपको पता है, आप अपनी आदत से वाकिफ हैं कि मैं थोड़ा खर्चा ज़्यादा कर लेती हूँ, तो उसके लिए तो फिर यही तरीका सबसे बेस्ट है, करके देखिए मज़ा आ जाएगा। और मेरे जैसे, क्योंकि मैं कई बार, ज़्यादा नहीं बट हाँ मैं कई बार खर्चा काफ़ी कर लेती हूँ, तो मेरे जैसे जो लड़कियाँ हैं ना, इनफैक्ट लड़के भी, कोई भी हो सकता है भाई, ठीक है हो जाता है। तो आप इस तरह से बचत कर सकते हैं अपने पैसों की। और भी पता है बहुत सारे तरीके जिससे आप बच सकते हैं, वो कैसे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं, मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

मेरी लाइफ में भाई बहुत सारी बातें हो रही हैं। रेडियो मानवृष्णा 107.8 एफएम सुन रहे हैं, मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आपको, क्योंकि सैटरडे है, काफ़ी सारे हैक्स आपको बता रही हूँ। तो आप एक चीज़ बताती हूँ, आपको शॉपिंग करने जाना है तो किस तरह से वॉलेट का ध्यान आपको पहले ही रख लेना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। वाकई में बहुत स्मार्ट है कि, लेकिन दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम जब शॉपिंग करने

आते हैं। ज़रूरत हमें, अब मान लीजिए हमारे वॉलेट में थे 10,000 रुपये, लेकिन अब हमने उसमें से 5,000 निकाल दिए और 5,000 हमारे पास में रह गए। लेकिन पता चला हम शॉपिंग करने जाते हैं या कुछ, मान लीजिए स्टोर से कुछ ख़रीदने जाते हैं, हमारी ज़रूरत 3 की भी नहीं होती, यानी 3,000 से भी अंदर का सामान आता है, लेकिन हम बहुत सारी फालतू की चीज़ें ले आते हैं। अब उससे कैसे बचना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले चीज़, आप अकेले जाएं। अगर आप किसी दूसरे के साथ में जाएंगे तो शौकिया तौर पर चीज़ें आ ही जाती हैं, और पता है फिर घर आके समझ में आता है, अरे हम तो डाइट पे थे, हमें तो ये मीठा नहीं खाना, हमें ये बाहर का नहीं खाना, हमें ये पैकेट फूड नहीं खाना है, क्यों ले आए हम इसे। फिर मन मार के घर में रखना पड़ता है। और बहुत से लोग पता क्या करते हैं, ले तो आते हैं लेकिन फिर उसे रखे रखे एक्सपायर कर देते हैं और फिर वो वेस्ट हो जाता है, या फिर मन मार के खाना पड़ता है। अब आप सोचो कितनी कैलोरीज आप अपने अंदर ले रहे हैं, राइट? तो आपको बस यही सोचना है, ये घर आकर नहीं सोचना है, ये वहीं सोचना है कि अगर हम ये लेके गए तो हम ये खा नहीं पाएंगे। बस अपने अंदर का जो वो जो अवतार है ना, जो आप देखना चाहते हैं कुछ समय बाद जब आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर लेंगे, बस वो अवतार आपको जगाना है और आपको उसी वक्त ध्यान रखना है। कितनी बचत पता तभी हो जाएगी, क्योंकि जब हम सामान कुछ लेने जाते हैं ना, सामान ज़्यादा नहीं होता लेकिन ऊपर की चीज़ें जो कि फास्ट फूड है या पैकेट वाला जो फूड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से खर्चा भी होता है और काम का भी नहीं होता सामान। इसलिए आप इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे जाते वक्त तो बहुत ही बढ़िया होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि अगर जाएं तो आप अकेले ही जाएं, क्योंकि अकेले आप बहुत अच्छे से शॉपिंग कर पाएंगे, राइट? और ख़ास तौर पे अगर आपके साथ कोई ऐसा हुआ जिसको खाने पीने का बड़ा शौक है, तो बस फिर आप, फिर ये हैक आपके लिए नहीं है। इसलिए आप अगर इसको फॉलो करना चाहते हैं तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के फॉलो करें, डेफिनेटली ये सब पॉसिबल हो पाएगा जो आप सोच रहे हैं।

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और ये मेरी लाइफ में भाई कई सारे हैक्स मैंने आपको बताए और अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो कि बहुत बहुत काम की है, मतलब आप इसके लिए ना मुझे थैंक यू बोलोगे। और वो पता ही क्या है, वो है समय की बचत कैसे करें, है ना। आई नो आप ये जानना चाहते हैं बिकॉज ये आपका नहीं हर किसी का सवाल है कि समय की बचत कैसे करें। अब देखिए, समय की बचत के लिए ना आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ से कौन सा समय निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है, बिकॉज हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें अगर 10 मिनट लगने हैं तो हम उसमें 15-20 मिनट लगा देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको देर से करते हैं, नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते और एक ही तरीके से काम करते जाते हैं और जहाँ हमें 10 मिनट लगने हैं वहाँ हम 15-20 मिनट लगा देते हैं। तो थोड़ा सा बस गौर कीजिए इन सारी चीज़ों पर, पूरे दिन में काफ़ी कुछ ऐसा निकल जाएगा जिससे आप समय की बचत कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप ऑफिस जाते हैं और बहुत बिजी रहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, और ख़ास तौर पे अपने लिए अगर आप वक्त निकालना चाहते हैं तो रात में ही आधे से ज़्यादा तैयारी करके आप सोएं। जैसे कि आप अपने जो कल पहनने के लिए कपड़े हैं वो आप निकाल करके इस्त्री कर लीजिए अच्छे से साफ, जो भी आपको करना है, जिसे आपको अपने हील्स क्लीन करने हैं या शूज़ क्लीन करने हैं वो भी आप रात में करके रखें, कपड़ों पर इस्त्री करके रखें। और भी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसे आप सुबह कंप्लीट करने वाले हैं वो आप रात में ही कर दीजिए। बच्चे हैं तो बच्चों की यूनिफॉर्म भी आप रात में ही प्रेस वगैरह कर दें अच्छे से, उसको इस्त्री करके रखें। तो आधे से ज़्यादा काम अगर आप रात में ही निपटा लेते हैं तो यकीन मानिए सुबह आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा और वो टाइम आप खुद को दे सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वाली चीज़ अगर सब कर लें तो एक सही मैनेजमेंट जो होता है टाइम का, काम का, वो बेहतर तरीके से हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मुझे बताना है कि जो हैक्स मैं आपको बताती हूँ आपको कैसा लगता है, और उसमें से कोई भी ऐसा हैक जो आपको पसंद है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर हमारा है 8010781078।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। ये गाना आपने सुना और अब मैं सुनाने वाली हूँ आपको अगला गाना। मैं हूँ प्रियंका और मेरे चलने का वक्त हो गया है, तो आज का प्रोग्राम यहीं तक। भाई आज के प्रोग्राम में काफ़ी सारे हैक्स पर मैंने आपसे बात की, बहुत कुछ आपको बताया और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। लेकिन पता है एक उम्मीद मैं ये भी करती हूँ कि आप मुझसे बातें शेयर करो। अब जैसे आज के प्रोग्राम में मैंने हैक्स पर बात की, तो आई होप आपके पास भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कोई हैक या कोई किस्सा कहानी, तो आप बिल्कुल कीजिए। मैं नंबर आपको बता देती हूँ, 8010781078। ये हमारा नंबर है जिस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर दीजिए या टेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मेरे चलने का वक्त हो गया है। और हाँ, चलते चलते एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमेशा ना लाइफ में खुश रहें, हमेशा जिंदगी में छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है उस पर तवज्जो दें, क्योंकि ज़िंदगी यूं ही आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ने के साथ साथ अगर इनको खुशियों से जिया जाए तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। तो बस इसी बात के साथ, इसी खूबसूरत लाइन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया
1: सच,
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रे।

हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम लेके आई हूँ मैं कैफे क्लासिक्स। और आपको पता है कि कैफे क्लासिक्स में आपको गाने तो सुनाते ही हैं, साथ ही आपका एंटरटेनमेंट के साथ ही हम आपको कुछ कुछ जानकारी भी देते हैं। और दोस्तों आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो शख्सियत है एक उर्दू शायर, प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और एक प्रगतिशील आंदोलन के एक हिस्सेदार भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उर्दू की शायरी और उर्दू को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करी। दोस्तों हम सभी ने उनका नाम सुना है और उनके लिखे हुए गीत हम सब ने सुने हैं। बात करिए दोस्तों मैं आज आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जिनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1919 को और 24 मई 2000 में वो हमारे बीच से चले गए। तो एक बहुत ही खास शख्सियत और बेहतरीन शायरों में उनका नाम गिना जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा कैफे क्लासिक्स का ये सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम ले रही हूँ। पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज इस शो में मैं आपसे बात कर रही हूँ एक प्रसिद्ध उर्दू शायर मजरू सुल्तानपुरी की। दोस्तों, हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और ये उर्दू के बहुत बड़े शायर रहे हैं। उर्दू साहित्य जगत में भी इन्होंने अपना बहुत अच्छा खासा नाम कमाया और बॉलीवुड में एक गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए देश, समाज और साहित्य को एक नई दिशा देने का काम किया। दोस्तों, देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में सेमिनारों में इन्होंने हमेशा हिस्सा लिया और उर्दू को एक नया मुकाम दिया। तो देखिए दोस्तों, कितनी एक ऊंची शख्सियत। आइए चलते हैं इनकी ज़िंदगी के कुछ और हिस्सों पर। इनकी जन्म स्थली थी सुल्तानपुर और इसलिए इन अपने नाम के आगे सुल्तानपुरी लगाते हैं। दोस्तों, मजरू सुल्तानपुरी ने 50 से ज़्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। आज़ादी मिलने से 2 साल पहले वे एक मुशायरे में हिस्सा लेने मुंबई आए थे तथा उस समय के मशहूर फिल्म निर्माता कारदार ने उन्हें अपनी नई फिल्म शहनशाह के लिए गीत लिखने को कहा। उनका चुनाव एक प्रतियोगिता द्वारा कराया गया था और इस फिल्म के गायक थे कुंदन लाल सहगल और गीत जो था वो बहुत ही फेमस था, गम दिए मुश्किल और जब दिल ही टूट गया। हम सभी जानते हैं कि गाना आज तक फेमस है। तो ये सभी गाने जो हैं ये उस वक्त जो है मजरू सुल्तानपुरी जी के लिखे में, जिसको गाया कुंदन लाल सहगल जी ने, और गाने आज तक हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम, सुनेंगे हम इनके द्वारा लिखे हुए गीत और चर्चा करेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में। ले रही हूँ यहाँ पर छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगी। आप भी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील

में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज का हमारा ये शो समर्पित है मशहूर उर्दू शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी को। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात खास बता दूं कि मजरू सुल्तानपुरी ये इनका ओरिजिनल नाम नहीं था। जी हाँ, इनका नाम था असरार उल हसन खान। तो मजरू इन्होंने अपना नाम रखा और सुल्तानपुरी क्योंकि ये सुल्तानपुर के जन्मे थे इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे अपना प्रदेश का नाम लगाया और नाम बन गया मजरू सुल्तानपुरी। दोस्तों, हिंदी भारतीय जगत के ये उर्दू कवि और हिंदी भाषा फिल्म उद्योग के ये गीतकार रहे। 1950 और 60 के दशक में इन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रमुख संगीत शक्तियों में से इनका नाम आता है और बहुत सारे गाने इन्होंने जो हैं लिखे, जिसमें जो दोस्ती फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा फेमस हुए, जिसमें गाना आया चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, बहुत ही खूबसूरत गाना है। इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार का भी पुरस्कार मिला। 1980 और 1990 के दशक में इन्होंने अधिकांश काम आनंद मिलन के साथ किया और उल्लेखनीय जिसमें सहयोग है कयामत से कयामत तक और लाल दुपट्टा मलमल का। जी हाँ, मजरू सुल्तानपुरी ही थे कयामत से कयामत तक के गानों के पीछे। और जतिन ललित के लिए जो जीता वही सिकंदर के गाने और पहली फिल्म यारा दिलदारा, इन मूवीज़ के गाने भी मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखे। तो बहुत ही इनका सुंदर लिखाई इन द सेंस जो ये लिखते थे बहुत ही सुंदर गीत थे। हम सभी जानते हैं कि जो जीता वही सिकंदर के जो गाने हैं वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में एक मोटिवेशन पैदा करते हैं। हालाँकि मूवी का प्लॉट खुद भी बहुत अच्छा था, बहुत ही मोटिवेटिंग था, लेकिन एक मूवी में जान डालने का जो काम होता है ना वो गाने करते हैं। और गानों के अगर लिरिक्स अच्छे हों फिर तो सोने पे सुहागा। और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मजरू सुल्तानपुरी जी को। तो दोस्तों, बात हो गई बहुत सारी इनकी बॉलीवुड के काम की, आइए अब चलेंगे इनके थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन में, इनके चाइल्डहुड और एजुकेशन की तरफ, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बात। आई एम हेयर ओनली, आप भी ट्यून रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। मोना डार्लिंग, तुम्हें क्या चाहिए?

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स। मैं आपसे बात कर रही हूँ आज एक ऐसे उर्दू शायर की और बॉलीवुड के गीतकार की जिन्होंने हमें बहुत से सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, असरार उल हसन खान उर्फ मजरू सुल्तानपुरी। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म सुल्तानपुर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता 1900

1919 और 1920 के टाइम पर पुलिस विभाग में तैनात थे। इन्होंने मजरू सुल्तानपुरी जी को कोई खास अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी है और इनकी शुरुआती शिक्षा मदरसे में हुई। उसके बाद इन्होंने 7 साल का अरबी और फारसी लैंग्वेज का इन्होंने कोर्स भी करा और इनके पिताजी का जो ध्यान था ना, वो मेन कोर्स पढ़ाई से थोड़ा हटकर था, वो इनको धार्मिक पढ़ाई ज़्यादा कराना चाहते थे। और उसके बाद इन्होंने लखनऊ के तकमील उत तिब कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन में इन्होंने दाखिला ले लिया। वे एक संघर्षशील हाकिम भी थे शुरुआती टाइम में, लेकिन मुशायरे ये अपने साथ साथ उनमें ये जो पार्टिसिपेट करते रहते थे। और एक बार वहाँ पर इनको गज़ल मजबूरी में सुनानी पड़ी। गज़ल जो है श्रोताओं को बहुत ज़्यादा पसंद आई और इन्होंने अपनी नई नवेली प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़ने का फैसला करा और इन्होंने गंभीरता से लिखना शुरू कर दिया। और जल्द ही ये मुशायरों में इन्होंने अपना अग्रणी स्थान जो है टॉप लेवल पे अपना नाम जो है इन्होंने अपना बना लिया। और फिर हर मुशायरे में इनको बुलाया गया। हालांकि हम इनको ज़्यादा शायर के रूप में तो इन्होंने जब काम किया उस काम से हम इनको नहीं पहचानते हैं, हम ज़्यादा इनको इनके फिल्मों में जो एक गीतकार के रूप में है हम उससे इनको ज़्यादा पहचानते हैं। तो दोस्तों बातें हो गई हैं ढेर सारी और मुझे पता है कि हम सब इनके लिखे हुए गाने सुनने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहे हैं और मैं भी। तो आइए लेते हैं यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी और थोड़ा सा इनके राजनीतिक झुकाव और इनकी फिल्मों के बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं बात कर रही थी आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जो कि शुरुआती दौर में एक उर्दू शायर थे। दोस्तों 1945 में मजरू साहब सिद्दीकी इंस्टीट्यूट के एक मुशायरे में भाग लेने के लिए मुंबई आ गए। यहाँ उनकी गजलें और शायरी श्रोताओं को बहुत पसंद आई। प्रभावित श्रोताओं में एक फिल्म निर्माता बैठे हुए थे, उन्होंने इनके जो फिल्म में जो उनका राइटिंग सुनी की है तो बहुत बढ़िया लिखते हैं, तो उन्होंने जिगर मुरादाबादी से संपर्क किया और उन्होंने आगे मजरू सुल्तानपुरी से लिंक बनाया। हालांकि उस वक्त मजरू सुल्तानपुरी जी ने फिल्मों के लिए लिखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर फिल्म में काम करना या फिल्म से जुड़ना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि ये एक कमाई का बहुत अच्छा जरिया होगा और इनको अपने परिवार का पालन पोषण करने में मदद मिलेगी, तो ये सोचकर इन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी और कारदार साहब इनको संगीतकार नौशाद साहब के पास ले गए और एक युवा लेखक के रूप में इनका वहाँ परिचय कराया और उन्होंने उनको एक धुन दी, यानी कि धुन पहले बन चुकी है, लिखा गाना नहीं गया, पहले धुन बनी और धुन इनको दे दी गई कि इस धुन पर आप जो है अपना एक गाना लिखो। और फिर उस धुन पर उन्होंने खूब खूबसूरत गीत लिखा और उसके बाद 1947 में एक नाटक था डोली, उसके लिए इन्होंने गीत लिखे और 1948 में अंजुमन मूवी आई, फिर 1953 में बाज मूवी आई गुरुदत्त साहब की और फिर मजरू सुल्तानपुरी ने अनिल विश्वास, नौशाद, गुलाम मोहम्मद, मदन मोहन, ओपी नैयर, रोशन साहब, सलिल चौधरी, चित्रगुप्त, एन दत्ता, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, सभी टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, ये बात आप और मैं दोनों जानते हैं। इन सब के लिए गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने, तो क्यों ना हम इनके कुछ गाने और सुने और फिर इनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे कुछ और भी। आइए लेते हैं यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे हम थोड़ी सी और मजरू सुल्तानपुरी जी के बारे में। तब तक के लिए एक छोटा म्यूजिकल ब्रेक, आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में कैफे क्लासिक्स, और आज का ये सफ़र है मजरू सुल्तानपुरी के नाम पर, एक बहुत ही अच्छे उर्दू और हिंदी शायर, एक बहुत ही सफल गीतकार जिन्होंने कई दशकों तक हमको बहुत सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए। टॉप डायरेक्टर्स के साथ ये जुड़े और इनके लिखे हुए गानों को एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सिंगर्स ने गाया और फिर इनको मिले ढेर सारे पुरस्कार। जी हाँ, कई बार इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और 1993 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से हमारे देश की सरकार ने इनको सम्मानित किया। ये जो पुरस्कार होते हैं हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है, और ये जो पुरस्कार है ये इनको मिला। और मजरू सुल्तानपुरी जी, थोड़ा सा दुख की बात है कि ये लंग्स की एक बीमारी से पीड़ित थे, निमोनिया इनको हो गया था और अपने आखिरी दौर में ये बीमार है, और 24 मई 2000 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 80 वर्ष की। तो इनको मैं श्रद्धांजलि देती हूँ रेडियो मानव रचना के प्लेटफॉर्म से, सैल्यूट करती हूँ और हाथ जोड़ के उनको नमन करती हूँ, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है कि अगर ये ना होते तो वो गाने कहाँ से आते जो सिंगर्स ने गा दिए। तो जो लिख के अगर बढ़िया गाने बढ़िया शब्द देते फिर तो फिर क्या ही बात है। तो मजरू सुल्तानपुरी जी को शत शत नमन। और मेरे ये शो का था अंतिम चरण, यहाँ से मैं आपसे ले रही हूँ विदा और मिलते हैं आपसे अगले शो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सायोनारा। मैं जा रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

0: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: जी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। दिस शो इज रियली स्पेशल बिकॉज यहां पर हम लोग लीगल फ्रेमवर्क को कवर करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, हमारी लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको यहाँ पर हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम बात करने वाले हैं एआई की, लेकिन हम जेनरिक एआई की बात नहीं करेंगे, हम जेमिनी चैट जीपीटी काम कैसे करता है वो नहीं समझेंगे यहाँ पर। लीगली क्या है, कानून क्या बोलता है, कि कानून के पास कुछ है अगर आपकी फोटो कोई उठा करके बिना आपके कंसेंट के ऑल्टर करके अपलोड करता है तो कानून उसको लेकर के क्या बोलेगा, या सच में क्या कोई एआई मॉडल कुछ भी बना सकता है, कोई रेगुलेशन है उसके ऊपर? इस तरह के कुछ सवाल होंगे जो आज के शो में हम लोग डिकोड करने वाले हैं। आई एम डैम श्योर आप लोग जरूर वाकिफ होंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, क्योंकि काफी सारे लोगों ने इस एक प्रॉब्लम को फेस किया है, ब्लैकमेलिंग के माध्यम से, स्कैम्स के माध्यम से, एंड सो ऑन। सो आज हमारे साथ है मिस तन्वी, तन्वी से हम लोग बात करने वाले हैं। तन्वी इज द असिस्टेंट प्रोफेसर एट स्कूल ऑफ लॉ, मानव रचना यूनिवर्सिटी, और तन्वी सेकेंड टाइम हमारे साथ सेशन कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर डूइंग दिस तन्वी।
4: Thank you
3: and welcome to our show. We're going to start with this very basic question. Artificial intelligence har jagah par aa chuka hai, koi science fiction nahi, hamare beech mein aa chuka hai, hamare workplace pe hai, hospitals mein hai, courts mein hai, but kanoon ki definition kya hai AI ki? What is AI?
4: So ideally no law has defined AI, lekin what our understanding of AI is that anything, any task that the computer system is performing which would traditionally require human intelligence, but now it is being done by that computer system, that is what we call as artificial intelligence. So let me give you a very small example. Aap kabhi bhi kuch shopping karne jate hain to aap dekhte hain FAQs, frequently asked questions, they are fixed questions, you can just look at them. But let's say you want to ask a more tailor-made question, that you would require a person replying to your question, right? But now you don't have it. You have chatbots in every website that you go to. Let's say you're shopping on Nykaa, you have the chatbot who can answer your basic question. So that is the smallest example of artificial intelligence. So something ideally a human would have done is now being taken up by computer systems. So that is artificial intelligence.
3: All right. And there are global conversations about regulating the artificial intelligence. I want to know why.
4: So basically, artificial intelligence reach has really magnified over the last couple of years. So now it's not a vague concept that might be coming in the future. It's something that's already here. Now, what happens is that AI is increasingly making decisions that are also having its impact on the people's rights and interests. So for example, let's say someone wants to get a loan. So now they have AI applications that would filter out. They have AI-based applications that would filter out what person should be given the loan, what amount, what interest rate. We also have AI systems in recruitment now. So let's say something like Amazon, they get what, roughly 1 lakh applications a year, and it's not possible for them to sort through everything. So they have their own AI system, which is very interesting.

0: अच्छे तरीके से आपने इसको बताया है. नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ब्राज़ील का आर्टिकल था. देयर वाज अ लेडी ऑफ 32 इयर्स ओल्ड, ठीक है. उनको कुछ प्रॉब्लम थी अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स, उन्होंने एआई के ऊपर अपलोड करी, चैटबॉट के ऊपर, और वहाँ से कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछे कि व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी. डॉक्टर ने बोला था आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ेगा, बट एआई सेड आपके पास 5-6 दिन का टाइम है. सो शी लिसन टू एआई एंड नॉट टू डॉक्टर एंड शी डाइड, क्योंकि उनको लगा कि अर्जेंसी नहीं है, अभी एआई बोल रहा है टाइम है. इट वॉज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन. मैं जानना चाहूंगा अगर इस तरह के केसेस होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को वहां पे अपलोड करते हैं एंड समटाइम्स एआई उसको गलत प्रिडिक्ट करता है, हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट पार्ट? क्या हमारे पास कुछ लीगली ऐसा है या हम कैसे प्रोसीड करेंगे इसको?
1: सो दिस इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल इन द पार्ट वेयर एआई गवर्नेंस रियली एंड्स अप बीइंग स्टक. Firstly, let's start with your news article. So in that case, it was the lady's decision alone to not go to the hospital. So in that case, it is still possible to attribute the particular harm that she has suffered or like she has passed away to her own consent. So if, for example, if a doctor is asking you to do something and if you don't end up doing it and it ends up costing you your life, you can't really hold the doctor accountable. Similarly, chatbots cannot be held accountable for that. But a situation where AI liability would come into question is, so there was this case recently, like a few years back in the US. So Tesla has autonomous driving vehicles. It works on artificial intelligence, right? So what happened was, this car was going and the car system read it as the horizon, like the horizon is there, but it was actually a white truck that was going. But the system, the artificial intelligence, because they are autonomous self-driving vehicles, it thought it's the horizon and it's just the sky that's appearing, and it crashed into that white truck. And now, because of which, a lady died. So then what? Let's say artificial intelligence is also being used in healthcare now. Let's say a robotic surgery is being performed. Robotic is not AI actually. Let's say with the help of AI, a surgery is being performed and something goes wrong. Then who is responsible? So these are, especially in case of autonomous driving vehicles, that is where AI liability really comes into picture. So because the main issue in AI liability is, who will you attribute the harm to? Who will you hold responsible? Will you hold the person who has developed that software responsible? Or will you hold someone who has deployed or who has deployed that software? So for example, OpenAI or ChatGPT, it is invented by XYZ person. That person has written the code. But it is deployed by OpenAI. ChatGPT is deployed by that particular company. So will you hold that company responsible? Or will you hold their local distributors responsible for it? So that's the main problem in AI liability, that it's very hard to pinpoint who will be responsible. So if someone murders someone, तो आपको पता होता है कि एक इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा, दो यू कैन आइडेंटिफाई. बट विद एआई, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व इन इट, इट्स वेरी हार्ड टू पिन पॉइंट हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन दीज केसेस. सो दैट्स द मेन प्रॉब्लम. सो फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुड पोटेंशियली फॉल ईदर ऑन द डेवलपर हु हैज डिजाइन द एआई और ऑन द कंपनी दैट हैज डिप्लॉयड इट और द पर्सन हु मिसयूज्ड इट ऑल्सो. That is also one possibility. Or it could also fall on multiple parties together. It's not important that it has to be only one of these parties. It could fall on multiple parties together.
0: So amazing. All right, दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत यहाँ पर चल रही है. फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा हॉल्ट यहाँ पर, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक की हमें जरूरत है, उसके बाद अपने शो को कंटिन्यू करेंगे. तन्वी हमारे साथ हैं और AI के लीगल फ्रेमवर्क को हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू डीकोड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स एंड किसको आप अकाउंटेबल ठहरा सकते हो. मेरे पास इसका एक और फर्दर केस स्टडी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ. फील गुड, फील लाइव.

0: Welcome back. I'm hoping you are loving the show, you are loving the vibe, you are loving the musical break. And अगर आपको अपना कोई feedback हमारे साथ share करना है मेरे लिए तन्वी के लिए या इस topic के regarding कुछ add on आपको करना है, just do make sure 8010781078 इस number तक अपनी बात आप पहुंचा चुके हो. फिलहाल show को आगे लेकर के चलते हैं और अगले point की तरफ आते हैं. तन्वी, यहाँ पर हमने बात करी अभी ब्राजील का एक केस बताया जहाँ पर आपने बताया कि इट्स हार्ड टू पिन पॉइंट एग्जैक्टली हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट पार्ट. मे बी दैट लेडी जो उसने अपना कंसेंट के साथ काम किया. सेकंड केस यूएस में हुआ, रियल केस है जो वहां भी कोर्ट में चल रहा है. देयर वाज अ गाय, ही वाज अ टीनेजर, ही वाज फीलिंग समथिंग एब्सर्ड. ओके, तो उसने चैट जीपीटी से बात करना शुरू किया कि आई एम फीलिंग दिस वे, आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग अप माई लाइफ. चैट जीपीटी motivated that guy in that way ki, do you want me to write a suicide note for you? And that guy just end up giving up his life. Okay, that is the whole case. Ab jab ye sara mamla wahan par court mein jata hai, uske parents wahan par appeal karte hain, is case mein क्या होगा अगर सिमिलर कोई केस इंडिया में आता है. चलो यूएस की मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक लड़का है जो ऑलरेडी एक ऐसे पीक मोमेंट में आ चुका है जिसके थॉट्स उसको वहां ले जा चुके हैं कि उसको लग रहा है लाइफ यहाँ, दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड. ओके, उस मोमेंट में एक एआई मॉडल के पास ये ऑप्शन भी है कि वो उसको वहां से वापस लेके आ सके. ह्यूमन इमोशंस आर सो कॉम्प्लेक्स, बट दैट एआई मॉडल चोज द अदर वे. व्हाट इज द फ्रेमवर्क फॉर दैट पार्ट?
1: सो आइडियली लेट्स से इफ इट हैपेंड इन रियल लाइफ एंड इफ इंस्टेड ऑफ चैट जीपीटी देयर वाज अ पर्सन, सो अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लगता. अबेटमेंट मींस इनसाइटिंग समवन टू डू समथिंग, सो उस पे अबेटमेंट का केस लगता. बट बिकॉज इट्स चैट जीपीटी, बिकॉज इट्स अ सॉफ्टवेयर, बिकॉज इट्स अ जनरेटिव एआई एंड इट आंसर्स यू ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू हैव बीन टॉकिंग टू इट, राइट? सो इट्स वेरी हार्ड टू एट्रीब्यूट हार्म. अब आप देखिए, अगर हम मान लो कि डेवलपर को रिस्पॉन्सिबल कर लें इसमें एआई के, now then there will be no inventions, everyone will stop because the chances of something like this happening is way too likely. 80% 85% fir aap liable ho jaoge kisi cheez ke liye, koi na koi responsibility will fall upon you. So in generative AI the main issue is now, it if you would talk something like this with chat GPT or any generative AI, you'd find it will give you the national suicide helpline number. So they have fine tuned it. But in initial stages, when this case happened, I've actually cited it in a paper of mine also. So in initial cases, when generative AI had just started coming in, they did not know the filters. Because AI is learning from you. AI is learning from the internet. So it doesn't know that, okay, maybe a child might be using this, so we are not allowed to say this. Or it might not know the boundaries. Right? So initially this was happening. Now they have limited it. Now, if at all you are going to put anything like this on any AI, it will hit you back with the suicide help number or things like this. But in this case, if we talk about liability, it is very hard to assign liability because ultimately it was the child's decision to end his life. We cannot say there might be, it is very hard to legally prove that it was just ChatGPT which put him there. Or which pushed him to the abetment. Cases are very hard to prove that way because you have to, without a reasonable doubt, prove that this was done because of this particular app. So anyway, in those cases there's a victim, but it's a offenderless crime. Essentially there is no offender in this case. You cannot hold ChatGPT accountable. So this is where the exact issue is, that what would we do in such cases. These cases can now be eliminated with the kind of knowledge that we have, ki ye bhi ho sakta hai, aisa bhi ho sakta hai, this needs to be prevented. But earlier when it has already happened, it's very hard legally to say how responsibility or to whom the responsibility can be put on.
0: Kya main OpenAI ko yahan pe challenge nahi kar sakta hu? That is a parent company of ChatGPT.
1: If at all we go end up challenging OpenAI, they can plead that it was not them directly involved. So you are using a chatbot. That chatbot is artificial intelligence. That means they are using their own mind. They are not using the mind of OpenAI. It's not the creator of the code or the deployer company that is writing those messages to you. It's artificial intelligence. It is understanding your thoughts and then replying on its own. And criminal law mein hum bolte mens rea hona chahiye, that means a guilty intention hona chahiye. How will you prove guilty intention for OpenAI?
0: All right, so okay, there is another case. इंडिया केस है ये और रियल केस है. बीते दिनों एक ट्रेंड चला था 90s या 80s का, साड़ी का ट्रेंड चला था कि फीमेल्स जो हैं अपनी फोटोज अपलोड कर रही थी और अपनी फोटोज को वो एक फिल्टर के थ्रू 80s में कन्वर्ट कर रहा था. देयर वाज दिस गर्ल, शी अपलोडेड हर फोटो इन फुल स्लीव्स और साड़ी में उसको उस स्टाइल में कन्वर्ट कराना था 80s वाले में. जब उसका आउटपुट आया तो साड़ी पहना दी, 80s का स्टाइल दे दिया, सब दे दिया, हाथ पर यहां पर एक मोल आया लेकिन ओके. एंड वो मोल एग्जिस्ट करता था, आई गेस जिया था उस लड़की का नाम, ठीक है, उसके हाथ पे वो मोल एग्जिस्ट करता था. इट रेजेस सो मेनी क्वेश्चंस, लाइक द बिग क्वेश्चन इज कि एआई को कैसे पता है उसके हाथ में मोल है. ऑब्वियसली प्रीवियस फोटोज उसके पास स्टोर्ड होंगी, प्रीवियस डेटा होगा, बट राइट नाउ आई एम मेकिंग अ फ्रेश चैट. दैट मीन्स कि मैं नहीं चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरी प्रीवियस हिस्ट्री में जाके वो करो, क्योंकि मैं नया चैटबॉट स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं नई फोटो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, ये मेरा प्रॉम्प्ट है, मेरे को इसको बना के दो. इट हैज़ टू बी दैट फेयर ट्रांजेक्शन, बट देर इज सम सॉर्ट ऑफ शेडी थिंग दैट इज बींग इन्वॉल्व हेयर, क्योंकि प्रीवियस लॉग से उसने उठा करके उसको वैसा बना दिया. इस केस में क्या मैं चैलेंज कर सकता हूँ उस AI कंपनी को?
1: नाउ द बिगेस्ट इशू इज, सो द मोमेंट यू इंस्टॉल ChatGPT इन योर फोन, वी नेवर लुक एट द काइंड ऑफ परमिशंस वी गिव इट. सो वी क्लिक अलाउ ऑल, यस कंसेंट, यस, दे हैव टेकन कंसेंट ऑफ एवरीथिंग. सो नाउ ChatGPT हैज अ वॉइस फीचर, यू कैन टॉक, you can press the microphone, and if you notice, if you have to press the microphone, your phone will not ask allow microphone because you've already given that permission. So everything, why do you think ChatGPT asks you to sign in when you're using it? Because that history is being created. If an app is functioning without any fee, that means they are collecting your data. Your data is a big commodity for every app, not just AI, but for every app. So data privacy is a very big concern when it comes to AI. Coming to the mole, I think I saw Flying Beast's video also where he said, oh, I think I have something on my hand, and the AI was responding. So Flying Beast asked the AI that, do you have access to my camera? And then the AI application sort of backstepped ki no, something like that, I don't remember it properly. So if you would look at the consent, you have already given consent to access your camera and microphone to AI apps. So how can you challenge it in court when you have yourself given consent for that?
0: But right now, at this point, I am not giving you my old photos. Matlab, maine aapko consent diya hai, that is fair, because I want you to help me. हर सिचुएशन में मैं इजी अपने एक्सेसिबिलिटी के लिए मैंने वो कंसेंट आपको दे दिया. बट अगर कंपनी क्योंकि क्लेम करती है कि हम फेयर तरीके से डील करते हैं यहाँ पर, और क्योंकि इंडिया में वो उसको लेकर के एक लॉ भी है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, ओके, या डेफिशिएंसी इन सर्विस यहाँ पर नहीं हो सकता है. एट दिस पॉइंट मुझे लग रहा है कि मेरा ऐसा मानना है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, कि कुछ शेडी है, बिकॉज राइट नाउ द फोटो आई हैव अपलोडेड इज नॉट समथिंग दैट आई एम गेटिंग द आउटपुट ऑफ. वो मोल यहाँ पर नहीं होना चाहिए था आइडियली एज पर दिस फोटो. इफ यू आर गिविंग मी दैट मोल, दैट मीन्स यू आर यूजिंग माई ओल्ड फोटोज, दैट मीन्स एवरीथिंग हैज बीन स्टोर्ड ऑन द क्लाउड स्टोरेज एंड इट इज वेरी स्केरी.
1: नॉट जस्ट दैट, एक्चुअली इट कैन इवन, आई एम नॉट श्योर ऑन दिस, सो आई विल पुट दैट डिस्क्लेमर राइट हियर, बट आई फील इट कैन एक्सेस योर कैमरा ऑल्सो इन रियल टाइम. दैट्स अ बिग कंसर्न विद AI, बट देन इफ एट ऑल वी आर लुकिंग एट डेटा प्राइवेसी, you must have noticed now we also can allow the kind of photos our apps have access to. So let's say you're using Instagram, it asks you, do you want to allow access to all the pictures that you have in your gallery?
0: Unlimited.
1: Now it has come into place. That means previously everything was accessible to them, right? So data privacy is a very big concern, especially when everything is going online. So let's say I have a notes app in my phone, and let's say I write my passwords there just to remember something. And if an app has access to my notes, they can essentially use my bank if, let's say, I've entered my PIN or my net banking passwords. So it's a big concern. But for that, we do have the DPDP Act, which we can probably discuss in some other section. But data privacy is a very big ongoing concern. So not just this, we have AI in education now, which means children are increasingly having more face time with AI, and their data is also being fed into AI. So how do we know children like bright colors? If, let's say, we have different applications, AI applications now, which put a headset on a child's head, And you can see when their attention span is dipping, when their attention span is going up. And then maybe, let's say you're showing them a video and let's say the bright colors come in. So you see, okay, the attention span has gone up. So you can advertise your baby products, anything that's directed towards children, in those colors. So even a very minute information can have so much effect. So AI, in terms of data privacy, is a big concern. That's there. Not just the AI, not just our pictures, but with our children, with everything else it's being deployed in. It's a big concern, yes.
0: In fact, I was again reading an article and it shows ki bahut sari countries, I'm not sure about India, dating apps ne ek naya phenomena nikala hai. So what they're gonna do, the moment you upload your photos, they have this AI mode. So what this AI mode gonna do, आपकी सारी गैलरी का एक्सेस आपसे लेगा, आपकी पूरी गैलरी को स्कैन करके आपकी जो बेस्ट फोटो होगी उसको उठाएगा, उसको आपकी डिस्प्ले पिक्चर वहाँ पर बनाएगा. एंड इट इज़ अगेन वेरी वेरी वेरी स्केरी, क्योंकि आप एक डेटिंग ऐप के चक्कर में पूरी पूरी गैलरी का, अपने सारे मूवमेंट्स का एक्सेस अपने फ़ोन को दे रहे हो. एंड आई ऑलवेज से दिस, योर फोन इज एक्चुअली योर एक्सरे, योर ब्लड रिपोर्ट, योर एवरीथिंग. मतलब आपके एक फ़ोन से आपकी पूरी कुंडली निकाली जा सकती है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितना स्टैंड करते हो, क्या सोचते हो, क्या खाते हो, कहाँ जाते हो, एवरी सिंगल थिंग. सो सेव योर डाटा. राइट नाउ लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे. एंड वी गॉट टॉक अबाउट हाउ डिफरेंट कंट्रीज अप्रोचिंग AI रेगुलेशंस. क्या ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है या बाकी जगहों पर भी सिमिलर कुछ ऐसा हो रहा है? विल टॉक अबाउट इट. बट फिलहाल जस्ट स्टे ट्यून्ड.

0: नाई न्यूज़ की अभी तक इंडिया में हमारे पास कोई रेगुलेशन नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि आने वाला नहीं है. ऑब्वियसली वी गोना ब्रिंग सो मेनी रेगुलेशंस, क्योंकि जिस तरीके से एआई का यूज हो रहा है, उससे भी ज्यादा मिस यूज जिस तरीके से हो रहा है, लाइक द डीप फेक वॉइसेस, वीडियोज, आपकी फोटोज को अल्टर कर दिया जा रहा है, एंड सो मेनी स्कैम्स आर गोइंग ऑन. सो बेस्ड ऑन दैट आई एम श्योर डेफिनेटली जल्दी कोई रेगुलेशन यहाँ पर आएगा. बट इन द मीन टाइम जस्ट टॉक टू पीपल, रियल पीपल. ओके, बी कन्फ्यूज, बी लॉस्ट, बट एटलीस्ट टॉक टू पीपल, प्रोसेस योर इमोशंस, थिंक अबाउट योर लाइफ फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम अ मशीन्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दैट इज गोना रिस्ट्रिक्ट योर इमेजिनेशन. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, दैट वी कैन इमेजिन एनीथिंग एंड वी कैन क्रिएट इट. ऑलराइट, ऑन दिस नोट चलते हैं अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं. थैंक यू सो मच तन्वी फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू.
1: थैंक यू सो मच.
0: ऑलराइट दोस्तों, नाउ दिस इज आरजे सागर साइनिंग.
2: ज्वाला, समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पे बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें. और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे.
3: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके.
2: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं.
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते. वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी.
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता.
3: तो फिर एक वादा करो.
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी.
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे. इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए.
2: ज्वाला, ये मेरा वादा है.

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
2: देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला।
3: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम। सशक्त महिलाओं से आपकी मुलाकात करवाती हूँ और उनकी जिंदगी के कुछ पन्ने पलटने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उनकी जिंदगी से हम बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी सीख डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ये जो महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, आप सभी को पता है कि ऐसा कार्यक्रम है, ना सिर्फ ये मेरे दिल के करीब है लेकिन साथ के साथ ये हमारे रेडियो मानव रचना 107.8 FM का सबसे लंबा चलता हुआ कार्यक्रम है। सो एक लंबे समय से मैं आपके लिए कार्यक्रम लेकर आती हूँ और इस कार्यक्रम में मैं आपको अलग अलग महिलाओं से मिलवाने की कोशिश करती हूँ। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो जिंदगी में ढेर सारी शिक्षा दे चुकी हैं, यानी एक एजुकेशनिस्ट हैं। आज हम आशा गाबा जी के साथ हैं और ये एक बहुत ही जानी मानी एजुकेशनिस्ट हैं, लेक्चरर रही हैं और आजकल

0: वो है महिलाओं को शिक्षा, अधिकार, अवसर, संसाधन और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करना
1: जी,
0: ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में पुरुषों के समान सम्मान और अवसर प्राप्त कर सकें और विशेषकर स्वयं को एक मानव के रूप में पहचान सकें, क्योंकि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। जिस दिन वे स्वयं को मानव होने के रूप में अपने अस्तित्व को एक मानव के रूप में पहचान जाएंगी, वे जागरूक हो पाएंगी और सशक्तिकरण के लिए वो स्वयं को परिवार में ही नहीं बल्कि समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र स्तर पर योगदान कर पाएंगी, मेरा ऐसा मानना है।
1: भाई देखिए, मैं ना हमेशा से कहती आई हूँ कि महिलाओं को अगर सशक्तिकरण चाहिए तो वो पहला कदम आपके अपने परिवार से होता है, वो पहला कदम आप ही के अपने आप का होना चाहिए। सशक्तिकरण कोई और दे नहीं सकता है आपको, सशक्तिकरण आपको खुद महसूस करना है। और आई थिंक ये बिल्कुल सही है कि वो महिला सशक्त है जो ना सिर्फ अपने डिसीजंस ले पा रही है, अपने जिंदगी को उस तरीके से जी पा रही है। लेकिन इसमें गुड बैड अगली कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपने जो निर्णय लिया वो सही है या नहीं, लेकिन सबसे पहले क्या आपने कोई निर्णय लिया, क्या आपने अपनी जिंदगी का कोई भी डिसीजन खुद लिया, और अगर लिया तो क्या आप उस पर अडिग रह सकी, क्या आपने वो डिसीजन एड्रेस किया, या आप सिर्फ दूसरों की दी हुई एक बनाई हुई लकीर पर चलती आ रही हैं, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो मैं उस महिला को सशक्त मानती हूँ जो अपनी ज़िंदगी की लकीरें खुद खींचती हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइट।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये बहुत ही प्यारा सा एपिसोड। और इस कार्यक्रम में मैं आपको सशक्त महिलाओं से मिलाती हूँ। आज तो एक एजुकेशनिस्ट से मिलवा रही हूँ भाई, ज्ञान का भंडार होती है और मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला अगर एजुकेशनिस्ट है ना, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। ना सिर्फ वो अपने परिवार को शिक्षित करती हैं, लेकिन समाज को शिक्षित करने में एक बड़ा अहम हिस्सा निभाती हैं। आशा जी आज हमारे साथ हैं, जो कि एक सीनियर एजुकेशनिस्ट रही हैं, लेक्चरर ये रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आजकल मध्यस्थ दर्शन से ये स्पिरिचुअलिटी को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश कर रही हैं और साथ के साथ उसे लोगों को महसूस कराने की भी कोशिश कर रही हैं। अब बात करते हैं इनके सशक्तिकरण की जर्नी से। आशा जी, आप जब एक टीचर लेक्चरर थी, आप बहुत सारे ऐसे बच्चियों से मिली होंगी, बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिली होंगी जिनकी जिंदगी में बहुत सारी उलझने होंगी, बहुत सारी बार वो आपके पास भी आए होंगे। मैं अगर आप ही की अपनी जर्नी के बारे में पूछूं, क्या कभी जिंदगी में कोई एक ऐसा कदम उठाया, कोई ऐसा डिसीशन लिया जिसको लेने के बाद आपको ये महसूस हुआ कि आप सशक्त हैं और आपने अपने लिए कोई अपने जीवन का डिसीशन लिया है?
1: मैंने 36 इयर्स की जॉब की है एज ए प्राइमरी टीचर। मैंने जॉब को स्टार्ट किया और जॉब के साथ साथ मैंने मास्टर्स किया हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री में और बीएड एमएड भी किया। तो क्वालिफिकेशन से मुझे प्रमोशन तो मिला, लेकिन मैं उस स्कूल में जब बच्चियां छोटे छोटे बच्चे आते थे उनके साथ भी काम किया, फिर मिडिल क्लास के 10th क्लास तक के बच्चों के लिए काम किया, फिर एज ए लेक्चरर मैंने 11th और 12th क्लास के बच्चों के साथ भी काम किया। तो जहाँ तक आपने समस्या की बात कही है, तो बच्चियों की बहुत समस्याएं होती हैं। आप ये देखिए कि छोटे बच्चे जब उनको पीरियड्स होते हैं तब उनकी जो हालत होती है बहुत ख़राब होती है, वो घर में कई बार बता भी नहीं पाती
0: जी।
1: और स्कूल में उनको दिक्कत होती है, फिर छोटी छोटी बच्चियों का बाल विवाह कर देना, 8th 9th में पढ़ती हैं और उनके पेरेंट्स उन पर दबाव बनाते हैं कि तुम मैरिज कर लो, आगे उन्हें पढ़ने नहीं देते हैं। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिन जो बच्चे जो है मेरे फ्री पीरियड में आकर मुझसे डिस्कस करते थे
0: जी।
1: तो मैं उन बच्चों को जिनकी भी समस्याएं होती थी तो मैं उनको अलग से एड्रेस करती थी। जैसा कि एक बच्ची ने एक बार कहा मुझे कि वो 8th क्लास में पढ़ती थी कि मैडम मेरा पढ़ने का बड़ा मन है पर मेरे फादर मेरी मैरिज करवाना चाहते हैं
0: जी।
1: तो इस तरह की समस्याओं को जब मैंने देखा तो मैंने उनके पेरेंट्स को बुलाया, समझाया कि उनकी बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी है, गेम्स में बहुत अच्छी है, स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करती है, तो आप इस बच्ची को मेरे कहने पर मेरे रिक्वेस्ट करने पर आप उसे पढ़ने दे। तो ये बात उनको पेरेंट्स को समझ आई और मैंने कहा देखना भविष्य में ये एक बहुत अच्छी शिक्षिका बनेगी। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि वो 15-20 साल पहले कही गई मेरी बात मुझे आज भी याद आती है और मैं गदगद हो जाती हूँ कि उन पेरेंट्स ने मेरी बात मानी और वो आज एक टीचर के रूप में मेरे सामने और आज तक भी जुड़ी हुई है।
0: वाओ
1: जी।
0: So, देखिए, एज एन एजुकेशनिस्ट अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास एक मौका होता है कि आप स्टूडेंट्स को उनके जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और मजेदार चीज ये है कि आप उनके जीवन को एक बड़ी अच्छी राह दे सकते हैं अपनी छोटी सी सलाह से, एक छोटी सी सीख से। और ये इख्तियार अदरवाइज अगर देखा जाए तो सिर्फ परिवार के सदस्यों के पास होता है और आप आज के जमाने में किसी से सलाह लेते नहीं है। So, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद एजुकेशनिस्ट का एक बहुत अहम हिस्सा होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में। और सशक्तिकरण की मैं अगर बात करूं बच्चियों की, तो आई थिंक इससे अच्छा खूबसूरत सा कोई एग्जांपल हो नहीं सकता है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुना रही आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना और आप कहीं मत जाना। फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। हम बात कर रहे हैं आशा गाबा जी से। आशा जी, हमने ब्रेक पर जाने से पहले सशक्तिकरण की बात की थी, सो आप अगर अपनी पर्सनल जर्नी से कुछ बताना चाहती हैं तो क्या कहना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल, मेरी लाइफ में जब जब मैंने कोशिश किया तो मैंने कुछ नए मुकाम हासिल किए। जैसे मैंने हैप्पीनेस करिकुलम में अपना कंट्रीब्यूशन किया, मैं हैप्पीनेस टीम की कोर मेंबर भी थी, एज ए मेंटरशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ दिल्ली गवर्नमेंट में, तो वहाँ पर मेरी मुझे समझ बढ़ाने का मौका मिला, क्योंकि हैप्पीनेस करिकुलम मध्यस्थ दर्शन पर आधारित है। वहाँ पर हमने कुछ एक्टिविटीज़ बनाई, स्टोरीज बनाई, माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई, और इसके साथ साथ टीचर्स को भी कराई, प्रिंसिपल्स के साथ भी हमारा जो है एज ए फैसिलिटेटर मैंने काम किया है, प्रिंसिपल्स, एजुकेशन ऑफिसर्स, सबके साथ। तो मेरा एक लंबी जर्नी जो रही है सिर्फ बच्चों तक ही नहीं रही है, टीचर्स के साथ एज ए फैसिलिटेटर, प्रिंसिपल और एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ भी हमें डिस्कशन करने का मौका मिला है। तो उसमें हमने इस जर्नी में जो मैंने गहराई से मुझे समझने का मौका मिला, तो मैं जो है मैं ये सोचती हूँ कि वो जो शिक्षा है वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो हमें जो है थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की भी ज़रूरत है, और एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव करने हैं, चेतना विकास मूल्य शिक्षा को अगर लाया जाए तो बच्चे और जो बड़े नागरिक हैं वो एक देश के लिए बहुत बड़ा यूथ जो है वो बहुत कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें उनको जगाने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है, तो मेरा इसमें विश्वास है। और एज ए डिस्ट्रिक्ट हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर जब मैंने काम किया तो बहुत ही अच्छे अनुभव हुए मुझे टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, और वो मेरे साथ, मुझे खुशी इस बात की है कि अब मैंने वीआरएस ले लिया है, और उसके बाद भी मेरे साथ बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल, ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं और इस मेरी यात्रा में मेरे मतलब साथ हैं, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है।
0: आशा जी, अब एक अहम सवाल। आपने खुशियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लोगों के ज़िंदगी में हैप्पीनेस फैलाने की आपने कोशिश की है, लेकिन मैं हमेशा से मानती हूँ कि महिलाओं का जो सरनेम है वो है चैलेंज। सो बच्ची से लेकर और एक बुजुर्ग महिला तक हमें बड़े सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। रोज जिंदगी पुरुषों के लिए कम चैलेंजिंग होती है, महिलाओं के लिए ज्यादा होती है, लेकिन हर एरा में ना हमारे चैलेंजेस बदलते रहते हैं। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि किस प्रकार के चैलेंजेस आजकल की महिलाओं को फेस करने पड़ते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी एक्चुअली क्या है कि जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए जो चैलेंजेस हैं हमारे ज़िंदगी में हमें जो है अवसर लेके आते हैं, तो वो अवसर के रूप में अगर चुनौतियों को स्वीकार किया जाए तो महिलाएं उनसे अपनी यात्रा को बहुत आगे बढ़ा सकती हैं, बौद्धिकता के लेवल पे आगे बढ़ सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो काम काजी महिलाएं हैं, जैसे उनका सुरक्षा और उत्पीड़न की समस्या रहती है ऑफिसेज में और सार्वजनिक स्थानों पर, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, इसके अलावा उन्हें सामाजिक रूढ़ियों का, तो जो समाज परिवार उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, तो उनको लेके महिलाएं कई बार सही डिसीजन नहीं ले पाती हैं, वो उनके अपेक्षाओं के नीचे दबकर रह जाती हैं, और वास्तव में जो एक स्वतंत्रता जो है उनकी प्रभावित होती है। तो एक नेतृत्व और अवसर उनको अगर मिल जाए तो उच्च पद पर भी वो जा सकती हैं, जो कि कुछ महिलाएं जा भी रही हैं। तो घर का एनवायरनमेंट बहुत जो है मैटर करता है कि वो किस तरह से आगे बढ़ पाए। तो ऐसा है कि इस तरह की समस्याओं से क्या करते हैं कि गिव अप भी कर देती हैं लेडीज। yes. तो गिव अप करने से क्या होता है, तो प्रॉब्लम और क्रिटिकल हो जाती है। तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है ही, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगी तो जरूर ही वो जो है विजय हासिल करेंगी, मेरा ये मानना है।
0: बिल्कुल भाई, तो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस के साथ साथ आपके पास सॉल्यूशंस भी हैं। सो फोकस करिए कि आपका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो समाज का माइंडसेट, और अगर हम उसे बदल पाएं, क्योंकि हम उसका आधा हिस्सा तो हैं ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ एक और गाना, और आप अपने प्यारे रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहना। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं, आज की हमारी गेस्ट हैं आशा गाबा जी, जो एजुकेशनिस्ट हैं, एक लेक्चरर रही हैं और मध्यस्थ दर्शन के साथ ये लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। अब मैं बात करती हूँ आजकल के जमाने की फास्ट पेस्ड लाइफ के रिश्तों की। आप भी मानती हैं आशा जी कि जिंदगी भागदौड़ भरी है और ऐसे में कुछ पीछे छूट रहा है, और सबसे ज्यादा जो पीछे छूट रहा है वो है हमारे रिश्ते। इन्हें कैसे बैलेंस किया जा सकता है?
1: अगर आप कहें तो मैं एक लाइन में यही कहूंगी कि सुविधा संग्रह की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उस सुविधा संग्रह को अगर थोड़ा सा माइन्यूटली देखा जाए तो नीड और डिजायर्स, इनके डिफरेंस को समझ लेना बहुत जरूरी है। बेसिकली देखा जाए तो नीड्स हमारी 6 ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है, और डिजायर्स जो है वो अनलिमिटेड हैं। तो हम अनलिमिटेड डिजायर्स की तरफ जब भागते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें वक्त नहीं मिलता है। बेसिकली हम मुड़ के देख ही नहीं पाते हैं कि हमारे जिंदगी में हो क्या रहा है, क्योंकि हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, फिर होता तो कुछ और ही है।
0: वाकई
1: है ना। तो ये है कि तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स भी उठा सकते हैं, जैसा कि पर्पस क्या है। हमें पर्पसफुल लाइफ अगर हम जीते हैं तो निश्चित रूप से हमारी गाड़ी कहीं नहीं डगमगाती है, तो ये देखने की जरूरत है। और संवाद की स्थिति बेहतर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे डायलॉग जो है वो कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ फोन, जो गैजेट्स हैं इसमें हम इतने डूबे भीगे घिरे हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं। हमारा टाइम रील देखने में ही कितना निकल जाता है। तो ये जो आजकल के मुद्दे हैं उसमें हमें जांचने की जरूरत है कि 24 घंटे बहुत होते हैं, उसमें हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और उस वक्त हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, हमारा फोकस कहाँ जा रहा है, क्या हमने जो सुबह प्लान बनाया वो सक्सेसफुल करने के लिए हम वही कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो ये बहुत बारीकी वाले मुद्दे हैं और इन पर जो है देखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि परिवार में मतभेद तो होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। तो उन मतभेदों को आपसी डिस्कशन से सुलझाया जा सकता है, उसकी तरफ भी बात की जा सकती है। और दूसरा ये है कि सेल्फ केयर, तो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर ही रिश्ते निभाए जा सकते हैं। तो हमारा अपनी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के प्रति जो जो हमारे ड्यूटीज हैं, हमारे कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, तो हमें ये देखने की जरूरत है क्या हम वो पूरा कर पा रहे हैं। तो हमारे व्यक्तित्व का विकास तभी होता है जहां तक हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है, खुद को जांचने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच समझ के कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
0: सो दोस्तों, ये जानने की बहुत जरूरत है कि सबसे पहले तो आजकल के जमाने में हम रिश्तों को बैलेंस कर कैसे रहे हैं। मानते तो हैं कि बैलेंस बिगड़ रहा है, पर उस बैलेंस को क्या हम बनाने की कोशिश करें। बहुत अच्छी टिप्स दी आशा जी ने, एंड डेफिनेटली अगर इन्हें फॉलो किया जाए और इन्हें असेस किया जाए तो इन्हें ठीक किया जा सकता है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, feel like

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। आज हम आशा जी से ढेर सारी बातें कर रहे हैं। आशा गाबा जी आज की हमारी गेस्ट हैं, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक लेक्चरर हैं। और अब आशा जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे जेंडर इक्वालिटी के बारे में। देखिए भाई, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही हूँ, सो जेंडर इक्वालिटी की बात तो करनी बहुत जरूरी है। हम ये बात करते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया भी जाता है कि दोनों जेंडर बिल्कुल समान होते हैं और उन्हें समानता मिलनी चाहिए, लेकिन समाज में, घर में और सोच में अगर हम देखें तो तीनों जगह ये इक्वालिटी कहीं नहीं मिल रही है। सो ये इक्वालिटी पाई कैसे जा सकती है?
1: खुद पर काम करके।
0: जी,
1: तो मैं तो यही बात कहूंगी कि खुद को जांचने की जरूरत है। एज ए ह्यूमन, एज ए मानव, हमें ये समझने की जरूरत है, खुद की खोज में अगर हम जाएंगे
0: जी,
1: तो हम खुद को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और दूसरों को समझने में भी हम समर्थ हो पाएंगे
0: जी।
1: तो जहां तक इन इक्वलिटी की बात है, वो समाज में है। हमारे भीतर जो एक वातावरण बना हुआ है उसको तो हम समझ ही नहीं पाते। हम बाहरी घटनाओं, बाहरी वातावरण को ठीक करने में लग जाते हैं। चुनौतियां हैं, नो डाउट, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन मैं यहां पर खुद को जांचने की जो बात कह रही हूँ वो आमतौर पर हम नहीं कर पाते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम उस उत्पीड़न से, उन घटनाओं से खुद पीड़ित हो रहे हैं, या फिर हम उस उत्पीड़न समस्या से दूर होकर अपने जो पर्पसफुल लाइफ है उस पर फोकस कर रहे हैं। घटनाएं तो आती जाती रहेंगी, घटनाओं के बारे में हम ये नहीं कह सकते क्योंकि वो बाहर हैं। जिंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ऐसे हमें सभी समझदार तो मिलेंगे नहीं।
0: वाकई,
1: तो जहां पर हमें अगर ऐसा ऐसे व्यक्तित्व से टकराव होता है जहां पर कि मन खराब हो, है ना, लैंगिक असमानता तो है ही, जेंडर इक्वालिटी तो है ही। अब लेबर का ही काम कर रहे हैं अगर मेल और फीमेल, तो सैलरी भी डिफरेंट
0: जी,
1: है ना। तो यहाँ पर देखने की जरूरत है कि हम समाज सुधार के लिए बाद में देखें, पहले खुद को देखें, अपने परिवार को देखें, क्योंकि परिवार ही समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार से ही हम मन से जब खुश होते हैं, अपने परिवार में हम खुद खुश रहते हैं, खुश होके हम काम करते हैं, तो वो खुशी हमारे परिवार तक जाती है और कई घटनाएं जिनको हम एड्रेस ना भी करना चाहें वो अपने आप सुलझ जाती हैं। तो बजाय इसके कि हम समस्या पर फोकस करें, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके हम अगर उन घटनाओं को ठीक करने के लिए कोशिश ना करें पहले, तो सबसे पहले अपने घर परिवार में खुद खुश रहें, परिवार में सब खुशियां बटोरें और खुशियां दें, क्योंकि जितनी हम खुशियां बांटेंगे उतने ही हमारे परिवार वाले खुश रहेंगे।
0: वाकई,
1: है ना।
0: सो भाई, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। एंड आई थिंक आई टोटली अग्री कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम पूरे समाज को बदलें, अगर शुरुआत हम अपने घरों से करते हैं तो डेफिनेटली ये चेंज हम महसूस कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आशा गाबा जी आज हमारे साथ हैं। आशा जी एक बहुत ही जानी मानी एजुकेशनिस्ट रही हैं, बहुत सारे जीवन को इन्होंने बदलने की कोशिश की है और अब जीवन के इस पड़ाव पर ये मध्यस्थ दर्शन का ना सिर्फ अध्ययन कर रही हैं लेकिन इस पर बेस्ड लोगों की जिंदगियों को बदलने की भी कोशिश कर रही हैं। आशा जी, आज के जमाने में जहां पर हमारे पास इतनी सारी एडवाइस है, ऐसे जीवन में आप मुझे बताइए, आप मध्यस्थ दर्शन के बेसिस पर सभी को क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगी?
1: जी, तो सबसे पहला मैं यही कहना चाहूंगी, स्वयं को एक मानव के रूप में पहचाने
0: जी।
1: मन स्वस्थता पर ध्यान दें, शारीरिक स्वस्थता पर ध्यान दें। 99.9% हमारी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो है उसी से हमारी बॉडी और दूसरी चीजें गवर्न होती हैं।
0: yes.
1: तो मेरा ये मानना है कि भ्रम और अंधविश्वास में ना जिएं, फैक्ट्स और फिक्शन में अंतर को समझें, बौद्धिक विकास पर ध्यान दें। 24/7 हम कैसे खुश रह सकते हैं इस पर ध्यान दें। भूतकाल की पीड़ा, भविष्य की चिंता अगर होगी तो वर्तमान से विरोध बना ही रहेगा, इसलिए खुद में उस विरोध को पनपने ना दें और खुद की योग्यता बढ़ाएं, पात्रता बढ़ाएं। सोचना, बोलना और करना तीनों में हार्मनी होनी जरूरी है। इसी हार्मनी से ही हम जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। मन में आवेश, काम क्रोध लोभ, मद मोह मात्सर्य अगर होंगे, विचारों में हट धर्मिता होगी, अभिमान और अहंकार होगा बुद्धि में, तो हम इन पूर्व स्मृतियों, पूर्व मान्यताओं को देखकर हम जी नहीं पाएंगे। तो समझना क्या है हमें, हमें जागृति पथ पर अग्रसर होना है, भ्रमित मान्यताओं को छोड़ना पड़ेगा और समझदार होने पर ही, समझदार मानव होने पर ही महिलाएं परिवार और समाज में अपनी भागीदारी अच्छे से निभा पाएंगी। कंपटीशन और कंपैरिजन की बजाय कंट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ें, अपनेपन का विस्तार पर ध्यान दें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों वाकई मतलब देखिए ना कि हम जब कभी भी बात करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं लाइफ अनहैप्पी होती तब है ना जब हम कम्पीट करने लग जाते हैं, जब हम कंपेयर करने लग जाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ का कंपैरिजन ही खत्म कर दें सो ऑटोमेटिकली आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपकी लाइफ ज्यादा पीसफुल है और ज्यादा खुश है। तहे दिल से धन्यवाद आशा जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया, आपका तहे दिल से, और सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरी बातों को ध्यान से सुना। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार, थैंक यू।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील लाइफ।
2: ज्वाला समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पे बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो,
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: ज्वाला ये मेरा वादा है।

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
1: नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर के आता है रेडियो मानव रचना हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे आपकी जिंदगी से, और उसी मुद्दे पर हमारा प्रयास रहता है कि हम इस प्रोग्राम के जरिए तलाशें नई सोच के साथ नई दिशाएं जो हमें लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रेडियो मानव रचना 107.8 FM का हमेशा प्रयास रहता है कि हम आपके जीवन को जितना बेहतर बना सकें, उसको और ज़्यादा खुशनुमा बना सकें। जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं हम रेडियो मानव रचना के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमेशा उन प्रयासों पर काम करते रहते हैं। ऐसा ही एक प्रयास आज हम अपने कार्यक्रम में एक चर्चा करेंगे एक विषय पर जो जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, हमारी धन संपत्ति को लेकर के। दोस्तों आम तौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं पैसे की, तो वो अपने आप में एक कला है, यानी एक

0: सोनम जी के साथ। सोनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम में, नई सोच नई दिशाएं में, वेलकम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी।
0: सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। आपने अभी बताया कि एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में आप रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं, तो वो क्या है कंपनी?
1: तो हमारी कंपनी है मेवेंस कैपिटल, वो बेसिकली नोएडा में बेस्ड आउट है। ये एक बुटीक वेल्थ एडवाइजरी फर्म है, तो हम यहाँ पे HNIs, अल्ट्रा HNIs, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के वेल्थ मैनेज करते हैं। तो किस तरीके से कहाँ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, किस तरीके से उनको उनका पूरा एक एसेट एलोकेशन होता है, उनका पूरा एक पोर्टफोलियो बनता है, तो इस हिसाब से ये हमारा जॉब प्रोफाइल होता है जो हम क्लाइंट्स के लिए करते हैं। मेरा काम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में समझें, क्या मार्केट्स में स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, क्या रिसर्च है, क्या ग्लोबल इन्वेस्टिंग में क्या चल रहा है, डोमेस्टिक में क्या चल रहा है, तो वो मेरा जॉब प्रोफाइल है यहाँ।
0: तो हम अगर हम सीधे सीधे मुद्दे पर आएं, यदि हम आज के विषय की बात करें, तो एक आम चर्चा में रहता है कि जब कभी भी हम अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करते हैं या व्यापार को लेकर के या पैसे को लेकर के बात करते हैं, तो हम केवल बात करते हैं कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि जो आपका वाला वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, उसके बारे में एक चर्चा दिमाग में आती है कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट है क्या। मतलब हम पैसा कमाने की बात करते हैं, व्यापार कीजिए, जॉब कीजिए या कोई नया स्टार्टअप कीजिए, तो हर किसी में एक बात आती है कि हमने पैसा कमाया। लेकिन जब हम वेल्थ मैनेजमेंट वर्ड यूज करते हैं, तो एक्चुअली वेल्थ मैनेजमेंट है क्या? और दूसरी बात ये कि जब कभी भी वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है, तो हम आमतौर पर समझते हैं कि वेल्थ का सीधा सीधा संबंध होता है उन लोगों से जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या हम जिनको आमतौर पर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अकूत संपत्ति के जो मालिक हैं, उन्हीं को केवल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है?
1: नहीं नहीं, पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के ज़माने में वेल्थ प्लानिंग हर एक बंदे के लिए उतनी ही ज़रूरी है। लोगों को ये लगता होगा, बट आई थिंक वो प्योरली गलत फहमी है। अगर वेल्थ प्लानिंग की बात करें तो सरल भाषा में ये है, आपका आज सुरक्षित करना और आपका आने वाले कल का लक्ष्य को प्राप्त करने का सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। तो आप वेल्थ प्लानिंग में आपका, जैसे आज अगर कोई नया बंदा अपनी जॉब शुरू कर रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो छोटे छोटे SIPs करें, अपने इंश्योरेंस करें। कंपनीज होंगी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना सक्सेशन प्लानिंग करे, एस्टेट प्लानिंग करे। तो ये सब काम जो करना होता है, इसको टोटली वेल्थ मैनेजमेंट कहते हैं। एक टाइम पे शायद वेल्थ मैनेजमेंट चॉइस होती थी, लेकिन आज के ज़माने में मेरे नज़रे में तो वेल्थ मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।
0: अच्छा, एक बात आप बताइए सोनम, आमतौर पर देखा है हमने बहुत सारा लोग कमाई भी करते हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा सेटल्ड होते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको एक स्ट्रेस रहता है, इकोनॉमिकल स्ट्रेस, अगर आर्थिक तनाव की बात करें, तो उसके पीछे का क्या कारण है?
1: ये देखो, एक वर्ड में अगर मैं बताना चाहूँगी संदीप जी, तो वो है डिसिप्लिन। आज आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए, कहीं पर भी करिए, एक कॉमन चीज़ जो हर प्लेटफॉर्म पर रहेगी वो है डिसिप्लिन। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लोगों को लगता है कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज सेविंग्स, जबकि सबसे गलत है। इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। अगर ये लोग सॉर्ट कर लें कि हम पहले बचाएं और उस बचत में डिसिप्लिन फॉलो करते रहें, तो मुझे लगता है ओवर द टाइम ना, ये जिनको भी तनाव हो रहा है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर या अपने अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को लेकर, वो कहीं ना कहीं ओवर द टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये क्विक मनी वाला अगर आप आपका बिहेवियर होगा, तो आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे। आप पैसे शायद बचा लेंगे, कुछ कमा लेंगे, लेकिन जब हम वेल्थ प्लानिंग की बात कर रहे हैं, उस चीज में सिर्फ और सिर्फ आपको डिसिप्लिन हेल्प करेगा।
0: तो कुल मिलाकर के बात यदि हम करें, तो आर्थिक तनाव का जो मुख्य कारण है, वो है केवल आपका नजरिया। जैसा कि आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि आमतौर पर हम जब सेविंग्स की बात करते हैं, तो होती है कि हमारी इनकम और उसमें से जो खर्चे घटाने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है, वो हमारी सेविंग है। लेकिन जो नजरिया है, वो हमें बदलने की जरूरत है कि हम अपनी आमदनी में से पहले सेविंग्स को अलग करें अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और बाकी बचे हुए पैसे को ही खर्च करें। अपनी जो खर्चों की जो भी फहरिस्त है, उसको हम इतना मैनेज करके चलें कि हम उसमें ही उसको पूरा कर पाएं। तो बहुत खूबसूरत बात सोनम जी ने अभी हमें बताई है कि एक डिसिप्लिन जो होता है अपनी आय को लेकर के, वो रखना बहुत ज़रूरी है यदि आप अपनी वेल्थ को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी संपत्ति के मैनेजमेंट के बारे में, यानी वेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया जाए। आप जो पसीना बहाकर मेहनत करके जो पैसा आप कमाते हैं, उसको वृद्धि करने के, उसको बढ़ाने के कौन से उपाय आप अपना सकते हैं, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट सोनम पारिक, जो एक बड़ी कंपनी में रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं। आज हमने सोनम जी से चर्चा की है आपकी मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ और सवालों के बारे में उनसे जानेंगे और जानकारी लेंगे। तो सोनम, आप एक बात बताइए, यदि कोई युवा, यानी हम जैन जी की बात करते हैं, यंगस्टर्स जॉब करते हैं, तो आमतौर पर देखा जाता है कि जब वो जॉब ज्वाइन करते हैं तो उनको शायद बचत से ज़्यादा कहीं ना कहीं ख्याल रहता है अपनी करंट की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने का। तो क्या नज़रिया उस समय पे युवाओं को अपनाना चाहिए, या अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो कोई युवा यदि अपनी नौकरी की शुरुआत करता है अपने करियर की, तो बेसिकली उसको सबसे पहले करना क्या चाहिए?
1: देखिए, आज पढ़ लिख के इतनी मेहनत करके कोई जॉब शुरू करता है तो उसका पहला नज़रिया तो यही होता है कि यार थोड़ा अपने पे खर्च कर लें, नई घड़ी ले लें, बाइक ले लें, गाड़ी ले लें, कहीं घूम आएं। और जो मुझे लगता है ऑनेस्टली कहीं गलत नहीं है, आपने अपना एक करियर बिल्ड कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, लेकिन डिसिप्लिन जितना जल्दी शुरू हो जाता है ना, उतना ही बेहतर रिजल्ट देता है। तो मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि थोड़ा सा ही सही आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, जो SIP होती है, बेस्ट तरीका। तो आपने जो भी आप इनकम कमाते हो, हम टेक्निकली कहते हैं कि उसका 33-35% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली देखें तो नया नया किसी ने कोई जॉब शुरू किया तो वो पॉसिबल नहीं होता। बट एक डिसिप्लिन लाने के लिए, एक फॉर्मेट बिल्ड करने के लिए कम से कम 20% से वो एक SIP शुरू कर दे, वो डिसिप्लिन आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे वो अपने इस डिसिप्लिन को, अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे।
0: तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि आप कहीं से भी इनकम की शुरुआत करते हैं किसी भी एक नए वेतन के रूप में, तो कहीं ना कहीं आपको उसी समय से डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड रह सके। और साथ ही साथ एक बात जो समझने वाली है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास इतनी बिखरी हुई होती हैं कि वो हमेशा आकर्षित करती हैं, और ख़ासकर हमारे युवाओं को, जो कहीं ना कहीं एक जो EMI का एक फंडा चल पड़ा है कि आप सेविंग्स में रेगुलर पेमेंट देने की बजाय आप कोशिश करते हैं कि आप भविष्य की आवश्यकता की चीज़ें भी करंट में खरीद लें और उसके ऊपर खर्चा करें, तो हमें बचने की ज़रूरत है उन सब बातों से। यदि मैं सीधे शब्दों में बात कहूं, जैसे मैंने पिछले भाग में आपसे बात की कि जो वेल्थ मैनेजमेंट है, क्या ये कॉन्सेप्ट केवल उन लोगों के लिए है कि बहुत सारा पैसा होता है? तो मैं उसी बात को एक दूसरे तरीके से कहना चाहता हूं कि यदि कोई युवा है, उसने अभी जॉब ज्वाइन की और वो अपना, जैसे कि आपने कहा कि 20% मिनिमम एक सेविंग करना चाहिए, तो मैं अगर इसको फिगर आउट करूँ कि यदि कोई व्यक्ति मात्र 5,000 रुपये महीने की सेविंग करता है और उसको निवेश करना चाहता है, तो क्या उसको निवेश शुरू करना चाहिए?
1: बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जो हमारी इंस्टीट्यूशन है SEBI और AMFI, उनका ना पूरा कॉन्सेप्ट यही है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को लेके। आज SEBI ने एक मिनिमम 250 रुपये की भी SIP शुरू करवा दी है। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो 5,000 तो बहुत बड़ी रकम हो गई, आपको अगर 1,000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट महीने दर महीने करना है तो भी आप कर सकते हो।
0: तो ये तो बात हुई SIP और म्यूचुअल फंड की। साथ ही साथ अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है, जब हम वेल्थ मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको सीधा सीधा अगर हम लिंक करें इन्वेस्टमेंट से, हमने सेविंग की बात की कि ठीक है पहले हमें सेविंग करना चाहिए, बचे हुए पैसे को खर्च करें, लेकिन यदि हम उस सेविंग को इन्वेस्ट करने की बात करें, तो आप क्योंकि एक रिसर्च मार्केटिंग हेड हैं आप कंपनी की, तो आप बेहतर जानती होंगी कि क्या क्या हमारे पास उपाय हैं या क्या अवसर हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल हैं। तो लोगों के मन में जो प्रश्न रहता है कि आखिर उनकी जो सेविंग है उसको इन्वेस्ट कहाँ पर करें, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं?
1: देखिए, मुझे लगता है कहाँ करें से पहले आपको जवाब देना पड़ेगा कैसे करें। ठीक है, आज क्या हो रहा है, आज के डेट में एक बंदे को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके किसी फैमिली मेंबर में, उसके किसी फ्रेंड में या जानकार में, अगर किसी ने एक कंपनी से या एक स्कीम से पैसा कमाया है तो वो भी उसी में डाल देते हैं। इनफैक्ट इसका मैं संदीप जी आपको बहुत बढ़िया उदाहरण देना चाहूँगी। तो आपने देखा होगा पिछले साल भर से हमने गोल्ड और सिल्वर में बहुत रैली देखी है कि प्राइस बहुत ही शॉर्टअप हो चुके थे। तो म्यूचुअल फंड में गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ETF। तो अगर आपको बाय करना है तो आप गोल्ड ETF या सिल्वर ETF बाय करते हैं। ये कैटेगरी अपने आप में महीने दर महीने 3-4 हज़ार करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाती थी। जनवरी में गोल्ड सबसे पीक पे था, ठीक है। उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 24 हज़ार करोड़ की हुई है। आज डेट पे जनवरी से अभी तक अगर आप देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर काफ़ी करेक्ट हो गए। गोल्ड तकरीबन 20-24% फॉल ले चुका है और सिल्वर भी लगभग उतना ही फॉल ले चुका है। अब उसका नतीजा क्या हुआ, पिछले महीने मई में उसी फंड में से 3 हज़ार करोड़ निकल गए। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि क्योंकि किसी ने देखा कि यार गोल्ड में बहुत पहले इन्वेस्ट कर रखा हुआ था, जनवरी में बहुत रिटर्न मिल गए तो बंदों ने जान में इन्वेस्ट कर दिया।
0: तो यानी लोग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की बजाय लोगों में, जिसको हम आमतौर पर आम भाषा में भेड़ चाल बोलते हैं, उस तरह का है कि लोग फॉलो करते हैं कि कोई क्या कर रहा है,
1: पास्ट रिटर्न्स देखते हैं, जबकि वो इकलौता तरीका नहीं होता आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए संदीप जी, तीन चीजें हर एक बंदे को समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। पहली चीज है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। जब मैं रिस्क प्रोफाइल बोलती हूँ तो उसका मतलब ये है कि मार्केट्स में जो हम पिछले 2 साल से देख भी रहे हैं, अगर रिटर्न नहीं आया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। क्या आप शांति से बैठ के वेट करोगे, आप पैनिक करोगे या आप बेच दोगे। ऐसे करके ना बहुत क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारी कंपनी भी करती है, वो क्वेश्चंस का आप जवाब देते हो, उन जवाब से हमें पता चल जाता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। दूसरी चीज जो हम करते हैं वो है इन्वेस्टमेंट होराइजन। कि मानो मैं कह रही हूँ मुझे यहाँ से 1 साल के लिए पैसा रखना है, 2 साल के लिए रखना है, 5 साल के लिए रखना है, 10 साल के लिए रखना है, तो दूसरी चीज़ आपको जाननी होगी कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। तीसरी चीज़ आपका पर्पस क्या है। आज नए युवाओं के लिए शायद पर्पस होगा कि मुझे 2 साल बाद एक यूरोप ट्रिप लेना है, 4 साल बाद एक गाड़ी लेनी है, घर लेना है। मिडिल एज वालों के लिए होगा बच्चों की एडुकेशन या रिटायरमेंट प्लान। तो तीसरा सवाल होगा पर्पस, कि आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। फिर जाके आता है कि आपको किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। आज लोग गलती यही कर रहे हैं, वो शुरू ही नीचे से कर रहे हैं कि किस प्रोडक्ट में डालें, जबकि पहले समझना होगा ये तीन चीजों का जवाब। जब इन तीन चीजों का आपको जवाब मिल जाएंगे ना, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा, आपका एक पूरा एसेट एलोकेशन बन जाएगा कि उन तीन सवाल के हिसाब से आपको इक्विटी में कितना रखना है, डेट में कितना रखना है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग में कितना रखना है और गोल्ड और सिल्वर में कितना रखना है।
0: मतलब अगर हम सीधी बात कहें तो वेल्थ मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो एक्चुअली शुरू होता है, सबसे पहले आपको स्वयं को पहचानने की जरूरत है कि आपकी अपनी आवश्यकताएं हैं क्या। यदि हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपकी अपनी जरूरतें क्या हैं, उन पैरामीटर्स पे कौन सी चीज फिट बैठती है। जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल जाएगा। और यदि इस प्रकार का जवाब ढूंढने में आप सक्षम नहीं हैं, वहीं पर काम शुरू होता है किसी वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का।
1: करेक्ट, एकदम सही।
0: तो साथ ही इस चीज में एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आमतौर पर आपने देखा होगा भारतीय गृहस्थी में महिलाओं का भी पूरा एक रोल रहता है, वो भी एक गृहस्थी जीवन बिताते हुए भी उनके पास अपनी एक कुछ सेविंग्स होती हैं, उनकी भी भागीदारी काफी हद तक हमारी जो अगर हम वेल्थ की बात करें तो उसमें होती है। तो उनको किस तरह से इस वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट बनना चाहिए या उनके लिए क्या स्कोप है वेल्थ मैनेजमेंट में।
1: सर देखिए, एक तो सबसे पहली बात, वुमेन इन्वेस्टर्स ने खूब तरक्की कर ली है इसमें। मैं भी कुछ दिन पहले एक डेटा देख रही थी, तो 2020 की बात है, कोविड के टाइम पे जो हमारे म्यूचुअल फंड का AUM है उसका तकरीबन 5-1 लाख करोड़ रुपए वुमेन इन्वेस्टर्स का होता था। दिसंबर 2025 में वो डेटा है 17.5 लाख करोड़ का। तो ये एक डेवलपमेंट हुआ है कि वुमेन इन्वेस्टर्स और पे और इन्वेस्ट करने लगी है। तो इसमें जो मुझे लगता है, ऑब्वियसली मैं नोटिस करती हूँ कि वुमेन बहुत क्लियर हैं, उनको कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं बनना है, उनको फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन चाहिए, हर एक डिसीजन का पार्ट बनना चाहते हैं। और उससे मैं ये कह रही हूँ, हो सकता है कई जगहों पे आप शायद गलत भी हो जाओ, बट उससे निराश नहीं होना चाहिए।
0: लेकिन एक बात है कि जो उनका दायरा है वो काफी, क्योंकि घरेलू महिला है तो काफी सीमित होता है, तो उनके लिए कौन से प्रोडक्ट या कौन से तरीके उपलब्ध हैं कि वो अपनी जमा की हुई जो सेविंग्स उनके पास रहती है उसको इन्वेस्ट करने के उनके पास कौन से सरलतम उपाय उपलब्ध होते हैं।
1: देखिए, हर एक इन्वेस्टमेंट उनके लिए ओपन है, ऐसा नहीं है। आज अगर वो हाउसवाइफ हैं, वो जॉब नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए सिक्योर सेफ थोड़े से बेटर सेफ फंड्स होते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. कोई जॉब करने वाले हैं तो वो उस देखिए फंड्स आप अपेरेंटली सेम ही रहेंगे, आप विमेन के ले लो मेन के ले लो. हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में हर एक तरीके के प्लान्स हैं आपके पास. अगर आप कहते हो कि मुझे 6 महीने के लिए ही पैसा रखना है तो उस हिसाब से भी आप अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो. तो मुझे लगता है एंड प्लस आपने अभी एक बात बोली कि वुमेन क्योंकि यू नो ऑब्वियसली मेजर हाउस मेकर्स ही रही हैं, जो मुझे लगता है वो ये है वुमेन का ना बहुत ही एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं. कहीं ना कहीं उनका इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या सही है, क्या ये सही रहेगा, या अगर उसमें कुछ भी उनको ऊपर नीचे है तो मुझे लगता है वो शायद कंपैरेटिवली जल्दी आइडेंटिफाई कर सकती है.
0: बट आज की रेट में ये तरीके बड़े साइंटिफिक हो गए हैं और वेल्थ मैनेजमेंट और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करती है यदि हम उन तरीकों को अपनाते हैं. तो अभी इस चर्चा को जारी रखेंगे म्यूजिकल ब्रेक के बाद. सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ.
2: घोला जाए फूलों का शबाब उसमें फिर

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम के आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम बात कर रहे हैं आपकी बचत को निवेश करने के फंडों को लेकर के, तौर तरीकों को लेकर के, जिसे हम आधुनिक रूप में अगर हम भाषा में नाम बोलें तो वेल्थ मैनेजमेंट का। और हमारे कुछ सवालों का आपको जवाब देने के लिए आई हुई है हमारे पास रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड सोनम पारिक, जो एक कंपनी में वेल्थ मैनेजमेंट पे ही अपनी सलाहों से बहुत से लोगों का पैसा बढ़ाने का या उनको ऐसे नए उपाय सुझाने का, वो साइंटिफिक तरीके समझाने का काम करती हैं कि जिससे उनका कमाया हुआ पैसा कम समय में ज़्यादा वृद्धि पा सके, यानी ज़्यादा बढ़ सके। तो सोनम, एक बात जो आम तौर पे जब कभी भी हम बात करते हैं फ्यूचर सिक्योर करने की, चाहे कोई युवा है या कोई गृहिणी है या कोई भी है, तो एक थॉट हर किसी के मन में आता है जब वो सेविंग करता है या निवेश करता है, तो दो तरीके दिमाग में चलते हैं। एक तो ये कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, आमतौर पर आपने देखा होगा, और एक दूसरा थॉट आता है जब वो अपने लिए बात करते हैं कि अपनी रिटायरमेंट के बाद उनका किस तरह से उस पैसे का यूज वो कर सकते हैं, या क्या बेहतर तरीके हैं जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक बेहतर रिटर्न दे पाएं या एक आरामदायक जिंदगी वो बिता पाएं रिटायरमेंट के बाद। तो आखिर यदि हम रिटायरमेंट की बात करते हैं, तो कब रिटायरमेंट का जो थॉट है उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता होती है, या चाहे हम किसी वेतन परस्त व्यक्ति की बात करें या किसी बिजनेसमैन की, तो जो रिटायरमेंट की प्लानिंग है वो एग्जैक्टली कब शुरू की जानी चाहिए आपकी राय में?
1: ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आप कहो कि मैंने इतने साल जॉब कर लिया उसके बाद मैं रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करूं। आप इनफैक्ट जॉब जब शुरू कर रहे हो, आपकी इनकम शुरू हुई है, आप तब से भी प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप तीन उन सवालों के जब जवाब देते हो, तो तीसरा होता है आपका पर्पस। तो समझिए कि मैंने अभी अभी अपनी जॉब शुरू करी है और मैं कह रही हूँ कि यार मुझे 4 साल बाद घर लेना है, उसके बाद मेरा बट एक रिटायरमेंट प्लान भी मुझे करना है। तो कौन वेल्थ एडवाइजर क्या करते हैं, या जनरली लोगों को भी क्या करना चाहिए, आप एक एसेट एलोकेशन करोगे। उसका क्या मतलब हुआ है कि मेरी इनकम से मैं एक्स अमाउंट बचा सकती हूँ, तो वो एक्स अमाउंट के हिस्से बनेंगे कि एक हिस्सा मैंने रखा है अपने घर खरीदना है उसके लिए, एक हिस्सा मैंने रखा है रिटायरमेंट के लिए। अब क्योंकि मैंने अभी अभी करियर शुरू किया और मेरे रिटायरमेंट में बहुत लंबा टाइम है, तो मेरे लिए जो रिटायरमेंट के प्रोडक्ट्स होंगे वो अलग होंगे। वो शायद एक लॉन्ग टर्म होगा जिसमें मैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले पाऊंगी, थोड़ा स्ट्रांग इक्विटी होगा, तो उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरा आपका है कि आपको 4-5 साल बाद मुझे घर लेना है, वो पैसा उसमें जा रहा है, तो मैं उस फंड में लूंगी जो मुझे पता है कि 5 साल में एक एक्स अमाउंट बना के दे सके, ताकि आपके जो भी माइलस्टोन है उसको हम अचीव कर सके। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप जब आप चाहो आप अपना रिटायरमेंट शुरू करो। हाँ, परसेंटेज चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी शुरू किया है, मेरे जॉब मेरे रिटायर होने में टाइम है, तो अगर मैं समझो 100 रुपये बचा रही हूँ, तो उसका मैं शायद सिर्फ 10 रुपये डालूंगी रिटायरमेंट में, 90 कहीं और डालूंगी। फिर धीरे धीरे जैसे मेरी इनकम बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे मैं अपना एलोकेशन बढ़ाती रहूंगी।
0: तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें, तो रिटायरमेंट की जो भी योजना है वो किसी भी समय आप आरंभ कर सकते हैं, लेकिन वो योजना किस प्रकार की होगी, उसमें एलोकेशन ऑफ फंड्स होगा किस प्रकार से, वो डिपेंड करता है आपकी अपनी स्थिति के ऊपर कि आप किस स्थिति में हैं और आपकी फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग क्या है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। किसी के बच्चे फॉरेन एजुकेशन के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, कोई अपने लिए एक बहुत अच्छा बड़ा घर प्लान कर रहा होता है, या कोई बहुत आरामदायक जीवन जीना चाहता है रिटायरमेंट के बाद। तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें, तो आपकी आवश्यकताओं के, आपकी ज़रूरतों के या आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, उसका कोई समय सुनिश्चित नहीं है। तो एक बात और जो वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर के बात आती है दिमाग में जब कभी भी हम सोचते हैं, तो इतनी तरह के लुभावने विज्ञापन आते हैं तरह तरह की, म्यूचुअल फंड में, कभी किसी में इन्वेस्टमेंट की बातें करती हैं। तो जो बातें हैं उन बातों में एक सबसे ज़्यादा जो आजकल पॉपुलर वर्ड है, बहुत आमतौर पर अभी आपने कई बार हमारी चर्चा में SIP का जिक्र किया म्यूचुअल फंड को लेकर के, तो म्यूचुअल फंड के बारे में आज के समय में सबसे बड़ा मिथ है क्या, मतलब लोगों के मन में जो शंकाएं रहती हैं उनमें क्या सबसे बड़ी जो मिथ है वो म्यूचुअल फंड को लेकर के क्या है?
1: मुझे लगता है सबसे बड़ा मिथ जो है लोगों को, वो ये है कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी, जबकि ऐसा नहीं है। आज अगर एक बंदा कहता है, क्लाइंट कहता है कि मुझे एक ही दिन के लिए पैसा रखना है, तो म्यूचुअल फंड में ओवरनाइट फंड्स होते हैं। कोई कहता है मुझे 7 से 10 दिन के लिए पैसा रखना है, तो उसके लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कोई कहता है नहीं, मुझे 2 से 3 महीने रखना है, तो उसके लिए लिक्विड फंड्स है, लिक्विड प्लस फंड्स है। कोई कहता है मुझे एक साल के लिए रखना है, तो उसके लिए आर्बिट्राज फंड्स हैं। तो लोगों का ये मिथ है कि म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी मतलब कभी भी गिर सकता है, वो बहुत गलत है। आज आपको जो कॉम्बिनेशन चाहिए आप उस कॉम्बिनेशन में म्यूचुअल फंड का एक्सेस ले सकते हैं। इक्विटी डेट चाहिए, इक्विटी कम डेट ज़्यादा चाहिए, वो हो सकता है। आपको चाहिए इक्विटी कम डेट कम बट उसमें थोड़े कमोडिटीज़ भी आ जाएँ तो वो भी हो सकता है। प्योर डेट चाहिए वो भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से लोगों को ये समझना होगा म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ इक्विटी तक सीमित नहीं है, उसमें और भी ऑप्शंस हैं। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: यानी अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड अपने आप में एक बंच है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास हैं, और मैं जहां तक समझता हूं कि वहीं पर कहीं काम शुरू होता है एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का।
1: करेक्ट।
0: तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और जानेंगे कि आपके धन की वृद्धि साइंटिफिक तरीके से एक वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोग्राम को अपना करके एक डिसिप्लिन लाइफ के तरीके से किस प्रकार से की जा सकती है। तो जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ और फिर हाजिर होते हैं इस चर्चा को जारी रखने के लिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में। और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। और दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो है आपके पैसे से जुड़ा हुआ, यानी आपकी सेविंग्स को कैसे हम कम एफर्ट्स में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट के जरिए। और उसके लिए ज़रूरत होती है हमें एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की। और हमारे बीच आज हमारी खास मेहमान हैं जो रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में, सोनम पारिक। आज हमने सोनम से जाना कि किस प्रकार से आप अपनी जो सेविंग्स है, एक बहुत बड़ा उन्होंने एक मंत्र बताया कि आपको नज़रिया बदलने की आवश्यकता है कि आपको पहले अपनी इनकम में से सेविंग्स को अलग करना है, बाकी बचे हुए पैसे का इस्तेमाल करना है अपनी ज़रूरतों पर, ना कि ज़रूरतों के बाद बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आता है यदि आप अपने इस नज़रिए को बदलते हैं। और ख़ासकर इस मंत्र को अपनाने की आवश्यकता है हमारी जेन जी को, हमारे युवाओं को, ताकि आपका फ्यूचर बेहतर बन सके। तो सोनम, आज एक मुद्दा और जो आमतौर पर आप जैसे पूरी चर्चा में हमने बात की, आखिर पैसा हमारा है, हमारे सामने बहुत सारे विज्ञापन, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, क्यों हमें ज़रूरत है एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की? मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं, पैसा हमारे पास है, हमें पता है कि किस पे कितनी रिटर्न आ रही है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो वो एक आम आदमी या कोई भी जो व्यक्ति एक बहुत अच्छे पद पर कहीं है या एक बड़ा व्यापार चला रहा है, तो उसे वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट आखिर चाहिए क्यों?
1: देखिए, सेम वजह है जिसके लिए लोगों को डॉक्टर चाहिए होता है, लॉयर चाहिए होता है, फिटनेस ट्रेनर चाहिए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होता है। बेसिकली आपको एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज हो उस इंडस्ट्री में। आज तो एआई का ज़माना है, आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पूछ के। एंड वैसे भी आज के युवाओं में तो DIY चलता है, डू इट योरसेल्फ। लेकिन ये दोनों चीज़ों में जो रोल प्ले करेगा वो है आपके पास्ट रिटर्न्स, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सिर्फ पास्ट रिटर्न पे नहीं होता है। आज क्या होता है कि वेल्थ एडवाइजर के पास ना एक्सेस होता है, वो फंड मैनेजर से बात करते हैं, वो उनकी रिसर्च टीम से बात करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी समझते हैं, उनके फ्यूचर प्लान समझते हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी और ये प्लान मेरे क्लाइंट के लिए सूटेबल है कि नहीं। अगर है तब जाके वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो जो आप खुद करते हो वो आप पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे करते हो। एक वेल्थ एडवाइजर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे बनाता है वो प्रोफाइल। दूसरी चीज आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट एक फुल टाइम जॉब है। अगर आपका अपना करियर है जिसमें आपको फुल टाइम देना पड़ता है, तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक सेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, उस सेक्टर में एक कोई पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो इन सब में बहुत टाइम जाता है। आज एक वेल्थ एडवाइजर का फुल फ्लेज्ड काम यही है। तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प लेने से आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है। और तीसरा जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ वो ये है कि वेल्थ एडवाइजर आपके लिए एक इमोशनल सपोर्ट और बफर बन जाता है। आज हमने देखा है कि कोविड के वक्त, डीमोनेटाइजेशन के वक्त, काफ़ी लोगों ने पैनिक में पैसा बेच दिया, अपने फंड्स बेच दिए। यही अगर कोई वेल्थ एडवाइजर होता तो वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल इंटेलिजेंस से या फिनेंशियल इंटेलिजेंस से आपको हैंडल कर लेता। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको हम हमारे इंडस्ट्री में 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, विच इज़ कंपाउंडिंग। जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है ना, वो ऐसे पैनिक सेलिंग में कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो आज अगर एक वेल्थ एडवाइजर होगा आपके पास तो वो आपको सही गाइडेंस दे पाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न मुझे लगता है कि कोई भी स्टेज पे आप हो, आपने करियर शुरू किया है, आप कॉर्पोरेट हो, आप ग्रो कर चुके हो, आपको एक वेल्थ एडवाइजर बहुत काम आएगा आपका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स या इन्वेस्टमेंट्स को आगे ले जाने के।
0: यानी अगर हम बात करें तो एक व्यापारी केवल अपने व्यापार से संबंधित सूचनाओं के बारे में जानकारी रखता है, या कोई, यदि हम किसी सैलरीड पर्सन की बात करें या प्रोफेशनल की बात करें, तो हर किसी का अपना एक क्षेत्र होता है। वहीं पर कहीं ना कहीं जो वेल्थ एडवाइजर है, जो वेल्थ मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट हम बात करते हैं, उनका भी अपना एक क्षेत्र है। वो इसी क्षेत्र से संबंधित उत्पाद या आपके पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर आपको बेहतर रिटर्न दे पाएगी, तो उनके पास सोर्सेज ज़्यादा तरीके से होते हैं। और एक, जैसे हमने शुरू में बात की कार्यक्रम के शुरू में, कि पैसे को बढ़ाना अपने आप में एक विज्ञान है, कमाना एक कला हो सकता है लेकिन बढ़ाना विज्ञान है। तो उस विज्ञान के जो एक्सपर्ट हैं वो वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर होते हैं। अच्छा, दूसरा एक बात, तो आमतौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं सेविंग्स की, तो एक पहले तरीका होता था कि लोग थोड़े थोड़े पैसे बचा करके अपने पास घर में रख लेते थे, बैंकों में नहीं जमा कराते थे क्योंकि बैंकों में खाते नहीं होते थे। लेकिन व्यवस्था बदली तो लोगों ने बैंकों में जमा कराना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके मन में एक शंका हमेशा बनी रहती थी कि यदि हमें कभी जरूरत पड़ी इमरजेंसी के टाइम पे तो हमारा पैसा हमारे पास होना चाहिए। बैंकों की सर्विसेज ऐसी हो गई, कार्ड्स बन गए, डेबिट कार्ड बन गए, एटीएम बन गए कि आप कभी भी पैसा निकाल लो। लेकिन जैसे आज का आधुनिक युग आया, यदि हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो क्या वेल्थ मैनेजमेंट करके या पैसे को हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट करके क्या ये सुविधा हमारे पास, एक आम आदमी के दिमाग में जो थॉट आता है कि यदि पैसे की इमरजेंसी में आकस्मिक कोई आवश्यकता पड़ती है तो क्या उसमें भी वही सुविधा उनको उपलब्ध होती है कि या इन्वेस्टमेंट के बाद वो फंस जाते हैं 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए कि उनको पैसा बीच में अगर जरूरत है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा?
1: देखिए क्या होता है ना, हर फंड का अपना एक एग्जिट लोड बोलते हैं इसको, या लॉक इन पीरियड होता है। हर फंड के जो आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखोगे, जो फैक्ट शीट कहते हैं हम, उनमें डेटा हमेशा आता है। तो इक्विटी फंड्स होंगे जिसमें लॉक इन नहीं होगा। लॉक इन मतलब कि आपका पैसा आप निकाल सकते हो, साल भर से पहले अगर आप निकालते हो तो कोई चार्जेस लगते हैं। लेकिन जो मैं पहले बता रही थी कि जो 1 दिन 2 महीने 6 महीने के लिए फंड्स में पैसा रखता है, उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता, आप कभी भी निकाल सकते हो। मुझे लगता है जो सवाल आपने पूछा है ना, ये शायद आपके भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आया होगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में, और म्यूचुअल फंड्स कह लो, वेल्थ कह लो, इंश्योरेंस कह लो, इनमें ना मिस सेलिंग बहुत होती है। तो क्योंकि आपने अगर किसी से बाय किया है और कोई टारगेट प्रेशर होगा या कोई भी वजह हो सकती है, उस वजह से जब आपको कोई प्रोडक्ट बेचने जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, क्योंकि उनको पता है कि आपको इतने टाइम में चाहिए होगा तो वो उस हिसाब से आपको जवाब देते हैं। लेकिन आप कभी भी कोई भी स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एक वन पेज में आपको सब साफ दिख जाता है। तो कुछ फंड है जिसमें आपको जब चाहिए तब पैसा आएगा। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि एटीएम कार्ड जैसा नहीं होगा कि आपने आज चाहा और आज पैसा आ जाएगा। मिनिमम से मिनिमम जो है वो ये है कि आप आज रिडेम्पशन डालते हो तो अगले दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। और एक आधी स्कीम में ऐसा होगा जहाँ आज रिडेम्पशन डालोगे तो 2 दिन बाद आएगा, बट ये मैक्सिमम है, इतने में आपका पैसा आ जाता है। हाँ, ये नहीं है कि आप चाहो कि तुरंत आए,
0: मतलब लिक्विडिटी जो है वो स्लो नहीं है, बहुत जल्दी आपको पैसा मिल जाता है। क्योंकि यदि आकस्मिक आवश्यकता की बात करें तो उतना फंड तो आप बैंक में भी रख सकते हैं। लेकिन एक सलाह वाली बात है कि यदि आपको पैसे में वृद्धि भी चाहिए और समय पर पैसा चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास हैं।
1: देखिए आज ना क्लाइंट्स के लिए बहुत आसान हो गया इन्वेस्टमेंट करना। जैसे मैंने आपको बताया कि सेबी का माइंडसेट ही यही है कि इन्वेस्टर्स के लिए जितनी चीजें आसान बना सके। अब इट्स एवरीथिंग इज ऑन अ क्लिक, आप अपने ऐप के थ्रू बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो आज इन्वेस्टमेंट कन्वीनियंट बहुत हो गया है। जो पहले होता था कि आपको ब्रांच जाके चीजें करनी पड़ती थी, आज वो आपके क्लिक ऑफ अ बटन पे है। तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत सरल हो गया है, तरीका बहुत सरल हो गया है,
0: अगर हम डिजिटल युग की बात करें आज तो बिल्कुल। तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। आज हम चर्चा कर रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर अपनी विशेष मेहमान सोनम पारिक के साथ। तो फिर हाजिर होते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी वेल्थ को बढ़ाने के उपायों के ऊपर एक वेल्थ एडवाइजर के साथ, जो हैं सोनम पारिक, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, वेल्थ एडवाइजर हैं, रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं कंपनी में। और वो आज हमें बता रही हैं कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट है क्या और वेल्थ एडवाइजर की या वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है। सोनम, एक बात जो मैंने भी कार्यक्रम के पिछले हिस्से में भी कही थी कि पहले एक व्यवस्था थी कि लोग आमतौर पर जो सेविंग होती है, बचत होती है, उसको घर में रखते थे, पैसा संभाल के रख दिया। या बहुत सारे हमने किस्से ऐसे भी सुने हैं कि पैसे को घड़ों के अंदर बढ़ के दबा दिया, सोने के सिक्के दबा दिए, तो एक व्यवस्था चलती थी। लेकिन जब से बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ और अगर हम आज लेटेस्ट बात करें तो डिजिटल युग हमारा है, तो क्या ये जो व्यवस्था है वास्तव में वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी, जिस प्रकार की आप जो आपका व्यवसाय जो प्रोफेशन है, वो किस प्रकार से देखता है इस बात को कि हमें ये पैसा जो इन्वेस्ट करना है वो कैसे हमारी देश की इकोनॉमी में हेल्प करता है। मतलब अगर हम सेविंग्स की बात करें तो सेविंग तो आपने पैसा बचा करके अपने पास रख लिया तो वो भी सेविंग है, और वो आपने बैंक में अपने अकाउंट में रख लिया वो भी सेविंग है। लेकिन यदि हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो कैसे हेल्प करता है हमारे देश की इकोनॉमी में।
1: देखिए, आपने जो कहा कि घर पे पैसा रखते हैं वो भी सेविंग है और जो बैंक में रखते हैं वो भी सेविंग है, एक्चुअली वो नहीं है। देखिए, सेविंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया। सेविंग का मतलब बेसिकली यही है कि आगे चल के जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन जो हम कहते हैं, मेरा पैसा उसको बीट कर पाए। ठीक है, तो आज अगर सरल भाषा में बोलूँ तो इन्फ्लेशन अगर 3.5% 4% चल रही है तो मेरा पैसा एटलीस्ट उतना बढ़ना चाहिए, तब वो नॉर्मल पैसा कहलाया जाएगा। तब भी वो रिटर्न नहीं है, राइट? रिटर्न वो होगा जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी जो मैं पैसा कमा रही हूँ वो एक्स्ट्रा है,
0: जो उसकी ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली थोड़ी ज्यादा हो।
1: एग्जैक्टली। अब आपने घर पे पैसा रखा, आपने साल 5 साल 6 साल रखा, उसने कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन महंगाई तो बढ़ गई, तो आपकी जो वैल्यू थी मनी की वो कम हो गई। और सेम हिसाब चलता है जो आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा होगा, वो पैसा वैसे का वैसा ही है, जो ब्याज आता है थोड़ा बहुत वो आ गया, लेकिन इन्फ्लेशन उससे कई ज्यादा है। तो हुआ क्या, आपके जो पैसा है उसका वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो गई, इसीलिए आप कहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो। देखिए, आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ही इकोनॉमी चलेगी, राइट? ये पूरा एक सर्कल है। आप कंज्यूम करोगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी हमारी देश की कंजम्पशन बढ़ेगी, तो जो कंपनियां वो प्रोडक्ट बनाती हैं वो चलेंगी, तब हमारा मार्केट चलेगा तो लोगों को रिटर्न मिलेगा। तो ये पूरा एक विशेष सर्कल है। अगर आपने कंज्यूम ही नहीं किया, आपने स्पेंडिंग नहीं करी, आपने पैसे बचाए नहीं, तो वो इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। बट थैंक्स टू डीमोनेटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा अपने अकाउंट में रख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है।
0: तो अगर हम सीधी सीधी बात करें तो बचत करना अपने आप में पैसे को अपने पास रखना नहीं है, जब तक कि आप उसका इन्वेस्टमेंट ना कर दें। यानी हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हम बैंक की बात करें या अदर जो कंपनीज हैं जो इस तरह का काम करती हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं या डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में पैसा इन्वाइट करती हैं लोगों का, जब तक उसमें पैसा जा कर के इकोनॉमी में ना जाए तब तक हम उसको एक तरह की सेविंग्स ना माने, ये हमारा एक थॉट होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात आपने कही और समझने की बात है कि नजरिया हमें बदलना जरूर पड़ेगा कि हम आम तौर पर जो एक मिथ पाल के रखते हैं दिमाग में कि जो पैसे बचेंगे उनको हम इन्वेस्ट करेंगे, जबकि हमें सोचना ये चाहिए कि जो पैसा हमारे पास बचे उसे खर्च करना है। यानी पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी है। तो एक बहुत बड़ा थॉट आज के इस प्रोग्राम में, इस चर्चा में निकल के आया है। तो सोनम, एक बात और मैं जो जानना चाहता हूँ, यदि हम एक समअप करें इस सारी बात को, जिस प्रकार के विचार आपने हमारे सामने रखे, तो निश्चित रूप से एक वेल्थ एडवाइजर या एक वेल्थ मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट होता है वही ऐसे थॉट रख सकता है जिस प्रकार से आपने हमें चीज़ें समझाई कि क्यों एक वेल्थ एडवाइजर की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि हम कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर के जाएं तो हमारे जो लिसनर्स हैं रेडियो मानव रचना के, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहती हैं?
1: देखिए, आज हर कोई, हमारी गवर्नमेंट, हमारे फंड मैनेजर्स इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात कर रहे हैं, जो कि सही भी है। ये ग्रोथ स्टोरी का पार्ट आप तभी बन पाएंगे जब आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। आपको ये समझना है, हर एक आपके लिसनर्स को, कि आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से, किसी भी अमाउंट से इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का पार्ट बनिए। आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं, आप कितना पैसा बचा सकते हैं, कितने टाइम के लिए रख सकते हैं, वो कितनी भी छोटी से छोटी अमाउंट हो, लेकिन इस इंडस्ट्री का, इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक फ्लेवर लीजिए। जब आप फ्लेवर लेंगे, जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आने लगेगी, काफ़ी आपका पर्सपेक्टिव खुलेगा, काफ़ी आप चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मेरे आपके लिसनर्स से बस यही रिक्वेस्ट है कि आइडेंटिफाई करिए आपकी वेल्थ जर्नी क्या है, बट प्लीज़ डू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी किसी भी फॉर्म में। आप एक एडवाइज़र के साथ करना चाहते हो वो भी चलेगा, आप इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो वो भी चलेगा, बट ट्राई टू रीड मोर, आप सही जगहों से इंफॉर्मेशन लीजिए एंड उस हिसाब से फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करिए।
0: क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है जितनी भी स्कीम्स आती हैं उसके बाद फिर एक लाइन आ जाती है कि जोखिम और मार्केट,
1: सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।
0: तो उन सब चीजों के बारे में यदि कोई राय कहीं से मिल सकती है तो आपको निश्चित रूप से एक वेल्थ एडवाइजर ही दे सकता है। तो आज के कार्यक्रम में दोस्तों हमने जाना कि आखिर कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस कमाई में से कुछ बचत करके उसको निवेश करना, और साथ ही साथ यदि आप उस निवेश पर एक बेहतर रिटर्न चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो निवेश कहीं ना कहीं आपके उन सपनों को पूरा करे जो सपने मन में लेकर के आपने वो निवेश किया या वो बचत की है, तो आपको एक बेहतर वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट या वेल्थ एडवाइजर की ज़रूरत पड़ती है, जो अपनी जो एक्सपर्टीज है उसका फ़ायदा आपकी वेल्थ को बढ़ाने में दे सके। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि आपके पास पैसे का वॉल्यूम कुछ भी है, आपकी बचत का आकार कुछ भी है, लेकिन आप भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन सकते हैं, आप भी वेल्थ मैनेजमेंट का ही हिस्सा बन सकते हैं। उसमें कोई भी आकार या कोई समय बिल्कुल नहीं होता। हालाँकि जो भी प्रोग्राम आपको चूज करना है, किसी भी चीज़ में आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो वो आपकी स्थिति के ऊपर, आपके पैसे के आकार के ऊपर कि आपकी बचत कितनी है, आपकी आयु कितनी है या आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। तो आज इन सभी सवालों के हमने जवाब जानने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे जो मन में प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं उनके जवाब आपको आज मिले होंगे। और इस चर्चा ने आज हमें ये भी समझाया कि धन केवल कमाने की नहीं बल्कि उसे सही दिशा देने की भी आवश्यकता है, यानी केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसका इन्वेस्टमेंट भी सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ आपसे लेते हैं आज्ञा और अगले प्रोग्राम में एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो सोनम आज आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच
1: फॉर कॉलिंग मी।
0: तो दोस्तों इस प्रोग्राम में आज इतना ही, अगले प्रोग्राम में एक नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,

0: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
1: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितनी अच्छी मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का दो कमरों वाला स्कूल जिसमें ना तो टीचर्स रोज आते थे और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। दो बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती है, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अफसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का ये अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पा लूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा। मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता, लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिला था। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला, जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता, पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं, जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी ना सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थे मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था, और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर मुझ में नहीं थी, और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था। हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थी। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
2: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
1: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था। निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है, दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की और उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए पृथ्वी पर वो सौंधी महक फिर नहीं उठती कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 एफएम। फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और एक बार फिर से हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका मकसद है आपकी इस धरती को सुरक्षित रखना। प्रोग्राम का नाम है ग्रीन ग्रह, जिसको आपके बीच लेकर आया है डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद इको क्लब एंड पीटीसी फाइनेंस लिमिटेड। बहुत सारी बातें हम इस कार्यक्रम में करते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि इस पर्यावरण को, इस पृथ्वी को थोड़ा बेहतर बना सकें, क्योंकि हमारे आसपास दिन रात ऐसा कुछ होता रहता है जो इस ग्रह को खराब करने की पूरी क्षमता रखता है। हम एसीज में बैठते हैं, हम गाड़ियों में घूमते हैं, डीजल पेट्रोल की खपत हो रही है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे पर्यावरण को नेगेटिव इफ़ेक्ट मिलना लाजमी है। बड़े बड़े जंगलों को काटकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। दुनिया का लंग्स कहे जाने वाले अमेज़न के जो फॉरेस्ट हैं, बेसिकली वो भी कुछ हद तक अब बर्बाद होते दिख रहे हैं। तो फिर छोटे छोटे जंगलों का या फिर सड़क पर लगे हुए पेड़ों की बात क्या ही करें। बहुत सारी जगहों पर ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपको समझ नहीं आता कि पर्यावरण वापस नॉर्मल कैसे होगा, जिसका नतीजा ये होता है कि जैसे ही हमारे यहाँ हल्का सा मौसम में बदलाव होता है तो कभी बारिश बहुत आती है, कभी गर्मी बहुत पड़ती है, कभी सर्दी हद से ज़्यादा पड़ती है, और सब कुछ ठीक हो तो पोल्यूशन यानी AQI लेवल 400-500 के पार पहुँच जाता है और हमें सांस लेने के लिए भी एयर प्योरीफायर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मानव ने अपने संसाधनों को ध्यान से नहीं रखा, या फिर कहें कि एक इंसान ने अपने मतलब के लिए इस पर्यावरण और इस पृथ्वी का ख्याल रखने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस और बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में कुछ कदम, लेकिन वो नाकाफी हैं। सो हम भी एक छोटा सा कदम उठा रहे हैं ग्रीन ग्रह कार्यक्रम के माध्यम से, जहां पर हम घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें या फिर हमारे आम जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, इसके बारे में हम अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं कुछ खास जानकारी। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर विनीता शर्मा, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मानव रचना में। डॉक्टर विनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद। धन्यवाद दीक्षा, और आपका ये कदम सीरियसली मानव जाति के लिए और पर्यावरण सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ा कदम है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज अपने विचार प्रस्तुत कर पाऊंगी जी पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के कार्यक्रम में।
1: सो डॉक्टर विनीता, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं बेसिकली वो घर में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल इक्विपमेंट्स या फिर मेडिसिन के बारे में है। अब हमारे घर में कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार तो होता ही है, हम भी बीमार होते हैं, बच्चे बड़े, कहीं ना कहीं दवाइयाँ होती ही हैं। फर्स्ट एड बॉक्स तो एटलीस्ट सबके घर में ही होता है जिसमें बेसिक दवाइयाँ होती हैं, लेकिन वो दवाइयाँ एक्सपायर भी होती हैं। बहुत सारे लोग रेगुलरली इंजेक्शन सिरिंजेस का भी इस्तेमाल करते हैं कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, या फिर वैसे ही कभी किसी लेडी को किसी प्रेगनेंसी में या डायबिटीज़ में किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत हो तो सिरिंजेस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा चोट लगने पर हम अलग अलग तरीके की जो बैंडेजेस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी सारी मेडिकल चीज़ें होती हैं हमारे घर में, चाहे थर्मोमीटर हो, चाहे आपके पास मास्क हो, ऑक्सीजन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते थे बीच में जब कोविड हुआ था, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, उसके मास्क हैं जो एक्सपायर भी होते हैं, जो ख़राब भी होते हैं। सो बेसिकली आज जो हमारा पर्पस है आपको यहाँ पर एज अ गेस्ट बुलाने का, वो ये है कि ये मेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं या फिर मेडिकल मेडिसिन जो हैं उनको डिस्कार्ड कैसे किया जाए, उनको ख़त्म कैसे किया जाए, ख़त्म इन सेंस उसको थ्रो अवे कैसे किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, हम सब इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर एक ही डस्टबिन में सब कुछ चला जाता है। सो घर में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल इक्विपमेंट्स या फिर मेडिसिन को जब हम डिस्कार्ड करते हैं, जब हम उनको फेंकते हैं, तो उसका तरीका क्या होता है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी दवाइयों के बारे में जो हमारे घर में अनगिनत मात्रा में पड़ी होती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। सो एज पर माई नॉलेज, इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज दे हैव डिस्क्राइब्ड द सेफ्टी डिस्पोजल ऑफ ऑल दीज मेडिसन्स। बट एक कॉमन मैन की तरह हम लोग जो घर में करते हैं, दैट वी जस्ट फ्लश आउट दोज मेडिसन्स एंड देन मिट्टी में डाल दिया और पानी में नदी में डाल दिया. बट अगर आप देखें मिट्टी में और पानी में, दैट एवरीथिंग इज गोइंग इन द सॉइल एंड दैट कैन कम बैक इन द फॉर्म ऑफ फूड, राइट? बिकॉज ऑल द प्लांट्स दे आर इन द सॉइल, दे आर ग्रोइंग इन द सॉइल. And in water also, there are so many aquaria, so many fishes, so many aquatic animals are there. So that is not at all the right way to dispose of the medicine. The right way is, which we, majority of the people, they just don't know, that we should have a biohazard bag or the box in our room, in our home, so that we can segregate those medicines and In that terms, we can put them, the cotton bandages and all the biomedical waste in that biohazard polythene or biohazard box. And then we can give it to the
1: garbage collector.
2: All the municipal corporations, they have this policy to handle those biomedical waste separately.
1: जी. सो डॉक्टर विनीता का कहना ये है कि हमारे घर में जितना भी मेडिकल वेस्ट होता है, घर की बात करें ही, आम किसी हॉस्पिटल या इंडस्ट्री की बात नहीं करें, घर में जितना भी मेडिकल वेस्ट है, जिसमें खास तौर पर से दवाइयों की बात मैं करना चाहूँगी, क्योंकि दवाइयाँ जो होती हैं वो सबके घर में होती हैं. आप मेडिकल इक्विपमेंट्स में बड़ी चीज़ रखें ना रखें, मेडिसन्स बच्चों की बड़ों की कुछ ना कुछ घर में होती हैं. सो बायो हज़ार्ड एक पॉलीबैग काइंड ऑफ आता है जो मार्केट में मिलता है, उसमें अगर आप अपनी चीज़ों को रख के, और गार्बेज कलेक्टर जो आपके घर से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए आते हैं, आपके घर से लेकर जाते हैं पूरा गार्बेज, उनको अगर आप वो बैग दे दें तो वो सही तरीके से उसको डिस्कार्ड कर पाएंगे.
2: जी
1: डॉक्टर विनीता, ये तो बात हो गई उस बैग में डालने की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं हमारे घर में, सपोज़ किसी के पास क्रोसिन की टैबलेट है या फिर और पेन किलर्स या फिर कुछ मल्टीविटामिंस हैं, अब ये एक्सपायर हो गई हैं, सपोज़ ये अब इस्तेमाल नहीं हो सकती, या फिर सिरप हैं, बच्चों के लिए बहुत सारे सिरप होते हैं, कफ सिरप होता है या मल्टीविटामिंस होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, अब ये जो सिरप हैं अब ये एक्सपायर हो गए, ये मेडिसिन टैबलेट्स एक्सपायर हो गई, अब इसको हम कैसे डिस्कार्ड करें? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो फ्लश कर देते हैं टैबलेट्स या जो लिक्विड होता है, जो सिरप्स होते हैं, क्या ये सही तरीका है?
2: नहीं, ये तरीका सही नहीं है, बिकॉज अगर आप जहाँ भी उसको फ्लश करोगे, अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू द अर्थ सरफेस, दैट इज़ लाइक सॉइल वाटर, एंड अल्टीमेटली दैट सॉइल एंड वाटर इज़ कमिंग बैक टू अस इन द फॉर्म ऑफ फूड. सो वन और द अदर वे, वी आर प्रोवाइडिंग द हजार्डस और द टॉक्सिक एनवायरमेंट और द टॉक्सिकेंट्स टू द ह्यूमन बींग्स. सो सही तरीका दवाइयों और सिरप्स को डिस्पोज करने का, द वन इज यू कैन गिव इट बैक टू द मेडिकल स्टोर.
1: अच्छा.
2: सो देर इज़ अ प्रोविजन कि आप अपनी एक्सपायरी मेडिसिन को वापस से अपने मेडिकल स्टोर में दे सकते हैं.
1: अच्छा, ये चीज मुझे नहीं लगता किसी को पता भी है.
2: सो दिस इज अ रेगुलेटरी थिंग, यू कैन गिव इट बैक टू द मेडिकल स्टोर.
1: अच्छा.
2: एंड दे नो हाउ टू गेट बैक द सेफर डिस्पोजल.
1: किसी को मेडिकल स्टोर में दे दें या जिससे आपकी जान पहचाने,
2: राइट? बिकॉज आपको पता ही है कि लाइक अगर मैं किसी को बोलूंगी एक्सपायर मेडिसिन आप ले लो, तो इतनी इजिली कोई भी मेडिकल शॉप आपको एंटरटेन नहीं करेगा, बिकॉज उनके टारगेट्स टोटली अलग हैं. बट हाँ, अगर आप एक या दो बार इंसिस्ट करोगे एंड इफ यू विल गो एंड टेल दैट व्हाट शुड वी डू, देन इट माइट पॉसिबल. द वे आउट इज दिस वन. द सेकेंड वे आउट इज, दैट इज द मोस्ट सिंपलर वन, कि आप अपने घर में एक बायो हजार्ड बैग और बायो हजार्ड बॉक्स, बोथ द फॉर्म्स, यू कैन बाय इट फ्रॉम द अमेजोन, यू कैन बाय इट फ्रॉम योर नियर बाय मेडिकल शॉप ऑल्सो, एंड यू पुट ऑल दोज एक्सपायरी मेडिसन और द लिक्विड इन दैट, एंड देन यू कैन गिव इट टू द गार्बेज कलेक्टर.
1: मतलब एज इट इज बॉटल्स और पूरे जो स्ट्रिप्स होती हैं मेडिसिन की, वो उसमें डाल दें,
2: वो उसमें आप डाल दें और आप गार्बेज कलेक्टर को दे दें. एंड हमारी जितनी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, इवन इन द फरीदाबाद, दे हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गुड मैन पावर टू गिव दैट द सेफर डिस्पोजल टू दोज मेडिसिन एज वेल एज टू द सीरप्स एंड ऑल.
1: ओके, यानी उनके पास ये तरीका होता है कि इनको कैसे डिस्पोज या डिस्कार्ड करना है. ओके.
2: हाँ जी.
1: प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि इन चीज़ों को कैसे डिस्पोज किया जाए, कैसे जो है इनको फेंकना है. अब वो क्या करते हैं कि जो कूड़ा हमारे घर में इकट्ठा हो रहा है, जिसमें हम ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट को अलग कर भी दें, तो भी वो या तो ड्राई में डाल देते हैं या फिर दवाइयों को ऐसे खोल के और पूरी टैबलेट्स को वेट में डाल देते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस.
2: नो,
1: आप दवाइयों को
2: absolutely.
1: अगर अगर छिलकों के बीच में डाल रहे हैं और उस छिलके को खाद बनाने के लिए आगे यूज किया जाता है, तो ये तो मुझे लगता है ये जहर आप घोल रहे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दीक्षा इसमें, बट द थिंग इज हम लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। सो हमारी अधिकतर पॉपुलेशन दे जस्ट थिंक दैट वी हैव टू गेट रिड ऑफ द एक्सपायरी थिंग।
1: एब्सोल्युटली,
2: एंड वो गेट रिड ऑफ द एक्सपायरी टैबलेट्स और मेडिसिन इज नॉट द सॉल्यूशन, बिकॉज वन और द अदर वे हम लोग एक तह के ऊपर दूसरी तह के ऊपर तीसरी तह टॉक्सिकेंट्स बढ़ाए जा रहे हैं एनवायरमेंट में, और वो समहाउ इफ नॉट फॉर हमारी जनरेशन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द फर्दर जनरेशन टू सर्वाइव।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत सही बात है कि आप जो दवाइयाँ अपने ठीक होने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्सपायर होने के बाद आप दूसरों की जिंदगियों को और टू सम एक्सटेंट अपनी लाइफ को भी खतरे में डाल रहे हैं जब आप उनको सही तरीके से डिस्पोज नहीं करेंगे।
2: एंड अनदर थिंग इज इफ यू गो फॉर द साइंटिफिक लिटरेचर, दीज सिंपल टॉक्सिकेंट्स दे आर नॉट हार्मिंग दिस जनरेशन। सो द इम्पैक्ट, द नुकसान जो इन दवाइयों से हमें हो रहा है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन है। आपने ये सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजरी, सो ऑल दीज गैस कॉम्पोनेंट्स, ऑल दीज सॉइल टॉक्सिकेंट्स, वाटर टॉक्सिकेंट्स, ये केवल हमारी इस जनरेशन को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एंड दैट कैन बी वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द प्रेवलेंस ऑफ ऑल दीज क्रोनिक डिजीजेस। सो अगर हम बोलें कि बच्चों में भी कुछ बीमारियों के लक्षण शुरू हो गए हैं, दैट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है डिजीज की ससेप्टेबिलिटी के लिए।
1: बिल्कुल, यानी दुनिया भर की बीमारियां आ रही हैं और इन बीमारियों से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि जितना भी नेचुरल हो और नेचर भी प्योर हो, तब नेचुरल का फायदा है। अगर आप नेचुरल भी इम्प्योरिटीज के साथ ले रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो आपको नुकसान ही पहुँचाएगा। डॉक्टर विनीता, मेडिकल वेस्ट में अब बात करते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें, इक्विपमेंट्स होते हैं, थर्मोमीटर्स होते हैं, थोड़े टाइम पहले तक अभी भी बहुत लोगों के घर में आपको मर्क्यूरी वाले थर्मोमीटर मिल जाएंगे जो ग्लास के होते हैं। सबसे बड़ी खतरनाक बात ये होती है कि उसमें मर्क्यूरी होता है, और जो मर्क्यूरी को आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, वो ऐसा होता है एक मोती की तरह, आप गिर भी जाएगा तो भी वो आपके सामने ऐसा रहेगा, आप उसको समेट नहीं सकते, और ये बहुत डेंजरस होता है, विच इज हजार्डस। और दूसरी चीज़ ये है, इसमें ग्लास होता है, कांच होता है, ये एक हो गया। दूसरा, थर्मोमीटर जो होते हैं हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर्स आ गए हैं आजकल, ये प्लास्टिक के बने होते हैं। अब प्लास्टिक के साथ इनमें बैटरीज भी होती है, इसके साथ साथ हमारे पास जो सिरिंजेस हैं इंसुलिन की हो गई या नॉर्मल ब्लड थिनर्स या जो भी XYZ सिरिंजेस का इस्तेमाल रेगुलरली किया जाता है, वो बैंडेजेस, ये सारी चीज़ें भी क्या बायोहैजार्डस वाला जो आपने बताया है बैग, इसमें एज इट इज डाल देनी चाहिए या फिर इसको किसी चीज में रैप करके डालें, क्या एक प्रोसेस क्या होगा इसका?
2: राइट, तो आपने बिल्कुल सही बात की है। तो जितने भी होम मेडिकल वेस्ट हैं उनको हम एक टर्म देते हैं, जो आपके निडल्स हैं, सिरिंजेस हैं, लेंसेट्स हैं, इंसुलिन पेंस हैं, ऑल दीज आर कंसिडर एज एन शार्प्स बिकॉज दे हैव अ शार्प पॉइंटेड निडल, एंड यू कैन नॉट डायरेक्टली पुट दीज शार्प्स इन टू द बैग्स बिकॉज आपके बैग्स पॉलिथिन के बने हैं, और ये जो शार्प्स हैं ये ऑल टुगेदर हार्मफुल फॉर द एनिमल्स एक्चुअली जो उनको ईट करें। सो फॉर शार्प ऑल्सो देर इज़ अ मशीन विच इज़ लाइक एग्जिस्टिंग इन अमेजोन दैट वी कॉल्ड एज निडल कटर, एंड दैट निडल कटर इज यू कैन कट द शार्प एज ऑफ द सिरिंज, एंड इन दैट निडल कटर आप 100 से ज़्यादा निडल्स को रख सकते हैं। सो दैट इज़ द वन वे ऑफ डिस्कार्ड, एंड अनदर वे ऑफ डिस्कार्ड इज़ कि आप निडल के लिए एक अलग से बॉक्स बनाएं, उस निडल को आप बायोहजार्ड बैग में ना डालें। एंड अगर आप केमिकल की बात करें, आपने बिल्कुल सही बोला, मरकरी जो है वो एक हैवी मेटल है, एंड हैवी मेटल के इवन वेरी वेरी वेरी लो ट्रेसेस भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन इम्पैक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ को। बट इसके लिए आपको, फिर से मैं सिंपली बोलूँगी कि आपको वो मरकरी को एक अलग से बैग में ही रखना होगा, और उसको आपको हजार्डस वेस्ट कलेक्शन फैसिलिटी को देना होगा। ये सब बातें हम जब करते हैं तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको एक रूटीन में अपने घर में और अपने नेबरहुड में इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है। बिकॉज हम बोलें कि थर्मामीटर ब्रेक हो गया, थर्मामीटर ब्रेक हो गया, इट इज़ नॉट द रेगुलर इवेंट। ये आपका रोज रोज नहीं होता है, ये इट्स लाइक एक साल में एक बार हो गया। अगर एक साल में एक बार आप किसी चीज़ को एक सेफर डिस्पोजल पॉलिसी के थ्रू डिस्पोज करते हैं, सो दैट विल टेक ओनली फाइव टू टेन मिनट्स ऑफ योर्स। बट अगर आप इसका लार्जर इम्पैक्ट देखें तो आपने एनवायरमेंट को, अपनी जनरेशन को, जनरेशन इज़ लाइक नॉट फाइव और टेन, लॉन्ग टर्म में आपने उसको सेव किया है। सो वो आप एक तरह से अपने अपने वातावरण को सुरक्षित करने के लिए जो 10 मिनट दे रहे हैं, दैट मेक्स अ वेरी बिग चेंज इन लॉन्गर टर्म। एंड इन द एंड द अदर थिंग विच यू आर सेइंग इज द बैंडेजेस एंड देन द स्वैब्स एंड देन कॉटन, ऑल दिस हैज़ दैट इन्फेक्शंस विद देम। सो इन्फेक्शंस का मतलब है माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स हैं, अगर आप उनको नॉर्मल कचरे के साथ डाल देंगे, जो वो कचरा देख रहा है, बहुत चांसेस है कि वो उसको डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो अगेन द सॉल्यूशन इज़ द सेम, दैट ऑल द इन्फेक्शियस थिंग, कॉटन, बैंडेजेस, दोज आर द थिंग्स यू कैन पुट डायरेक्टली इन टू द बायोहजार्ड बॉक्स और द बायोहजार्ड बैग एंड देन गिव देम सेपरेटली टू द गार्बेज कलेक्टर। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, दैट इज़ लाइक डेंटल प्लास्टिक।
1: डेंटल प्लास्टिक,
2: राइट। सो डेंटल प्लास्टिक इज़ लाइक आप शायद ये जानते होंगे, जो यंग जनरेशन जिनके जो टूथ अलाइनमेंट्स हैं वो थोड़ा सा नॉर्मल नहीं होते, इट्स लाइक हेजी टूथ अलाइनमेंट्स, एंड देयर आर कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग द क्लियर विजिबल अलाइनर्स। सो क्लियर विजिबल अलाइनर्स आर द प्लास्टिक अलाइनर्स विच आर यूज बाय द मैनी ऑफ द यंगस्टर्स फॉर लुक दैम बेटर। एंड दीज अलाइनर्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड द थिंग इज दैट वी डोंट हैव एनी पॉलिसी फॉर द सेफर डिस्पोजल ऑफ दोज प्लास्टिक अलाइनर्स।
1: जी, मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहती हूँ, हम उन अलाइनर्स की बात करें जो आजकल चल गए हैं दांतों को पहले ठीक करने के लिए, उनकी शेप को ठीक करने के लिए। पहले जो दांतों में ब्रेसेस लगाई जाती थी, तार जिनको हम हिंदी में बोलते थे बेसिकली, वो पहले स्टील की होती थी। अब आजकल जो है प्लास्टिक के आने लगे हैं अलाइनर्स, जो कि आपने बहुत एड्स भी देखे होंगे उसमें कि आपके दांतों के ऊपर एक काइंड ऑफ कवर सा लगा दिया जाएगा जो कि ट्रांसपेरेंट होगा और ये विजिबल नहीं होगा।
2: जी जी।
1: सो ये बिल्कुल विजिबिलिटी इसकी नहीं होती है, और इसके साथ आप इस्तेमाल करके इसको खाना भी खा सकते हैं, ये आपके दांतों को ख़राब नहीं दिखाएगा और धीरे धीरे उसकी शेप को नॉर्मल कर देगा। इसके बारे में बात करें आप डॉक्टर विनीता।
2: जी जी, खाना एडवाइजेबल नहीं है।
1: अच्छा,
2: डॉक्टर कहते हैं कि जब आप कुछ खा रहे हैं या जब आप कुछ पी रहे हैं तो आपको वो अलाइनर्स को उतारना है।
1: ओके,
2: राइट, बिकॉज द च्यूइंग प्रोसेस एंड देन द इंग्री

0: ingredient of the food that can increase the leach outs of those aligners, so it is not advisable. And another thing for this is like braces, aap log long term ke liye pehante hain, right? But ye jo aligners hain, these aligners you have to change after every 14 days. So agar aap 14 din ke baad aligners ko utar rahe hain aur naye aligners pehen rahe hain, aap un aligners ka kya kar rahe hain? That's what the safer disposal of the infectious plastic. Because
1: क्या dentist को वापस नहीं दिए जाते?
0: The procedure is like that only. If I go with the policies and go with the, so that is like the responsible of the manufacturer. So the aligners company who are making them, they can get it back from the dentist itself. But in regular practice, this is not been done. एंड यहीं पे एक हमने मानव रचना ने अपना एक इनोवेशन स्टार्ट किया है मानव रचना डेंटल कॉलेज के साथ, दैट हम लोग एक ऐप बनाया है जिसका नाम है अलाइन ट्रैक. एंड ये अलाइन ट्रैक ऐप एंड्रॉयड और आपके एप्पल आईफोन दोनों पे अवेलेबल है. द मेजर एम, द मेन एम ऑफ दिस अलाइन ट्रैक इज टू कलेक्ट दोज अलाइनर्स फ्रॉम योर होम.
1: ओके.
0: Right, and they collect it from your home, then they go for the disinfection, disinfection of that.
1: Okay, मतलब chemical process.
0: Chemical process, and then it goes for the recycling.
1: Okay.
0: So that is like a Manav Rachna initiative.
1: Okay.
0: That we can dispose of these plastic infectious aligners. In a safer manner.
1: Okay. सो मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाना चाहती हूँ हमारे लिसनर्स को, जिनको समझ आ गया, जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उनको तो ये चीज़ समझ आ गई होगी, लेकिन मैं जिनका मेडिकल फील्ड में कोई लेना देना नहीं है उनको मैं बहुत सिंपल भाषा में बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर विनीता एक प्रोफेसर हैं बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में, और इन्होंने एक सिस्टम पूरा डिवेलप किया है मानव रचना डेंटल कॉलेज के साथ मिलकर, और वो सिस्टम एक ऐप के थ्रू चलता है. आप ये ऐप जो है ऐप स्टोर या प्ले स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस ऐप के माध्यम से आप जो अलाइनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक अलाइनर्स जो आजकल बहुत कॉमन है, बच्चों में होते हैं, बड़े भी लोग लगाते हैं अपने दांतों को एक फिटिंग देने के लिए, उनकी शेप को ठीक करने के लिए, अलाइनमेंट ठीक करने के लिए बेसिकली, ये अलाइनर्स आप 14-15 दिनों से ज़्यादा एक सेट ऑफ अलाइनर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते. टेक्निकली ये होता है, क्यों डॉक्टर विनीता, यही एक प्रोसेस है?
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं कि आपके मुँह में प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक्स अंदर जा रहे हैं, आप अगर उसके साथ खाना खा रहे हैं तो वो और ज़्यादा खतरनाक है. सो टेक्निकली इसको हर 15 दिन में नया सेट लेना होता है जो आपके डेंटिस्ट आपको देंगे. अब अगर आपने नया सेट लिया है और आप डेंटिस्ट को अपना पुराना सेट रिटर्न नहीं कर रहे हैं, जिनके पास एक प्रॉपर प्रोसेस है उसको रिसाइकल करने का या डिस्कार्ड करने का, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारे अलाइनर्स के सेट इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं और ना ही इसको फेंकने की ज़रूरत है. आपको सिर्फ उस ऐप पे अपनी डिटेल्स डाल के उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप ये अलाइनर्स कलेक्ट करके रखिए और इसको रिसाइकिल कीजिए. मतलब आपको सिर्फ उस ऐप के थ्रू अपने अलाइनर्स उनको दे देने हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल. एंड आप जब एड्रेस डालेंगे देन नियर बाय लोकेशन पे हमारे collectors hain, those who will come to you and then they will collect your aligner.
1: To entire India, sab jagah, ya abhi Delhi NCR?
0: To start with, we are dealing with Delhi NCR.
1: Delhi NCR, okay. Mujhe ek bar app ka naam dobara bata dijiye taki hum logon ko bata saken.
0: So, is app ka naam hai Align Track.
1: Align Track, okay. Align Track ke madhyam se aap ईजिली अपने जो डेंटल अलाइनर्स हैं उनको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं. आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक बॉक्स में वो उस व्यक्ति को पकड़ाना है जो कलेक्ट करने के लिए आएगा, और इस ऐप पे अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर वगैरह डाल के रजिस्टर करके बस रिक्वेस्ट करनी है. बहुत सिंपल सी ऐप है. अगर आप अलाइनर्स इस्तेमाल करें तो आपको पता ही होगा कि मिनिमम एक साल के लिए अलाइनर्स लगाने पड़ते हैं जनरल केसेस में. कई बार कुछ केसेस में ये ज़्यादा लंबे समय तक भी होते हैं, क्योंकि दांत जो होते हैं वो कई बार लाइन में या अलाइनमेंट में थोड़ा सा वक्त लग जाता है. ख़ासतौर पर से ये 16-17 साल की एज में लगने शुरू हो जाते हैं, और फिर कई बार लोग 30-35 साल तक भी लगाते हैं. कई लोग लेट भी लगाते हैं क्योंकि उनको अब लग रहा होता है कि फेस को थोड़ा और फिनिशिंग देना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए. और अगर आप फील्ड में हैं, शो बिजनेस में हैं, तो ये बहुत कॉमन हो जाते हैं. बहुत बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, फिल्म स्टार्स या सेलिब्रिटीज़ या व्लॉगर्स ये इनका इस्तेमाल करते हैं. भले ही आपको कैमरे पर दिखता नहीं होगा क्योंकि उस टाइम हटा लिए जाते होंगे, बट अलाइनर्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं. जिस तरीके से आप नॉर्मल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास अच्छे फ़ोन होते हैं, ऐसे अच्छा फेस भी बहुत ज़रूरी है जिसमें अलाइनर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल दीक्षा. और एक और चीज़ है जो इस अलाइन ट्रैक में है कि आप अपनी कितने घंटे आपने अलाइनर पहना है. यू कैन ट्रैक योर प्रोसेस ऑल्सो एंड इट दिस हैज द रिमाइंडर्स ऑल्सो दैट इफ़ यू आर ईटिंग फूड यू हैव टू गेट ऑफ फ्रॉम दीज अलाइनर्स. सो यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस ऑल्सो ऑफ योर अलाइनर ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद योर डेंटिस्ट. So that is the another feature. So it is not only the plastic collection. You can track
1: guidance bhi mil sakte.
0: Guidance and then process of tracking your treatment.
1: Okay, yani aapka treatment sahi chal raha hai, nahi chal raha hai, ya phir aap jo kar rahi hai wo sahi process follow kar rahi hai ya nahi kar rahi hai. Kyunki kai baar hum dentist se regular touch mein nahi reh paate. Jab ek baar ek treatment kara lete hain to 3-4 mahine gayab rehte hain.
0: Because it is advisable ki aap ye aligners ko minimum 12 se 14 ghante pehne.
1: तब जाके वो शेप देंगे.
0: राइट. तो अगर आप वो पहन ही नहीं पा रहे हैं या अगर आपका वो ड्यूरेशन एक दिन कम है, दो दिन कम है, तो आप वो जो प्रोग्रेस है वो आप ट्रैक कर सकते हैं. दैट इज द अनदर
1: फीचर ऑफ दिस
0: ऐप. फीचर ऑफ दिस.
1: बिल्कुल. सो दोस्तों, ग्रीन ग्रह प्रोग्राम में हमने सिर्फ आपको मेडिकल वेस्ट एट होम को डिस्कार्ड करने या डिस्पोज करने के बारे में नहीं बताया, हमने ये भी बताया कि जो अलाइनर्स का इस्तेमाल आप करते हैं उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है इजीली बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए. बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों को सही तरीके से करने से आप अपने पर्यावरण के लिए कुछ तो बेहतर कर सकते हैं. क्योंकि जब मैं पर्यावरण पर बात करती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझसे बहस करते हैं कि आप प्लास्टिक की थैलियाँ बैन नहीं करवा पा रहे हैं, आप बहुत सारी कंट्रीज़ में जो वॉर्स हो रही हैं उसको नहीं रुकवा पा रहे हैं. वो बातें ठीक हैं कि हम वो नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हम जो कर सकते हैं एटलीस्ट वो ट्राई तो कर सकते हैं. एटलीस्ट अपने घर को तो अपने आसपास के एरिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम कर सकते हैं, जिसमें मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के सही तरीके आज हमने बताए हैं. डॉक्टर विनीता शर्मा ने बताया कि एक बायो हजार्ड का एक बैग आता है जो आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा या फिर आप जो है इसे मेडिकल स्टोर से भी ख़रीद सकते हैं. एक्सपायर्ड दवाइयाँ, सिरिंजेस, ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं और फिर आप गार्बेज कलेक्टर को दे सकते हैं ताकि वो इस बैग को सही तरीके से डिस्पोज कर पाए. ऐसा नहीं है कि वो इसे नॉर्मल कूड़े में मिला देगा, क्योंकि हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो बायो हजार्ड जैसे हॉस्पिटल से निकलता है या फिर कहीं से भी आ रहा है, अगर उनके पास वो मार्किंग होगी तो उसको सही तरीके से डिस्पोज कर पाएंगे. लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी मार्किंग नहीं होती है, हम उसको उस तरीके से पैक करके कभी बताते ही नहीं है कूड़े देने वाले को कि इसमें मेडिकल वेस्ट है, तो इसीलिए वो डिस्पोज ऑफ भी सही तरीके से नहीं हो पाता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छे तरीके से मेरी बात को रखा है.
1: तो डॉक्टर विनीता शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम ग्रीन ग्रह में आई हैं एज एन एक्सपर्ट और आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई और अलाइन ट्रैक ऐप के बारे में बताई, ये हमें बहुत अच्छा लगा. ताकि जो लोग अलाइनर्स का इस्तेमाल करते हैं वो रेगुलरली जो अलाइनर्स चेंज करें उसको कैसे डिस्पोज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.
0: थैंक यू दीक्षा मैम. थैंक यू.
1: तो अभी फिलहाल ग्रीन ग्रह प्रोग्राम में हमने आज बात करी है मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के बारे में जो घरों में इस्तेमाल होता है. लेकिन अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने के किसी और प्रोसेस के बारे में. आज के कार्यक्रम ग्रीन ग्रह में बस इतना ही. इस प्रोग्राम को आपके बीच लेकर आए डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद पीटीसी फाइनेंस लिमिटेड एंड इको क्लब फरीदाबाद. बहुत सारी बातों के बाद अब मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी ऐप यानी इंटरनेट रेडियो मानव रचना को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर ऐप स्टोर से और पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आपको आरजे दीक्षा के साथ ये सारी चर्चा कार्यक्रम ग्रीन ग्रह में मिल जाएगी, जिसे आप दुनिया में कहीं भी शेयर कर सकते हैं. बहुत सारी बातों के बाद अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए फरीदाबाद के पहले रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ. फील गुड फील लाइव. दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ.

सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं। और तब हमें ज़रूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8। और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी कि ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उतक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें सही जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये सब बताते हैं। अगर आप में से किसी को भी अंग दान और देह दान के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जा सकते हैं या हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-120-3648 के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सहायता करके हमें बेहद खुशी होगी। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लक्ष्य है वो आप सभी को अंग दान, जो है ऑर्गन डोनेशन, देह दान यानी बॉडी डोनेशन, और उतक दान, टिश्यू डोनेशन के बारे में जानकारी देना तथा समाज में इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। इस प्रोग्राम में हम डॉक्टरों, अंगदान से जुड़े हुए लोगों से बात करेंगे और अंगदाताओं की कहानियां, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण की जानकारी और आपको इन विषयों को क्यों जानना चाहिए, ये सब बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज हमारे साथ है डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गन इंडिया की। ओवर टू यू डॉक्टर गीतिका।
2: थैंक यू पायल। आज हमारे साथ है डॉक्टर रवि मोहनका। डॉक्टर मोहनका ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई में लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है। हम उनसे आज यकृत यानी कि लिवर की बीमारियों और ट्रांसप्लांट के बारे में जानेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद हमसे जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार। हमारे साथ है डॉक्टर रवि मोहनका, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई से, और हम बात कर रहे हैं यकृत यानी लिवर की विभिन्न बीमारियों और ट्रांसप्लांट के बारे में।
3: नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रवि मोहनका। मैं ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई में एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे लिवर डिजीज के बारे में, किस प्रकार की होती है ये, किस कारण से लिवर डिजीज होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है या इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो लिवर डिजीजेज जो हैं वो मुख्य दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अक्यूट लिवर फेलियर और दूसरी होती है क्रॉनिक लिवर डिजीज या लिवर सिरोसिस। पहले अक्यूट लिवर डिजीज के बारे में बात करते हैं। अक्यूट लिवर डिजीज या अक्यूट लिवर फेलियर जो होता है वो मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन के कारण होता है या फिर कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण भी लिवर फेलियर हो सकता है।

0: किसी भी पर्सन को अगर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई या दवाइयों के कारण अक्यूट लिवर फेलियर हो तो उनको क्या सिम्टम्स होंगे? जॉन्डिस, पीलिया, जिसमें कि आँखों में, पेशाब में या स्किन पे आपको पीलापन दिखेगा। दूसरी चीज़ है कि उन्हें बेहोशी हो सकती है। बेहोशी में या तो पेशेंट्स ज़्यादा सोएंगे या फिर कभी कभी इररिलेवेंट बात भी कर सकते हैं, मतलब बहकी बहकी बातें कर सकते हैं। अगर भी किसी भी पेशेंट को ये सिम्टम्स हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी आपने किसी लिवर के डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि ये सडनली इसमें पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, पेशेंट सीरियस भी हो सकते हैं और उन्हें इमरजेंसी लिवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ये चीज़ कुछ पेशेंट्स में ज़रूरत होती है, ज़्यादातर पेशेंट में दवाइयों से ये प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है और रिवर्स किया जा सकता है। अब ये देखें कि हेपेटाइटिस इन इस अक्यूट लिवर फेलियर को कैसे प्रिवेंट किया जाए। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन जो है ये पानी और खाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो अगर हम अपने खाने और पानी के सफाई की तरफ ध्यान दें तब ये नहीं फैलता है। बारिश के मौसम में खाने और पानी में कंटामिनेशन के चांस ज़्यादा होते हैं, उस समय में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन के भी चांस बढ़ जाते हैं। अगर हम कोई भी दवाई जिसमें लिवर फेलियर का चांस ज़्यादा है ये शुरू करें तो फिर हमें लिवर फंक्शन को चेक करते रहना चाहिए। इस तरीके से अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं लिवर पे तो समय पे दवाई को बंद करके उसका इफ़ेक्ट, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई और दवाइयों के कारण जो अक्यूट लिवर फेलियर होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए साफ खाना खाएं, साफ पानी यूज़ करें और कोई भी नई दवाई जिसका कि इफ़ेक्ट लिवर पे होता है उसको शुरू करने के बाद उसके टेस्ट करा के अगर लिवर पे इफ़ेक्ट हो रहा है तो जल्दी ही उस दवाई को बंद कर दें। इस तरीके से हम लिवर, अक्यूट लिवर फेलियर को बचा सकते हैं, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरे टाइप की लिवर डिजीज होती है क्रॉनिक लिवर डिजीज या लिवर सिरोसिस। इस टाइप के लिवर डिजीज को का मुख्य कारण होता है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन, एल्कोहलिक लिवर डिजीज मतलब शराब के सेवन से लिवर डिजीज जो होती है, और फैटी लिवर डिजीज तो मोटापे के कारण जो लिवर डिजीज होती है, इनको इसके कारण लिवर सिरोसिस या क्रॉनिक लिवर डिजीज होता है। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के कारण जो लिवर सिरोसिस होता है उसको काफ़ी समय लगता है, नॉर्मली 15 से 20, 25 साल भी लग सकते हैं हेपेटाइटिस बी के कारण लिवर सिरोसिस डेवलप होने में। और हमारे पास काफ़ी अच्छी वैक्सीन और काफ़ी अच्छी दवाइयां हैं जिससे हम हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट कर सकते हैं या ट्रीट भी कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने के लिए सभी अडल्ट्स को और सभी बच्चों को वैक्सीन लेनी चाहिए। जो हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट होता है पेशेंट से पेशेंट में वो होता है या तो नीडल्स और सिरिंज के द्वारा, या ब्लड चलाते हैं उससे, या फिर यौन संबंध के थ्रू, या फिर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के। इसको प्रिवेंट करने के लिए जब भी आप नीडल सिरिंज यूज़ करें तो हमेशा डिस्पोजेबल यूज़ करें। जब भी आप ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स चढ़ाएं किसी भी पेशेंट को तो हमेशा टेस्ट करके चढ़ाएं, और जब भी कोई भी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं वो सेफ होनी चाहिए, वो यूज़ करें। हेपेटाइटिस सी को भी प्रिवेंट करने का यही तरीका है कि ब्लड प्रोडक्ट्स या ब्लड चढ़ाएं तो उसको टेस्ट करके यूज़ करें, डिस्पोजेबल सिरिंज या नीडल यूज़ करें, और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करें। अगर इनमें से कोई इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसको ट्रीट करना या कंट्रोल करना मुश्किल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हेपेटाइटिस बी के लिए और हेपेटाइटिस सी के लिए अवेलेबल हैं, जिससे उनका इलाज हो सकता है। तीसरी बीमारी है अल्कोहलिक लिवर डिजीज, जिसके कारण लिवर सिरोसिस होता है। अगर कोई कम मात्रा में या लिमिटेड समय तक अल्कोहल यूज़ करे तो जनरली उससे ज़्यादा सीरियस लिवर डिजीज़ नहीं होती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में थोड़े समय में अल्कोहल यूज़ करे तो उसके कारण सडन लिवर फेलियर हो सकता है, जिसे कहते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। या फिर कोई बहुत समय तक, बहुत सालों तक, 15-20-25 सालों तक अगर अल्कोहल यूज़ करे तो उससे भी लिवर फेलियर हो सकता है, जिसे कहते हैं अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। इस टाइप के लिवर फेलियर को बचाने का एक ही तरीका है कि शराब का या अल्कोहल का सेवन ना करें। लेकिन अगर ऐसा किसी पेशेंट को होता भी है लिवर फेलियर, तो अधिकतर पेशेंट्स में उसको दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स में जिसमें लिवर फेलियर बहुत ज़्यादा सीवियर है, उनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। चौथी प्रॉब्लम है फैटी लिवर डिजीज़, जो कि हमारे सोसाइटी में और इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत कॉमन हो रहा है अभी। इस प्रकार की लिवर डिजीज़ का मेन कारण है डायबिटीज़, जिसका कि कंट्रोल ना जो कंट्रोल में ना है, नहीं है, हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। अगर हम ये तीनों प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करें तो हम फैटी लिवर डिजीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इवन रिवर्स कर सकते हैं। अगर इस स्टेज पे हम इस पे ध्यान ना दें और इसको रिवर्स ना कर पाएं तो नेक्स्ट स्टेज होती है नैश, जिसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टेट हेपेटाइटिस। इस स्टेज पे भी बीमारी रिवर्सिबल है, लेकिन डायग्नोसिस होना ज़रूरी है और वजन कम करना, डायबिटीज़ कंट्रोल करना आवश्यक है। थर्ड स्टेज है अनफॉर्चुनेटली लिवर सिरोसिस, जो कि इरिवर्सिबल है। एक बार किसी पेशेंट को लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाए, उसके बाद फिर उनको लिवर सिरोसिस को ठीक नहीं कर सकते हैं। उनकी दवाइयाँ चलती है, उससे लिवर डिजीज़ को स्टेबल रखा जा सकता है। वजन कम करना, डायबिटीज़ कंट्रोल करना, ये अनिवार्य हो जाता है। लेकिन जिस पेशेंट को लिवर फेलियर या लिवर डिकॉम्पनसेशन डेवलप हो जाए, मतलब उनको जॉन्डिस हो जाए, या पेट में पानी भर रहा है, या पैरों में सूजन आ रही है, या बेहोशी हो रही है, या ब्लीडिंग हो रही है, इस प्रकार से अगर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाए किसी को लिवर फेलियर का, लिवर सिरोसिस का, उन पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से हम लिवर फेलियर अक्यूट या क्रॉनिक दोनों को जान सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर डेवलप हो तो दवाइयों से या ट्रांसप्लांट से ठीक कर सकते हैं।
1: हमारे साथ है डॉक्टर रवि मोहन का, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई से, और हम बात कर रहे हैं यकृत यानी लिवर की विभिन्न बीमारियों और ट्रांसप्लांट के बारे में। डॉक्टर मोहन का, हम जानना चाहेंगे कि लिवर ट्रांसप्लांट क्या होता है और किन पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट यानी कि यकृत के प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती है और यह प्रत्यारोपण कैसे किया जाता है।
0: लिवर फेलियर पेशेंट जो होते हैं उनको काफ़ी प्रकार की तकलीफें वो महसूस करते हैं और सफ़र करते हैं, जैसे कि असाइटिस। असाइटिस मतलब पेट में पानी भरना, पैरों में सूजन आना। दूसरी बात होती है उनको जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, कभी कभी पेशाब में पीलापन आ जाता है और स्किन में भी पीलापन आ जाता है। फिर उनको होता है इंसेफलोपैथी। इंसेफलोपैथी में ये होता है कि पेशेंट्स को बेहोशी हो सकती है, कुछ इररिलेवेंट बात कर सकते हैं, वो बहकी बहकी बातें कर सकते हैं, और बेहोशी ज़्यादा बढ़ने से कोमा भी हो सकता है। इसके अलावा लिवर फेलियर पेशेंट्स को ब्लीड हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है जिसमें ब्लड आए, या इवन किसी किसी पेशेंट्स को लिवर फेलियर होने से किडनी पे फेलियर हो सकता है या फिर लंग्स में भी फेलियर हो सकता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स होती हैं लिवर फेलियर में पेशेंट्स को। लेकिन हर पेशेंट जिनको कि लिवर डिजीज है या लिवर सिरोसिस है, सबको लिवर फेलियर नहीं होता है। मुख्य कारण जो होते हैं लिवर फेलियर के और लिवर सिरोसिस के, वो होते हैं हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन, शराब के सेवन से लिवर सिरोसिस होता है, और फैटी लिवर से लिवर सिरोसिस होता है। दूसरे प्रकार का लिवर फेलियर जो होता है उसे कहते हैं अक्यूट लिवर फेलियर। अक्यूट लिवर फेलियर में बहुत यंग पेशेंट्स को सडन लिवर फेलियर हो जाता है, एकदम शॉर्ट पीरियड में लिवर फेलियर हो जाता है, और ऐसे लिवर फेलियर के कारण होते हैं हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन, और कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी लिवर फेलियर इस प्रकार का हो सकता है। हर पेशेंट जिसको लिवर सिरोसिस है या अक्यूट लिवर फेलियर है, उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती है। जो पेशेंट को लिवर सिरोसिस के साथ में लिवर फेलियर के सिम्टम्स हैं या अक्यूट लिवर फेलियर के साथ में रिकवरी नहीं हो रही है, उनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। लिवर ट्रांसप्लांट में हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट का खुद का खराब लिवर है, जो सिरोसिस हो चुका है जिसमें, या जिसमें लिवर पूरी तरीके से फेल हो चुका है, जिसको लिवर निक्रोसिस कहते हैं, उसको निकाल दिया जाता है और नया लिवर उसमें लगाया जाता है। ये प्रोसेस में जो भी ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त की छोटी छोटी वेसल्स हैं, उन सबको लिवर के अंदर ज्वाइन करके और साथ साथ में बाइल डक्ट को ज्वाइन किया जाता है। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो लिवर के अंदर खून पहुंचाने का काम करती हैं, और बाइल डक्ट जो होता है, जो लिवर बाइल बनाता है, उसको आंतरी तक या इंटेस्टाइन तक पहुंचाने का काम करता है। ये ऑपरेशन बड़ा होता है, करीब 10 से 12 घंटे चलता है, और इसमें रिस्क होता है ब्लीडिंग का और बाकी भी प्रॉब्लम्स होने का रिस्क हो सकता है। लेकिन कॉमनली ये ऑपरेशन होने के कारण इसका सक्सेस रेट हमारी कंट्री में और दुनिया में बाकी जगहों भी करीब 85-90% सक्सेस रेट है। दो प्रकार से लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। पहला होता है कैडेवरिक या डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट, और दूसरा होता है लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट। कैडेवरिक ट्रांसप्लांट में जो लिवर लगाया जाता है पेशेंट को, वो एक ब्रेन डेड व्यक्ति से आता है। ब्रेन डेड व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जिनका कि ब्रेन डैमेज इरिवर्सिबल या परमानेंट ब्रेन डैमेज की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। ऐसे पेशेंट से अगर लिवर लगाया जाए, ट्रांसप्लांट के लिए यूज किया जाए, तो उसे डिजीज डोनर या कैडेवरिक ट्रांसप्लांट कहते हैं। दूसरे तरीके से ट्रांसप्लांट होता है कि लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट। लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट में ये होता है कि कोई भी फैमिली मेम्बर अपना आधा लिवर या एक लोब लिवर का डोनेट कर सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी में दो किडनी होती है, लेकिन हमारे बॉडी में एक ही लिवर होता है, फिर भी उसको दो लोब्स होते हैं। इसी वजह से एक लोब को डोनेट करके हम ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। द लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट का सबसे मुख्य फायदा यह है कि उसमें कोई वेटिंग टाइम नहीं होता है, जबकि कैडेवरिक ट्रांसप्लांट या डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट में वेटिंग टाइम होता है। क्योंकि हमारे देश में जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, और जितने डोनेशंस हर साल होते हैं कैडेवरिक डोनेशंस, उसमें काफ़ी गैप है। इसीलिए जनरली कुछ महीनों तक या कई बार कुछ सालों तक वेट करके ही लिवर मिल पाता है कैडेवरिक ट्रांसप्लांट के लिए। जबकि लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट, जो कि फैमिली मेंबर से डोनेशन हो रहा है, उसमें कोई वेटिंग टाइम नहीं होता है। नॉर्मली वेस्टर्न कंट्रीज में कैडेवरिक ट्रांसप्लांट ज़्यादा किया जाता है, और ईस्टर्न कंट्रीज में लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट ज़्यादा किया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो ऑर्गन डोनेशन वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा है, जैसे कि US में, UK में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इन कंट्रीज़ में ऑर्गन डोनेशन ज़्यादा होने से वहाँ पे कैडेवरिक ट्रांसप्लांट ज़्यादा होता है। हमारी कंट्री में, कोरिया में, जापान में, इन कंट्रीज में ऑर्गन डोनेशन कम होता है, इसीलिए लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट ज़्यादा किया जाता है और इसी वजह से इन कंट्रीज में ट्रांसप्लांट्स काफ़ी सक्सेसफुल भी है। ऑलमोस्ट 90% सक्सेस रेट है दोनों प्रकार के ट्रांसप्लांट का। ऑल्दो कैडेवर ट्रांसप्लांट में एक पूरा लिवर दिया जाता है और लिविंग डोनर में आधा लिवर दिया जाता है, फिर भी दोनों के रिजल्ट्स काफ़ी सिमिलर हैं। और कैडेवरिक ट्रांसप्लांट में डिसएडवांटेज ये है कि भाई वेटिंग टाइम होता है, लेकिन लिविंग डोनर में वेटिंग टाइम नहीं होता है। और एडवांटेज ये भी है कि जो लिविंग डोनर में आधा लिवर होता है वो ग्रो करके पूरे लिवर का साइज बन जाता है करीब कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में।
1: थैंक यू डॉक्टर मोहन का, इन सभी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे सुनने वालों को यह सब महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद।
2: जैसे कि आप सभी जान गए हैं कि अंगदान एक बेहद खूबसूरत विरासत है जिसके जरिए हम मृत्यु में भी 8 लोगों की जिंदगी खुशनुमा बना सकते हैं। मैं आप सभी सुनने वालों को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं या आप हमें हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9650952810 या फिर आप हमें info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं और कॉल करना चाहें तो इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं जो है 0114183-8382। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भरकर अनेक जिंदगियों को आशा की किरण दिखा सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दीजिएगा। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा जिसे आप सबको दिखाइए और दूसरों को प्रेरित भी करिए। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होने की आशा करती हूँ। हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।
3: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078 या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। www.organindia.org पर जाकर अपना फॉर्म भरें और अपना ऑर्गन डोनर कार्ड प्राप्त करें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, Feel Good, Feel Life।
2: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा मोटिवेशनल प्रोग्राम जो आपको सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करता है बल्कि आपको ये बताता है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर हम उन महान व्यक्तियों की कहानियाँ लेकर आते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने लगन से एक मुकाम को हासिल किया है और एक मिसाल कायम की है। कि जिंदगी में हमें सिर्फ प्रेरणा ही नहीं मिलती है बल्कि एक ऐसे अनमोल जीवन के सबक भी मिलते हैं जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जिंदगी में ना हर इंसान के सामने चुनौतियां आती है। आपको कोई ना कोई ये चीज बताता होगा कि यार आज ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, बहुत सी चीजें होंगी। शायद आपने भी ये चीजें रियलाइज करी होंगी। कभी परिस्थितियां साथ नहीं देती हैं तो कभी साधन कम होते हैं और कभी रास्ता बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, इन मुश्किलों के सामने झुकते नहीं है, जी हाँ, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। आज हम एक ऐसी ही प्रेरणादायक लेडी की, जी हाँ, एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज का ये खास एपिसोड जिसके लिए है, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी एक ऐसी महिला जिन्होंने ओडिशा के एक छोटे से गांव से अपना सफर शुरू किया और भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद यानी कि राष्ट्रपति के पद तक पहुंचकर इतिहास रच दिया। उनकी कहानी हमें ये बताती है कि अगर इरादे आपके मजबूत हो, मेहनत अगर आपकी सच्ची हो और हौसला आपका बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती आपसे। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई कठिन परिस्थितियों का सामना भी किया है। आर्थिक चुनौतियां हो, सामाजिक बाधाएं हो और व्यक्तिगत दुखों के बाद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। जी हाँ, हर मुश्किल के बाद वो और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरी है और आगे बढ़ती रही है। आज के इस खास एपिसोड में हम उनके बचपन से लेकर उनके आज तक की जो भी उनकी कहानी है उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उनकी जर्नी के साथ आज हम चलने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल होने वाली है ये जर्नी क्योंकि आज हम राष्ट्रपति की बात करने वाले हैं, उनकी जर्नी की बात करने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको अगर ये जर्नी सुननी है ना तो आपको जुड़ जाना है रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, सिर्फ और सिर्फ आरजी स्नेहा के साथ। और प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं वो है सक्सेस मंत्रा, जहां पर आपको ना सक्सेस होने के लिए हम मोटिवेट कर ही देंगे। तो बस इसलिए जुड़ रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना पर। फील गुड, फील

0: वेलकम बैक दोस्तों,
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको सिर्फ इंस्पायर ही नहीं करता है लोगों की जर्नी से, बल्कि आपको मोटिवेट भी करता है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और आज जिस जर्नी के साथ हम चल रहे हैं, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, जिनको जान रहे हैं, वो है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। जी हाँ, इनकी प्रेरणादायक कहानी, इनकी जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं। पिछले सेगमेंट में हमने उनके सफर का एक छोटा सा परिचय आपको दिया था। चलिए अब उनके बचपन की जो शुरुआती जीवन है उससे शुरुआत करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20th जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव ऊपरबेड़ा में हुआ था। वो संतल आदिवासी समुदाय से संबंध रखती हैं। उनका बचपन बहुत ही सादगी और सीमित साधनों के बीच बीता। गांव में आज की तरह सुविधाएं तो नहीं थी, ना शिक्षा थी, ना स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी काफी सीमित थे। लेकिन इन सब के बीच एक चीज बहुत मजबूत थी, वो था उनकी सीखने की इच्छा और आगे बढ़ने का जज्बा। बचपन से ही द्रौपदी मुर्मू जी ने पढ़ाई में अपनी रुचि रखी थी। उनके परिवार ने भी उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उस समय गांव की कई लड़कियां स्कूल तक नहीं पहुंच पाती थीं, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखा। दोस्तों, जब हम किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुनते हैं तो अक्सर उसकी उपलब्धियां देखते हैं, लेकिन उन उपलब्धियों के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष होता है ये बहुत कम लोग जान पाते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी भी इस बात का सबूत देती है। एक छोटे से गांव की लड़की जिसके पास बहुत अधिक सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने सपने देखने की हिम्मत को और उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करी। उनका बचपन हमें ये सिखाता है कि जन्म की परिस्थितियां हमारा भविष्य तय नहीं करती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कई बार ऐसे सोचते हैं कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, या फिर रिसोर्सेज नहीं है, या फिर अपॉर्चुनिटीज वो अगर कम है तो शायद हम सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन सच बात तो ये है कि सफलता की शुरुआत हमारी सोच और हमारे हौसले से होती है। द्रौपदी मुर्मू जी ने बचपन से ही ये दिखा दिया था कि अगर मन में सीखने की लगन हो और कुछ करके दिखाने का जज्बा हो तो कोई भी रुकावट आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। और आज के इस खास सेगमेंट का सक्सेस मंत्रा है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर आपका हौसला मजबूत हो तो सपना पूरा किया जा सकता है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको मोटिवेट करता है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। साथ ही हम ऐसी जर्नी, ऐसी कहानियां लेकर आते हैं, उनकी लाइफ की जर्नी बताते हैं ताकि आप उससे ना मोटिवेट हो सके, क्योंकि लोगों के पास शुरू से ही सब कुछ हो ऐसा जरूरी नहीं है। करने वाले ना थोड़े कम रिसोर्सेज में भी कुछ ना कुछ जरूर कर लेते हैं। और आज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है भारत की राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी की। उनके जीवन के सफर को आज हम करीब से जान रहे हैं। पिछले सेगमेंट पे हमने उनके बचपन और उनकी परिस्थितियों के बारे में बात की, जहां से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। अब बात करते हैं उनकी पढ़ाई और उनके करियर के पहले कदम की। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी ने बचपन से ही शिक्षा को अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया था। गाँव से निकलकर उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर भुवनेश्वर जाकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उस समय एक आदिवासी परिवार की बेटी का गांव से बाहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने कभी मुश्किलों को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी ने ओडिशा सरकार की एक विभाग में काम किया। ये उनकी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत थी। इस दौरान उन्होंने अनुशासन, जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य निभाए, लेकिन उनका मन सिर्फ नौकरी तक ही सीमित नहीं था, वो समाज के लिए कुछ ज्यादा करना चाहती थी। बाद में उन्होंने एक स्कूल में टीचर के रूप में भी सेवा दी। टीचर बनना उनके लिए सिर्फ एक प्रोफेशन ही नहीं था, बल्कि समाज को बेहतर बनाने का एक माध्यम था। वो बच्चों को पढ़ाती थी और उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देने की कोशिश भी करती थी। इसी दौरान उनका संपर्क आम लोगों और उनकी समस्याओं से और ज्यादा हुआ। दोस्तों, शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देती है, बल्कि हमें सोचने, समझने और सही फैसले लेने की भी शक्ति देती है। तो इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी पढ़ाई और काम के माध्यम से ये साबित कर दिया था कि अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो जिंदगी आपको नए रास्ते जरूर दिखाती है। उनकी जर्नी हमें ये बताती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है और आगे की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है। एक टीचर और एक कर्मचारी के रूप में जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया, वही आगे चलकर उनके लीडरशिप सफर की मजबूत नींव बना। आज की सेगमेंट का सक्सेस मंत्र है, शिक्षा और सीखने की आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी की प्रेरणादायक जर्नी के बारे में। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे उन्होंने पढ़ाई और टीचिंग के माध्यम से अपनी पहचान बनाई। अब बात करते हैं उस मोड़ की जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। जी हाँ, वो था राजनीति और जनसेवा का सफर। द्रौपदी मुर्मू जी ने बचपन से ही लोगों की मदद करने और समाज के लिए कुछ करने की सोच रखी थी। टीचर के रूप में काम करते हुए उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से देखा। उन्हें ये महसूस हुआ कि अगर समाज में बड़ा बदलाव लाना है तो लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज बनना जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उनकी शुरुआत बहुत छोटे स्तर से हुई। उन्होंने उड़ीसा के रायरंगपुर नगर पंचायत में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीत लिया। उनकी ईमानदारी, सरलता और लोगों से जुड़े रहने की आदत ने उन्हें अलग पहचान दी। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए शुरुआत भी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी हमें कुछ और ही सिखाती है। उन्होंने किसी बड़े पद से अपना सफर शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया और हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। समय के साथ उनकी मेहनत रंग लाने लगी। वो उड़ीसा विधानसभा की सदस्य बनी और बाद में राज्य सरकार में मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। इसी दौरान उन्होंने लोगों के विकास, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर भी काम किया है। उनका फोकस हमेशा आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना था। उनकी लीडरशिप की सबसे खास बात तो ये थी कि वो जमीन से जुड़ी हुई थी। जी हाँ, चाहे जिम्मेदारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो या पोजीशन कितनी बड़ी क्यों ना हो, उन्होंने कभी अपनी सादगी और विनम्रता को नहीं छोड़ा। इसी वजह से लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते थे और उन पर भरोसा भी करते थे। द्रौपदी मुर्मू जी की जर्नी हमें ये बताती है कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। जरूरी ये नहीं है कि आप कहां से शुरू करते हैं, जरूरी ये है कि आप कितनी ईमानदारी और लगन के साथ अपने सफर को तय करते हैं। और आज का इस सेगमेंट का सक्सेस मंत्रा है, छोटी शुरुआत से कभी भी मत घबराइए। हर बड़ी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। कैसा लगा आपको ये थॉट, हमें जरूर बताइएगा। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सोचिए, मैं खुद बोल रही हूँ और मुझे ही कोई थॉट इंस्पायर कर रहा है, कितनी अच्छी बात है। मुझे पता है आपको भी बहुत पसंद आया होगा। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील

0: वेलकम बैक दोस्तों,
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज

व्यक्तिगत दुखों का सामना किया। कुछ ही सालों के अंदर उन्होंने अपने दो जवान बेटों को खो दिया। जी हाँ, किसी भी माँ के लिए ये दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसके बाद उनके पति का भी निधन हो गया। फिर कुछ समय बाद उनकी माँ और भाई भी इस दुनिया से चले गए। एक के बाद एक इतने बड़े नुकसान ने उनकी जिंदगी को ही हिला कर रख दिया। ऐसे समय में बहुत से लोग ना टूट जाते हैं और जिंदगी में हार मान लेते हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने आप को संभाला, धैर्य रखा और धीरे धीरे फिर से खुद को मजबूत बनाया। ये आसान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। इस कठिन दौर में उन्होंने आध्यात्मिकता और सकारात्मक सोच से बहुत ताकत ली। उनका विश्वास था कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, इंसान को ना आगे बढ़ने की कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने अपना ध्यान सेवा, समाज के काम और अपने कर्तव्य पर लगाया। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी का ये हिस्सा हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारे पास एक चीज हमेशा होती है, वो है हमारा हौसला। और वही हौसला हमें अंधेरे समय से बाहर निकालने की ताकत देता है। उन्होंने दुख को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उसी दुख से अपनी ताकत को लेकर अपनी जिंदगी को एक नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाया। इसी वजह से आज उनकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन गई है। आज के इस सेगमेंट का सक्सेस मंत्र है कि मुश्किलें और दुख जिंदगी का हिस्सा होती है, लेकिन हौसला और धैर्य ही हमें उनसे जीतना सिखाता है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

मजा ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: हकार है, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक के करता नहीं बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का तार है।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी की प्रेरणादायक कहानी के साथ, उनकी प्रेरणादायक जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, पिछले सेगमेंट पे हमने उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें जानी कि उनका जीवन कितने कठिन संघर्ष और व्यक्तिगत दुखों से गुजरा और उनके बारे में जाना। आप देखते हैं और जानते हैं कि कैसे इतनी मुश्किल के बाद भी उन्होंने अपनी सेवा और कर्तव्य के रास्ते पर चलना जारी रखा और देश के सबसे बड़े पद तक पहुंच गईं। साल 2015 में द्रौपदी मुर्मू जी को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये उनके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। झारखंड जैसे महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी संभालना एक बड़ा विश्वास और राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ निभाया। झारखंड में उन्होंने लोगों के हित में उनकी शिक्षा और ट्राइबल समुदायों से जुड़े मुद्दों पर खास ध्यान दिया। उनकी पहचान एक ऐसी नेता के रूप में बनी जो लोगों की बात को ध्यान से सुनती थी और जमीन से जुड़ी हुई थी। उनका व्यवहार सादगी भरा था और इसी वजह से लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल काफी अच्छा माना गया। उन्होंने हमेशा संवैधानिक मर्यादाओं का पालन किया और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। ये उनकी ईमानदारी और सेवा भाव का ही परिणाम था कि धीरे धीरे उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा मजबूत हो गई। फिर आया साल 2022। ये वो साल था जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम भारत के राष्ट्रपति पद के लिए घोषित किया गया। ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक पल था। चुनाव के बाद वो भारत की राष्ट्रपति बनी और इसके साथ ही देश की पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। ओडिशा के एक छोटे से गांव से निकली एक बेटी का राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है बल्कि ये भारत के लोकतंत्र की ताकत और उस पर विश्वास का प्रतीक था कि उनकी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से कोई भी इंसान कितनी भी ऊंचाई तक पहुँच सकता है। द्रौपदी मुर्मू जी की ये उपलब्धि लाखों युवाओं, महिलाओं और ट्राइबल समुदायों के लिए एक प्रेरणा है। उनकी कहानी बताती है कि सपने देखने का हक हर किसी को होता है और उन्हें पूरा करने की ताकत भी हर इंसान के अंदर होती है, बस आपको उसे पहचानना है और उस पर काम करने लग जाना है। और आज की इस खास सेगमेंट का सक्सेस मंत्रा निकलता है कि ईमानदारी, समर्पण और लगातार मेहनत का फल चाहे आपको देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। वक्त हो गया छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हमने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की एक बहुत ही प्रेरणादायक और हौसला बढ़ाने वाली कहानी सुनी, उनकी जर्नी सुनी आज हमने, कि ओडिशा के एक छोटे से गाँव से शुरू हुआ उनका सफर भारत के राष्ट्रपति भवन तक कैसे पहुँचा। साथ में एक अद्भुत मिसाल ये बात बनती है कि ये कहानी हमें बताती है कि सफलता सिर्फ बड़े शहरों से या फिर ज्यादा सुविधाओं का मोहताज नहीं होता है, बल्कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं। आज के इस आखिरी सेगमेंट में द्रौपदी मुर्मू जी की जिंदगी के मिलने वाले 5 सबसे बड़े सक्सेस मंत्रा को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला सक्सेस मंत्रा है वो है, परिस्थितियों से हार मत मानिएगा। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत सादगी और सीमित साधनों के बीच अपना बचपन बिताया है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने सपने देखे और उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करी। दूसरा सक्सेस मंत्रा है, शिक्षा को अपनी ताकत बनाइए। उनकी जर्नी ये साबित करती है कि शिक्षा जिंदगी बदल सकती है। सीखने की आदत और ज्ञान ही वो ताकत है जो हमें नए अवसर और नए रास्ते दिखाती है। और तीसरा सक्सेस मंत्रा है, छोटी शुरुआत से घबराइए मत। टीचर और समाज सेविका के रूप में शुरू हुआ सफर धीरे धीरे राजनीति और फिर राष्ट्रपति पद तक पहुँच गया। हर बड़ी मुश्किल की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। चौथा सक्सेस मंत्रा है, मुश्किलों में भी हौसला बनाए रखिए। जी हाँ, अपने पति बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों को खोना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी ने हिम्मत नहीं हारी और जीवन में आगे बढ़ती रही। पांचवा सक्सेस मंत्रा है, सेवा और विनम्रता को कभी मत छोड़िए। चाहे जिम्मेदारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो गई हो, उन्होंने हमेशा लोगों के प्रति संवेदनशीलता और विनम्रता बनाए रखा। यही गुण उन्हें एक सच्चा लीडर बनाता है। द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता का असली अर्थ सिर्फ किसी बड़े पद तक पहुँचना नहीं होता है, बल्कि असली सफलता होती है हर परिस्थिति में अपने मूल्यों, अपनी मेहनत और अपने उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ते रहना। इसी प्रेरणा के साथ आज के इस खास एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे स्नेहा और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सक्सेस मंत्रा। याद रखिएगा, सपने बड़े रखिए, हौसला मजबूत रखिए और मुश्किलों के सामने कभी झुकिएगा नहीं, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। तो चलिए, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मेरा वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। अगले हफ्ते फिर से आऊंगी किसी और नई प्रेरणादायक स्टोरी के साथ, किसी और नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगरा जधाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे। दोस्तों, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम लेके आई हूँ मैं कैफे क्लासिक्स। और आपको पता है कि कैफे क्लासिक्स में आपको गाने तो सुनाते ही हैं, साथ ही आपका एंटरटेनमेंट के साथ ही हम आपको कुछ कुछ जानकारी भी देते हैं। और दोस्तों, आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो शख्सियत है एक उर्दू शायर, प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और एक प्रगतिशील आंदोलन के एक हिस्सेदार भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उर्दू की शायरी और उर्दू को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करी। दोस्तों, हम सभी ने उनका नाम सुना है और उनके लिखे हुए गीत हम सब ने सुने हैं। बात करिए दोस्तों मैं आज आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जिनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1919 को और 24 मई 2000 में वो हमारे बीच से चले गए। तो एक बहुत ही खास शख्सियत और बेहतरीन शायरों में उनका नाम गिना जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा कैफे क्लासिक्स का ये सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम ले रही हूँ। पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज इस शो में मैं आपसे बात कर रही हूँ एक प्रसिद्ध उर्दू शायर मजरू सुल्तानपुरी की। दोस्तों हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और ये उर्दू के बहुत बड़े शायर रहे हैं। उर्दू साहित्य जगत में भी इन्होंने अपना बहुत अच्छा खासा नाम कमाया और बॉलीवुड में ये गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए देश, समाज और साहित्य को एक नई दिशा देने का काम किया। दोस्तों देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में सेमिनारों में इन्होंने हमेशा हिस्सा लिया और उर्दू को एक नया मुकाम दिया। तो देखिए दोस्तों कितने एक ऊंची शख्सियत। आइए चलते हैं इनकी ज़िंदगी के कुछ और हिस्सों पर। इनकी जन्म स्थली थी सुल्तानपुर और इसलिए इन अपने नाम के आगे सुल्तानपुरी लगाते हैं। दोस्तों मजरू सुल्तानपुरी ने 50 से ज़्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। आज़ादी मिलने से 2 साल पहले वे एक मुशायरे में हिस्सा लेने मुंबई आए थे तथा उस समय के मशहूर फिल्म निर्माता कारदार ने उन्हें अपनी नई फिल्म शहनशाह के लिए गीत लिखने को कहा। उनका चुनाव एक प्रतियोगिता द्वारा कराया गया था और इस फिल्म के गायक थे कुंदन लाल सहगल और गीत जो था वो बहुत ही फेमस था, गम दिए मुश्किल और जब दिल ही टूट गया। हम सभी जानते हैं कि गाना आज तक फेमस है। तो ये सभी गाने जो हैं ये उस वक्त जो है मजरू सुल्तानपुरी जी के लिखे में, जिसको गाया कुंदन लाल सहगल जी ने, और गाने आज तक हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम, सुनेंगे हम इनके द्वारा लिखे हुए गीत और चर्चा करेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में। ले रही हूँ यहाँ पर छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगी। आप भी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील

मैं हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज का हमारा ये शो समर्पित है मशहूर उर्दू शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी को। दोस्तों अब मैं आपको एक बात खास बता दूं कि मजरू सुल्तानपुरी ये इनका ओरिजिनल नाम नहीं था। जी हाँ, इनका नाम था असरार उल हसन खान। तो मजरू इन्होंने अपना नाम रखा और सुल्तानपुरी क्योंकि ये सुल्तानपुर के जन्मे थे इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे अपना प्रदेश का नाम लगाया और नाम बन गया मजरू सुल्तानपुरी। दोस्तों हिंदी भारतीय जगत के ये उर्दू कवि और हिंदी भाषा फिल्म उद्योग के ये गीतकार रहे। 1950 और 60 के दशक में इन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रमुख संगीत शक्तियों में से इनका नाम आता है और बहुत सारे गाने इन्होंने जो हैं लिखे, जिसमें जो दोस्ती फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा फेमस हुए, जिसमें गाना आया चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, बहुत ही खूबसूरत गाना है। इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार का भी पुरस्कार मिला। 1980 और 1990 के दशक में इन्होंने अधिकांश काम आनंद मिलिंद के साथ किया और उल्लेखनीय जिसमें सहयोग है कयामत से कयामत तक और लाल दुपट्टा मलमल का। जी हाँ, मजरू सुल्तानपुरी ही थे कयामत से कयामत तक के गानों के पीछे। और जतिन ललित के लिए जो जीता वही सिकंदर के गाने और पहली फिल्म यारा दिलदारा, इन मूवीज़ के गाने भी मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखे। तो बहुत ही इनका सुंदर लिखाई इन द सेंस जो ये लिखते थे बहुत ही सुंदर गीत थे। हम सभी जानते हैं कि जो जीता वही सिकंदर के जो गाने हैं वो किस तरीके से हमारे ज़िंदगी में एक मोटिवेशन पैदा करते हैं। हालाँकि मूवी का प्लॉट खुद भी बहुत अच्छा था, बहुत ही मोटिवेटिंग था, लेकिन एक मूवी में जान डालने का जो काम होता है ना वो गाने करते हैं। और गानों के अगर लिरिक्स अच्छे हों फिर तो सोने पे सुहागा। और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मजरू सुल्तानपुरी जी को। तो दोस्तों बात हो गई बहुत सारी इनकी बॉलीवुड के काम की, आइए अब चलेंगे इनके थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन में, इनके चाइल्डहुड और एजुकेशन की तरफ, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बात। आई एम हेयर ओनली, आप भी ट्यून रहिए रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। मोना डार्लिंग, तुम्हें क्या चाहिए?

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स। मैं आपसे बात कर रही हूँ आज एक ऐसे उर्दू शायर की और बॉलीवुड के गीतकार की जिन्होंने हमें बहुत से सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, असरार उल हसन खान उर्फ मजरू सुल्तानपुरी। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म सुल्तानपुर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता 1919 और 1920 के टाइम पर पुलिस विभाग में तैनात थे। इन्होंने मजरू सुल्तानपुरी जी को कोई खास अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी है और इनकी शुरुआती शिक्षा मदरसे में हुई। उसके बाद इन्होंने 7 साल का अरबी और फारसी लैंग्वेज का इन्होंने कोर्स भी किया और इनके पिताजी का जो ध्यान था ना, वो मेन कोर्स पढ़ाई से थोड़ा हटकर था, वो इनको धार्मिक पढ़ाई ज़्यादा कराना चाहते थे। और उसके बाद इन्होंने लखनऊ के तकमील उत तिब कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन में इन्होंने दाखिला ले लिया। वे एक संघर्षशील हाकिम भी थे शुरुआती टाइम में, लेकिन मुशायरे ये अपने साथ साथ उनमें ये जो पार्टिसिपेट करते रहते थे। और एक बार वहाँ पर इनको गज़ल मजबूरी में सुनानी पड़ी। गज़ल जो है श्रोताओं को बहुत ज़्यादा पसंद आई और इन्होंने अपनी नई नवेली प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़ने का फैसला करा और इन्होंने गंभीरता से लिखना शुरू कर दिया। और जल्द ही ये मुशायरों में इन्होंने अपना अग्रणी स्थान जो है, टॉप लेवल पे अपना नाम जो है इन्होंने अपना बना लिया। और फिर हर मुशायरे में इनको बुलाया गया। हालांकि हम इनको ज़्यादा शायर के रूप में तो इन्होंने जब काम किया उस काम से हम इनको नहीं पहचानते हैं, हम ज़्यादा इनको इनके फिल्मों में जो एक गीतकार के रूप में है हम उससे इनको ज़्यादा पहचानते हैं। तो दोस्तों बातें हो गई हैं ढेर सारी और मुझे पता है कि हम सब इनके लिखे हुए गाने सुनने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहे हैं और मैं भी। तो आइए लेते हैं यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी और थोड़ा सा इनके राजनीतिक झुकाव और इनकी फिल्मों के बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं बात कर रही थी आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जो कि शुरुआती दौर में एक उर्दू शायर थे। दोस्तों 1945 में मजरू साहब सिद्दीकी इंस्टीट्यूट के एक मुशायरे में भाग लेने के लिए मुंबई आ गए। यहाँ उनकी गजलें और शायरी श्रोताओं को बहुत पसंद आई। प्रभावित श्रोताओं में एक फिल्म निर्माता बैठे हुए थे, उन्होंने इनके जो फिल्म में जो इनका राइटिंग सुनी की है तो बहुत बढ़िया लिखते हैं, तो उन्होंने जिगर मुरादाबादी से संपर्क किया और उन्होंने आगे मजरू सुल्तानपुरी से लिंक बनाया। हालांकि उस वक्त मजरू सुल्तानपुरी जी ने फिल्मों के लिए लिखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर फिल्म में काम करना या फिल्म से जुड़ना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि ये एक कमाई का बहुत अच्छा जरिया होगा और इनको अपने परिवार का पालन पोषण करने में मदद मिलेगी, तो ये सोचकर इन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी और कारदार साहब इनको संगीतकार नौशाद साहब के पास ले गए और एक युवा लेखक के रूप में इनका वहाँ परिचय कराया और उन्होंने उनको एक धुन दी, यानी कि धुन पहले बन चुकी है, लिखा गाना नहीं गया, पहले धुन बनी और धुन इनको दे दी गई कि इस धुन पर आप जो है अपना एक गाना लिखो। और फिर उस धुन पर उन्होंने खूब खूबसूरत गीत लिखा और उसके बाद 1940

0: 1947 में एक नाटक था डोली, उसके लिए इन्होंने गीत लिखे, और 1948 में अंजुमन मूवी आई, फिर 1953 में बाज मूवी आई गुरुदत्त साहब की, और फिर मजरू सुल्तानपुरी ने अनिल विश्वास, नौशाद, गुलाम मोहम्मद, मदन मोहन, ओपी नैयर, रोशन साहब, सलिल चौधरी, चित्रगुप्त, एन दत्ता, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, सभी टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, ये बात आप और मैं दोनों जानते हैं। इन सब के लिए गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने, तो क्यों ना हम इनके कुछ गाने और सुने और फिर इनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे कुछ और भी। आइए लेते हैं अभी छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे हम थोड़ी सी और मजरू सुल्तानपुरी जी के बारे में। तब तक के लिए एक छोटा म्यूजिकल ब्रेक, आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव।
1: क्या कहा?

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में कैफे क्लासिक्स। और आज का ये सफ़र है मजरू सुल्तानपुरी के नाम पर, एक बहुत ही अच्छे उर्दू और हिंदी शायर, एक बहुत ही सफल गीतकार जिन्होंने कई दशकों तक हमको बहुत सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए। टॉप डायरेक्टर्स के साथ ये जुड़े और इनके लिखे हुए गानों को एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सिंगर्स ने गाया और फिर इनको मिले ढेर सारे पुरस्कार। जी हाँ, कई बार इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और 1993 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से हमारे देश की सरकार ने इनको सम्मानित किया। ये जो पुरस्कार होते हैं हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है और ये जो पुरस्कार है ये इनको मिला। और मजरू सुल्तानपुरी जी, थोड़ा सा दुख की बात है कि ये लंग्स की एक बीमारी से पीड़ित थे, निमोनिया इनको हो गया था और अपने आखिरी दौर में ये बीमार है और 24 मई 2000 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 80 वर्ष की। तो इनको मैं श्रद्धांजलि देती हूँ रेडियो मानव रचना के प्लेटफॉर्म से, सैल्यूट करती हूँ और हाथ जोड़ के उनको नमन करती हूँ, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है कि अगर ये ना होते तो वो गाने कहाँ से आते जो सिंगर्स ने गा दिए। तो जो लिख के अगर बढ़िया गाने बढ़िया शब्द देते फिर तो फिर क्या ही बात है। तो मजरू सुल्तानपुरी जी को शत शत नमन। और मेरे ये शो का था अंतिम चरण, यहाँ से मैं आपसे ले रही हूँ विदा और मिलते हैं आपसे अगले शो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सायोनारा। मैं जा रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील Live.

0: Hi, I'm Tigmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Aaja tujhe bhi main kara dun ta man che pe disco.
2: जी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत। दिस शो इज रियली स्पेशल बिकॉज यहां पर हम लोग लीगल फ्रेमवर्क को कवर करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, हमारी लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको यहाँ पर हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम बात करने वाले हैं एआई की, लेकिन हम जेनरिक एआई की बात नहीं करेंगे, हम जेमिनी चैट जीपीटी काम कैसे करता है वो नहीं समझेंगे यहाँ पर। लीगली क्या है, कानून क्या बोलता है, कि कानून के पास कुछ है अगर आपकी फोटो कोई उठा करके बिना आपके कंसेंट के ऑल्टर करके अपलोड करता है तो कानून उसको लेकर के क्या बोलेगा, या सच में क्या कोई एआई मॉडल कुछ भी बना सकता है, कोई रेगुलेशन है उसके ऊपर। इस तरह के कुछ सवाल होंगे जो आज के शो में हम लोग डिकोड करने वाले हैं। आई एम डैम श्योर आप लोग जरूर वाकिफ होंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, क्योंकि काफी सारे लोगों ने इस एक प्रॉब्लम को फेस किया है, ब्लैकमेलिंग के माध्यम से, स्कैम्स के माध्यम से, एंड सो ऑन। सो आज हमारे साथ है मिस तन्वी। तन्वी से हम लोग बात करने वाले हैं। तन्वी इज द असिस्टेंट प्रोफेसर एट स्कूल ऑफ लॉ, मानव रत्न यूनिवर्सिटी। और तन्वी सेकेंड टाइम हमारे साथ सेशन कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर डूइंग दिस तन्वी।
3: Thank you.
2: And welcome to our show. We're going to start with this very basic question. Artificial intelligence har jagah par aa chuka hai. Koi science fiction nahi, hamare beech mein aa chuka hai. Hamare workplace pe hai, hospitals mein hai, courts mein hai. But kanoon ki definition kya hai AI ki? What is AI?
3: So ideally no law has defined AI. Lekin what our understanding of AI is that anything, any task that the computer system is performing which would traditionally require human intelligence, but now it is being done by that computer system, that is what we call as artificial intelligence. So let me give you a very small example. Aap kabhi bhi kuch shopping karne jaate hain to aap dekhte hain FAQs, frequently asked questions. They are fixed questions, you can just look at them. But let's say you want to ask a more tailor-made question, that you would require a person replying to your question, right? But now you don't have it. You have chatbots in every website that you go to. Let's say you're shopping on Nykaa, you have the chatbot who can answer your basic question. So that is the smallest example of artificial intelligence. So something ideally a human would have done is now being taken up by computer systems. So that is artificial intelligence.
2: All right. And there are global conversations about regulating the artificial intelligence. I want to know why.
3: So basically, artificial intelligence reach has really magnified over the last couple of years. So now it's not a vague concept that might be coming in the future. It's something that's already here. Now, what happens is that AI is increasingly making decisions that are also having its impact on

0: वेलकम बैक। आई एम होपिंग यू आर लविंग द शो, यू आर लविंग द वाइब, यू आर लविंग द म्यूजिकल ब्रेक। एंड अगर आपको अपना कोई फीडबैक हमारे साथ शेयर करना है, मेरे लिए, तन्वी के लिए, या इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ ऐड ऑन आपको करना है, जस्ट डू मेक श्योर 8010781078 इस नंबर तक अपनी बात आप पहुंचा चुके हो। फिलहाल शो को आगे लेकर के चलते हैं और अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। तन्वी, यहाँ पर हमने बात करी अभी ब्राजील का एक केस बताया, जहाँ पर आपने बताया कि इट्स हार्ड टू पिन पॉइंट एग्जैक्टली हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट पार्ट, मे बी दैट लेडी जो उसने अपने कंसेंट के साथ काम किया। सेकंड केस यूएस में हुआ, रियल केस है जो वहां भी कोर्ट में चल रहा है। देयर वाज अ गाय, ही वाज अ टीनेजर, ही वाज फीलिंग समथिंग एब्सर्ड, ओके। तो उसने चैट जीपीटी से बात करना शुरू किया कि आई एम फीलिंग दिस वे, आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग अप माय लाइफ। चैट जीपीटी मोटिवेटेड दैट गाय इन दैट वे कि डू यू वांट मी टू राइट अ सुसाइड नोट फॉर यू, एंड दैट गाय जस्ट एंड अप गिविंग अप हिज लाइफ। ओके, दैट इज द होल केस। अब जब ये सारा मामला वहां पर कोर्ट में जाता है, उसके पेरेंट्स वहां पर अपील करते हैं, इस केस में क्या होगा अगर सिमिलर कोई केस इंडिया में आता है। चलो यूएस की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक लड़का है जो ऑलरेडी एक ऐसे पीक मोमेंट में आ चुका है, जिसके थॉट्स उसको वहां ले जा चुके हैं कि उसको लग रहा है लाइफ यहाँ दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, उस मोमेंट में एक AI मॉडल के पास ये ऑप्शन भी है कि वो उसको वहां से वापस लेके आ सके। ह्यूमन इमोशंस आर सो कॉम्प्लेक्स, बट दैट AI मॉडल चोज द अदर वे। What is the framework for that part?
1: So ideally, let's say if it happened in real life, and if instead of ChatGPT there was a person, so abetment to suicide ka case lagta. Abetment means inciting someone to do something. So uspe abetment ka case lagta. But because it's ChatGPT, because it's a software, because it is generative AI, and it answers you on the basis of how you've been talking to it, right? So it's very hard to attribute harm. अब आप देखिए, अगर हम मान लो कि developer को responsible कर ले इसमें AI के, now then there will be no inventions, everyone will stop, because the chances of something like this happening is way too likely. 80% 85% fir aap liable ho jaoge kisi cheez ke liye, koi na koi responsibility will fall upon you. So in generative AI, the main issue is now, it if you would talk something like this with ChatGPT or any generative AI, you'd find it will give you the national suicide helpline number. So they have fine tuned it. But in initial stages, when this case happened, I've actually cited it in a paper of mine also. So in initial cases, when generative AI had just started coming in, they did not know the filters. Because AI is learning from you. AI is learning from the internet. So it doesn't know that, okay, maybe a child might be using this, so we are not allowed to say this. Or it might not know the boundaries. Right? So initially this was happening. Now they have limited it. Now, if at all you're going to put anything like this on any AI, it will hit you back with the suicide help number or things like this. But in this case, if we talk about liability, it is very hard to assign liability, because ultimately it was the child's decision to end his life. We cannot say there might be, no, it was just, it is very hard to legally prove that it was just ChatGPT which put him there. Or which pushed him to the abetment cases are very hard to prove that way, because you have to, without a reasonable doubt, prove that this was done because of this particular app. So anyway, in those cases, there's a victim, but it's a offenderless crime essentially. There is no offender in this case. You cannot hold ChatGPT accountable. So this is where the exact issue is, that what would we do in such cases? These cases can now be eliminated with the kind of knowledge that we have, ki ye bhi ho sakta hai, aisa bhi ho sakta hai, this needs to be prevented. But earlier, when it has already happened, it's very hard legally to say how responsibility or to whom the responsibility can be put on.
0: Kya main OpenAI ko yahan pe challenge nahi kar sakta hu? That is a parent company of ChatGPT.
1: If at all we go end up challenging OpenAI, they can plead that it was not them directly involved. So you are using a chatbot. That chatbot is artificial intelligence. That means they are using their own mind. They are not using the mind of OpenAI. It's not the creator of the code or the deployer company that is writing those messages to you. It's artificial intelligence. It is understanding your thoughts and then replying on its own. And criminal law mein hum bolte mens rea hona chahiye, that means a guilty intention hona chahiye. How will you prove guilty intention for OpenAI?
0: All right, so okay, there is another case. इंडिया केस है ये और रियल केस है. बीते दिनों एक ट्रेंड चला था 90s या 80s का, साड़ी का ट्रेंड चला था कि फीमेल्स जो हैं अपनी फोटोज अपलोड कर रही थी और अपनी फोटोज को वो एक फिल्टर के थ्रू 80s में कन्वर्ट कर रहा था. देयर वाज दिस गर्ल, शी अपलोडेड हर फोटो इन फुल स्लीव्स और साड़ी में उसको उस स्टाइल में कन्वर्ट कराना था 80s वाले में. जब उसका आउटपुट आया तो साड़ी पहना दी, 80s का स्टाइल दे दिया, सब दे दिया, हाथ पर यहां पर एक मोल आया लेकिन ओके. एंड वो मोल एग्जिस्ट करता था, आई गेस जिया था उस लड़की का नाम, ठीक है, उसके हाथ पे वो मोल एग्जिस्ट करता था. इट रेजेस सो मेनी क्वेश्चंस, लाइक द बिग क्वेश्चन इज कि एआई को कैसे पता है उसके हाथ में मोल है. ऑब्वियसली प्रीवियस फोटोज उसके पास स्टोर्ड होंगी, प्रीवियस डेटा होगा, बट राइट नाउ आई एम मेकिंग अ फ्रेश चैट. दैट मीन्स कि मैं नहीं चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरी प्रीवियस हिस्ट्री में जाके वो करो, क्योंकि मैं नया चैटबॉट स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं नई फोटो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, ये मेरा प्रॉम्प्ट है, मेरे को इसको बना के दो.

0: Once again, welcome back. मैं आरजी सागर शो सत्यमेव जयते जय हिंद जय भारत रेडियो 107.8 एफएम का बहुत स्पेशल शो है जहां पर हम लोग लीगल फ्रेमवर्क को टच करते हैं। हमारे साथ है मिस तन्वी। तन्वी सी आइए, आगे एआई की हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं तो एआई अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, शायद इसके ऊपर मल्टीपल एपिसोड हम लोग कर सकते हैं, बट आज यहां पर हम बेसिक चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव। तन्वी, बाकी जो कंट्रीज हैं, हाउ डिफरेंट कंट्रीज आर अप्रोचिंग एआई रेगुलेशंस?
1: एक्चुअली वन ऑफ द first regulations on AI was given by the European Union. So they have their European Union AI Act, which was implemented somewhere around in 2024. So now the full implementation is expected by August of 2026. So now what that particular act has done is it has qualified AI in terms of risks that it poses. So usne char levels banaye hain. First is unacceptable risks. So these are AI systems jo ke completely banned hai, जो कि अलाउड ही नहीं है क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिस्क कैरी करते हैं। सो व्हाट आर दोज? समथिंग दैट थ्रेटन सेफ्टी लाइवलीहुड ऑफ पीपल और बायोमेट्रिक कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोटेक्टेड ट्रेड्स या फिर इमोशनल रिकग्निशन, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो लेट्स से दिस कैमरा वॉज ए आई पावर्ड एंड दिस कैमरा वुड आइडेंटिफाई कैटेगराइज पीपल कि दिस पर्सन इज मोर लाइकली टू कमिट अ क्राइम एंड दिस पर्सन इज नॉट on the basis of our facial features. So that is something that is unacceptable risk because there is a bias. Bias kyun hai? Kyunki AI historical data pe kaam karta hai. Ab historical data pe kaam karta hai to bias to hona bahut natural hai. Kyunki maan lo ki agar I say in Hindi ki ye English padhate hain. I have not used any gender terms. Maine na to male suggest kiya hai na female. But let's say I ask AI to convert it into English. Now, English is a gendered language. It is not actually. They bhi use kar sakte, but let's say I ask it to convert it. The natural translation might be she teaches English because English as a teaching profession and English is generally associated to females. Historical data wohi deti hai, toh AI aapko wahi batayega. Isliye jo bhi aise systems hote hai, social scoring systems, उनका बहुत ज़्यादा रिस्क है कि दे माइट बी बायस्ड अगेंस्ट सर्टेन सेट ऑफ पीपल। इसलिए ये अनएक्सेप्टेबल रिस्क है, ये अलाउड ही नहीं है ऐसे एआई सिस्टम्स। फिर वो बोलता है कि एक और टाइप के एआई सिस्टम्स होते हैं विच आर हाई रिस्क। सो दीज सिस्टम्स आर बेसिकली यूज इन वेरी क्रिटिकल एरियाज एंड दे मस्ट बी वेरी माइन्यूटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड।

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम वी, यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम। सशक्त महिलाओं से आपकी मुलाकात करवाती हूँ और उनकी जिंदगी के कुछ पन्ने पलटने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उनकी जिंदगी से हम बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी सीख डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ये जो महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, आप सभी को पता है कि ऐसा कार्यक्रम है, ना सिर्फ ये मेरे दिल के करीब है, लेकिन साथ के साथ ये हमारे रेडियो मानव रचना 107.8 FM का सबसे लंबा चलता हुआ कार्यक्रम है। सो एक लंबे समय से मैं आपके लिए कार्यक्रम लेकर आती हूँ और इस कार्यक्रम में मैं आपको अलग अलग महिलाओं से मिलवाने की कोशिश करती हूँ। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, वो जिंदगी में ढेर सारी शिक्षा दे चुकी हैं, यानी एक एजुकेशनिस्ट हैं। आज हम आशा गाबा जी के साथ हैं और ये एक बहुत ही जानी मानी एजुकेशनिस्ट हैं, लेक्चरर रही हैं और आजकल ये मध्यस्थ दर्शन के साथ जुड़ी हुई हैं एज अ मेंबर। सो करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
4: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
3: आशा जी, कार्यक्रम का नाम है विमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण। सबसे पहला सवाल हर महिला से इस कार्यक्रम में इस लंबे समय से मैं ये पूछती आ रही हूँ कि उनके नजरिए में महिला सशक्तिकरण क्या है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण की परिभाषा हर महिला के लिए बिल्कुल अलग है। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप किसे सशक्तिकरण मानती हैं तो क्या कहेंगे आप?
4: जी, वास्तव में महिला सशक्तिकरण का जो अर्थ है वो है महिलाओं को शिक्षा, अधिकार, अवसर, संसाधन और निर्णय लेने की स्वतंत्रता

0: सहायता प्रदान करना
1: जी,
0: ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में पुरुषों के समान सम्मान और अवसर प्राप्त कर सकें और विशेषकर स्वयं को एक मानव के रूप में पहचान सकें, क्योंकि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। जिस दिन वे स्वयं को मानव होने के रूप में अपने अस्तित्व को एक मानव के रूप में पहचान जाएंगी, वे जागरूक हो पाएंगी और सशक्तिकरण के लिए वो स्वयं को परिवार में ही नहीं बल्कि समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान कर पाएंगी, मेरा ऐसा मानना है।
1: भाई देखिए, मैं ना हमेशा से कहती आई हूँ कि महिलाओं को अगर सशक्तिकरण चाहिए तो वो पहला कदम आपके अपने परिवार से होता है, वो पहला कदम आप ही के अपने आप का होना चाहिए। सशक्तिकरण कोई और दे नहीं सकता है आपको, सशक्तिकरण आपको खुद महसूस करना है। और आई थिंक ये बिल्कुल सही है कि वो महिला सशक्त है जो ना सिर्फ अपने डिसीजंस ले पा रही है, अपनी जिंदगी को उस तरीके से जी पा रही है। लेकिन इसमें गुड बैड अगली कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपने जो निर्णय लिया वो सही है या नहीं, लेकिन सबसे पहले क्या आपने कोई निर्णय लिया, क्या आपने अपनी जिंदगी का कोई भी डिसीजन खुद लिया, और अगर लिया तो क्या आप उस पर अडिग रह सकी, क्या आपने वो डिसीजन एड्रेस किया, या आप सिर्फ दूसरों की दी हुई एक बनाई हुई लकीर पर चलती आ रही हैं, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो मैं उस महिला को सशक्त मानती हूँ जो अपनी ज़िंदगी की लकीरें खुद खींचती हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइट।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये बहुत ही प्यारा सा एपिसोड। और इस कार्यक्रम में मैं आपको सशक्त महिलाओं से मिलाती हूँ। आज तो एक एजुकेशनिस्ट से मिलवा रही हूँ भाई, ज्ञान का भंडार होती है और मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला अगर एजुकेशनिस्ट है ना, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। ना सिर्फ वो अपने परिवार को शिक्षित करती हैं, लेकिन समाज को शिक्षित करने में एक बड़ा अहम हिस्सा निभाती हैं। आशा जी आज हमारे साथ हैं, जो कि एक सीनियर एजुकेशनिस्ट रही हैं, लेक्चरर ये रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आजकल मध्यस्थ दर्शन से ये स्पिरिचुअलिटी को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश कर रही हैं और साथ के साथ उसे लोगों को महसूस कराने की भी कोशिश कर रही हैं। अब बात करते हैं इनकी सशक्तिकरण की जर्नी से। सो आशा जी, आप जब एक टीचर लेक्चरर थी, सो आप बहुत सारे ऐसे बच्चियों से मिली होंगी, बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिली होंगी जिनकी जिंदगी में बहुत सारी उलझने होंगी, बहुत सारी बार वो आपके पास भी आए होंगे। मैं अगर आप ही की अपनी जर्नी के बारे में पूछूं, सो क्या कभी जिंदगी में कोई एक ऐसा कदम उठाया, कोई ऐसा डिसीशन लिया जिसको लेने के बाद आपको ये महसूस हुआ कि आप सशक्त हैं और आपने अपने लिए कोई अपने जीवन का डिसीशन लिया है?
1: मैंने 36 इयर्स की जॉब की है एज ए प्राइमरी टीचर। मैंने जॉब को स्टार्ट किया और जॉब के साथ साथ मैंने मास्टर्स किया हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री में और बीएड एमएड भी किया। तो क्वालिफिकेशन से मुझे प्रमोशन तो मिला, लेकिन मैं उस स्कूल में जब बच्चियां छोटे छोटे बच्चे आते थे उनके साथ भी काम किया, फिर मिडिल क्लास के 10th क्लास तक के बच्चों के लिए काम किया, फिर एज ए लेक्चरर मैंने 11th और 12th क्लास के बच्चों के साथ भी काम किया। तो जहाँ तक आपने समस्या की बात कही है, तो बच्चियों की बहुत समस्याएं होती हैं। आप ये देखिए कि छोटे बच्चे जब उनको पीरियड्स होते हैं तब उनकी जो हालत होती है बहुत ख़राब होती है, वो घर में कई बार बता भी नहीं पाती
0: जी।
1: और स्कूल में उनको दिक्कत होती है, फिर छोटी छोटी बच्चियों का बाल विवाह कर देना, 8th 9th में पढ़ती हैं और उनके पेरेंट्स उन पर दबाव बनाते हैं कि तुम मैरिज कर लो, आगे उन्हें पढ़ने नहीं देते हैं। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिन जो बच्चे जो है मेरे फ्री पीरियड में आकर मुझसे डिस्कस करते थे
0: जी।
1: तो मैं उन बच्चों को जिनकी भी समस्याएं होती थी तो मैं उनको अलग से एड्रेस करती थी। जैसा कि एक बच्ची ने एक बार कहा मुझे कि वो 8th क्लास में पढ़ती थी कि मैडम मेरा पढ़ने का बड़ा मन है पर मेरे फादर मेरी मैरिज करवाना चाहते हैं
0: जी।
1: तो इस तरह की समस्याओं को जब मैंने देखा तो मैंने उनके पेरेंट्स को बुलाया, समझाया कि उनकी बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी है, गेम्स में बहुत अच्छी है, स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करती है, तो आप इस बच्ची को मेरे कहने पर, मेरे रिक्वेस्ट करने पर आप उसे पढ़ने दें। तो ये बात उनको पेरेंट्स को समझ आई और मैंने कहा देखना भविष्य में ये एक बहुत अच्छी शिक्षिका बनेगी। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि वो 15-20 साल पहले कही गई मेरी बात मुझे आज भी याद आती है और मैं गदगद हो जाती हूँ कि उन पेरेंट्स ने मेरी बात मानी और वो आज एक टीचर के रूप में मेरे सामने और आज तक भी जुड़ी हुई है।
0: वाओ
1: जी।
0: सो देखिए, एज एन एजुकेशनिस्ट अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास एक मौका होता है कि आप स्टूडेंट्स को, उनके जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और मजेदार चीज ये है कि आप उनके जीवन को एक बड़ी अच्छी राह दे सकते हैं अपनी छोटी सी सलाह से, एक छोटी सी सीख से। और ये इख्तियार अदरवाइज अगर देखा जाए तो सिर्फ परिवार के सदस्यों के पास होता है और आप आज के जमाने में किसी से सलाह लेते नहीं है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद एजुकेशनिस्ट का एक बहुत अहम हिस्सा होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में। और सशक्तिकरण की मैं अगर बात करूं बच्चियों की, तो आई थिंक इससे अच्छा खूबसूरत सा कोई एग्जांपल हो नहीं सकता है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुना रही आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना और आप कहीं मत जाना। फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। हम बात कर रहे हैं आशा गाबा जी से। आशा जी, हमने ब्रेक पर जाने से पहले सशक्तिकरण की बात की थी, सो आप अगर अपनी पर्सनल जर्नी से कुछ बताना चाहती हैं तो क्या कहना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल, मेरी लाइफ में जब जब मैंने कोशिश किया तो मैंने कुछ नए मुकाम हासिल किए। जैसे मैंने हैप्पीनेस करिकुलम में अपना कंट्रीब्यूशन किया, मैं हैप्पीनेस टीम की कोर मेंबर भी थी, एज ए मेंटरशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ दिल्ली गवर्नमेंट में, तो वहाँ पर मेरी मुझे समझ बढ़ाने का मौका मिला, क्योंकि हैप्पीनेस करिकुलम मध्यस्थ दर्शन पर आधारित है। वहाँ पर हमने कुछ एक्टिविटीज़ बनाई, स्टोरीज बनाई, माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई, और इसके साथ साथ टीचर्स को भी कराई। प्रिंसिपल्स के साथ भी हमारा जो है एज ए फैसिलिटेटर मैंने काम किया है, प्रिंसिपल्स, एजुकेशन ऑफिसर्स, सबके साथ। तो मेरा एक लंबी जर्नी जो रही है सिर्फ बच्चों तक ही नहीं रही है, टीचर्स के साथ एज ए फैसिलिटेटर, प्रिंसिपल और एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ भी हमें डिस्कशन करने का मौका मिला है। तो उसमें हमने इस जर्नी में जो मैंने गहराई से मुझे समझने का मौका मिला, तो मैं जो है मैं ये सोचती हूँ कि वो जो शिक्षा है वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो हमें जो है थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की भी ज़रूरत है, और एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव करने हैं, चेतना विकास मूल्य शिक्षा को अगर लाया जाए तो बच्चे और जो बड़े नागरिक हैं वो एक देश के लिए बहुत बड़ा यूथ जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें उनको जगाने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है, तो मेरा इसमें विश्वास है। और एज ए डिस्ट्रिक्ट हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर जब मैंने काम किया तो बहुत ही अच्छे अनुभव हुए मुझे टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, और वो मेरे साथ, मुझे खुशी इस बात की है कि अब मैंने VRS ले लिया है, और उसके बाद भी मेरे साथ बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल, ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं और इस मेरी यात्रा में मेरे मतलब साथ हैं, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है।
0: आशा जी, अब एक अहम सवाल। हाँ, आपने खुशियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लोगों के ज़िंदगी में हैप्पीनेस फैलाने की आपने कोशिश की है, लेकिन मैं हमेशा से मानती हूँ कि महिलाओं का जो सरनेम है वो है चैलेंज। सो बच्ची से लेकर और एक बुजुर्ग महिला तक हमें बड़े सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। रोज जिंदगी पुरुषों के लिए कम चैलेंजिंग होती है, महिलाओं के लिए ज्यादा होती है, लेकिन हर एरा में ना हमारे चैलेंजेस बदलते रहते हैं। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि किस प्रकार के चैलेंजेस आजकल की महिलाओं को फेस करने पड़ते हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी एक्चुअली क्या है कि जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए जो चैलेंजेस हैं हमारे ज़िंदगी में हमें जो है अवसर लेके आते हैं, तो वो अवसर के रूप में अगर चुनौतियों को स्वीकार किया जाए तो महिलाएं उनसे अपनी यात्रा को बहुत आगे बढ़ा सकती हैं, बौद्धिकता के लेवल पे आगे बढ़ सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो काम काजी महिलाएं हैं, जैसे उनका सुरक्षा और उत्पीड़न की समस्या रहती है ऑफिसेज में और सार्वजनिक स्थानों पर, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, इसके अलावा उन्हें सामाजिक रूढ़ियों का, तो जो समाज परिवार उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, तो उनको लेके महिलाएं कई बार सही डिसीजन नहीं ले पाती हैं, वो उनके अपेक्षाओं के नीचे दबकर रह जाती हैं, और वास्तव में जो एक स्वतंत्रता जो है उनकी प्रभावित होती है। तो एक नेतृत्व और अवसर उनको अगर मिल जाए तो उच्च पद पर भी वो जा सकती हैं, जो कि कुछ महिलाएं जा भी रही हैं। तो घर का एनवायरनमेंट बहुत जो है मैटर करता है कि वो किस तरह से आगे बढ़ पाए। तो ऐसा है कि इस तरह की समस्याओं से क्या करते हैं कि गिव अप भी कर देती हैं लेडीज। yes. तो गिव अप करने से क्या होता है, तो प्रॉब्लम और क्रिटिकल हो जाती है। तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है ही, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगी तो जरूर ही वो जो है विजय हासिल करेंगी, मेरा ये मानना है।
0: बिल्कुल भाई, तो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस के साथ साथ आपके पास सॉल्यूशंस भी हैं। सो फोकस करिए कि आपका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो समाज का माइंडसेट, और अगर हम उसे बदल पाएं, क्योंकि हम उसका आधा हिस्सा तो हैं ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ एक और गाना, और आप अपने प्यारे रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहना। फील गुड, फील लाइव।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं, आज की हमारी गेस्ट हैं आशा गाबा जी, जो एजुकेशनिस्ट हैं, एक लेक्चरर रही हैं और मध्यस्थ दर्शन के साथ ये लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। अब मैं बात करती हूँ आजकल के जमाने की फास्ट पेस्ड लाइफ की, रिश्तों की। आप भी मानती हैं आशा जी कि जिंदगी भाग दौड़ भरी है और ऐसे में कुछ पीछे छूट रहा है, और सबसे ज्यादा जो पीछे छूट रहा है वो है हमारे रिश्ते। इन्हें कैसे बैलेंस किया जा सकता है?
1: अगर आप कहें तो मैं एक लाइन में यही कहूंगी कि सुविधा संग्रह की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उस सुविधा संग्रह को अगर थोड़ा सा माइन्यूटली देखा जाए तो नीड और डिजायर्स, इनके डिफरेंस को समझ लेना बहुत जरूरी है। बेसिकली देखा जाए तो नीड्स हमारी 6 ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है, और डिजायर्स जो है वो अनलिमिटेड हैं। तो हम अनलिमिटेड डिजायर्स की तरफ जब भागते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें वक्त नहीं मिलता है। बेसिकली हम मुड़ के देख ही नहीं पाते हैं कि हमारे जिंदगी में हो क्या रहा है, क्योंकि हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, फिर होता तो कुछ और ही है।
0: वाकई
1: है ना? तो ये है कि तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स भी उठा सकते हैं, जैसा कि पर्पस क्या है। हमें पर्पसफुल लाइफ अगर हम जीते हैं तो निश्चित रूप से हमारी गाड़ी कहीं नहीं डगमगाती है, तो ये देखने की जरूरत है। और संवाद की स्थिति बेहतर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे डायलॉग जो है वो कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ फोन, जो गैजेट्स हैं इसमें हम इतने डूबे भीगे गिरे हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं। हमारा टाइम रील देखने में ही कितना निकल जाता है। तो ये जो आजकल के मुद्दे हैं उसमें हमें जांचने की जरूरत है कि 24 घंटे बहुत होते हैं, उसमें हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और उस वक्त हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, हमारा फोकस कहाँ जा रहा है, क्या हमने जो सुबह प्लान बनाया वो सक्सेसफुल करने के लिए हम वही कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो ये बहुत बारीकी वाले मुद्दे हैं और इन पर जो है देखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि परिवार में मतभेद तो होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। तो उन मतभेदों को आपसी डिस्कशन से सुलझाया जा सकता है, उसकी तरफ भी बात की जा सकती है। और दूसरा ये है कि सेल्फ केयर, तो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर ही रिश्ते निभाए जा सकते हैं। तो हमारा अपनी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के प्रति जो जो हमारे ड्यूटीज हैं, हमारे कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, तो हमें ये देखने की जरूरत है क्या हम वो पूरा कर पा रहे हैं। तो हमारे व्यक्तित्व का विकास तभी होता है जहां तक हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है, खुद को जांचने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच समझ के कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
0: सो दोस्तों, ये जानने की बहुत जरूरत है कि सबसे पहले तो आजकल के जमाने में हम रिश्तों को बैलेंस कर कैसे रहे हैं। मानते तो हैं कि बैलेंस बिगड़ रहा है, पर उस बैलेंस को क्या हम बनाने की कोशिश करें। बहुत अच्छी टिप्स दी हैं आशा जी ने, एंड डेफिनेटली अगर इन्हें फॉलो किया जाए और इन्हें असेस किया जाए तो इन्हें ठीक किया जा सकता है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइक।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। आज हम आशा जी से ढेर सारी बातें कर रहे हैं। आशा गाबा जी आज की हमारी गेस्ट हैं, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक लेक्चरर हैं। और अब आशा जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे जेंडर इक्वालिटी के बारे में। देखिए भाई, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही हूँ, सो जेंडर इक्वालिटी की बात तो करनी बहुत जरूरी है। हम ये बात करते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया भी जाता है कि दोनों जेंडर बिल्कुल समान होते हैं और उन्हें समानता मिलनी चाहिए, लेकिन समाज में, घर में और सोच में अगर हम देखें तो तीनों जगह ये इक्वालिटी कहीं नहीं मिल रही है। सो ये इक्वालिटी पाई कैसे जा सकती है?
1: खुद पर काम करके।
0: जी,
1: तो मैं तो यही बात कहूंगी कि खुद को जांचने की जरूरत है। एज ए ह्यूमन, एज ए मानव, हमें ये समझने की जरूरत है, खुद की खोज में अगर हम जाएंगे
0: जी,
1: तो हम खुद को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और दूसरों को समझने में भी हम समर्थ हो पाएंगे
0: जी।
1: तो जहां तक इन इक्वलिटी की बात है, वो समाज में है। हमारे भीतर जो एक वातावरण बना हुआ है उसको तो हम समझ ही नहीं पाते। हम बाहरी घटनाओं, बाहरी वातावरण को ठीक करने में लग जाते हैं। चुनौतियां हैं, नो डाउट, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन मैं यहां पर खुद को जांचने की जो बात कह रही हूं, वो आमतौर पर हम नहीं कर पाते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम उस उत्पीड़न से, उन घटनाओं से खुद पीड़ित हो रहे हैं, या फिर हम उस उत्पीड़न समस्या से दूर होकर अपने जो पर्पसफुल लाइफ है उस पर फोकस कर रहे हैं।

0: घटनाएं तो आती जाती रहेंगी। घटनाओं के बारे में हम ये नहीं कह सकते क्योंकि वो बाहर हैं। जिंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ऐसे हमें सभी समझदार तो मिलेंगे नहीं।
1: वाकई
0: तो जहां पर हमें अगर ऐसा ऐसे व्यक्तित्व से टकराव होता है जहां पर कि मन खराब हो, है ना, लैंगिक असमानता तो है ही, जेंडर इक्वेलिटी तो है ही, अब लेबर का ही काम कर रहे हैं अगर मेल और फीमेल तो सैलरी भी डिफरेंट
1: जी,
0: है ना। तो यहाँ पर देखने की जरूरत है कि हम समाज सुधार के लिए बाद में देखें, पहले खुद को देखें, अपने परिवार को देखें, क्योंकि परिवार ही समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार से ही हम मन से जब खुश होते हैं अपने परिवार में, हम खुद खुश रहते हैं, खुश होके हम काम करते हैं, तो वो खुशी हमारे परिवार तक जाती है और कई घटनाएं जिनको हम एड्रेस ना भी करना चाहें वो अपने आप सुलझ जाती हैं। तो बजाय इसके कि हम समस्या पर फोकस करें, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके हम अगर उन घटनाओं को ठीक करने के लिए कोशिश ना करें पहले, तो सबसे पहले अपने घर परिवार में खुद खुश रहें, परिवार में सब खुशियां बटोरें और खुशियां दें, क्योंकि जितनी हम खुशियां बांटेंगे उतने ही हमारे परिवार वाले खुश रहेंगे।
1: वाकई,
0: है ना।
1: तो भाई ये तो बड़ा अच्छा तरीका है एंड आई थिंक आई टोटली अग्री कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम पूरे समाज को बदलें, अगर शुरुआत हम अपने घरों से करते हैं तो डेफिनेटली ये चेंज हम महसूस कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेस्टा 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हुई यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आशा गाबा जी आज हमारे साथ हैं। आशा जी एक बहुत ही जानी मानी एजुकेशनिस्ट रही हैं, बहुत सारे जीवन को इन्होंने बदलने की कोशिश की है और अब जीवन के इस पड़ाव पर ये मध्यस्थ दर्शन का ना सिर्फ अध्ययन कर रही हैं लेकिन इस पर बेस्ड लोगों की जिंदगियों को बदलने की भी कोशिश कर रही हैं। आशा जी, आज के जमाने में जहां पर हमारे पास इतनी सारी एडवाइस है, ऐसे जीवन में आप मुझे बताइए, आप मध्यस्थ दर्शन के बेसिस पर सभी को क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगी?
1: जी, तो सबसे पहला मैं यही कहना चाहूंगी, स्वयं को एक मानव के रूप में पहचाने
0: जी।
1: मन स्वस्थता पर ध्यान दें, शारीरिक स्वस्थता पर ध्यान दें। 99.9% हमारी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो है उसी से हमारी बॉडी और दूसरी चीजें गवर्न होती हैं।
0: yes.
1: तो मेरा ये मानना है कि भ्रम और अंधविश्वास में ना जिए, फैक्ट्स और फिक्शन में अंतर को समझें, बौद्धिक विकास पर ध्यान दें। 24/7 हम कैसे खुश रह सकते हैं इस पर ध्यान दें। भूतकाल की पीड़ा, भविष्य की चिंता अगर होगी तो वर्तमान से विरोध बना ही रहेगा, इसलिए खुद में उस विरोध को पनपने ना दें और खुद की योग्यता बढ़ाएं, पात्रता बढ़ाएं। सोचना, बोलना और करना तीनों में हार्मनी होनी जरूरी है। इसी हार्मनी से ही हम जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। मन में आवेश, काम क्रोध लोभ, मद मोह मात्सर्य अगर होंगे, विचारों में हट धर्मिता होगी, अभिमान और अहंकार होगा बुद्धि में, तो हम इन पूर्व स्मृतियों, पूर्व मान्यताओं को देखकर हम जी नहीं पाएंगे। तो समझना क्या है हमें, हमें जागृति पथ पर अग्रसर होना है, भ्रमित मान्यताओं को छोड़ना पड़ेगा और समझदार होने पर ही, समझदार मानव होने पर ही महिलाएं परिवार और समाज में अपनी भागीदारी अच्छे से निभा पाएंगी। कंपटीशन और कंपैरिजन की बजाय कंट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ें, अपनेपन का विस्तार पर ध्यान दें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों वाकई मतलब देखिए ना कि हम जब कभी भी बात करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं लाइफ अनहैप्पी होती तब है ना जब हम कम्पीट करने लग जाते हैं, जब हम कंपेयर करने लग जाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ का कंपैरिजन ही खत्म कर दें सो ऑटोमेटिकली आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपकी लाइफ ज्यादा पीसफुल है और ज्यादा खुश है। तहे दिल से धन्यवाद आशा जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया, आपका तहे दिल से, और सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरी बातों को ध्यान से सुना। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार, थैंक यू।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।
2: ज्वाला समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पे बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो,
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: ज्वाला ये मेरा वादा है।

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव रचना।
1: नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर के आता है रेडियो मानव रचना हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे आपकी जिंदगी से, और उसी मुद्दे पर हमारा प्रयास रहता है कि हम इस प्रोग्राम के जरिए तलाशें नई सोच के साथ नई दिशाएं जो हमें लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रेडियो मानव रचना 107.8 FM का हमेशा प्रयास रहता है कि हम आपके जीवन को जितना बेहतर बना सकें, उसको और ज़्यादा खुशनुमा बना सकें। जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं, हम रेडियो मानव रचना के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमेशा उन प्रयासों पर काम करते रहते हैं। ऐसा ही एक प्रयास आज हम अपने कार्यक्रम में एक चर्चा करेंगे एक विषय पर जो जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, हमारी धन संपत्ति को लेकर के। दोस्तों, आम तौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं पैसे की, तो वो अपने आप में एक कला है, यानी एक आर्ट है पैसा कमाना। लेकिन उसी पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है या उसमें वृद्धि करने के तरीके कौन से होते हैं, वो अपने आप में एक साइंस है, एक टेक्निक है। और उसी टेक्निक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में कैसे बेहतर आय तो चाहते हैं, लेकिन उस धन को कैसी समझदारी से, कितनी समझदारी से हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं।

0: सकते हैं, और इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी आज एक खास मेहमान सोनम पारिक, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में रिसर्च और मार्केटिंग हेड हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे सोनम जी के साथ। सोनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम में नई सोच नई दिशाएं में, वेलकम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी।
0: सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। आपने अभी बताया कि एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में आप रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं, तो वो क्या है कंपनी?
1: तो हमारी कंपनी है मेवेंस कैपिटल, वो बेसिकली नोएडा में बेस्ड आउट है। ये एक बुटीक वेल्थ एडवाइजरी फर्म है, तो हम यहाँ पे HNIs, अल्ट्रा HNIs, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के वेल्थ मैनेज करते हैं। तो किस तरीके से कहाँ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, किस तरीके से उनको उनका पूरा एक एसेट एलोकेशन होता है, उनका पूरा एक पोर्टफोलियो बनता है, तो इस हिसाब से ये हमारा जॉब प्रोफाइल होता है जो हम क्लाइंट्स के लिए करते हैं। मेरा काम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में समझें, क्या मार्केट्स में स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, क्या रिसर्च है, क्या ग्लोबल इन्वेस्टिंग में क्या चल रहा है, डोमेस्टिक में क्या चल रहा है, तो वो मेरा जॉब प्रोफाइल है यहाँ।
0: तो हम अगर हम सीधे सीधे मुद्दे पर आएँ, यदि हम आज के विषय की बात करें, तो एक आम चर्चा में रहता है कि जब कभी भी हम अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करते हैं या व्यापार को लेकर के या पैसे को लेकर के बात करते हैं, तो हम केवल बात करते हैं कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि जो आपका वाला वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, उसके बारे में एक चर्चा दिमाग में आती है कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट है क्या। मतलब हम पैसा कमाने की बात करते हैं, व्यापार कीजिए, जॉब कीजिए या कोई नया स्टार्टअप कीजिए, तो हर किसी में एक बात आती है कि हमने पैसा कमाया। लेकिन जब हम वेल्थ मैनेजमेंट वर्ड यूज करते हैं, तो एक्चुअली वेल्थ मैनेजमेंट है क्या? और दूसरी बात ये कि जब कभी भी वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है, तो हम आमतौर पर समझते हैं कि वेल्थ का सीधा सीधा संबंध होता है उन लोगों से जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या हम जिनको आमतौर पर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अकूत संपत्ति के जो मालिक हैं, उन्हीं को केवल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है?
1: नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के ज़माने में वेल्थ प्लानिंग हर एक बंदे के लिए उतनी ही ज़रूरी है। लोगों को ये लगता होगा, बट आई थिंक वो प्योरली गलत फहमी है। अगर वेल्थ प्लानिंग की बात करें तो सरल भाषा में ये है, आपका आज सुरक्षित करना और आपका आने वाले कल का लक्ष्य को प्राप्त करने का सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। तो आप वेल्थ प्लानिंग में आपका, जैसे आज अगर कोई नया बंदा अपनी जॉब शुरू कर रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो छोटे छोटे SIPs करें, अपने इंश्योरेंस करें। कंपनीज होंगी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना सक्सेशन प्लानिंग करें, एस्टेट प्लानिंग करें। तो ये सब काम जो करना होता है, इसको टोटली वेल्थ मैनेजमेंट कहते हैं। एक टाइम पे शायद वेल्थ मैनेजमेंट चॉइस होती थी, लेकिन आज के ज़माने में मेरे नज़रे में तो वेल्थ मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।
0: अच्छा, एक बात आप बताइए सोनम, आमतौर पर देखा है हमने बहुत सारा लोग कमाई भी करते हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा सेटल्ड होते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको एक स्ट्रेस रहता है, इकोनॉमिकल स्ट्रेस, अगर आर्थिक तनाव की बात करें, तो उसके पीछे का क्या कारण है?
1: ये देखो, एक वर्ड में अगर मैं बताना चाहूँगी संदीप जी, तो वो है डिसिप्लिन। आज आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए, कहीं पर भी करिए, एक कॉमन चीज़ जो हर प्लेटफॉर्म पर रहेगी वो है डिसिप्लिन। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लोगों को लगता है कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज सेविंग्स, जबकि ये सबसे गलत है। इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। अगर ये लोग सॉर्ट कर लें कि हम पहले बचाएं और उस बचत में डिसिप्लिन फॉलो करते रहें, तो मुझे लगता है ओवर द टाइम ना, ये जो इनको भी तनाव हो रहा है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर या अपने अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को लेकर, वो कहीं ना कहीं ओवर द टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये क्विक मनी वाला अगर आपका बिहेवियर होगा, तो आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे। आप पैसे शायद बचा लेंगे, कुछ कमा लेंगे, लेकिन जब हम वेल्थ प्लानिंग की बात कर रहे हैं, उस चीज में सिर्फ और सिर्फ आपको डिसिप्लिन हेल्प करेगा।
0: तो कुल मिलाकर के बात यदि हम करें, तो आर्थिक तनाव का जो मुख्य कारण है, वो है केवल आपका नजरिया। जैसा कि आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि आमतौर पर हम जब सेविंग्स की बात करते हैं, तो होती है कि हमारी इनकम और उसमें से जो खर्चे घटाने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है, वो हमारी सेविंग है। लेकिन जो नजरिया है, वो हमें बदलने की जरूरत है कि हम अपनी आमदनी में से पहले सेविंग्स को अलग करें अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और बाकी बचे हुए पैसे को ही खर्च करें। अपनी जो खर्चों की जो भी फहरिस्त है, उसको हम इतना मैनेज करके चलें कि हम उसमें ही उसको पूरा कर पाएं। तो बहुत खूबसूरत बात सोनम जी ने अभी हमें बताई है कि एक डिसिप्लिन जो होता है अपनी आय को लेकर के, वो रखना बहुत ज़रूरी है यदि आप अपनी वेल्थ को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी संपत्ति के मैनेजमेंट के बारे में, यानी वेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया जाए। आप जो पसीना बहाकर मेहनत करके जो पैसा आप कमाते हैं, उसको वृद्धि करने के, उसको बढ़ाने के कौन से उपाय आप अपना सकते हैं, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट सोनम पारिक, जो एक बड़ी कंपनी में रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं। आज हमने सोनम जी से चर्चा की है आपकी मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ और सवालों के बारे में उनसे जानेंगे और जानकारी लेंगे। तो सोनम, आप एक बात बताइए, यदि कोई युवा, यानी हम जैन जी की बात करते हैं, यंगस्टर्स जॉब करते हैं, तो आमतौर पर देखा जाता है कि जब वो जॉब ज्वाइन करते हैं तो उनको शायद बचत से ज़्यादा कहीं ना कहीं ख्याल रहता है अपनी करंट की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने का। तो क्या नज़रिया उस समय पे युवाओं को अपनाना चाहिए, या अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो कोई युवा यदि अपनी नौकरी की शुरुआत करता है अपने करियर की, तो बेसिकली उसको सबसे पहले करना क्या चाहिए?
1: देखिए, आज पढ़ लिख के इतनी मेहनत करके कोई जॉब शुरू करता है तो उसका पहला नज़रिया तो यही होता है कि यार थोड़ा अपने पे खर्च कर लें, नई घड़ी ले लें, बाइक ले लें, गाड़ी ले लें, कहीं घूम आएं। और जो मुझे लगता है ऑनेस्टली कहीं गलत नहीं है, आपने अपना एक करियर बिल्ड कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, लेकिन डिसिप्लिन जितना जल्दी शुरू हो जाता है ना, उतना ही बेहतर रिजल्ट देता है। तो मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि थोड़ा सा ही सही आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, जो SIP होती है, बेस्ट तरीका। तो आपने जो भी आप इनकम कमाते हो, हम टेक्निकली कहते हैं कि उसका 33-35% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली देखें तो नया नया किसी ने कोई जॉब शुरू किया तो वो पॉसिबल नहीं होता। बट एक डिसिप्लिन लाने के लिए, एक फॉर्मेट बिल्ड करने के लिए कम से कम 20% से वो एक SIP शुरू कर दें, वो डिसिप्लिन आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे वो अपने इस डिसिप्लिन को, अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे।
0: तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि आप कहीं से भी इनकम की शुरुआत करते हैं किसी भी एक नए वेतन के रूप में, तो कहीं ना कहीं आपको उसी समय से डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड रह सके। और साथ ही साथ एक बात जो समझने वाली है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास इतनी बिखरी हुई होती हैं कि वो हमेशा आकर्षित करती हैं, और ख़ासकर हमारे युवाओं को, जो कहीं ना कहीं एक जो EMI का एक फंडा चल पड़ा है कि आप सेविंग्स में रेगुलर पेमेंट देने की बजाय आप कोशिश करते हैं कि आप भविष्य की आवश्यकता की चीज़ें भी करंट में खरीद लें और उसके ऊपर खर्चा करें। तो हमें बचने की ज़रूरत है उन सब बातों से। यदि मैं सीधे शब्दों में बात कहूं, जैसे मैंने पिछले भाग में आपसे बात की कि जो वेल्थ मैनेजमेंट है, क्या ये कॉन्सेप्ट केवल उन लोगों के लिए है कि बहुत सारा पैसा होता है, तो मैं उसी बात को एक दूसरे तरीके से कहना चाहता हूं कि यदि कोई युवा है, उसने अभी जॉब ज्वाइन की और वो अपना, जैसे कि आपने कहा कि 20% मिनिमम एक सेविंग करना चाहिए, तो मैं अगर इसको फिगर आउट करूँ कि यदि कोई व्यक्ति मात्र 5,000 रुपये महीने की सेविंग करता है और उसको निवेश करना चाहता है, तो क्या उसको निवेश शुरू करना चाहिए?
1: बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जो हमारी इंस्टीट्यूशन है SEBI और AMFI, उनका ना पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को लेके। आज SEBI ने एक मिनिमम 250 रुपये की भी SIP शुरू करवा दी है। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो 5,000 तो बहुत बड़ी रकम हो गई, आपको अगर 1,000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट महीने दर महीने करना है तो भी आप कर सकते हो।
0: तो ये तो बात हुई SIP और म्यूचुअल फंड की। साथ ही साथ अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है, जब हम वेल्थ मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको सीधा सीधा अगर हम लिंक करें इन्वेस्टमेंट से, हमने सेविंग की बात की कि ठीक है पहले हमें सेविंग करना चाहिए, बचे हुए पैसे को खर्च करें, लेकिन यदि हम उस सेविंग को इन्वेस्ट करने की बात करें, तो आप क्योंकि एक रिसर्च मार्केटिंग हेड हैं आप कंपनी की, तो आप बेहतर जानती होंगी कि क्या क्या हमारे पास उपाय हैं या क्या अवसर हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल हैं। तो लोगों के मन में जो प्रश्न रहता है कि आखिर उनकी जो सेविंग है उसको इन्वेस्ट कहाँ पर करें, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
1: देखिए, मुझे लगता है कहाँ करें से पहले आपको जवाब देना पड़ेगा कैसे करें। ठीक है, आज क्या हो रहा है, आज के डेट में एक बंदे को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके किसी फैमिली मेंबर में, उसके किसी फ्रेंड में या जानकार में अगर किसी ने एक कंपनी से या एक स्कीम से पैसा कमाया है, तो वो भी उसी में डाल देते हैं। इनफैक्ट इसका मैं संदीप जी आपको बहुत बढ़िया उदाहरण देना चाहूँगी। तो आपने देखा होगा पिछले साल भर से हमने गोल्ड और सिल्वर में बहुत रैली देखी है कि प्राइस बहुत ही शॉर्टअप हो चुके थे। तो म्यूचुअल फंड में गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ETF। तो अगर आपको बाय करना है तो आप गोल्ड ETF या सिल्वर ETF बाय करते हैं। ये कैटेगरी अपने आप में महीने दर महीने 3 से 4 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाती थी। जनवरी में गोल्ड सबसे पीक पे था, ठीक है। उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 24 हजार करोड़ की हुई है। आज डेट पे जनवरी से अभी तक अगर आप देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर काफी करेक्ट हो गए। गोल्ड तकरीबन 20 से 24% फॉल ले चुका है और सिल्वर भी लगभग उतना ही फॉल ले चुका है। अब उसका नतीजा क्या हुआ, पिछले महीने मई में उसी फंड में से 3 हजार करोड़ निकल गए। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि क्योंकि किसी ने देखा कि यार गोल्ड में बहुत पहले इन्वेस्ट कर रखा हुआ था, जनवरी में बहुत रिटर्न मिल गए तो बंदों ने जान में इन्वेस्ट कर दिया।
0: तो यानी लोग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की बजाय लोगों में, जिसको हम आमतौर पर आम भाषा में भेड़ चाल बोलते हैं, उस तरह का है कि लोग फॉलो करते हैं कि कोई क्या कर रहा है,
1: पास्ट रिटर्न्स देखते हैं, जबकि वो इकलौता तरीका नहीं होता आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए संदीप जी, 3 चीजें हर एक बंदे को समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। पहली चीज है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। जब मैं रिस्क प्रोफाइल बोलती हूँ तो उसका मतलब ये है कि मार्केट्स में जो हम पिछले 2 साल से देख भी रहे हैं, अगर रिटर्न नहीं आया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या आप शांति से बैठ के वेट करोगे, आप पैनिक करोगे या आप बेच दोगे? ऐसे करके ना बहुत क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारी कंपनी भी करती है, वो क्वेश्चंस का आप जवाब देते हो, उन जवाब से हमें पता चल जाता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। दूसरी चीज जो हम करते हैं वो है इन्वेस्टमेंट होराइजन। कि मानो मैं कह रही हूँ मुझे यहाँ से 1 साल के लिए पैसा रखना है, 2 साल के लिए रखना है, 5 साल के लिए रखना है, 10 साल के लिए रखना है, तो दूसरी चीज आपको जाननी होगी कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। तीसरी चीज आपका पर्पस क्या है। आज नए युवाओं के लिए शायद पर्पस होगा कि मुझे 2 साल बाद एक यूरोप ट्रिप लेना है, 4 साल बाद एक गाड़ी लेनी है, घर लेना है। मिडिल एज वालों के लिए होगा बच्चों की एडुकेशन या रिटायरमेंट प्लान। तो तीसरा सवाल होगा पर्पस, कि आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। फिर जाके आता है कि आपको किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। आज लोग गलती यही कर रहे हैं, वो शुरू ही नीचे से कर रहे हैं कि किस प्रोडक्ट में डालें, जबकि पहले समझना होगा ये 3 चीजों का जवाब। जब इन 3 चीजों का आपको जवाब मिल जाएंगे ना, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा, आपका एक पूरा एसेट एलोकेशन बन जाएगा कि उन 3 सवाल के हिसाब से आपको इक्विटी में कितना रखना है, डेट में कितना रखना है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग में कितना रखना है और गोल्ड और सिल्वर में कितना रखना है।
0: मतलब अगर हम सीधी बात करें तो वेल्थ मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो एक्चुअली शुरू होता है, सबसे पहले आपको स्वयं को पहचानने की जरूरत है कि आपकी अपनी आवश्यकताएं हैं क्या। यदि हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपकी अपनी जरूरतें क्या हैं, उन पैरामीटर्स पे कौन सी चीज फिट बैठती है। जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल जाएगा। और यदि इस प्रकार का जवाब ढूंढने में आप सक्षम नहीं हैं, वहीं पर काम शुरू होता है किसी वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का।
1: करेक्ट, एकदम सही।
0: तो साथ ही इस चीज में एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आमतौर पर आपने देखा होगा भारतीय गृहस्थी में महिलाओं का भी पूरा एक रोल रहता है, वो भी एक गृहस्थी जीवन बिताते हुए भी उनके पास अपनी एक कुछ सेविंग्स होती हैं, उनकी भी भागीदारी काफी हद तक हमारी जो अगर हम वेल्थ की बात करें तो उसमें होती है। तो उनको किस तरह से इस वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट बनना चाहिए या उनके लिए क्या स्कोप है वेल्थ मैनेजमेंट?
1: सर देखिए, एक तो सबसे पहली बात, वुमेन इन्वेस्टर्स ने खूब तरक्की कर ली है इसमें। मैं भी कुछ दिन पहले एक डेटा देख रही थी, तो 2020 की बात है, कोविड के टाइम पे जो हमारे म्यूचुअल फंड का AUM है उसका तकरीबन 5-1 लाख करोड़ रुपए वुमेन इन्वेस्टर्स का होता था। दिसंबर 2025 में वो डेटा है 17.5 लाख करोड़ का। तो ये एक डेवलपमेंट हुआ है कि वुमेन इन्वेस्टर्स और पे और इन्वेस्ट करने लगी है। तो इसमें जो मुझे लगता है, ऑब्वियसली मैं नोटिस करती हूँ कि वुमेन बहुत क्लियर हैं, उनको कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं बनना है, उनको फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन चाहिए, हर एक डिसीजन का पार्ट बनना चाहते हैं। और उससे मैं ये कह रही हूँ, हो सकता है कई जगहों पे आप शायद गलत भी हो जाओ, बट उससे निराश नहीं होना चाहिए।
0: लेकिन एक बात है कि जो उनका दायरा है वो काफी, क्योंकि घरेलू महिला है तो काफी सीमित होता है, तो उनके लिए कौन से प्रोडक्ट या कौन से तरीके उपलब्ध हैं कि वो अपनी जमा की हुई जो सेविंग्स उनके पास रहती है उसको इन्वेस्ट करने के उनके पास कौन से सरलतम उपाय उपलब्ध होते हैं?
1: देखिए, हर एक इन्वेस्टमेंट उनके लिए ओपन है, ऐसा नहीं है। आज अगर वो हाउसवाइफ हैं, वो जॉब नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए सिक्योर सेफ थोड़े से बेटर सेफ फंड्स होते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई जॉब करने वाले हैं तो वो उस देखिए फंड्स आप अपेरेंटली सेम ही रहेंगे, आप विमेन के ले लो मेन के ले लो, हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में हर एक तरीके के प्लान्स हैं आपके पास। अगर आप कहते हो कि मुझे 6 महीने के लिए ही पैसा रखना है तो उस हिसाब से भी आप अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है एंड प्लस आपने अभी एक बात बोली कि विमेन क्योंकि यू नो ऑब्वियसली मेजर हाउस मेकर्स ही रही हैं, जो मुझे लगता है वो ये है विमेन का ना बहुत ही एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनका इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या सही है, क्या ये सही रहेगा, या अगर उसमें कुछ भी उनको ऊपर नीचे है तो मुझे लगता है वो शायद कंपैरेटिवली जल्दी आइडेंटिफाई कर सकती है।
0: बट आज की डेट में ये तरीके बड़े साइंटिफिक हो गए हैं और वेल्थ मैनेजमेंट और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करती है यदि हम उन तरीकों को अपनाते हैं। तो अभी इस चर्चा को जारी रखेंगे म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम के आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम बात कर रहे हैं आपकी बचत को निवेश करने के फंडों को लेकर के, तौर तरीकों को लेकर के, जिसे हम आधुनिक रूप में अगर हम भाषा में नाम बोलें तो वेल्थ मैनेजमेंट का। और हमारे कुछ सवालों का आपको जवाब देने के लिए आई हुई है हमारे पास रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड सोनम पारिक, जो एक कंपनी में वेल्थ मैनेजमेंट पे ही अपनी सलाहों से बहुत से लोगों का पैसा बढ़ाने का या उनको ऐसे नए उपाय सुझाने का, वो साइंटिफिक तरीके से समझाने का काम करती हैं कि जिससे उनका कमाया हुआ पैसा कम समय में ज़्यादा वृद्धि पा सके, यानी ज़्यादा बढ़ सके। तो सोनम, एक बात जो आमतौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं फ्यूचर सिक्योर करने की, चाहे कोई युवा है या कोई गृहिणी है या कोई भी है, तो एक थॉट हर किसी के मन में आता है जब वो सेविंग करता है या निवेश करता है, तो दो तरीके दिमाग में चलते हैं। एक तो ये कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, आमतौर पर आपने देखा होगा, और एक दूसरा थॉट आता है जब वो अपने लिए बात करते हैं कि अपने रिटायरमेंट के बाद उनका किस तरह से उस पैसे का यूज वो कर सकते हैं, या क्या बेहतर तरीके हैं जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक बेहतर रिटर्न दे पाएं या एक आरामदायक जिंदगी वो बिता पाएं रिटायरमेंट के बाद। तो आखिर यदि हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो कब रिटायरमेंट का जो थॉट है उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता होती है, या चाहे हम किसी वेतन परस्त व्यक्ति की बात करें या किसी बिजनेसमैन की, तो जो रिटायरमेंट की प्लानिंग है वो एग्जैक्टली कब शुरू की जानी चाहिए आपकी राय में?
1: ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आप कहो कि मैंने इतने साल जॉब कर लिया उसके बाद मैं रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करूं। आप इनफैक्ट जॉब जब शुरू कर रहे हो, आपकी इनकम शुरू हुई है, आप तब से भी प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप तीन उन सवालों के जब जवाब देते हो, तो तीसरा होता है आपका पर्पस। तो समझिए कि मैंने अभी अभी अपनी जॉब शुरू करी है और मैं कह रही हूँ कि यार मुझे 4 साल बाद घर लेना है, उसके बाद मेरा बट एक रिटायरमेंट प्लान भी मुझे करना है। तो कौन वेल्थ एडवाइजर क्या करते हैं, या जनरली लोगों को भी क्या करना चाहिए, आप एक एसेट एलोकेशन करोगे। उसका क्या मतलब हुआ है कि मेरी इनकम से मैं एक्स अमाउंट बचा सकती हूँ, तो वो एक्स अमाउंट के हिस्से बनेंगे कि एक हिस्सा मैंने रखा है अपने घर खरीदना है उसके लिए, एक हिस्सा मैंने रखा है रिटायरमेंट के लिए। अब क्योंकि मैंने अभी अभी करियर शुरू किया और मेरे रिटायरमेंट में बहुत लंबा टाइम है, तो मेरे लिए जो रिटायरमेंट के प्रोडक्ट्स होंगे वो अलग होंगे। वो शायद एक लॉन्ग टर्म होगा जिसमें मैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले पाऊंगी, थोड़ा स्ट्रॉन्ग इक्विटी होगा, तो उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरा आपका है कि आपको 4-5 साल बाद मुझे घर लेना है, वो पैसा उसमें जा रहा है, तो मैं उस फंड में लूंगी जो मुझे पता है कि 5 साल में एक एक्स अमाउंट बना के दे सके, ताकि आपके जो भी माइलस्टोन है उसको हम अचीव कर सके। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप जब आप चाहो आप अपना रिटायरमेंट शुरू करो। हाँ, परसेंटेज चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी अभी शुरू किया है, मेरे जॉब मेरे रिटायर होने में टाइम है, तो अगर मैं समझो 100 रुपये बचा रही हूँ तो उसका मैं शायद सिर्फ 10 रुपये डालूंगी रिटायरमेंट में, 90 कहीं और डालूंगी। फिर धीरे धीरे जैसे मेरी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मैं अपना एलोकेशन बढ़ाती रहूंगी।
0: तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो रिटायरमेंट की जो भी योजना है वो किसी भी समय आप आरंभ कर सकते हैं, लेकिन वो योजना किस प्रकार की होगी, उसमें एलोकेशन ऑफ फंड्स होगा किस प्रकार से, वो डिपेंड करता है आपकी अपनी स्थिति के ऊपर कि आप किस स्थिति में हैं और आपकी फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग क्या है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। किसी के बच्चे फॉरेन एजुकेशन के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, कोई अपने लिए एक बहुत अच्छा बड़ा घर प्लान कर रहा होता है, या कोई बहुत आरामदायक जीवन जीना चाहता है रिटायरमेंट के बाद। तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो आपकी आवश्यकताओं के, आपकी ज़रूरतों के या आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, उसका कोई समय सुनिश्चित नहीं है। तो एक बात और जो वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर के बात आती है दिमाग में जब कभी भी हम सोचते हैं, तो इतनी तरह के लुभावने विज्ञापन आते हैं तरह तरह की, म्यूचुअल फंड में कभी किसी में इन्वेस्टमेंट की बातें करती हैं, तो जो बातें हैं उन बातों में एक सबसे ज़्यादा जो आजकल पॉपुलर वर्ड है बहुत आमतौर पर, अभी आपने कई बार हमारी चर्चा में SIP का जिक्र किया म्यूचुअल फंड को लेकर के, तो म्यूचुअल फंड के बारे में आज के समय में सबसे बड़ा मिथ है क्या, मतलब लोगों के मन में जो शंकाएं रहती हैं उनमें क्या सबसे बड़ी जो मिथ है वो म्यूचुअल फंड को लेकर के क्या है?
1: मुझे लगता है सबसे बड़ा मिथ जो है लोगों को वो ये है कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी, जबकि ऐसा नहीं है। आज अगर एक बंदा कहता है, क्लाइंट कहता है कि मुझे एक ही दिन के लिए पैसा रखना है, तो म्यूचुअल फंड में ओवरनाइट फंड्स होते हैं। कोई कहता है मुझे 7 से 10 दिन के लिए पैसा रखना है, तो उसके लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कोई कहता है नहीं मुझे 2 से 3 महीने रखना है, तो उसके लिए लिक्विड फंड्स है, लिक्विड प्लस फंड्स है। कोई कहता है मुझे एक साल के लिए रखना है, तो उसके लिए आर्बिट्राज फंड्स हैं। तो लोगों का ये मिथ है कि म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी मतलब कभी भी गिर सकता है, वो बहुत गलत है। आज आपको जो कॉम्बिनेशन चाहिए आप उस कॉम्बिनेशन में म्यूचुअल फंड का एक्सेस ले सकते हैं। इक्विटी डेट चाहिए, इक्विटी कम डेट ज़्यादा चाहिए, वो हो सकता है। आपको चाहिए इक्विटी कम डेट कम बट उसमें थोड़े कमोडिटीज भी आ जाएं, तो वो भी हो सकता है। प्योर डेट चाहिए, वो भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से लोगों को ये समझना होगा म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ इक्विटी तक सीमित नहीं है, उसमें और भी ऑप्शंस हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: यानी अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड अपने आप में एक बंच है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास हैं, और मैं जहां तक समझता हूं कि वहीं पर कहीं काम शुरू होता है एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का।
1: करेक्ट।
0: तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और जानेंगे कि आपके धन की वृद्धि साइंटिफिक तरीके से एक वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोग्राम को अपना करके एक डिसिप्लिन लाइफ के तरीके से किस प्रकार से की जा सकती है। तो जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, और फिर हाजिर होते हैं इस चर्चा को जारी रखने के लिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। और दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो है आपके पैसे से जुड़ा हुआ, यानी आपकी सेविंग्स को कैसे हम कम एफर्ट्स में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट के जरिए। और उसके लिए ज़रूरत होती है हमें एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की। और हमारे बीच आज हमारी खास मेहमान हैं जो रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में, सोनम पारिक। आज हमने सोनम से जाना कि किस प्रकार से आप अपनी जो सेविंग्स है, एक बहुत बड़ा उन्होंने एक मंत्र बताया कि आपको नज़रिया बदलने की आवश्यकता है कि आपको पहले अपनी इनकम में से सेविंग्स को अलग करना है, बाकी बचे हुए पैसे का इस्तेमाल करना है अपनी ज़रूरतों पर, ना कि ज़रूरतों के बाद बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आता है यदि आप अपने इस नज़रिए को बदलते हैं। और ख़ासकर इस मंत्र को अपनाने की आवश्यकता है हमारी जेन जी को, हमारे युवाओं को, ताकि आपका फ्यूचर बेहतर बन सके। तो सोनम, आज एक मुद्दा और जो आमतौर पर आप जैसे पूरी चर्चा में हमने बात की, आखिर पैसा हमारा है, हमारे सामने बहुत सारे विज्ञापन, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, क्यों हमें ज़रूरत है एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की? मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं, पैसा हमारे पास है, हमें पता है कि किस पे कितनी रिटर्न आ रही है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो वो एक आम आदमी या कोई भी जो व्यक्ति एक बहुत अच्छे पद पर कहीं है या एक बड़ा व्यापार चला रहा है, तो उसे वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट आखिर चाहिए क्यों?
1: देखिए, सेम वजह है जिसके लिए लोगों को डॉक्टर चाहिए होता है, लॉयर चाहिए होता है, फिटनेस ट्रेनर चाहिए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होता है। बेसिकली आपको एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज हो उस इंडस्ट्री में। आज करने को, आज तो एआई का ज़माना है, आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पूछ के। एंड वैसे भी आज के युवाओं में तो DIY चलता है, डू इट योरसेल्फ। लेकिन ये दोनों चीज़ों में जो रोल प्ले करेगा वो है आपके पास्ट रिटर्न्स, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सिर्फ पास्ट रिटर्न पे नहीं होता है। आज क्या होता है कि वेल्थ एडवाइजर के पास ना एक्सेस होता है, वो फंड मैनेजर से बात करते हैं, वो उनकी रिसर्च टीम से बात करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी समझते हैं, उनके फ्यूचर प्लान समझते हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी और ये प्लान मेरे क्लाइंट के लिए सूटेबल है कि नहीं। अगर है तब जाके वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो जो आप खुद करते हो वो आप पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे करते हो। एक वेल्थ एडवाइजर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे बनाता है वो प्रोफाइल। दूसरी चीज, आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट एक फुल टाइम जॉब है। अगर आपका अपना करियर है जिसमें आपको फुल टाइम देना पड़ता है, तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक सेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, उस सेक्टर में एक कोई पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो इन सब में बहुत टाइम जाता है। आज एक वेल्थ एडवाइजर का फुल फ्लेज्ड काम यही है। तो कहीं ना कहीं उनके उनकी हेल्प लेने से आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है। और तीसरा जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ वो ये है कि वेल्थ एडवाइजर आपके लिए एक इमोशनल सपोर्ट और बफर बन जाता है। आज हमने देखा है कि कोविड के वक्त, डीमोनेटाइजेशन के वक्त, काफ़ी लोगों ने पैनिक में पैसा बेच दिया, अपने फंड्स बेच दिए। यही अगर कोई वेल्थ एडवाइजर होता तो वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल इंटेलिजेंस से या फिनेंशियल इंटेलिजेंस से आपको हैंडल कर लेता। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको हम हमारे इंडस्ट्री में 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, विच इज़ कंपाउंडिंग। जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता ना, वो ऐसे पैनिक सेलिंग में कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो आज अगर एक वेल्थ एडवाइजर होगा आपके पास तो वो आपको सही गाइडेंस दे पाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न मुझे लगता है कि कोई भी स्टेज पे आप हो, आपने करियर शुरू किया है, आप कॉर्पोरेट हो, आप ग्रो कर चुके हो, आपको एक वेल्थ एडवाइजर बहुत काम आएगा आपका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स या इन्वेस्टमेंट्स को आगे ले जाने के।
0: यानी अगर हम बात करें तो एक व्यापारी केवल अपने व्यापार से संबंधित सूचनाओं के बारे में जानकारी रखता है, या कोई, यदि हम किसी सैलरीड पर्सन की बात करें या प्रोफेशनल की बात करें, तो हर किसी का अपना एक क्षेत्र होता है। वहीं पर कहीं ना कहीं जो वेल्थ एडवाइजर है, जो वेल्थ मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट हम बात करते हैं, उनका भी अपना एक क्षेत्र है। वो इसी क्षेत्र से संबंधित उत्पाद या आपके पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर आपको बेहतर रिटर्न दे पाएगी, तो उनके पास सोर्सेज ज़्यादा तरीके से

0: होते हैं, और एक जैसे हमने शुरू में बात की कार्यक्रम के शुरू में कि पैसे को बढ़ाना अपने आप में एक विज्ञान है, कमाना एक कला हो सकता है लेकिन बढ़ाना विज्ञान है, तो उस विज्ञान के जो एक्सपर्ट हैं वो वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर होते हैं। अच्छा, दूसरा एक बात, तो आम तौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं सेविंग्स की, तो एक पहले तरीका होता था कि लोग थोड़े थोड़े पैसे बचा करके अपने पास घर में रख लेते थे, बैंकों में नहीं जमा कराते थे क्योंकि बैंकों में खाते नहीं होते थे, लेकिन व्यवस्था बदली तो लोगों ने बैंकों में जमा कराना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके मन में एक शंका हमेशा बनी रहती थी कि यदि हमें कभी जरूरत पड़ी इमरजेंसी के टाइम पे तो हमारा पैसा हमारे पास होना चाहिए। बैंकों की सर्विसेज ऐसी हो गई, कार्ड्स बन गए, डेबिट कार्ड बन गए, एटीएम बन गए कि आप कभी भी पैसा निकाल लो, लेकिन जैसे आज का आधुनिक युग आया, यदि हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो क्या वेल्थ मैनेजमेंट करके या पैसे को हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट करके, क्या ये सुविधा हमारे पास एक आम आदमी के दिमाग में जो थॉट आता है कि यदि पैसे की इमरजेंसी में आकस्मिक कोई आवश्यकता पड़ती है तो क्या उसमें भी वही सुविधा उनको उपलब्ध होती है कि या इन्वेस्टमेंट के बाद वो फंस जाते हैं 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए कि उनको पैसा बीच में अगर जरूरत है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा?
1: देखिए क्या होता है ना, हर फंड का अपना एक एग्जिट लोड बोलते हैं इसको या लॉक इन पीरियड होता है। हर फंड के जो आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखोगे या जो फैक्ट शीट कहते हैं हम, उनमें डेटा हमेशा आता है। तो इक्विटी फंड्स होंगे जिसमें लॉक इन नहीं होगा, लॉक इन मतलब कि आपका पैसा आप निकाल सकते हो, साल भर से पहले अगर आप निकालते हो तो कोई चार्जेस लगते हैं। लेकिन जो मैं पहले बता रही थी कि जो 1 दिन 2 महीने 6 महीने के लिए फंड्स में पैसा रखता है उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता, आप कभी भी निकाल सकते हो। मुझे लगता है ये जो सवाल आपने पूछा है ना, ये शायद आपके भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आया होगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में और म्यूचुअल फंड्स कह लो, वेल्थ कह लो, इंश्योरेंस कह लो, इनमें ना मिस सेलिंग बहुत होती है। तो क्योंकि आपने अगर किसी से बाय किया है और कोई टारगेट प्रेशर होगा या कोई भी वजह हो सकती है, उस वजह से जब आपको कोई प्रोडक्ट बेचने जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, क्योंकि उनको पता है कि आपको इतने टाइम में चाहिए होगा तो वो उस हिसाब से आपको जवाब देते हैं। लेकिन आप कभी भी कोई भी स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एक वन पेज में आपको सब साफ दिख जाता है। तो कुछ फंड हैं जिसमें आपको जब चाहिए तब पैसा आएगा, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि एटीएम कार्ड जैसा नहीं होगा कि आपने आज चाहा और आज पैसा आ जाएगा। मिनिमम से मिनिमम जो है वो ये है कि आप आज रिडेम्पशन डालते हो तो अगले दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, और एक आधी स्कीम में ऐसा होगा जहाँ आज रिडेम्पशन डालोगे तो 2 दिन बाद आएगा, पर ये मैक्सिमम है, इतने में आपका पैसा आ जाता है। हाँ, ये नहीं है कि आप चाहो कि तुरंत आए,
0: तो मतलब लिक्विडिटी जो है वो स्लो नहीं है, बहुत जल्दी आपको पैसा मिल जाता है, क्योंकि यदि आकस्मिक आवश्यकता की बात करें तो उतना फंड तो आप बैंक में भी रख सकते हैं। लेकिन एक सलाह वाली बात है कि यदि आपको पैसे में वृद्धि भी चाहिए और समय पर पैसा चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं।
1: देखिए आज ना क्लाइंट्स के लिए बहुत आसान हो गया इन्वेस्टमेंट करना। जैसे मैंने आपको बताया कि सेबी का माइंडसेट ही यही है कि इन्वेस्टर्स के लिए जितनी चीजें आसान बना सके। अब इट्स एवरीथिंग इज ऑन अ क्लिक, आप अपने ऐप के थ्रू बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो आज इन्वेस्टमेंट कन्वीनियंट बहुत हो गया है, जो पहले होता था कि आपको ब्रांच जाके चीजें करनी पड़ती थी, आज वो आपके क्लिक ऑफ अ बटन पे है। तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत सरल हो गया है, तरीका बहुत सरल हो गया है
0: अगर हम डिजिटल युग की बात करें आज तो। बिल्कुल, तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। आज हम चर्चा कर रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर अपनी विशेष मेहमान सोनम पारिक के साथ। तो फिर हाजिर होते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी वेल्थ को बढ़ाने के उपायों के ऊपर एक वेल्थ एडवाइजर के साथ, जो हैं सोनम पारिक, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, वेल्थ एडवाइजर हैं, रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड है कंपनी में। और वो आज हमें बता रही हैं कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट है क्या और वेल्थ एडवाइजर की या वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है। सोनम, एक बात जो मैंने भी कार्यक्रम के पिछले हिस्से में भी कही थी कि पहले एक व्यवस्था थी कि लोग आमतौर पर जो सेविंग होती है, बचत होती है, उसको घर में रखते थे, पैसा संभाल के रख दिया। या बहुत सारे हमने किस्से ऐसे भी सुने हैं कि पैसे को घड़ों के अंदर बढ़ के दबा दिया, सोने के सिक्के दबा दिए, तो एक व्यवस्था चलती थी। लेकिन जब से बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ और अगर हम आज लेटेस्ट बात करें तो डिजिटल युग हमारा है, तो क्या ये जो व्यवस्था है वास्तव में वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी, जिस प्रकार की आप जो आपका व्यवसाय जो प्रोफेशन है, वो किस प्रकार से देखता है इस बात को कि हमें ये पैसा जो इन्वेस्ट करना है वो कैसे हमारी देश की इकोनॉमी में हेल्प करता है। मतलब अगर हम सेविंग्स की बात करें तो सेविंग तो आपने पैसा बचा करके अपने पास रख लिया तो वो भी सेविंग है, और वो आपने बैंक में अपने अकाउंट में रख लिया वो भी सेविंग है। लेकिन यदि हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो कैसे हेल्प करता है हमारे देश की इकोनॉमी में।
1: देखिए, आपने जो कहा कि घर पे पैसा रखते हैं वो भी सेविंग है और जो बैंक में रखते हैं वो भी सेविंग है, एक्चुअली वो नहीं है। देखिए, सेविंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया। सेविंग का मतलब बेसिकली यही है कि आगे चल के जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन जो हम कहते हैं, मेरा पैसा उसको बीट कर पाए। ठीक है, तो आज अगर सरल भाषा में बोलूँ तो इन्फ्लेशन अगर 3.5% 4% चल रही है तो मेरा पैसा एटलीस्ट उतना बढ़ना चाहिए, तब वो नॉर्मल पैसा कहलाया जाएगा। तब भी वो रिटर्न नहीं है, राइट? रिटर्न वो होगा जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी जो मैं पैसा कमा रही हूँ वो एक्स्ट्रा है,
0: जो उसकी ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली थोड़ी ज्यादा हो।
1: एग्जैक्टली। अब आपने घर पे पैसा रखा, आपने साल 5 साल 6 साल रखा, उसने कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन महंगाई तो बढ़ गई, तो आपकी जो वैल्यू थी मनी की वो कम हो गई। और सेम हिसाब चलता है जो आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा होगा, वो पैसा वैसे का वैसा ही है, जो ब्याज आता है थोड़ा बहुत वो आ गया, लेकिन इन्फ्लेशन उससे कई ज्यादा है। तो हुआ क्या, आपके जो पैसा है उसका वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो गई, इसीलिए आप कहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो। देखिए, आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ही इकोनॉमी चलेगी, राइट? ये पूरा एक सर्कल है। आप कंज्यूम करोगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी हमारी देश की कंजम्पशन बढ़ेगी, तो जो कंपनियां वो प्रोडक्ट बनाती हैं वो चलेंगी, तब हमारा मार्केट चलेगा तो लोगों को रिटर्न मिलेगा। तो ये पूरा एक विशेष सर्कल है। अगर आपने कंज्यूम ही नहीं किया, आपने स्पेंडिंग नहीं करी, आपने पैसे बचाए नहीं, तो वो इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। बट थैंक्स टू डीमोनेटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा अपने अकाउंट में रख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है।
0: तो अगर हम सीधी सीधी बात करें तो बचत करना अपने आप में पैसे को अपने पास रखना नहीं है जब तक कि आप उसका इन्वेस्टमेंट ना कर दें। यानी हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हम बैंक की बात करें या अदर जो कंपनीज हैं जो इस तरह का काम करती हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं या डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में पैसा इन्वाइट करती हैं लोगों का, जब तक उसमें पैसा जा करके इकोनॉमी में ना जाए तब तक हम उसको एक तरह की सेविंग्स ना माने, ये हमारा एक थॉट होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात आपने कही और समझने की बात है कि नजरिया हमें बदलना जरूर पड़ेगा कि हम आम तौर पर जो एक मिथ पाल के रखते हैं दिमाग में कि जो पैसे बचेंगे उनको हम इन्वेस्ट करेंगे, जबकि हमें सोचना ये चाहिए कि जो पैसा हमारे पास बचे उसे खर्च करना है। यानी पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी है। तो एक बहुत बड़ा थॉट आज के इस प्रोग्राम में, इस चर्चा में निकल के आया है। तो सोनम, एक बात और मैं जो जानना चाहता हूँ, यदि हम एक समअप करें इस सारी बात को, जिस प्रकार के विचार आपने हमारे सामने रखे, तो निश्चित रूप से एक वेल्थ एडवाइजर या एक वेल्थ मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट होता है वही ऐसे थॉट रख सकता है जिस प्रकार से आपने हमें चीज़ें समझाई कि क्यों एक वेल्थ एडवाइजर की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि हम कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर के जाएं तो हमारे जो लिसनर्स हैं रेडियो मानव रचना के, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहती हैं?
1: देखिए, आज हर कोई, हमारी गवर्नमेंट, हमारे फंड मैनेजर्स इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात कर रहे हैं, जो कि सही भी है। ये ग्रोथ स्टोरी का पार्ट आप तभी बन पाएंगे जब आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। आपको ये समझना है, हर एक आपके लिसनर्स को, कि आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से, किसी भी अमाउंट से इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का पार्ट बनिए। आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं, आप कितना पैसा बचा सकते हैं, कितने टाइम के लिए रख सकते हैं, वो कितनी भी छोटी से छोटी अमाउंट हो, लेकिन इस इंडस्ट्री का, इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक फ्लेवर लीजिए। जब आप फ्लेवर लेंगे, जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आने लगेगी, काफ़ी आपका पर्सपेक्टिव खुलेगा, काफ़ी आप चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मेरे आपके लिसनर्स से बस यही रिक्वेस्ट है कि आइडेंटिफाई करिए आपकी वेल्थ जर्नी क्या है, बट प्लीज़ डू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी किसी भी फॉर्म में। आप एक एडवाइज़र के साथ करना चाहते हो वो भी चलेगा, आप इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो वो भी चलेगा, बट ट्राई टू रीड मोर, आप सही जगहों से इंफॉर्मेशन लीजिए एंड उस हिसाब से फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करिए।
0: क्योंकि आमतौर पर हमने देखा जितनी भी स्कीम्स आती हैं उसके बाद फिर एक लाइन आ जाती है कि जोखिम और मार्केट,
1: सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।
0: तो उन सब चीजों के बारे में यदि कोई राय कहीं से मिल सकती है तो आपको निश्चित रूप से एक वेल्थ एडवाइजर ही दे सकता है। तो आज के कार्यक्रम में दोस्तों हमने जाना कि आखिर कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस कमाई में से कुछ बचत करके उसको निवेश करना, और साथ ही साथ यदि आप उस निवेश पर एक बेहतर रिटर्न चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो निवेश कहीं ना कहीं आपके उन सपनों को पूरा करे, जो सपने मन में लेकर के आपने वो निवेश किया या वो बचत की है, तो आपको एक बेहतर वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट या वेल्थ एडवाइजर की ज़रूरत पड़ती है, जो अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उसका फ़ायदा आपकी वेल्थ को बढ़ाने में दे सके। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि आपके पास पैसे का वॉल्यूम कुछ भी है, आपकी बचत का आकार कुछ भी है, लेकिन आप भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन सकते हैं, आप भी वेल्थ मैनेजमेंट का ही हिस्सा बन सकते हैं। उसमें कोई भी आकार या कोई समय बिल्कुल नहीं होता। हालाँकि जो भी प्रोग्राम आपको चूज़ करना है, किसी भी चीज़ में आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो वो आपकी स्थिति के ऊपर, आपके पैसे के आकार के ऊपर कि आप बचत कितनी है, आपकी आयु कितनी है या आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसके ऊपर निर्भर करती है। तो आज इन सभी सवालों के हमने जवाब जानने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे जो मन में प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं उनके जवाब आपको आज मिले होंगे। और इस चर्चा ने आज हमें ये भी समझाया कि धन केवल कमाने की नहीं बल्कि उसे सही दिशा देने की भी आवश्यकता है, यानी केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसका इन्वेस्टमेंट भी सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ आपसे लेते हैं आज्ञा और अगले प्रोग्राम में एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो सोनम, आज आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच
1: फॉर कॉलिंग मी हियर।
0: तो दोस्तों इस प्रोग्राम में आज इतना ही, अगले प्रोग्राम में एक नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया
1: सच,
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ। और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो, पढ़ लेकर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितनी अच्छी मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का 2 कमरों वाला स्कूल जिसमें ना तो टीचर्स रोज आते थे और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। 2 बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती ही, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अफसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी, लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का यह अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पालूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा, मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता, लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिला था। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला, जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता, पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस, और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं, जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी न सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थे मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था, और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर मुझ में नहीं थी, और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ, और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था, हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थी। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
2: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
0: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था। निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है, दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की और उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुंवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए पृथ्वी पर, वो सौंधी महक फिर नहीं उठती कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।

समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानवरचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

फील गुड फील लाइव। नाउ विद दिस नोट दोस्तों, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ब्यूटी टेक इंडिया में ऑपरेट करती है, क्योंकि आज की कंपनी इस एक इंडस्ट्री में डील करती है। बात करेंगे अगले सेगमेंट की, दैट इज की ब्यूटी टेक को क्या यूनिक बनाता है इंडिया में। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है डाइवर्स कंज्यूमर बेस, और इसी चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करने वाला है अगर आप इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ अपना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो यहां पर पहला जो पॉइंट है, दैट इज डाइवर्स कंज्यूमर बेस। इंडियन कंज्यूमर्स के जो स्किन टाइप्स हैं वो बहुत आपको डाइवर्सिफाइड देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्किन टाइप्स अलग हैं, स्किन टोन्स अलग हैं, कल्चरल ब्यूटी प्रेफरेंसेस सबकी अलग हैं। तो वहीं पर हर एक चीज का आपको सोल्यूशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं जो सोलली रेफर करते हैं मेरे को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही चाहिए, कुछ लोग हैं जिनको चाहिए सिर्फ आयुर्वेदा, क्या मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट चाहिए, कुछ लोग हैं वहीं पर जो कुछ प्रीमियम ब्यूटी की तरफ जाते हैं। सो इट्स ऑल डाइवर्सिफाइड, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कि किसी की ऑयली स्किन, किसी की ड्राई स्किन, किसी को क्या कोई अगर कंडीशन है तो उसके लिए कुछ मिलेगा क्या। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि हर एक स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सेकेंड आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस। देखिए, ट्रेडिशनल जो ब्यूटी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, आयुर्वेदा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड कर दी गई है, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि आपको इनोवेटिव हाइब्रिड प्रोडक्ट्स अब देखने को मिल जाते हैं, जो एक्सेसिबल भी है, ट्रस्टवर्दी भी लोग उसको कंसीडर करते हैं। दैट्स हाउ ये चीज थोड़ी खास हो जाती है इंडिया में, क्योंकि आयुर्वेदा इंडिया में उसका ओरिजिन है। थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। अब कंपनीज केवल ऐसा नहीं है कि काम कर रही है प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि यार हमारा कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर पाएगा, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब ये कह सकते हैं जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स हैं, एक और कैटेगरी यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के पास भी ऑप्शन है प्रोडक्ट्स खरीदने का, और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी कि बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, प्लस आपको एक प्रोडक्ट भी मिल जाएगा जो आपके मन का है। सो यू आर गुड, कंपनी का रेपुटेशन भी काफी अच्छा होगा उसमें, और कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट अच्छा मिला तो ट्रस्ट फैक्टर भी वहां पे बिल्ड होगा, एंड वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा मैं कह रहा हूँ कोई मार्केटिंग मॉडल नहीं हो सकता। अगर कंज्यूमर खुश है और वो खुद से उसकी मार्केटिंग कर रहा है, इट्स अमेजिंग। सो या, ऑल दीज थ्री आर दी इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इस एक चीज को यूनिक बनाती हैं, इस इंडस्ट्री को यूनिक बनाती हैं इंडिया में, डाइवर्स कंज्यूमर बेस, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात होगी। जुड़े रहिए अपने दोस्त आरजे सागर के साथ। फील गुड।

बैक। नाउ दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको अच्छा लग रहा है और जो केस स्टडी आज आपके लिए हम लेकर आए हैं, अभी तो मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक जितना आपको समझा है वो आपको पसंद आया। अब इसी नोट पे आगे बात करेंगे अपने शो में, क्योंकि ब्यूटी टेक हमारी आज की इंडस्ट्री है जो इंडिया में ऑपरेट करती है, उसमें जो अगला पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो है ग्रोथ दिलाई है या ड्राइव किया है। तो सबसे पहला आता है AI एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पर स्किन टाइप को एनालाइज किया जाता है, उसके आधार पर रेकमेंड किया जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके लिए सुटेबल होंगे, जो आप खुद भी घर पे कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या गैजेट्स ऑर्डर करके, या फिर आप ऑनलाइन ट्राई ऑन जैसे फीचर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं जिनके थ्रू आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जो आपको रेकमेंड कर सकते हैं। देन इसी के साथ ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कंपनीज के पास ये ऑप्शन है कि जो चीजें ट्रेंड कर रही हैं, लाइक अभी जैसे अगर देखा जाए तो साउथ कोरियन स्किन केयर काफी फेमस है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाने लगे हैं। राइस से बनी हुई कुछ कुछ चीजें आती हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पता है मुझे, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे ट्रेंड्स के बारे में मैं जानता हूँ जो डर्मेटोलॉजिस्ट खुद से बताते हैं, शेयर करते हैं। देन इसके बाद कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्रॉपर AI का इस्तेमाल करके आपको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड आता है ऑगमेंटेड रियलिटी, जहां पर आप वर्चुअल ट्राई ऑन आपके मेकअप, हेयर कलर, मतलब अगर आप फिजिकली वो सारी चीज अप्लाई कर लेंगे, खरीद के ले आएंगे, उसके बाद आपको पसंद नहीं आएगा सो यू माइट फील बैड। तो ऐसे में कंपनीज ने क्या नया इनोवेट किया है कि आपको वर्चुअल ट्राई ऑन का एक ऑप्शन दे दिया है। आप कोई भी पर्टिकुलर मेकअप या कोई भी पर्टिकुलर आप बालों का जो शेड है वो आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको जम रहा है, आप कन्विंस हो गए हैं, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू गोना सेव योर पीस एंड सेव योर टाइम एंड सेव योर मनी। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है IoT डिवाइस। स्मार्ट मिरर्स आ गए हैं, स्किन एनालाइजर्स आ गए हैं, LED बेस्ड कुछ डिवाइसेस आ गए हैं जो अपने घर पे आप यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन को आप एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप जो है कोई भी स्किन केयर का रूटीन आप चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं आपके लिए सुटेबल रहेगा नहीं रहेगा, तमाम चीजें इसमें फॉल करती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा एनालिटिक्स। देखिए कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना, प्रॉपर किस रीजन में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें नीड होगी, वो तमाम चीजें जो है देखना, प्रिडिक्ट करना, ये कंपनीज करती हैं, और ये सब इसी एक पर्टिकुलर चीज की वजह से हो पाया है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी कैसे इस इंडस्ट्री को ड्राइव करती है, वो है ब्लॉकचेन, जहां पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं, अब उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों, एथिकल प्रोडक्ट्स हों जो उनकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाएं और उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सो या ये तमाम वो चीजें जो इस एक इंडस्ट्री को ड्राइव करती हैं या जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, अभी हमने आपको बताया AI एंड मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT डिवाइसेस, डेटा एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन। नाउ दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे, बट आप लोग जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत। मैं हूं सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी।

तो दोस्तों अब इसी उम्मीद के साथ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हमने पहुंचाई वो आपको अच्छी लगी, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री है ब्यूटी टेक। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक काफी कुछ आपको पता लग चुका है। अब फाइनली अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि एज अ न्यू प्लेयर कोई अगर एंटर करना चाहता है इस एक मार्केट में तो क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है अपना नीश आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि ब्यूटी टेक इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है अपना एक नीश आइडेंटिफाई करना और उसमें कुछ बहुत अच्छा डिलीवर करना। बहुत अच्छा एज इन जो थोड़ा खास है, जो अभी तक नहीं हुआ है डिलीवर, जो आपको गैप नजर आएगा। और परफेक्ट कुछ होता नहीं है दुनिया में, तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेंस ग्रूमिंग की तरफ आपको एंटर करना है, या इको कॉन्शियस ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, या रूरल कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है, या फिर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है। सो आपको एक नीश आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद फर्दर उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी, लाइक तमाम रिसर्चेज होंगी, बहुत कुछ आप ट्राई करेंगे, तब जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। सेकंड आता है लेवरेज टेक्नोलॉजी। देखिए एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन हमें करना ही होगा आज अगर हम ब्यूटी टेक में एंटर कर रहे हैं तो, क्योंकि बाकी सभी ब्रांड्स ये कर रहे हैं। एआर टूल्स बनाने होंगे, आईओटी डिवाइसेस आपको जो है वो देने होंगे लोगों को, सो दैट कि वो थोड़ा सा सहूलियत के साथ जो है शॉपिंग कर पाए। थर्ड पॉइंट आता है बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है इन्वेस्ट करना होगा, क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन आपको जो है लोगों को देना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अब काफी जागरूक हो गए हैं, उनका सवाल होता है अब इज दिस प्रोडक्ट सस्टेनेबल, इज दिस प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री, क्योंकि कस्टमर अब काफी एजुकेट हो चुके हैं कि हमारे कुछ चीजों के लिए कितने सारे जानवरों को जो है हार्म पहुंचाया जाता है, क्रुएल्टी की जाती है। तो वो सब चीजें हमें अब लोगों को वो देना होगा कि वी आर नॉट डूइंग दिस। इसके बाद फोर्थ आता है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। इनिशियली आपको करना होगा अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कराने के लिए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। फिफ्थ आता है ओमनी चैनल स्ट्रेटजी। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस साथ साथ फिजिकल स्टोर्स ओपन करने चाहिए अगर आपके पास अच्छा बजट है तो, या एटलीस्ट एक पॉपअप एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सिक्स्थ आता है अफोर्डेबल लग्जरी, मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा, अगर आप लग्जरी में जाना चाहते हैं तो आपको हाई टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होंगे जिससे आप ब्रॉड एक ऑडियंस को कैटर कर सकते हैं। सेवन्थ आएगा लोकलाइज्ड ऑफरिंग। देखिए हर एक जगह पर अलग तरह का तापमान होता है, अलग तरह की भाषा कल्चर सब चीज होती है, तो तमाम चीजें पढ़ के जहां पे भी आप जिस रीजन में आप एंटर कर रहे हैं वहां पर आपको वहां की कोई चीज देनी होगी। दैट्स हाउ यू कैन एंटर दिस इंडस्ट्री एज अ न्यू प्लेयर। अब लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फाइनली बात होगी आज की कंपनी।

पुरस्कार चंदन का। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अभी तक जो हमने इंडस्ट्री के बारे में बात करी है आप समझ पाए हैं। फिलहाल इसी नोट पर शो को आगे बढ़ाते हैं और फाइनली रिवील करते हैं आज की कंपनी। सो दिस कंपनी इज डीकंस्ट्रक्ट एंड ये बहुत अमेजिंग पार्ट है। देखिए, कई सालों तक फॉर लिटरली ईयर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचा गया है थ्रू ड्रीम्स, मतलब ग्लोइंग फेसेस, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, फेयरनेस प्रोमिसेस, ठीक है, गोरे हो जाएं, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट कर लें, आपके इमोशनल एक आप कह सकते हो ट्रिगर के साथ साथ प्रोडक्ट्स जो हैं एसोसिएट किए गए और फिर वो बेचे गए। बट अब जो कंज्यूमर है वो नई जनरेशन का है। आज का कंज्यूमर सवाल पूछता है, आज का कंज्यूमर ये जानने में इंटरेस्टेड है। उसको ये नहीं जानना है कि मैं गोरा होऊंगा नहीं होऊंगा, उसको ये जानना है कि एग्जैक्टली मेरी स्किन के ऊपर जा क्या रहा है, उसको ये जानना है कि इंग्रेडिएंट कौन सा है जो काम कर रहा है, उसको ये जानना है कि स्किन केयर की साइंस क्या है या बस ये एक मार्केटिंग गिमिक है। दीज आर द क्वेश्चंस दैट टुडेज जनरेशन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग। सो डीकंस्ट्रक्ट यहां पर आती है उस जनरेशन के उन सवालों के जवाब लेकर। एक बेंगलुरु बेस्ड D2C स्किन केयर स्टार्टअप है जो फोकस करता है साइंस बैक्ड इंग्रेडिएंट फोकस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, फिलॉसफी बहुत सिंपल है कि स्किन केयर आप करिए बट हम आपको एजुकेट करेंगे पहले। ठीक है, कंज्यूमर्स को इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया जाता है। तो ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करना इज नॉट द थिंग, अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस करना इज नॉट द थिंग, द मेन थिंग इज कि हम आपको एजुकेट करेंगे, हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे, जो आपके सवाल हैं उनके जवाब हम आपको देंगे। इस ब्रांड के पास फेस सीरम्स हैं, सनस्क्रीन्स हैं, मॉइस्चराइजर हैं, फेस वॉशेज हैं, हेयर केयर सोल्यूशंस हैं। इंफॉर्मेशन ओवर इम्पल्सिव, दिस इज द मिशन ऑफ दिस कंपनी, मीनिंग डोंट जस्ट बाय स्किन केयर, क्योंकि एक एडवर्टीजमेंट आपको कन्विंस कर सकती है और अगर आप उससे कन्विंस हो कि स्किन केयर करना चाह रहे हैं तो नॉट अ गुड आइडिया। अंडरस्टैंड योर स्किन एंड मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस, दैट्स हाउ इट वर्क्स। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टेडियम फील गुड फील।
1: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहां, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आज की कंपनी हमारी डी कंस्ट्रक्ट कैसे स्टार्ट हुई, बहुत ही अच्छी एक अमेजिंग सी स्टोरी है। सो ये जो इंडियन ब्यूटी मार्केट है, ये टू एक्सट्रीम्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। एक साइड पर आपको दिखाई देगा ट्रेडिशनल ब्यूटी ब्रांड्स, जो वहां पर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, सेलिब्रिटीज उनकी एड्स करते हैं, इमोशनल प्रॉमिसेस करते हैं। दूसरा साइड है जो रियल एक साइड है जिसके ऊपर अब ज्यादा बात होती है, विच इज साइंटिफिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, इंटिमिडेटिंग लगते हैं, बट एक्चुअली आपके लिए सोल्यूशन लेकर के आते हैं। यहां इन दोनों के बीच में ना एक गैप था, तो इस कंपनी के जो फाउंडर हैं मालिनी आदरपुर रेड्डी, उन्होंने नोटिस किया कि कस्टमर जो है उनको इफेक्टिव स्किन केयर चाहिए, बट इंग्रेडिएंट्स के नाम से कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं, कॉम्बिनेशंस के नाम से कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं, एग्जैजरेटेड क्लेम्स नहीं चाहिए उनको। तो 2020-21 के अराउंड उन्होंने इस एक कंपनी को स्टार्ट किया, मतलब विद इन दिस फेज ऑफ 2020 to 2021, ठीक है। यहां पर इन्होंने ये छोटा सा एक सवाल पूछा कि क्या हम इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, जवाब मिला हाँ, देन व्हाई नॉट। तो स्किन केयर से लेकर के वो जो साइंस है स्किन का, उसको एक्सेसिबल बना दिया। इवन द नेम डी कंस्ट्रक्ट, ये भी रिप्रेजेंट करता है ब्रेकिंग समथिंग कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपलर पार्ट्स, ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्किन केयर साइंस फॉर नॉर्मल कंज्यूमर्स। तो ये है हमारी आज की कंपनी। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए, फील गुड फील।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

नौजवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पर रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?
2: मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: इस इतना तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: फील गुड फील लाइव शो को आगे बढ़ाते हैं। मालिनी अदापुर रेड्डी, ये हमारे फाउंडर हैं जो डीकंस्ट्रक्ट कंपनी है, जो हमारी आज की स्टडी है उसके फाउंडर का नाम है। अब इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सो मालिनी कम्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड बिजनेस बैकग्राउंड। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी फ्रॉम IIT खड़गपुर, लेटर ऑन MBA किया फ्रॉम INSEAD। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंजीनियरिंग आपको सिखाता है प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, रिसर्च कैसे करना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, डेटा बेस्ड थिंकिंग कैसी होती है। MBA आपको सिखाता है कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, ब्रांड बिल्डिंग क्या होता है, बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना होता है, बिजनेस स्ट्रेटजी को कैसे एग्जीक्यूट करना होता है, हाउ एग्जैक्टली टू रिप्रेजेंट योर ब्रांड। एंड व्हेन यू कंबाइन दीज टू थिंग्स ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। दैट्स हाउ शी गॉट All these skills and apart from this, इनका एक अच्छा खासा experience रहा है। She has worked with multiple companies, जिसमें Procter & Gamble एक कंपनी शामिल है, Flipkart शामिल है, Kraft Heinz जो है वो शामिल है। इन तमाम companies में इनका जो experience रहा वो रहा product development का, supply operations का, marketing का, consumer insights का। So basically the core point is engineering from IIT, MBA from INSEAD, apart from this she has worked in multiple domains with multiple companies and वहाँ से उन्हें काफ़ी अच्छा खासा जो है experience मिला। So problem जो उन्होंने उस time पर देखी थी वो था कि information जो है overloaded थी, active ingredients का एक fear था। ठीक है, लोगों ने नाम सुने, आज भी बहुत सारे लोग जो कन्फ्यूज होते हैं रेटिनॉल क्या होता है एंड नियासिनमाइड क्या होता है, AHBHT क्या होता है, बट एग्जैक्टली क्या होता है, किसको पता है कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है, साइंस बेस्ड क्या एविडेंसेस का। सो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट शी रियलाइज। उसके बाद अनरियलिस्टिक मार्केटिंग से सब लोग परेशान थे। दिस क्रीम विल चेंज योर लाइफ, नो, देयर इज अ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट दैट गोना सॉल्व दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, दैट शुड बी द करेक्ट टैगलाइन। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट शी ट्रिगर्ड। ऐसा नहीं होता कि एक क्रीम लगा लो सब ठीक हो जाएगा, नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस। रादर यू शुड नो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में नियासिनमाइड है, यहाँ पर मुझे रेटिनॉल मिल रहा है, रेटिनॉल ऐसे काम करता है मेरी स्किन के लिए ठीक होगा, उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन होगा। ये होता है साइंस बेस्ड नॉलेज होना, फैक्ट्स बेस्ड नॉलेज होना, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइफ।

Dim tana na dir tana um tana dere na dim tana na dir tana um tana dere na dim tana na dir tana um tana dere na dim tana na dir tana um tana dere na dim tana na dir tana dir tana. उम्मीद है कि आपको गाने पसंद आए, साथ साथ उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि शो आपको पसंद आ रहा है। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। डीकंस्ट्रक्ट हमारी आज की कंपनी है। लेट्स टॉक अबाउट द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ डीकंस्ट्रक्ट। फर्स्ट इज साइंस फर्स्ट अप्रोच, जो हम पहले डिस्कवर कर चुके हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली साइंस बेस्ड एविडेंसेस जो है उनके आधार पर फॉर्मुलेशन तैयार किया जाता है, उसी को ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाया जाता है। सेकेंड, बिगिनर फ्रेंडली स्किन केयर। यू डोंट नीड a high budget to maintain a skincare routine. All you need is just some knowledge and good products. Third is transparency. Ingredients, usage, skin concerns, sab kuch, science behind formulations, everything is being printed there. उसके बाद की ड्राइवर्स आते हैं कुछ, ठीक है, जो सबसे पहला तो मैं बोलूँगा कि लोग अब एजुकेट हो गए हैं। ब्यूटी कंज्यूमर्स जो हैं उनको अब एजुकेशन चाहिए। पहले वो नहीं पढ़ने वाले इस पचड़े में कि भैया मेरे को गोरा कर दो या मेरे को ग्लो दे दो, वो सिंपल एक चीज़ फॉलो करते हैं कि मुझे एजुकेट कर दो। सेकेंड पॉइंट आता है डी टू सी रेवोल्यूशन इन इंडिया, जो बढ़ा है। थर्ड इज सोशल मीडिया एजुकेशन, ऑल थैंक्स टू ऑल द डर्माटोलॉजिस्ट क्रिएटर्स एंड कंज्यूमर्स जिन्होंने इंग्रेडिएंट्स की बात करनी शुरू करी है और हम लोगों को अवेयर सिटीजन बनाया है। देन उसके बाद आता है ट्रस्ट थ्रू सिंप्लिसिटी। बहुत बड़ा इनोवेशन यहाँ पर यही है दुनिया में कि उसको और कॉम्प्लेक्स मत करो, कॉम्प्लेक्सिटीज को हटा दो। दैट्स द बिगेस्ट इनोवेशन आई वुड से फॉर द ह्यूमैनिटी। दैट्स हाउ थिंग्स ग्रो। So that is the story of our today's company, which is Reconstruct. अब इसी के साथ अपने शो को यहाँ पर मैं खत्म करना चाहूंगा। आशा करता हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। मुझे बताइए जरा 8010781078 पर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, शो आपको कैसा लगा। फिलहाल चलता हूँ, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए, सुनते रहिए रेडियो 107.8 FM। दिस इज आरजे सागर साइन।

संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है। असंतों के कलाम की यह विशेषता नहीं होती। कृपया बताएं कि इसका कारण क्या है। पूछा है फारूक खान ने। पहली बात, संतों की वाणी सिर्फ वाणी नहीं, वाणी ही हो तो खोल ही है, भीतर कुछ सार नहीं। शब्द ही है, भीतर कुछ सार नहीं। संतों की वाणी वाणी से कुछ ज्यादा है। वाणी तो केवल सहारा है उसे देने का, जो और किसी ढंग से दिया नहीं जा सकता। वाणी तो वाहन है, शब्दों पर चढ़ाकर, शब्दों के घोड़ों पर चढ़ाकर जो भेजा जा रहा है वो शब्द से बहुत पार है। उसकी ही वर्षा जब हो जाती है हृदय पर तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। असंतों की वाणी कोरी है, खाली है, जैसे मरा हुआ आदमी, लाश पड़ी है। और यही आदमी जीवित था कल तक, शरीर अब भी वैसा ही है, लेकिन शरीर के भीतर से कोई चीज उड़ गई। अब तो पिंजड़ा पड़ा रह गया, पक्षी उड़ गया। असंतों की वाणी ऐसी है जैसे मरा हुआ आदमी। शब्द की देह तो है लेकिन अनुभव की आत्मा नहीं। तो असंतों की वाणी से सुगंध तो मिलनी कठिन है, दुर्गंध ही मिलेगी। संतों की वाणी से संतोष मिलेगा, क्योंकि संतोष सत्य की छाया है। यह तो बात ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, जिनकी वाणी से संतोष मिल जाए जरूरी नहीं कि वे संत ही हों, और जिनकी वाणी से तुम्हें संतोष न मिले जरूरी नहीं कि वे असंत ही हों। जहां तक संतों की तरफ से संबंध है, संतों की वाणी से संतोष मिलना चाहिए। जहां तक असंतों का संबंध है, असंतों की वाणी से संतोष नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो मिलता है उसमें अकेला संत थोड़ी भागीदार है, तुम भी भागीदार हो। वर्षा होती हो और घड़ा उल्टा रखा हो तो गैर भरा रह जाएगा। तो संत की भी वाणी से हो सकता है संतोष न मिले, अगर तुम उसे ग्रहण ही ना करो, अगर तुम उसे भीतर ही ना जाने दो, या तुम्हारे पूर्व पक्षपात, तुम्हारी पहले की बनाई धारणाएं रुकावट बन जाए। तो ऐसा समझो कि जरूरी नहीं है कि संत की वाणी से संतोष मिले ही, तुम लोगे तो ही मिलेगा। और दूसरी बात भी संभव है, असंत की वाणी से भी संतोष मिल जाए अगर तुमने लेने की ही जिद कर रखी। तो जहां कुछ भी नहीं है वहां भी तुम कुछ देख लोगे, क्योंकि इस लेन देन में दो व्यक्ति सम्मिलित है, एक देने वाला और एक लेने वाला। इसलिए लेन देन की ये घटना दोनों पर निर्भर होगी। जैसे अगर कोई जैन किसी सूफी फकीर की वाणी पढ़े उसे संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये मान ही नहीं सकता कि मांसाहारी और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, ये बात ही संभव नहीं। सूफी संत की तो छोड़ दो, एक जैन मुनि मुझसे कहा कि आप रामकृष्ण परमहंस देव का उल्लेख करते, आपको पता है वो मछली खाते थे, तो मछली खाने वाला आदमी कैसे संत हो सकता है। अब इन जैन मुनि को रामकृष्ण की वाणी से संतोष नहीं मिलेगा। इससे ये मत समझ लेना कि जहां से संतोष नहीं मिलता वहां संत नहीं। बौद्धों को जैनों की वाणी में संतोष नहीं है, हिंदुओं को मुसलमानों की वाणी में संतोष नहीं है, मुसलमानों को ईसाइयों की वाणी में संतोष नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ है? इसका अर्थ हुआ कि संतत्व की भी तुम्हारी धारणा है, उस धारणा के अनुकूल संत पड़ता हो तो तुम संतोष लोगे, उसके अनुकूल न पड़ता हो तो तुम्हें जरा भी संतोष न मिलेगा। फिर कभी यह भी हो सकता है कि असंत तुम्हारी धारणा के अनुकूल पड़ता हो। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन भूखा प्यासा एक गांव में आया, गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, गांव शाकाहारियों का था, और गांव का जो साधु पुरुष था उसने सारा जीवन शाकाहार की ही सेवा में लगाया था, बस मांसाहार के ही विपरीत उसका सारा जीवन समर्पित था।
मुल्ला उसकी सभा में गया, वो समझा रहा था कि मांसाहार बुरा है, पशु पक्षियों में भी आत्मा है। मुल्ला बीच में खड़ा हो गया, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते, एक बार एक मछली ने ही मेरे प्राण बचाए थे। साधु तो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा आओ भाई आओ, ये तो बड़ा प्रमाण मिला कि एक मुसलमान भी तैयार है गवाही देने को। उन्होंने उसे पास बिठाया, उसके भोजन का भी इंतजाम करवाया और कहा कि तुम यहीं रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये प्रमाण हो गया। और रोज साधु जब समझाता लोगों को, वो कहता कि पूछो इस मुसलमान भाई से पूछो, एक मछली नहीं इसके प्राण बचाए, मछलियों में भी आत्मा है, उनको खाओ मत। दो चार दिन के बाद एक दिन सांझ को दोनों साथ बैठे थे, वो फकीर साधु कहने लगा मुल्ला नसरुद्दीन को कि तुम तो करीब करीब मेरे गुरु, यद्यपि मैंने जीवन भर शाकाहार की सेवा की, मांसाहार का विरोध किया, लेकिन अभी तक किसी पशु पक्षी ने ऐसा प्रमाण मुझे नहीं दिया जैसा तुम्हें दिया। तुम तो करीब करीब मेरे गुरु हो, अब विस्तार में मुझे कहो कि बात क्या थी, कैसे बचाए तुम्हारे प्राण। मुल्ला ने कहा विस्तार न पूछे तो अच्छा, सब ठीक चल रहा है, विस्तार की क्या जरूरत। पर साधु जिद करने लगा कि नहीं बताना ही पड़ेगा, साधु ने तो पैर पकड़ ली कि गुरुदेव बताना ही पड़ेगा। तो मुल्ला ने कहा नहीं मानते तो ठीक है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। साधु ने कहा बात क्या है, इतना रहस्य क्यों बना रहे हो। मुल्ला ने कहा बात यह है कि मैं बहुत भूखा था और मछली को खाने से मेरे प्राण बचे। उसी रात, सुबह भी नहीं, उसी रात मुल्ला निकाला गया। अभी तक इसकी वाणी में बड़ा संतोष मिल रहा था, अब इसकी वाणी में कोई संतोष न रहा। तो तुम पूछते हो कि संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है, सभी संतों की, तो तुम संत हो जाओगे, तब तो तुम्हारे संत होने में फिर कोई बाधा ना रहे, या किन्हीं किन्हीं संतों की। पूछने वाले मित्र मुसलमान है, तो तुमने और किन्हीं संतों की वाणी भी पढ़ी है जिनके विचार इस्लाम से अन्य हो, उनसे संतोष न मिलेगा। और इन्हीं मित्र ने दूसरा प्रश्न पूछा है, उससे जो मैं कह रहा हूं वो साफ हो जाएगा। इनने पूछा है किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना या किसी को इस उपाधि का स्वीकार करना क्या उचित है। फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही तो था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा कर रखा था। अब इन मित्र ने इजिप्त के फिरौन का उल्लेख किया, लेकिन अल हिल्लाज मंसूर को छोड़ दिया।

उसूली ठीक भी। मंसूर ने भी यही कहा था कि मैं खुदा हूं, लेकिन बड़ा फर्क था उसके कहने में। उसके कहने का मतलब था मैं खुदा हूं क्योंकि सभी खुदा हैं, खुदा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मंसूर ने जो कहा वो संत की वाणी थी, और फिरौन ने जो कहा वो संत की वाणी नहीं थी। यद्यपि वक्तव्य दोनों के एक जैसे, दोनों ने यही कहा था मैं खुदा हूं, लेकिन फिरौन कहता था मेरे अलावा कोई और खुदा नहीं, और मंसूर ने कहा कि मैं करूं भी क्या, खुदा होना ही पड़ेगा, उसके सिवा होने का कोई उपाय नहीं क्योंकि खुदा ही है। लेकिन मुसलमानों ने फिरौन को भी अपराधी साबित किया और मंसूर को भी सूली लगा दी। अब अगर मुसलमानों को उपनिषद के ऋषि मिल जाते जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, क्या करते तुम उनके साथ? फांसी लगाते ना, सूली लगाते। संत तो तुम्हें वो मालूम नहीं पड़ सकते थे। जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कैसे संत हो सकता है? मुसलमान नाराज हैं जीसस पर, क्योंकि जीसस ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं। ये भी कोई दावा है? हमारे मुल्क में लोग हैं जो कहते हैं हम ईश्वर हैं, बेटे का भी क्या दावा करना? मगर मुसलमान इससे नाराज हैं कि ईसा ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं। नहीं, ये बात ठीक नहीं। तो तुम बुद्ध को क्या कहोगे, महावीर को क्या कहोगे, कृष्ण को, राम को क्या कहोगे? ये सब तो अपराधी हो गए, ये तो संत ना रहे। तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा ही दूसरा प्रश्न सबूत देता है कि संत का तुम्हारे मन में क्या अर्थ, एक धारणा होगी संत ऐसा होना चाहिए। धारणा तुम्हारी है, उस धारणा में बैठ जाएगा तो संत, नहीं बैठा तो असंत हो जाएगा। और कौन संत तुम्हारी छोटी मोटी धारणाओं में बैठ सकता है? जो बैठ जाए वो संत ही क्या खाक, जो तुम्हारी खिड़की में बैठ जाए, तुम्हारे ढांचे के अनुकूल पड़ जाए, वो कोई संत? नकल होगा। संत की नकल ढांचों में बैठ जाती है। तुम बड़ा संतोष भी ले लोगे। तुम्हें संतोष इसलिए नहीं मिल रहा है कि संत की वाणी में कुछ सार, तुम्हें संतोष इसलिए मिल रहा है कि तुम्हारा अहंकार तृप्त हो रहा है कि देखो मेरी धारणा संत की कितनी सही है। ये प्रमाण मिल गया, ये आदमी प्रमाण है मेरे संतत्व की धारणा का। तुम अपनी ही धारणा के चरणों में सिर झुका रहे। मैं एक घर में मेहमान था, एक जैन घर में। एक बूढ़े सज्जन मुझे मिलने आए, उम्र होगी कोई 80 साल की। कोई 40 साल से त्यागी का जीवन ही बिताते थे, यद्यपि घर में ही थे लेकिन न दुकान जाते न घर द्वार की बात करते, ज्यादातर सामायिक ध्यान उपवास इसमें ही समय लगाते थे। मैं गांव में आया हूं तो मुझे मिलने आए, अपने घर के बाहर भी नहीं जाते थे। तो उनके साथ 10-5 लोगों का गिरोह भी आया ये देखने कि वो कभी अपने घर के बाहर जाते नहीं, किसके दर्शन को जा रहे हैं। उन्होंने मेरी एक किताब पढ़ी थी साधना पत्र, और उससे वो बहुत प्रभावित थे। वो आके मेरे चरणों में झुके और उन्होंने कहा कि आप तो मेरे लिए तीर्थंकर हैं, आपने जो किताब लिख दी उससे मुझे जो मिला है वो किसी चीज से नहीं मिला, मेरा सारा जीवन उसने बदल डाला है। ऐसे उनसे बातें हो रही थी। तभी घर की गृहिणी ने आके मुझे कहा कि अब आप भोजन कर लें, सांझ हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि ये वृद्ध सज्जन आए हैं, अभी बीच में बाधा ना डालो, थोड़ी देर बाद भोजन कर लूंगा। वो वृद्ध सज्जन तो बहुत चौंके, उन्होंने कहा क्या सूरज ढला जा रहा है, सूरज ढलने के बाद भोजन करेंगे? मैंने कहा आप इतनी दूर से चल के आए, बूढ़े हैं, आपके पास बैठना ज्यादा आनंदपूर्ण, भोजन तो घड़ी पर बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा आप समझे नहीं, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जिस आदमी को भी यही पता नहीं कि रात्रि भोजन पाप है उसको और क्या पता हो सकता है। आए थे तो मेरे चरण छुए थे, जाते वक्त मुझे उपदेश देके गए कि कम से कम इतना तो करो कि रात्रि भोजन छोड़ दो। अब मैं निश्चित जानता हूं घर जाके किताब उन्होंने जला दी होगी या फेंक दी होगी, किसी को दी होगी, ये भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट आदमी की किताब किसी को देके क्या भ्रष्ट करना है। आए थे तो मैं तीर्थंकर था, तीर्थंकर के गिरने में देर कितनी लगती? तुम तीर्थंकर को इतनी स्वतंत्रता भी तो नहीं दे सकते कि वो सूरज ढलने के बाद भोजन कर ले। तुम्हारा तीर्थंकर तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा संत तुम्हारा गुलाम। तो गुलाम ही तुम्हारे संत हो सकते जो अपने मालिक हैं। शायद उनसे तो तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा, जो अपने मालिक हैं वो तो तुम्हें झकझोर देंगे।
वो तो आएंगे एक तूफान की तरह, आंधी की तरह।

0: उखाड़ देंगे, तुम्हारी सारी धारणाओं को उखाड़ देंगे। वो तो आएंगे एक झंझावात की तरह और तुम्हारे बनाए हुए सारे भवनों को गिरा देंगे, तुम्हारा सारा तत्व ज्ञान धूल धूसरित हो जाए। असली संत के करीब तो पहले तुम्हारी धारणाएं टूटेंगी, और अगर धारणाएं टूटने में तुम घबराए ना, परेशान न हुए, असली संत पहले तो तुम्हें मारेगा। अगर तुम मरने से न डरे तो जरूर संतोष आएगा, और संतोष ऐसा कि फिर जाने वाला नहीं। लेकिन एक ऐसा भी संतोष है जो तुम मान लेते हो, तुम जहां भी अपनी धारणा के अनुकूल किसी को देखते हो तुम्हें संतोष मिलता है। क्या संतोष मिलता है? कि तो मेरी धारणा ठीक है। देखो ये आदमी सबूत है। अगर अपनी धारणा का मैं सबूत नहीं हूं तो कम से कम ये आदमी सबूत है। इसलिए तुम पूछते हो कि किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना। तुम्हारे प्रश्न में भी तुम्हारी धारणा छिपी। भगवान कोई उपाधि नहीं है। भगवान कोई ऐसा नहीं कि किसी को पद्म भूषण बना दिया कि भारत रत्न बना दिया। भगवान कोई उपाधि नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय की डिग्री है। और भगवान बनाना किसी के हाथ में नहीं है। भगवान होना हमारा स्वभाव है, ये उपाधि नहीं है। उपाधि तो बीमारी का नाम है। उपाधि के तो दो अर्थ होते हैं, डिग्री और बीमारी भी। भगवान कोई उपाधि नहीं है। भगवान तो अपने स्वभाव को पहचान लेना है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और पहचान लेते हो कौन वहां विराजमान है, तब तुम पाओगे कि भगवान हो। भगवत्ता हमारा सामान्य धर्म है। जैसे आग का धर्म जलाना है, ऐसा आदमी का धर्म भगवान। और जब आदमी में तुम्हें भगवान दिखेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी आंख और गहरी जाएगी, पशु पक्षियों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और पौधों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और चट्टानों में भी दिखेगा। और जिस दिन तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, कोई ऐसी जगह ना रहे जहां भगवान ना हो, तभी जानना कि तुम घर वापस लौटे। नानक मक्का गए तो सो गए रात, पैर करके पवित्र मंदिर की तरफ। पुरोहित नाराज हुए, उन्होंने आके कहा कि तुम्हें पैर पवित्र मंदिर की तरफ करके सोते लाज नहीं आती, और लोग कहते तुम संत, ये क्या संत हुए तुम, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि कहां पैर करने। तो कथा बड़ी प्यारी है। कथा कहती कि नानक ने कहा मेरे पैर उस जगह कर दो जहां भगवान ना हो, तब जरा मुश्किल हो गई होगी। पुजारियों ने कहते हैं जहां भी नानक के पैर किए पाया कि काबा उसी तरफ घूम गए। ऐसा काबा घूमा हो ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है। काबा घूमा हो इसकी कोई जरूरत भी नहीं, काबा के घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि काबा सब तरफ है ही। इतना ही अर्थ है कहानी में। कहां करोगे पैर? जहां पैर करोगे वहीं भगवान है। सब ओर भगवान है। तो पहली तो बात तुम पूछते हो किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना। उपाधि दी तो बात गलत हो गई, ये उपाधि नहीं, और कोई किसी को दे नहीं सकता। तुम जब अपने स्रोत में उतरते हो तो ये तुम्हारा अनुभव है। या किसी का इस उपाधि को स्वीकार करना, ये उपाधि ही नहीं है, स्वीकार अस्वीकार का सवाल नहीं है। जब तुम जानोगे और पाओगे कि ऐसा है तो फिर करोगे क्या? यही तो अलहिल्लाज मंसूर के साथ हुआ। जिस दिन मंसूर को बोध हुआ उसने घोषणा कर दी, अनल हक, मैं परमात्मा, मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं। जिन गुरु के पास मंसूर रहता था, गुरु ने कहा भीतर रख, ये बात बाहर मत निकाल। सूफी ये सदा से जानते रहे मगर मुसलमानों के डर से कहते नहीं। गुरु ने कहा कि रख, भीतर रख, मुझे भी पता है, अब तुझे भी पता हो गया, मगर बाहर मत कह, नहीं तो झंझट खड़ी होगी। झंझट खड़ी हुई। मंसूर ने कहा जो भीतर है उसको बाहर क्यों ना बहने दे, रुकावट कैसे डालूं? और फिर मैं थोड़ी कहता हूं, एक भाव दशा आती जब मेरे भीतर ये गुंजार उठता है अनल हक, मेरे भीतर ये घोषणा उठती कि मैं भगवान हूं। गुरु ने तो उनको विदा कर दिया। उन्होंने कहा अगर ये घोषणा करनी है तो तू कहीं और जा, कोई और गुरु चुन ले, किसी और गुरुकुल में रुक जा, यहां हम झंझट नहीं लेना चाहते। दूसरे गुरु के पास भी यही हुआ, तीसरे गुरु के पास भी यही हुआ, चौथे गुरु के पास। गुरु ने कहा कि तेरी तकलीफ समझते, जब होती है ये घटना तो कभी कभी ऐसा होता आदमी अपने वश में नहीं रह जाता, उद्घोषणा होने लगती, मगर इसे रोकना पड़ेगा अन्यथा झंझट आएगी। तू इसे रोक, नहीं तो मैं तुझसे कहता हूं तू फांसी पे चढ़ेगा। कहते हैं मंसूर ने कहा मैं उसी दिन फांसी पे चढ़ूंगा जिस दिन तुम अपना ये सूफी अंगरखा उतार दोगे, उसके पहले नहीं चढ़ूंगा। और कहानी कहती है कि दोनों की भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई। खलीफा ने खबर भेजी गुरु के पास कि तुम्हारे आश्रम में एक आदमी है जो कहता है मैं ईश्वर हूं, उसे निकाल बाहर कर दो, वो अपराध कर रहा है। लेकिन गुरु ने कोई ख्याल न दिया, बात चुपचाप रखे रहा। दोबारा खबर भेजी गई, तीसरी बार खबर भेजी गई। जब सातवीं बार खबर आई तो साथ में पुलिस के आदमी भी आए, नंगी तलवारें भी आई, और उन्होंने कहा अब तुम्हें दस्तखत करके देना होगा कि यह आदमी अपराधी और इसको फांसी लगेगी। गुरु ने सोचा कि सूफी के कपड़े पहने हुए कैसे दस्तखत करूं, क्योंकि सूफी सभी जानते हैं इस बात को भीतर की ये बात सच, इसलिए अपना अंगरखा उतार के फेंक दिया। उन सिपाहियों ने कहा यह अंगरखा क्यों फेंक रहा है, उन्होंने कहा सूफी रहते हुए इस तरह की बात पर मैं दस्तखत नहीं कर सकता, यह अंगरखा मुझे उतार देने दो। और ठीक ही कहा था मंसूर ने कि अंगरखा तुम छोड़ोगे उसी दिन मुझे फांसी लगेगी। अंगरखा उतार के रख दिया और मौलवी के कपड़े पहन लिए, फिर दस्तखत कर दिए कि ठीक है यह आदमी अपराधी है और इसको जो भी सजा उचित हो दी जाए। तब मंसूर को सूली लगी। सूफी छिपाए रखे, क्योंकि मुसलमान देशों में सूफियों को प्रकट होने का उपाय नहीं था। इस देश में कोई अड़चन नहीं रही, इस देश में सूफी प्रकट होके बोले। जहां सूफी भी प्रकट होकर न बोल सके वहां धर्म का क्या उद्भाव होगा, जहां उनको भी छिपा के रखना पड़े, जहां सत्य की आखिरी ऊंचाई चोरों की भांति छिपा के रखनी पड़े, वैसा देश धार्मिक नहीं हो सकता। इस देश की दूसरी परंपरा है, इस देश में बड़ा मुक्त वातावरण रहा है, इस देश में जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा की आज्ञा है। जो तुम्हारे भीतर हो, कौन है दूसरा जो तुम्हें रोके, जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा होने दो। अगर परमात्मा ने यही चुना है तुम्हारे भीतर की घोषणा करे अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, तो करने दो घोषणा। ये कोई उपाधि नहीं है, कोई किसी दूसरे को देता लेता नहीं, न कोई स्वीकार करता है अस्वीकार करता है। ये तो तुम्हारे अंततम का दिया जब जलता है तब तुम जानते हो कि ऐसा है। ये तो तथ्य का अनुभव है, ये तो सत्य की प्रतीति है, ये तो साक्षात्कार है। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूं, मुसलमान परंपरा में पले हो, उसी ढंग से सोचा है, इसलिए तुमने ये तो कहा कि फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा किया। लेकिन तुम भी चालाकी कर गए प्रश्न पूछने में भी, फिरौन को घसीट के लाए। पुराना नाम भी लोग भूल गए फिरौन का, 5000 साल पुराना इजिप्ट का बादशाह, उसको घसीट के लाए। ज्यादा जिंदा नाम, ज्यादा जिंदा आदमी अलहिल्लाज मंसूर के संबंध में क्या ख्याल है? फारूक खान, मंसूर को क्यों छोड़ दिया? तुम भी डरे हो गए कि इस सूफी को बीच में लाना ठीक नहीं, लेकिन तुम्हें बड़ी अड़चन होगी। अगर तुम बुद्ध को मिल जाओगे तो तुम बुद्ध को संत न मान सकोगे, अगर महावीर को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, राम को मिल जाओगे कृष्ण को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, क्योंकि ये तो अपराधी है, इनकी वाणी से तुम्हें संतोष कैसे मिलेगा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं संतों की वाणी में जरूर अमृत है, सुधा है, लेकिन तुम जाने दोगे अपने प्राणों तक तभी ना, और तुम तभी जाने दे सकते हो जब तुम्हारे द्वार दरवाजे खुले, तुम्हारे मन पर कोई धारणाओं का जाल ना हो, तुम्हारे मन पर कोई पूर्व पक्षपात ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, तब जरूर संतों की वाणी में बड़ा सहार है। उनका एक शब्द भी चेता सकता है, उनका एक इशारा जगा सकता है, मगर अगर तुम असहयोग करो तो संत भी सिर ठोंक ठोंक के मर जाएं, तो भी तुम्हारी नींद को नहीं तोड़ सकते। कितने तो संत हुए, तुम सोए हो तो सोए ही हो, कितने तो संत हुए सदियों सदियों में, तुम जहां हो वहीं के वहीं हो, तुम वहां से हटते नहीं। फूल खिलते हैं विदा हो जाते हैं, पत्थर अपनी जगह पड़े पड़े ही रहते, वो फूलों की सुनते नहीं। सुनने का ना कारण, सुनने के पीछे कारण है। कारण यही है कि तुम्हारे कान पहले से भरे हुए हैं। अगर तुमने मुसलमान की तरह सोचा तो तुमने सोचा ही नहीं, अगर हिंदू की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं, अगर जैन की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं। सोचने वाला आदमी पहले तो ये सब लिबास उतार कर रख देता है, भूल ही जाता है कि मैं कौन हूं। अभी पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो ये ऊपर ऊपर की बातें, किसी घर में पैदा हो गए, वो मुसलमान था, हिंदू था, ईसाई था, ये तो सब संयोग की बात है। उस घर में पैदा हो गए, उस घर के लोगों को जो मालूम था उन्होंने तुम्हें सिखा दिया, न उन्हें मालूम था न तुम्हें मालूम हो, उनके माँ बाप उन्हें सिखा गए थे, न उन्हें मालूम था। ऐसी सिखावन चलती जाती, संस्कार चलते जाते। बुद्ध का वचन है कि संस्कार में दुख है, ये संस्कार है। हिंदू होना, मुसलमान होना, जैन होना, ईसाई होना संस्कार, कंडीशनिंग। माँ बाप तुम्हारे सिर में भरना शुरू कर देते हैं कि तुम मुसलमान हो, कुरान तुम्हारी किताब है, मोहम्मद तुम्हारा पैगंबर है, कि तुम हिंदू हो कि वेद तुम्हारी किताब है, कि तुम ईसाई हो कि बाइबल तुम्हारी किताब है। ऐसा माँ बाप भरना शुरू कर देते हैं, छोटा बच्चा कोमल चित्त, ये सारी बातें इकट्ठी होती चली जाती। सोच विचार पैदा होने के पहले ही मन पर खूब संस्कार और जमघट जम जाता, भीड़ पैदा हो जाती। फिर जीवन भर आदमी उन्हीं संस्कारों से देखता है। तो तुमसे मैं कहूंगा, रंग ऐसा भरो ना रंग नफरत का हो, ना रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। दूरियां सब मिटे, पास इतने मिले, एक छाया बने, तन से तन भी मिले, मन से मन भी मिले। पांव ऐसे धरो, रंग ऐसा भरो जिसकी आहट में भी प्यार ही प्यार हो, सबकी आंखों में हो, सबकी सांसों में हो, सबकी साधों में हो। एक ही बस गगन, एक ही बस लगन, डोर ऐसी गहो जिसकी गांठों में बस प्यार ही प्यार हो। रंग ऐसा भरो न रंग नफरत का हो, न रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। तो तुम देख पाओगे सत्य क्या है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य अवतरित हुआ है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य ने देह धरी। संत का अर्थ होता है जिस देह में सत्य सिंहासन पर विराजमान हुआ है। अगर तुम निष्पक्ष मन, कोरे मन, शून्य मन संत के पास जाओगे, परम संतोष होगा। और संतोष ऐसा कि फिर मिटेगा नहीं, संतोष धारणा का नहीं, मान लिया ऐसा नहीं, सांत्वना जैसा नहीं, संतोष अनुभव का, सुख के अनुभव का। और वैसा संतोष तुम्हें भी संत बनाने लगेगा। रंगे जाने लगोगे, उस रंग में डूबने लगोगे। यहां ऐसे ही रंग को भरने की कोशिश चल रही, ऐसे ही रंग को रंगने की कोशिश चल रही है। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। जैसा था बचपन में, जैसा था यौवन में, माटी का रंग अभी वैसा ही है। पलकों के आसपास मंडराते दर्द कई, सपनों का रंग अभी वैसा ही है। थोड़े से हिस्से को रंगने से क्या होगा, एक शहर रंग जाए ऐसा रंग डालो। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग से क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। रंगों के अंदर भी रंग हुआ करते, रंगों के भीतर जाकर के देखो, बिंबों के अंदर भी सांस हुआ करते। दर्पण के भीतर जाकर देखो, बासंती देहों को रंगना है कायरता। पतझर भी रंग जाए रंग ऐसा डालो, पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। संत का अर्थ है सत्य को उंडेल दे तुमने, संत का अर्थ है जो उसे हुआ है उसमें रंग दे तुम्हें, संत का अर्थ है रंगरेज, संत का अर्थ है तुम्हें एक डुबकी लगवा दे उसमें जो अभी तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर है। संत का अर्थ है जो उसने देखा है अपनी आंखों के पीछे तुम्हें खड़ा करके थोड़ा अपनी आंखें उधार दे दे, कहे कि जरा मेरी आंखों से देख लो, जो मुझे दिखता है वो देख लो। संत का अर्थ है कि थोड़ी देर को अपना हृदय तुम्हें दे दे, और अगर तुम राजी हो तो ये घट जाता है, इसमें देर नहीं लगती। यहां घट रहा है, तुम अगर राजी हो तो कभी भी किसी भी क्षण जहां राजीपन पूरा होता है अचानक तुम्हारे हृदय की जगह मेरा हृदय धड़केगा, तुम मेरी आंख से देखने लगोगे और तब सब चीजें और ही हो जाती, तब सब कुछ और ही ढंग से दिखाई पड़ने लगता है। संत को तुमने जानना सीखा, देखना सीखा, जब तुम्हें हिंदू का संत हो कि मुसलमान का कि ईसाई का कि बौद्ध का, सभी का संत पहचान में आने लगे, तब तुम समझे कि संत क्या है। और तब जो संतोष मिलेगा वो संक्रांति है, वो तुम्हें रूपांतरित कर जाएगी, वो तुम्हें नया कर जाएगी, वो तुम्हें द्विज बना देगी, एक नया जन्म देगी। निश्चित ही ये बात असंतों की वाणी में कैसे हो सकती, वाणी खाली कोरी, वहां कुछ प्राण कहां है, पिंजड़ा है पक्षी तो नहीं, तो पिंजड़ों के लिए तुम चलते रहो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पिंजरों को लिए ही चलते रहते और मान के चलते कि पक्षी है, होना चाहिए क्योंकि बाप ने कहा, क्योंकि बाप के बाप ने कहा, होना चाहिए क्योंकि भीड़ कहती, समाज कहता, मौलवी कहता, पंडित कहता, होना चाहिए। अपनी तरफ से नहीं देखते कि है या नहीं, डरते भी हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ना हो, इसलिए देखते ही नहीं, अपने पिंजड़े को खूब ढांक के रखते हो कि कहीं दिखाई ना पड़ जाए। तुम्हें भी कभी कभी शक तो आता होगा कि है या नहीं, लेकिन ये शक तुम टिकने नहीं देते, तुम कहते हो शक तो अच्छी बात नहीं, होना चाहिए ही। कोई माता पिता झूठ तो ना बोलेंगे, पंडित पुरोहित झूठ तो ना बोलेंगे, समाज परिवार झूठ तो ना बोलेगा, ये सब लोगों को झूठ बोलने में क्या रखा है, ये क्यों झूठ बोलेंगे सब, होना ही चाहिए। तो तुम कभी उठा के देखते भी नहीं पर्दा के पीछे कोई है, कि तुम खाली मंदिर की पूजा कर रहे हो, तुम्हारे 100 संतों में से 99 खाली मंदिर है जिनके भीतर कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी पूजा चल रही। अक्सर तो ऐसा होता है कि जिनके भीतर कुछ है उनकी पूजा बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारी धारणाएं तोड़ देते, जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारे गुलाम थोड़ी, वो तुम्हारी लीक पर थोड़ी चलते हैं, जिनमें कुछ नहीं है वही लीक पर चलते हैं। उधार वही होता है जिसके पास अपनी नगद संपदा नहीं है। उधारी ऊपर ऊपर से ठीक लगती हो, भीतर भीतर अर्थहीन होती। मैंने सुना एक बड़े धनपति यहूदी के घर के सामने यहूदी बैठा है अपने महल में, उसके दरवाजे पर लोहे के शीशों का बना दरवाजा है, एक फकीर एक गरीब आदमी अपनी पीठ खुजला रहा है, दरवाजे के शीशों से अपनी पीठ खुजला रहा है। उस अमीर को बड़ी दया आई, उसने फकीर को भीतर बुलाया, अपने नौकरों को आज्ञा दी कि इसे खूब स्नान करवाओ, खूब धो धो के मालिश करो इसकी। उसको खूब धुलवाया गया, खूब स्नान करवाया गया, ऐसे साबुन जो उसने कभी देखे भी न थे, पानी के फवारे के नीचे बिठाया गया, ठंडे गर्म पानी में नहलाया गया, इत्र फूले तेल से उसकी मालिश की गई, अच्छे कपड़े पहनाए गए, और जब वो आया तो उसे भोजन करवाया गया, और कुछ रुपयों को भी उस धनपति ने उसे दिया और कहा कि जाओ। ये बात तो गांव भर में फैल गई, दो आदमियों ने सोचा ये तो बड़े गजब की बात है, वो दोनों भी आके दरवाजे पर खड़े होकर पीठ खुजलाने लगे। धनपति ने देखा, उसने अपने आदमी भेजे, कहा कि दोनों को जंजीरें डाल के मेरे सामने ले आओ। वो दोनों को जंजीरें डाल के लाया गया, वो दोनों चिल्लाने लगे कि बात क्या है, क्योंकि अभी अभी तो व्यवहार कुछ और किया गया था, मेरे हाथों में जंजीरें, हमारे हाथों में जंजीरें क्यों डाली जा रही है। वो घसीट के लाए गए और उस धनपति ने कहा कि यहां से भाग जाओ, कभी दोबारा यहां मत आना, क्योंकि वो अकेला था और अगर उसके पीठ में खुजान उठी थी तो वो खुजा भी नहीं सकता था। तुम तो दो हो, एक दूसरे की पीठ क्यों नहीं खुजला ले, तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए। अब भाग जाओ, कभी दोबारा इस तरफ मत आना। अक्सर ऐसा होता है, महावीर को ज्ञान हुआ
1: वो नग्न खड़े हो गए। बहुतों को लगा कि नग्न खड़े होने से ज्ञान हो जाता है, तो बहुत अभी तक दरवाजों पर पीठ खुजला रहे, वो नग्न खड़े हो गए। नग्न खड़े होने से ही जैन, दिगंबर जैन, दूसरा कोई नहीं, श्वेतांबर जैन भी नहीं, दिगंबर जैन पूछता है, क्योंकि वो मानता है नग्नता संत का लक्षण। महावीर नग्न हुए थे तो उसने संत की परिभाषा कर ली। जैसे महावीर पर संत की परिभाषा चुक जाती है, संत की परिभाषा चुकती ही नहीं, और संत कभी दो एक जैसे हुए नहीं और होंगे भी नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संतत्व के शिखर को उपलब्ध होता है तो अद्वितीय हो जाता है, अकेला बेजोड़, उस जैसा फिर कभी दोबारा दूसरा आदमी नहीं होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई संत ना होगा, संत होंगे लेकिन फिर अपने जैसे होंगे। सब संत अनूठे होते, बस एक संत एक बार एक जैसा होता, दोबारा फिर नहीं होता। तो हजारों लोग नग्न होकर खड़े, उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन दिगंबर उनको पूछेगा, क्योंकि उसके संतत्व की परिभाषा में नग्नता जुड़ गई। इसलिए दिगंबर जैन किसी और को नहीं पूछ सकता जो कपड़े पहने हो, क्योंकि कपड़े पहने हुए तो संत हो ही नहीं सकता। दिगंबर जैन के सामने तुम मोहम्मद को खड़ा करो, वो कहेगा कि हजरत अभी कपड़े पहने हुए, अभी तक कपड़े पहने हुए तो ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि महावीर को जब ज्ञान हुआ तो कपड़े छोड़ गए, आप अभी तक कपड़े पहने हुए। ये बात जैन को नहीं जचेगी, वो मोहम्मद को तो मान ही नहीं सकता। मेरी एक किताब एक जैन मुनि को भेंट की गई, जिन मित्र ने भेंट की उन्होंने मुझे आके बताया कि बड़ी अजीब बात हो गई। उन्होंने किताब पलट के देखी, उन्होंने कहा और तो सब ठीक है, इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया। किताब फेंक दी, किताब महावीर पर थी, किताब फेंक दी क्योंकि इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया, कहां महावीर और कहां मोहम्मद। उनको ये बर्दाश्त के बाहर हो गया कि मोहम्मद का नाम महावीर के साथ आया, और मेरी तो आदत खराब है, मैं तो जोड़ ही देता हूं। उनको ये बात बिल्कुल जची नहीं, मोहम्मद सांसारिक आदमी ग्रस्त। अब अगर तुम जैनी के हिसाब से सोचो तो लगेगा भी, कितनी पत्नी है मोहम्मद की। दिगंबर जैन तो महावीर की एक पत्नी थी, उसको भी इनकार करते। महावीर की सच में एक पत्नी थी और एक लड़की भी हुई और दमान भी था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन दिगंबर जैन अपनी किताबों में लिखते हैं कि उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि ये बात ही उनको अखरती कि महावीर और विवाह करे। हालांकि अज्ञान की अवस्था में करने तो हर्ज क्या है, फिर ज्ञानी तो बाद में हुए, मगर वो मानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। महावीर तो अज्ञान की अवस्था में भी इतनी ऊंचाई पर थे कि वो विवाह तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हुए विवाह को भी इंकार कर दिया है। लड़की पैदा हुई ये तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि लड़की पैदा हुई तो उसका मतलब वो उन्होंने संभोग किया होगा। महावीर और संभोग करें, जरा सोचो, ये बात जस्ती नहीं। तो दिगंबर जैन ने ये बात ही जड़ से काट दी कि विवाह ही नहीं हुआ, न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। अब इधर मोहम्मद 9 विवाह किए, ये बात जरा जस्ती नहीं। लेकिन मोहम्मद की तरफ से सोचो, मोहम्मद को सीधा सोचो, तो मोहम्मद ने 9 विवाह किए और इस किसी विवाह में कोई काम वासना नहीं है। अरब देश लड़ाके देश थे, आदमी तो लड़ते और कट जाते और स्त्रियों की संख्या बढ़ती चली गई, पुरुष कम होते चले गए। जिस समाज में पुरुषों की संख्या कम हो जाए और स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाए, उस समाज में बड़ा व्यभिचार फैल जाता है, फैल ही जाएगा, क्योंकि इतनी स्त्रियां कामातुर होकर भटकने लगेंगी और पुरुष तो कामातुर है ही। अब स्त्रियां इतनी उपलब्ध हो जाएंगी तो उपद्रव होने वाला है। तो मोहम्मद ने नियम बनाया कि हर मुसलमान कम से कम 4 विवाह करे। अब ये किसी दूसरे को, जिस देश में कभी स्त्री पुरुषों की संख्या में इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ा, ये बात बेहूदी लगेगी, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण में ये बात बड़ी सार्थक थी। इन 4 विवाह ने मुसलमान देशों की नैतिकता बचा ली, नहीं तो ये डूब जाते, ये नष्ट हो जाते। खुद मोहम्मद ने 9 विवाह किए, ठीक ही है, अगर शिष्यों से 4 विवाह करवाने हो तो गुरु को 9 करने पड़े, ये बात बिल्कुल तर्कयुक्त है, इसी भी गणित की है। मोहम्मद 2 कदम आगे गए, तब तो कहीं तुम चलोगे थोड़ा बहुत, नहीं तो तुम चलोगे नहीं। आदमी एक ही पत्नी से काफी परेशान रहता है, 4 पत्नियां तुम सोचते हो कोई छोटी मोटी साधना। मैं तुमसे कहता हूं कि ब्रह्मचारी की साधना उतनी कठिन नहीं जितनी 4 पत्नियों वालों की साधना कठिन है। मुल्ला नसुद्दीन एक चोरी में पकड़ा गया। मजिस्ट्रेट ने उसने कहा कि तू भला आदमी है और पहली तरफ चोरी में पकड़ा गया, तू खुद ही बोल दे क्या सजा। मुल्ला ने कहा जो भी देना हो सजा दे दे, बस एक ही सजा मत देना, दो विवाह करने की सजा मत देना। तो मजिस्ट्रेट बोला कि ये भी कोई सजा होती दो विवाह करने की, बात क्या है तू इसको सार को खोल के कह। तो उसने कहा बात ये है, मैं पकड़ाते ही नहीं, इस आदमी की दो औरतें, 2 बजे रात इसके घर में घुसा, उधर मारपीट हो रही थी, एक औरत इसको ऊपर की तरफ खींच रही थी वो ऊपर रहती, और एक औरत इसको नीचे की तरफ खींच रही थी वो नीचे रहती, एक इसकी टांगें पकड़ी थी एक इसके हाथ पकड़े थी, ये सीढ़ियों पे अटका था। इसकी ये घबराहट देख के और ये घर की हालत देख के मैं छिप के बैठ गया ये कोने में, कभी इस निपट जाए तो या तो मैं कुछ चोरी करूं या निकल भागूं, मगर ये निपटे ही नहीं। सुबह हो गई, मैं घर से निकल ना सका क्योंकि वो सीढ़ियां उतरने का एकमात्र रास्ता, इसलिए मैं पकड़ा गया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं जो सजा देनी हो दे देना, मगर दो औरतों से विवाह करने की सजा मत देना। तुम सोचते हो कि ब्रह्मचर्य ही साधना है, तो तुम गलती सोचते हो। 4 स्त्रियों का साथ विवाह करना भी साधना ही है, बड़ी साधना हो सकती है। और मोहम्मद का विवाह तुम सोचते हो, मोहम्मद ने एक विवाह किया, पहला विवाह तो अपनी से दुगनी उम्र की, पहले विवाह में तो जो स्त्री थी वो करीब करीब बूढ़ी हो रही थी और मोहम्मद अभी जवान थे, उससे विवाह किया। कोई पुरुष अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करना पसंद नहीं करता। बड़ी उम्र की तो तुम छोड़ दो, तुमसे अगर 1 इंच ऊंची औरत हो तो भी तुम उससे विवाह करना पसंद नहीं करते। अपने से किसी भी स्थिति में बड़ी स्त्री से कोई विवाह करना नहीं पसंद करता। तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो तुम पसंद नहीं करते, तुमसे ज्यादा अनुभवी हो तो पसंद नहीं करते, उम्र ज्यादा हो तो पसंद नहीं करते, क्योंकि कम उम्र की स्त्री ही काफी कब्जा जमा लेती, बड़ी उम्र का तो कहने ही क्या। 5-7 साल पीछे की स्त्री भी तुम्हें धकेल देती, तुम्हारी सब समझदारी रखी रह जाती। तो अगर बड़ी उम्र की स्त्री हुई, ज्यादा अनुभवी हुई, ज्यादा पढ़ी लिखी हुई, तो अड़चन आएगी, बहुत अड़चन आ जाएगी। यद्यपि वैज्ञानिक हिसाब से ज्यादा उम्र की स्त्री से ही विवाह होना चाहिए। क्यों कहता हूं वैज्ञानिक हिसाब से, क्योंकि सारे संसार के आंकड़े ये बात कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीती, 5 साल से 7 साल ज्यादा। तो अगर तुम 75 साल जियोगे तो तुम्हारी पत्नी 80 या 82 साल जिएगी। अब तुम 5-7 साल छोटी उम्र की स्त्री से विवाह करोगे तो तुम्हारे मरने में, तुम्हारी पत्नी के मरने में 10 साल का फासला होगा, तुम 10 साल के लिए उसे विधवा छोड़ जाओगे। ये अवैज्ञानिक। अगर विज्ञान की बात समझो तो तुम्हें अपने से 5-7 साल उम्र बड़ी स्त्री से विवाह करना चाहिए, ताकि तुम दोनों करीब करीब संसार से विदा हो। 75 साल के तुम होगे, 80 की वो हो जाएगी, दोनों करीब करीब मरोगे, ज्यादा दुख नहीं होगा, ना तुम अकेले छूटोगे ना वो अकेली छूटेगी। मोहम्मद ने बड़ी हिम्मत की कि अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह कर लिया। मोहम्मद की परिस्थिति अलग, मोहम्मद के सोचने के ढंग अलग, मोहम्मद की बात अलग। फिर मोहम्मद जिन लोगों से बोल रहे थे वे लोग बिल्कुल ही खानाबदोश, एकदम गैर पढ़े लिखे लोग, उनको तो छुड़ाना था अभी मूर्ति से। अभी तो उनका सबसे बड़ा उपद्रव यही था कि वो मूर्तियों की पूजा में लगे थे, और 1-2 मूर्ति की नहीं, 365 मूर्तियां बना रखी थी काबा में, 1 दिन के लिए 1 मूर्ति थी, हर दिन नई मूर्ति की पूजा चल रही थी। अभी तो वो बहुत नीचे धर्म में पड़े थे, उनको मूर्ति से किसी तरह छुटकारा दिलाना था। अभी उनसे ये घोषणा करनी कि अहम ब्रह्मास्मि हूं बात ही पागलपन की होती, ये तो वो समझ ही नहीं पाते। ये तो पाठ बहुत आगे का है, ये तो भारत में संभव हो सका, क्योंकि ये पाठ के लिए काफी लंबी परंपरा चाहिए, 1000 साल की परंपरा चाहिए। ये तो धर्म के विश्वविद्यालय की आखिरी कक्षा है जहां घोषणा की जा सकती है अहम ब्रह्मास्मि, और लोग समझेंगे और नाराज ना हो जाएंगे। तो अलग परिस्थितियां, अलग व्यक्तित्व, अलग ढंग। जैन राजी नहीं होगा कि मोहम्मद ज्ञान को उपलब्ध हुए, और मुसलमान राजी नहीं होंगे कि महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए, नंगे खड़े हो गए। ये बात तो जस्ती नहीं, ये तो ठीक नहीं, ये तो अशिष्ट, ये तो असामाजिक। कोई किसी दूसरे के संत से तो राजी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे संत की एक निश्चित धारणा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं सब धारणा छोड़ के तुम शून्य भाव से, शांत भाव से, मौन भाव से देखो तो तुम चकित हो जाओगे। मोहम्मद भी उसी महिमा को उपलब्ध हुए जिसको महावीर, बुद्ध भी उसी को उपलब्ध हुए जिसको क्राइस्ट।
0: ये अलग ढंग है, अलग ढंग होने ही चाहिए। और एक व्यक्ति एक ही बार होता है, दोबारा दोहराया नहीं जाता है। परमात्मा इस संसार में किसी को दोहराता नहीं। आदमियों की तो छोड़ दो, तुम एक कंकड़ उठा लो और सारी पृथ्वी खोज डालो तो भी वैसा ही दूसरा कंकड़ ना पा सकोगे। एक पत्ता तोड़ लो इस बगीचे का और सारे जंगल खोज डालो, ठीक वैसा ही दूसरा पत्ता ना पा सकोगे। परमात्मा कार्बन कॉपी बनाते ही नहीं, परमात्मा मूल बनाता, मौलिक। प्रत्येक वस्तु नई और अद्वितीय। तो जब छोटी छोटी चीजों के संबंध में ये सच है, तो क्राइस्ट या मोहम्मद या महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति तो परम आखिरी है। ये तो अद्वितीय, इन जैसा दूसरा कोई होता नहीं। नकल में पढ़ना मत, किसी जैसे बनने की कोशिश करना मत। तुम ही बन सको तो ही तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकोगे। और जब तुम अपनी परिपूर्णता में स्वयं हो जाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नाद उठने लगता है। वो नाद है अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। फिर ओम गलत कहता था, क्योंकि उसने ये कहा कि मैं परमात्मा हूँ और कोई नहीं। और मंसूर ने ठीक कहा कि मैं परमात्मा हूँ क्योंकि सिर्फ परमात्मा है और तो कोई है ही नहीं। परमात्मा ही है, पत्थर भी परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूँ। इन दोनों वक्तव्यों की समानता के साथ साथ इनके भीतर छिपा हुआ भेद भी ठीक से देख लेना। तीसरा प्रश्न, किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? क्या तत्व ज्ञान और ध्यान की स्थिति के बीच कोई गहरा नाता है? इस विषय पर प्रकाश डालने का अनुग्रह करें। किसी बुद्ध पुरुष के वचनों को पूरा पूरा समझना हो तो ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक मिल सकती है ध्यान के बिना भी। थोड़ी थोड़ी भनक पड़ सकती है बिना ध्यान के भी। और अगर ये भनक न पड़ती होती तो फिर तुम चलोगे ही कैसे? तब तो तुम कहोगे जब ध्यान होगा तब समझ में आएगा, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक चलें कैसे? और जब तक चलोगे नहीं तब तक ध्यान कैसे होगा? तब तो तुम एक बड़े चक्कर में पड़ जाओगे, एक दुष्ट चक्कर में पड़ जाओगे। तो दो बातें ख्याल रखना, ना तो ये ही बात सच होती है कि जो बुद्ध पुरुष कहते हैं वो तुमने सिर्फ सुन लिया बुद्धि से और समझ में आ जाए, नहीं। अगर इतने से ही समझ में आ जाए तो फिर ध्यान की कोई जरूरत ही ना रहेगी। और ना ही दूसरी बात सच है कि जब ध्यान होगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर ध्यान होगा तभी समझ में आएगा तो तुम ध्यान भी कैसे करोगे? क्योंकि बुद्ध पुरुषों में कुछ रस आने लगे तभी तो ध्यान में लगोगे ना। तो बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनते समय पूरी तो समझ में नहीं आती, कभी नहीं आती। पूरी तो तभी समझ में आएगी जब तुम भी बुद्ध पुरुष हो जाओगे, जब तुम भी उन जैसे हो जाओगे तभी पूरा अनुभव होगा। लेकिन अभी थोड़ी भनक तो पड़ सकती। जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तभी दौड़ नहीं सकता है, ये बात सच है। लड़खड़ा तो सकता है, और अगर तुम कहो कि अभी लड़खड़ा भी नहीं सकता तो फिर कभी चल ही ना सकेगा। छोटा बच्चा जब पहले कदम उठाता है तो देखा कैसा डरा डरा सहारे की आकांक्षा रखता है, माँ हाथ पकड़ ले, माँ का हाथ पकड़ के हिम्मत करके दो कदम चल लेता है। छोटे बच्चे के पास पैर तो है, उसके शरीर को संभालने योग काफी पैर है। तुम्हारे बराबर पैर नहीं तो तुम्हारे बराबर शरीर भी नहीं, लेकिन अनुपात ठीक उतना ही है जितना तुम्हारा। तुम्हारे बड़े शरीर को संभालने के लिए बड़े पैर हैं, उसके छोटे शरीर को संभालने के लिए छोटे पैर, लेकिन उसके शरीर को संभालने के लिए पर्याप्त पैर है। मगर अभी अनुभव नहीं, उसे ये भरोसा नहीं कि मैं खड़ा हो सकूंगा, उसे ये आत्मविश्वास नहीं। तो माँ का हाथ पकड़ के चल लेता है। गुरु का हाथ पकड़ के चलने का इतना ही अर्थ होता है कि जहाँ तुम अभी नहीं चले हो, यद्यपि चल सकते हो लेकिन तुमने कभी प्रयास नहीं किया है, तो कोई जो चल चुका है, कोई जो चल रहा है, तुम उसका हाथ पकड़ लेते। फिर धीरे धीरे माँ अपना हाथ छुड़ाने लगती, फिर उंगली ही पकड़ रखती है, फिर धीरे धीरे उंगली भी खींच लेती है। एक दिन बच्चा पाता है कि अरे वो तो खुद ही खड़ा होकर चल सकता है। जब पहली दफे बच्चे चलते हैं तो तुमने देखा वो रुकते ही नहीं, वो बैठते ही नहीं। तुम लाख उपाय करोगे, अब तू थक गए, अब तू बैठ जा, मगर वो चक्कर मार रहे। इतना आनंद,
1: उनको अनुभव होता है कि एक अपूर्व घटना हाथ लग गई कि मैं भी चल सकता हूँ। ऐसी ही घटना ध्यान के मार्ग पर भी घटती। बुद्ध पुरुषों की वाणी पहले तो सिर्फ झलक देगी, जरा सी देर के लिए बिजली कौन जाएगी, एक किरण उतर जाएगी, मगर किरण तुम्हें प्यास से भर जाएगी और तुम्हें ये आश्वासन मिलने लगेगा, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस व्यक्ति को हुआ है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता, मुझ जैसे ही व्यक्ति को तो हुआ है, आखिर बुद्ध के हड्डी मांस मज्जा तुम्हारे जैसे ही है, कुछ भेद तो नहीं, तुम्हारे जैसे आंख कान नाक, तुम जैसा भूख लगते तो भोजन करते और तुम जैसे रात थक के सो भी जाते, तुम जैसे ही जवान हुए, तुम जैसे ही बूढ़े हुए, तुम जैसे ही एक दिन मर भी गए, तो बुद्ध पुरुष ठीक तुम जैसे बीमार भी होते, रुग्ण भी होते, स्वस्थ भी होते, बूढ़े हो गए तो बाल भी सफेद हो गए, बूढ़े हो गए तो हाथ पैर भी कपने लगे, ये सब तुम जैसा ही है, लेकिन तुम जैसे इस मनुष्य में भी कुछ घटा है जो तुम में लगता है अभी नहीं घटा। इससे हिम्मत बनती है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति में ये हो सका है तो शायद मुझ में भी हो सके, शायद मैं भी एक संभावना अपने भीतर लिए चल रहा हूँ, एक बीज जिसको ठीक भूमि नहीं मिली, शायद मैं भी अपने भीतर एक संभावना लिए चल रहा हूँ जिस पे मैंने कभी प्रयोग नहीं किया और वास्तविक बनाने की चेष्टा नहीं की। किसी गायक को गीत गाते देख कर तुम्हें याद आ जाती अपने कंठ की, कि कंठ तो मेरे पास भी है, और किसी नर्तक को नाचते देखकर तुम्हें याद आ जाती है अपने पैरों की, कि पैर तो मेरे पास भी हैं, चाहूं तो नाच तो मैं भी सकता हूं। किसी चित्रकार को चित्र बनाते देखकर तुम्हें भी याद आ जाती है कि चाहूं तो चित्र मैं भी बना सकता हूं। ऐसे ही किसी बुद्ध को देखकर तुम्हें याद आ जाती है कि चाहूं तो बुद्धत्व मैं भी पा सकता हूं। बस यही चाह, ये समझ नहीं है पूरी, प्यास शुरू हुई, उजाला सा बिखर जाता है, चाहे जैसा भी हो हर वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती है पर ढेर बिखर जाता है। गम में वैसाख के सूरज की तपन होती है, ऐसे मौसम में समंदर भी उतर जाता है। रोज दिन भर तो अंधेरों में सफर करते हैं, शाम होते ही उजाला सा बिखर जाता है, टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, उजाला सा बिखर जाता है, कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती। बुद्ध पुरुषों के पास, तीर्थंकरों के पास, सदगुरुओं के पास, परमहंसों के पास, सूफियों के पास कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, कुछ देर को ही, क्षण भर को ही सही, कोई पूरा सूरज नहीं उगता लेकिन एक किरण चौंध जाती है, लेकिन उस किरण में तुम्हें अपना भविष्य दिखाई पड़ जाता है कि ये हो सकता है। टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई लम्हा एक क्षण भर को, एक पल भर को आंख खुल जाती फिर बंद हो जाती, लेकिन वो एक पल जीवन को बदल देने वाला पल सिद्ध होता है। पूछते हो किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है, हाँ भी और नहीं भी। हाँ, इस अर्थ में एक झलक मिलती है, एक किरण सी उतरती है, एक उमंग जग जाती, एक प्यास उठने लगती, एक अज्ञात खिंचाव पैदा हो जाता है, इसलिए हाँ और नहीं, इसलिए कि सुन के ही कहीं पूरी बात थोड़ी हो जाती है, चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बहुत कूड़ा करकट है वो जला देना पड़ेगा, आग से गुजरना होगा ताकि सोना निखर जाए। बुद्ध पुरुषों की बात सुन के यात्रा शुरू होती, मंजिल नहीं आ जाती, मंजिल तो आएगी तभी जब ध्यान पूरा होगा, और जब ध्यान पूरा होगा तभी पूरी बात भी समझ में आएगी, क्योंकि पूरी बात समझने का एक ही अर्थ हो सकता है कि जो उनका अनुभव था वो मेरा भी अनुभव हो गया, जब अनुभव एक जैसे हो जाते हैं तभी बात समझ में आती। चौथा प्रश्न, भगवान जिस दिन मैं पालूंगा उस दिन कैसे आपको धन्यवाद दूंगा। अब अभी से व्यर्थ की फिक्र में मत पड़ो। जब पालेने जैसी अपूर्व घटना घट जाएगी तो धन्यवाद भी खोज ही लोगे। ये तो छोटी सी बात रही, उतनी बड़ी बात हो जाएगी तो क्या तुम सोचते हो धन्यवाद देने का कोई

न खोज पाओगे, भगवान को खोज लोगे और धन्यवाद देने का ढंग न खोज पाओगे। हो ही जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। और अभी से कोई अभ्यास थोड़ी करना कि धन्यवाद का अभ्यास करोगे। अभ्यास करोगे तो झूठा होगा, और झूठा अभ्यास अगर रहा तो उस मौके पर भी शायद झूठे अभ्यास से ही धन्यवाद दोगे। उस धन्यवाद को तो कम से कम स्वस्फूर्त रहने दो, उसकी तो तैयारी मत करो, उसका तो रिहर्सल मत करो। मुल्ला नसुद्दीन एक दिन रेल यात्रा से वापस लौटा तो मुझसे कहने लगा कि रास्ते में एक टिकट चेकर उसे बड़े अजीब ढंग से घूर रहा था। तो मैंने पूछा, अजीब ढंग से क्या मतलब तुम्हारा नसुद्दीन? तो उसने कहा कि यानी वह ऐसे घूर रहा था जैसे मेरे पास टिकट हो ही नहीं। तो मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया नसुद्दीन? उसने कहा, मैं क्या करता, मैं भी उसे ऐसे घूरने लगा जैसे सचमुच मेरे पास टिकट हो। अब ऐसे अभ्यास चल रहे हैं, टिकट चेकर तुम्हें घूर रहा है कि जैसे तुम्हारे पास टिकट ना हो, तुम ऐसे घूर रहे हो जैसे तुम्हारे पास टिकट हो। झूठे अभ्यासों में मत पड़ो, ये बात पूछो ही मत। धन्यवाद निकलेगा उस अनुभव से, सद्य स्नान अभी अभी नहाया हुआ ताजा, जैसे कोंपल फूटती नई, जैसे सुबह सूरज उगता नया, ऐसा धन्यवाद उगेगा। और उस धन्यवाद की बात ही कुछ और है।

हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक कथाओं और प्रसंगों के बारे में जिनसे बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और यही ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणाशी युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। श्रोताओं, हमने प्रारंभ कर दिया था महाभारत काव्य, जो ये ग्रंथ है इसके बारे में हमने चर्चा पिछले कई एपिसोड से शुरू कर दी थी, और पिछले एपिसोड में हमने रागलेखा दासी जी से एक कथा जानी जिसमें पक्षीराज जो गरुड़ हैं वो कैसे पक्षीराज बने और वो किस तरह से अमृत लेने पहुंच गए थे अपनी माता जी को दासत्व से मुक्त कराने के लिए, हमने ये कथा रागलेखा दासी जी से जानी। तो आज एक नई कथा, एक नया प्रसंग हम इस महाभारत की कथाओं के अंतर्गत जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी,
1: अब शौनक आदि जो ऋषि थे उन्होंने पूछा है, सूत नंदन, जब सर्पों को ये बात मालूम हो गई कि माता कद्रु ने हमें शाप दे दिया, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? तो उग्र श्रवाद जी कहते हैं, क्योंकि ये संवाद चल रहा है शौनक आदि ऋषि जो 88,000 है और उग्र श्रवाद जी जो सूत गोस्वामी जी के पुत्र है उग्र श्रवा सूत, तो उनके बीच में चल रहा है। तो उग्र श्रवाद जी कह रहे हैं कि उन सर्पों में से एक शेष नाग भी थे, उन्होंने कद्रु और अन्य सर्पों का साथ छोड़ के कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। ये केवल हवा पीकर रहते थे और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। ये अपनी इंद्रियों को वश करके गंध मादन, बद्रिका आश्रम, गोकर्ण, हिमालय आदि की तराई में एकांत वास करते और पवित्र तीर्थों और धामों की यात्रा भी करते। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा, नाड़ियां सब सूख गई है, क्योंकि उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, शेष तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, भगवान मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। विनीता और उसके पुत्र गरुड़ और अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे उब कर तपस्या कर रहा हूँ। विनीता नंदन, गरुड़ निसंदेह हमारे भाई हैं, अब मैं तपस्या करके शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो बस इस बात की कि मरने के बाद उन दुष्टों का संग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छुपी नहीं है, अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है, तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष ने कहा, पितामह मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए काम करो। ये सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार, नगरों के साथ हिलती डुलती रहती है, तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि इससे वह अचल हो जाए। शेष ने कहा, मैं इस पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं, आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष पृथ्वी तुम्हें मार्ग दे देगी, तुम उसके भीतर घुस जाओ, तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। आज्ञानुसार शेष ने भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। तभी से स्थिर भाव में स्थित है। माता का श्राप सुन के वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई, वे सोचने लगे कि इस प्रकार श्राप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। असुकी ने कहा, भाइयों, विपत्ति आने से पहले हमें उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर विचार करने लगे। हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मे जय के इससे भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दे कि जिससे यज्ञ ही ना हो पाए। कुछ ने कहा कि हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लेंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आज्ञा तो दस लेंगे। अंतले सर्पों ने कहा, वासुके हम सब तो यही सोच सकते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे आप उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं, इन विचारों में अव्यर्थता बहुत अधिक है, हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करें, उनकी आज्ञा अनुसार काम करें, इस प्रकार हम लोग का हित हो वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूँ, भलाई बुराई की जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। उनमें से एक इलापत्र नाम का एक नाग था। उसने सब सर्पों और वासुकी की सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों, उस यज्ञ का रुकना और अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है। जिस समय माता ने श्राप दिया था, उस समय डरकर मैं उसी की गोदी में छिप गया था। वह क्रूर श्राप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान कठोर हृदय का ध्रुव को छोड़कर ऐसा कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को श्राप दे डाले। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस समय जगत में सर्प बहुत बढ़ गए हैं, क्रोधी डरावने विषैले हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रु को रोका नहीं, और इस श्राप से शूद्र प्राप्ति जहरीले सांपों का ही नाश होगा, धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। ये बात भी है कि जयावर वंश में जरतकारु नाम के एक ऋषि होंगे, उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक, वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे, तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। जरतकारु की पत्नी का नाम भी जरतकारु ही होगा, वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी, उसके घर से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्प उसको मुक्त करेगा। सर्पराज वासुकी, मेरे विचार से आपकी बहन जरतकारु का विवाह उस जरतकारु ऋषि से ही होना चाहिए, और जिस समय दीक्षा के समान पत्नी की याचना करें, उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें, यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। इलापत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्नचित से कहा, ठीक है ठीक है। तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग को नेती मतने वाली रस्सी बनाया गया। वासुकी ने सर्पों को जरतकारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि जिस समय जरतकारु ऋषि विवाह करना चाहे, उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना, हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत नंदन, आपने जिन जरतकारु ऋषि का नाम लिया, उनका जरतकारु नाम क्यों पड़ा, और उनके नाम का अर्थ क्या है, और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? विश्वास जी कहते हैं, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण हट्टा कट्टा था, इसे उन्होंने तपस्या करके उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया, इसी से उनका नाम जरतकारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी, उसने भी शरीर को तपस्या के द्वारा क्षीण कर लिया, इसलिए उसका नाम भी जरतकारु हुआ। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरतकारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे, वे विवाह करना नहीं चाहते थे, जब तब स्वाध्याय में लगे रहते थे, निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था, राज्य था। जरतकारु का नियम था कि जहाँ सायकाल हो जाता वे वहीं ठहर जाते और पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलो पुरुषों के लिए असंभव है। ये केवल वायु पीकर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह करे हुए एक गड्ढे में लटक रहे हैं। वे एक खसका तिनका पकड़े हुए हैं और वे केवल वही केवल बच भी रहा था। उसी तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे चूहा उतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरतकारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खसके तिनके का सहारा लेके लटक रहे हैं, उसे एक चूहा उतरता जा रहा है, आप लोग कौन हैं? और अब इस खस की जड़ कट जाएगी, तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे। आप लोग को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे तीसरे आधे भाग से विपत्ति से

0: नहीं के बराबर है। वे तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरत कारु है। वे वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी उदार और व्रतशील भी है। तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है उसने। उसके कोई भाई बंधु अथवा पति पुत्र नहीं है, इसीलिए हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि आपको कहीं मिले तो उसे इस प्रकार कहना, जरत कारु तुम्हारे पितर नीचे मुंह लटकाकर गड्ढे में लटक रहे हैं। तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, जब हमारे वंश की के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, ये जो आपने घस की जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वही उसकी जड़ी कटी हुई जड़े हैं। ये अधकटी जड़ ही जरतकारी है। आप जो कुछ देख रहे हैं ये सब जरतकार उसे कहिएगा और उसे कृपा करके ये बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। जरतकारु ने पितरों से कहा कि आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं। आप लोगों को अपराधी पुत्र जरतकारु हूँ मैं। आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पितरों ने कहा, बेटा ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोग वश यहाँ आ गए। मैं अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। जरतकारु ने कहा, मेरा अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचार्य का निश्चय पलट लिया। अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूंगा और यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी तो वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उस पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा। ऐसी सुविधा मिलने पर ही विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा, वह आप परलोक आपको परलोक में सुखी सुख से रहने देगा। जरतकारु अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो उन्हें बूढ़ा समझकर उन्हें कोई अपनी कन्या ब्याना नहीं चाहता था और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। जरतकारु सोचने लगे, मैं पितरों का दुख उठाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ, जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त शर्त जरतकारु की बात सुनकर नागराज के पास गए। उन्होंने चट चट अपनी बहन लाकर भिक्षा के रूप में जरतकारु ऋषि को समर्पित की। वासुकी से पूछा इसका क्या नाम है और साथ ही ये भी कहा कि मैं इसके भरण पोषण नहीं करूँगा। वासुकी नाग ने कहा, मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा। इसके अतिरिक्त एक शर्त यह है कि ये कभी मेरा अप्रिय कार्य ना करे, करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जरतकारु ऋषि अपनी पत्नी जरतकारु के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरे रुचि के विरुद्ध ना हो, ना तो कुछ करना है और ना कहना, ऐसे करूंगी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार कर लिया और वह सावधान रह के उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह गया और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, जरतकारु ऋषि कुछ खिन होकर अपनी पत्नी के गोद में सर रहकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो आया। उसी पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा, महाबाग उठिए, सूर्यास्त हो गया है, आचमन करके संध्या कीजिए, यह अग्निहोत्र का समय है। ऋषि जरतकारु जगे, क्रोध के मारे उनका होंठ कांपने लगा। उन्होंने कहा, सर्पिनी तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊंगा। मेरे हृदय में दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्यास्त नहीं हो सकता, अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं है, अब मैं जाऊंगा। अपने पति के हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा, भगवान मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया, आपके धर्म का लोप ना हो, मेरी यही दृष्टि थी। जरतकारु ऋषि ने कहा, एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता। मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए और यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा। मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत कर लो। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई, उसका मुंह सूख गया और वाणी गदगद हो गई।
1: और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हम अभी रागले कदासी जी से जान रहे थे, अभी बहुत प्यारा सा भजन सुना हमने, उसके बाद हम इस कथा को आगे जारी रखते हैं। जी रागले कदासी जी, कहानी आप पूरी कीजिए।
0: जी, तो ऋषि पत्नी जो थी, उसकी पत्नी जो थी जरतकारु की जो पत्नी थी, उसका नाम भी जरतकारु था, तो बोली कि हमारे जाति भाई कद्रु माता के श्राप से ग्रस्त है, आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है। उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा। आपका और मेरे सहयोग निष्फल नहीं होना चाहिए।

0: अभी आप मेरे घर से संतान भी तो नहीं हुई है। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वह बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। ये कहकर जरत्कारु ऋषि चले गए। समय आने पर वासुकी की बहन जरत्कारु ने के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से ही मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। तमस्या बड़ा होने पर उसने चवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। जब वे गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्थि है पद का उच्चारण किया, इसलिए उसका नाम आस्तिक हो गया। उग्र शवादी ने कहा, राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। मैं उनकी मृत्यु का वितान सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो। क्योंकि परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी तो राजा जन्मेजय उनके पुत्र है, तो अब वो जानना चाहते है कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेप में उनके चरित्र को सुनाते हैं। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे, उनकी प्रजा हष्ट पुष्ट रहती थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। जन्मेजय ने कहा, मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा कि उन्होंने एक बाण से एक हिरण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय एक मुनि का दर्शन हुआ, वे मौनी था। उन्होंने उसी से प्रश्न किया परंतु वे कुछ नहीं बोले। उसी समय राजा भूखे और थके माने थे, इसलिए मुनि को कुछ ना बोलते देख कर उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी ऋषि श्रमिक के पुत्र थे श्रृंगी। उन्होंने हाथ में जल लेकर आपके पिता को श्राप दिया जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। वह दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। श्रमिक मुनि ने ये सब सुनकर अच्छा नहीं समझा। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा, आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था उसने कश्यप नामक एक ब्राह्मण को देखा। उसने सोचा, ब्राह्मण देवता आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। कश्यप ने कहा, मैं जहाँ जा रहा हूँ परीक्षित को राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलाएगा, मैं वही जा रहा हूँ, उसे तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुँच जाने पर तो सर्प उसे जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ, आप मेरे डसने के बाद इस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं। मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। ये कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वृक्ष जलकर राख हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। उसने कहा, तुम जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहाँ जा रहा हूँ। तब तक्षक ने कहा कि तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। ऐसा कहने पर कश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे और सावधान धार्मिक पिता को विष के आग से भस्म कर दिया। तदनंतर आपका राज्य अभिषेक संपन्न हुआ। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तंग ऋषि को भी बहुत परेशान किया है, अब जैसा उचित समझे करें। उनके ने कहा, महाराज तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। ये बात तक्षक और कश्यप दोनों के बीच दोनों में से किसी को मालूम न थी। कश्यप के डसने पर वृक्ष के साथ मनुष्य भी भस्म हो गया। कश्यप के मंत्र के प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और कश्यप की बातचीत उसी से सुनी थी और वहां से आकर उसने हम लोगों को सूचित किया था। अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वे क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी, आंखें आंसू से भर गईं। वे दुख शोक और क्रोध में भरकर आंसू बहाते हुए हाथ में जल लेकर बोले, वे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए ये बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही था, इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। देवताओं ने आपके लिए एक महायज्ञ निर्माण कर रखा है, ऋषिकों ने कहा, हमें इस यज्ञ की विधि मालूम है। राजा ने कहा ब्राह्मणों से, मैं वही यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। उसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। सूर्य ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई। उसे देखकर यह मालूम होता था कि किसी ब्राह्मण के कारण ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा।
1: जी जी, बहुत ही सुंदर कथा। हम जान रहे हैं कि किस तरह से अब जन्मे जी जो हैं, उन्होंने ये सोच लिया है कि वो उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई पता चलने के बाद बदला लेंगे। और अब इस कथा में आगे क्या होगा ये हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: हरे कृष्ण
1: जी। तो श्रोताओं, इस महाभारत काव्य और इस ग्रंथ के अंदर जितनी भी कथाएं हैं वो हम आपको बताते रहेंगे अपने एपिसोड्स में, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 के साथ। और भी कार्यक्रम तो आप इंजॉय कर सकते हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए RMR 107.8। फील गुड, फील लाइव।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण। दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने का जो हमारा उद्देश्य है वह है भक्ति का प्रचार प्रसार करना और जन जन के दुखों का विनाश करना, उनका सरल से सरल उपाय ढूंढना। और वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो बताएगा हमें शिव पुराण। और शिव पुराण सुनाएंगी हमको डॉक्टर लीना सिन्हा जी। तो लीना सिन्हा जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने पिछले एपिसोड में हमारे श्रोताओं को बहुत ही मनोरम दृश्य का वर्णन प्रसंग ऐसा सुनाया था कि मन अभी तक भी उन्हीं दृश्यों में खोया हुआ है। और बहुत से फ़ोन आए कि जो दृश्य शिव पुराण में भगवान शिव और माँ आदिशक्ति के विवाह का सुनाया गया, अभी तक भी हम उस पर चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने बताया कि पहले तो मैं ना तैयार नहीं हो रही थी